मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आश्विन माह की 19वीं तिथि, तदनुसार 11 अक्टूबर सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 52 सेकेंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। पूर्व दिशा से सूर्य की प्रथम किरणें सिंदूरी आभा बिखेर रही हैं, मानो दिव्य मेला। शारदीय नवरात्रि के पावन अवसर पर माँ के धरती पर आगमन की खुशी में प्रकृति ने भी लाल चूनर ओढ़ ली हो। माँ के स्वागत के उल्लास में प्रकृति का कण कण नवजीवन और अलौकिक ऊर्जा से भर रहा है। संपूर्ण ब्रह्मांड में असीम और पवित्रता का माहौल है। आइए मिलकर नई सुबह और माँ के आगमन का स्वागत करें। आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नई सकारात्मक ऊर्जा और नई सुबह के साथ श्रोताओं, हम आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह की दिनचर्या के साथ आपने अपना रेडियो सेट ऑन कर लिया है और इंतजार है देश दुनिया की खबरों को जानने का। तो देर कैसी, चलते हैं दिल्ली स्टूडियो। प्रातः के 6 बजने वाले हैं, सुन लेते हैं समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में यात्रा भी करेंगे। पूनमल्ली पोरूर कॉरिडोर में 3,700 मीटर लंबा डबल डेकर ढांचा बनाया गया है। इसमें आधुनिक सिग्नलिंग प्रणाली है जो परिचालन को सक्षम बनाने के लिए तैयार की गई है। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अंबा समुद्रम, परमकोडी और नमक्कल शामिल है। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज एक वर्ष पूरा हो गया है। इसकी शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। इसके अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्र की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी इसमें शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले के कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल अद्दीस अबाबा में अफ्रीका में भारत के मिशन

0: मुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता और साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। इससे पहले विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की मांग करते हुए कहा कि वैश्विक फैसले लेने की प्रक्रिया में भारत और अफ्रीका का प्रतिनिधित्व कम नहीं रहना चाहिए। उन्होंने 2023 में G20 की अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्यता दिलाने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया।
1: इंडिया वर्क्ड रेजोल्युटली
2: वर्ष 2023 में अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने अफ्रीकी संघ को G20 की स्थायी सदस्यता दिलाने के दृढ़ प्रयास किए। इस दशक में संयुक्त राष्ट्र का महत्व लगातार कम हुआ है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सदस्यों की संख्या बढ़ाना नहीं बल्कि ग्लोबल गवर्नेंस को ज्यादा लोकतांत्रिक, जवाबदेह और समावेशी बनाने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र को भी अधिक सक्षम और विश्वसनीय बनाना है।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को रूस के तेल शोधक कारखानों, विशेष रूप से डीजल ईंधन का उत्पादन करने वाली इकाइयों को निशाना बनाने को लेकर भी चेतावनी दी। श्री ट्रंप की टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमेरिका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत ने कहा है कि दिल्ली में कल हुई घटनाओं को लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय की चिंताएं निराधार हैं और ये देश के आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप है। जिनेवा स्थित भारतीय स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अधिकारी कानून के अनुसार कार्य करते हैं और किसी भी शिकायत के निवारण के लिए न्यायालय सभी के लिए उपलब्ध है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात परिवर्तित रहेगा। यातायात पुलिस ने लोगों को यात्रा से पहले जानकारी लेने और गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है। इस बीच उत्तर रेलवे ने घोषणा की है कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। ये भी कहा गया है कि संबंधित सभी मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। सुबह के 6:05 का वक्त हुआ है। आपका स्वागत है हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में। 747 किलोहर्ट्ज के साथ साथ आप हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं, समय है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में हमारे किसान भाई सुनेंगे फसल अवशेष प्रबंधन के आसान उपाय विषय पर डॉक्टर कौशलेश कुमार सिंह से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, इस समय हम कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर रायबरेली में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात हुई वरिष्ठ वैज्ञानिक और अध्यक्ष डॉक्टर के सिंह साहब से। डॉक्टर साहब नमस्कार।
2: नमस्कार
1: डॉक्टर साहब। इस समय खरीफ फसलों की कटाई शुरू हुई है और ज्यो ज्यो खेत खाली होगा तो रबी फसलों की बुआई किसान भाई बहन शुरू करेंगे, तो ऐसे में जो फसल अवशेष है, पराली है, इसका प्रबंधन कैसे करें किसान भाई बहन?
2: किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी जो मुख्य फसल है धान और गेहूं, और इसका पैदावार लेने के बाद जब हम दाने निकाल लेते हैं, जितने भी अवशेष होते हैं फसलों के, उसको हम फसल अवशेष कहते हैं। ये माना जाता है कि लगभग 1 हेक्टेयर क्षेत्र में 30 से 40 मीट्रिक टन भूसा या पराली जो है वह पैदा होती है।
1: यानी 2.5 एकड़ में?
2: जी जी 2.5 एकड़ में। अब पराली अक्सर किसान भाई

0: क्या करते हैं, समय का अभाव होने के कारण पराली को जलाना ही सबसे उचित समझते हैं। यह बहुत ही नुकसानदेह पद्धति है और इससे हमारी जमीन को भी नुकसान होता है, हमारे वातावरण को भी नुकसान होता है और पूरी तरीके से हमारा जो पोषक तत्व है वह भी नष्ट होता है।
1: डॉक्टर साहब, ये जो फसल अवशेष है, एक तरह का कचरा है, उसको कंचन कैसे बनाएं किसान भाई बहन, कैसे कबाड़ से जुगाड़ करें?
0: किसान भाइयों, जैसा आप जानते हैं कि जो हम पोषक तत्व अपने फसलों को देते हैं तो उसका कुछ मात्रा जो है हमारे फसल अवशेष में भी होता है। लगभग ये मान के चलिए जितना भी आपने फसलों को अपना न्यूट्रिएंट दिया हुआ है, चाहे वो DAP, यूरिया या पोटाश के रूप में, तो उसका लगभग 25% नाइट्रोजन, 25% फास्फोरस और 50% सल्फर तथा 75% पोटाश की मात्रा उस फसल अवशेष में रह जाती है।
1: और सूक्ष्म पोषक तत्व भी?
0: जी हाँ, इसके अलावा सूक्ष्म पोषक तत्व की मात्रा भी, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं तो वो भी उसी में पाए जाते हैं। तो इसके साथ साथ जब हम इसको जला देते हैं तो यह पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार देखा जाए तो पराली जो हम जलाते हैं, एक टन को जलाने से लगभग 400 किलोग्राम तक ऑर्गेनिक कार्बन नष्ट होता है, 5.5 किलोग्राम नाइट्रोजन नष्ट होता है और करीब 2.5 किलोग्राम फास्फोरस नष्ट होता है तथा 1.25 किलोग्राम सल्फर। इसके अतिरिक्त 25 किलोग्राम पोटाश की मात्रा पूरी तरीके से जल करके गैस के रूप में बदल करके वातावरण में मिल जाती है। तो इन तत्वों का नुकसान सिर्फ एक टन यानी 10 क्विंटल को जलाने से होता है। तो आप सभी समझ सकते हैं कि हम कितना जलाते हैं फसल अवशेष को।
1: और इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है, माटी बीमार होती है और कानूनी अपराध भी है?
0: जी हाँ, पर्यावरण की बात हुई तो इसमें लगभग 70% तक कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, 0.66% मीथेन गैस निकलती है। तो ये सभी जो जहरीली गैसें हैं हमारे वातावरण को प्रदूषित करती हैं। इसके साथ साथ इसका सीधा प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ता है, स्वास्थ्य को नुकसान करता है। इसके अलावा जो हमारे मिट्टी के लाभदायक तत्व हैं वह भी नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ साथ ये देखा गया है जहाँ पर जलाते हैं वहाँ पर फॉग एक बनता है, धुंध कोहरा होता है, जिससे कि सड़क दुर्घटना में वृद्धि होती है। और साथ ही साथ हमारे जितने भी मित्र कीट या मित्र जीवाणु हैं जो कि हमारे फसलों को लाभ पहुँचाते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं या वहाँ से विलुप्त हो जाते हैं।
1: आज की तारीख में माटी बीमार हो रही है, माटी की सेहत बिगड़ रही है और माटी में जैविक कार्बन यानी हीमोग्लोबिन घट रहा है, तो ये जो पराली है या फसल अवशेष है इसका प्रबंधन कितना फायदेमंद होगा हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए?
0: जैसे कि हम धान की कटाई करते हैं, उसके बाद एक सबसे बढ़िया जो है वेस्ट डिकम्पोजर जिसे कहते हैं, उसका अगर हम छिड़काव कर देते हैं, ये हमारे हर स्टोर पे कृषि विभाग के या कहीं भी आपको वेस्ट डिकम्पोजर मिल जाता है, उसको ले आ करके 200 लीटर पानी में उसको घोल लेते हैं, उसमें थोड़ा सा 1 किलोग्राम सस्ता बेसन जो है और 1 किलोग्राम गुड़ मिला करके उसको डाल देते हैं, फिर कम से कम 2 से 3 दिन बाद उसका जो है प्रयोग करते हैं, यानी 10 गुना पानी मिला करके छिड़काव करने से जो बैक्टीरिया होंगे वो पूरी तरीके से उसमें फैल जाएंगे और बहुत तेजी से जो है हमारे फसल को सड़ाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं।
1: डॉक्टर KK सिंह साहब, आज यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र दरियापुर में आपसे मुलाकात हुई और आपने फसल अवशेष प्रबंधन और रबी की तैयारी के बारे में किसान भाइयों बहनों को सचेत किया, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी किसान भाई सुन रहे थे फसल अवशेष प्रबंधन के आसान उपाय, इस विषय पर डॉक्टर कौशलेश कुमार सिंह से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत। इसी के साथ कृषि चर्चा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। जब शक्ति की साधना करें तो संतुलन रखें, अति उत्साह और आलस्य दोनों से बचें। दूसरों की मदद और सेवा भी एक सच्ची साधना है जो हमारे आंतरिक मन को शक्ति और आत्मिक उत्थान का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार, शक्ति साधना।

0: देवी भागवत के तृतीय स्कंध के छठे अध्याय में देवी कहती हैं, मैं और परब्रह्म एक ही हैं, कोई भेद नहीं है, जो वे हैं वही मैं हूँ। मैं ही बुद्धि, धृति, कीर्ति, स्मृति, श्रद्धा, मेधा, दया, लज्जा, क्षुधा, तृष्णा, क्षमा, कांति, शांति, पिपासा, निद्रा, तंद्रा, जरा, अजरा, अविद्या, स्पृहा, वांछा, शक्ति, अशक्ति, वसा, मज्जा, त्वचा, दृष्टि, सत्या, सत्यवाणी, परा, मध्यमा, पश्यंती आदि वाणी के भेद व विभिन्न प्रकार के नाड़ियां मैं ही हूँ। इसी अध्याय में आद्या शक्ति ब्रह्मा को सृष्टि रचना हेतु महासरस्वती, विष्णु को सृष्टि पालन हेतु महालक्ष्मी एवं शिव को संहार लीला हेतु महाकाली स्वरूप प्रदान करती हुई अपने सात्विक, राजसिक एवं तामसिक प्रकृति द्वारा अपने सगुण एवं निर्गुण स्वरूप का वर्णन करती हैं। वस्तुतः भगवती जगदम्बिका आद्या शक्ति के रूप में सदैव परब्रह्म की अधिष्ठात्री शक्ति या प्रकृति के रूप में शास्त्रों में परम वंद्या रही हैं। आचार्य शंकर ने तो यहाँ तक कह दिया कि शक्ति के अभाव में शिव स्पंदन तक कर सकने में असमर्थ हैं। स्वयं योगेश्वर शिव सम्मोहन तंत्र में भगवती पार्वती से कहते हैं कि शिव तत्व का पूजन शक्ति तत्व के अभाव में मात्र अधूरा ही नहीं अपितु पातकदायक भी है। गौर तेजो बिना यस्तु श्याम तेजः समर्च्यते, जपेत् वा ध्यायेत् वा सद्भवेत् पातकी शिवे। परम शिव प्रकाश विमर्श रूप हैं। इस सामरस्य में शिव प्रकाश हैं और शक्ति उसका विमर्श। शिव और शक्ति अथवा प्रकाश और विमर्श यह केवल औपचारिक द्वित्व है, वस्तुतः यह नीर छीन है। स्पंदन शक्ति शिव तो वस्तुतः परम शिव का स्थिर रूप है, वह विश्रांत अवस्था है जो परिपूर्ण एवं आनंद अवस्था में रहता है। शक्ति ही उस तत्व की आभासायमान चलरूपता है। इस विश्रांत एवं आभासमान चलरूपता के सामरस्य से ही वह परम शिव विश्वोत्तीर्ण होते हुए भी विश्वमय रूप में अभिन्नतया स्पंदित होते रहते हैं। अभिनवगुप्त इस परिपूर्ण संवित स्वरूपा शक्ति को कुल सामर्थ्य, हृदय सार, स्पंद विभूति, त्रिंशिका, काली, कर्षणी, चंडी, वाणी आदि अनेक नामों से भेद करते हैं। सृष्टि के समस्त पदार्थ इस शक्ति के ही रूप हैं। वस्तुतः परम संवित की एक यह शक्ति प्रसारक क्रम में अनंत रूपों में प्रकाशित होती रहती है। पति दशा में वह चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान और क्रिया इन पांच मुख्य शक्तियों के रूप में तथा पशु दशा में प्राण, अंतःकरण, बाह्य इंद्रियां इत्यादि अनंत प्रमेयों के रूप में आभासित होती हैं। देवी भागवत के सप्तम स्कंद के 35वें अध्याय में भगवती द्वारा यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान व समाधि एवं कुंडलिनी जागरण की विधि बताई गई है, जिसके अनुपालन से साधक जरा, मरण, दुख, भव, बंधन से मुक्त हो जाता है। वस्तुतः शक्ति साधना एक दीर्घकालिक और धैर्यगम्य प्रक्रिया है। यह मार्ग आडंबर, प्रदर्शन, बनावट आदि से गोपन का मार्ग है, जिसमें अपने अनुभवों को गुप्त रखना एवं साधारणावस्था में ही रहना श्रेयस्कर होता है। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।
1: अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार शक्ति साधना। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

भोर की पहली किरण के साथ ही पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा है मां की जयकारों से। मंदिरों में आस्था के दीप और हर हृदय में मां की भक्ति समाई हुई है। आ गया है नवरात्रें, मां के नौ दिव्य स्वरूप और असीम शक्ति की आराधना का पावन पर्व नवरात्रि। आइए श्रद्धा के फूल और भक्ति के स्वर मां के चरणों में अर्पित करें। बोलिए मिलकर प्रेम से जय माता दी।

माँ दुर्गा शक्ति हैं, साहस हैं और अधर्म के विरुद्ध खड़े होने का संकल्प। माँ के हाथों के अस्त्र स्मरण कराते हैं कि सत्य की रक्षा और अन्याय का सामना करने

के लिए हृदय में दृढ़ विश्वास होना आवश्यक है। सिंघवानी माँ की महिमा का आइए गुणगान करें और अपनी श्रद्धा के स्वर माँ की इस भजन के साथ मिलाएं।

माँ की शक्ति, माँ की भक्ति, माँ की ममता ऐसी जिसमें हर पीड़ा को सुकून और हर निराशा को आशा प्राप्त होती है। माँ के चरणों में झुककर भक्त अपने मन की हर बात कह देता है। आइए माँ के इसी वात्सल्य और करुणा को समर्पित इस भक्तिमय भजन का आनंद लें।

जब भी मन में माँ का स्मरण हो आता है, मन श्रद्धा से भर जाता है, हृदय में अनोखी शांति उतर आती है। माँ का दरबार केवल पूजा का स्थान ही नहीं, बल्कि विश्वास और प्रेम का संसार है, जहाँ हर भक्त को मिलता है माँ का सानिध्य।

भक्ति का सबसे सुंदर रूप वो है जब मन के सारे भाव बिना किसी शब्द के माँ तक पहुँच जाते हैं। ना कोई अपेक्षा, ना कोई दिखावा, बस माँ के प्रति अटूट विश्वास और उनके चरणों में पूर्ण समर्पण।

माँ दुर्गा सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और सद्बुद्धि का संचार करें। हर घर में प्रेम हो, हर हृदय में करुणा और हर बेटी को सम्मान मिले। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज की आराधना अब संपन्न होती है।

आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 320 में युद्ध को लेकर दोनों पक्षों द्वारा मंत्रणा का प्रसंग।

लंका में भीषण युद्ध छिड़ा है। वानर सेना ने रावण की प्रायः आधी सेना का संहार कर दिया है। रात्रि का आगमन होने पर दोनों पक्ष अपने अपने शिविरों में जय पराजय तथा रणनीतियों की समीक्षा करते हैं। आधा सैन्य बल खोकर रावण चिंतित है। मंत्रणा के समय माल्यवंत रावण को फिर सीख देता है कि वेद पुराणों ने जिन प्रभु का गुण गाया है उनसे विमुख होकर कोई भी सुखी नहीं हो सका। माल्यवंत उसे स्मरण दिलाता है कि जब से वो सीता को हर लाया है तब से ही भांति भांति के अपशकुन हो रहे हैं, किंतु रावण को अपने वृद्ध नाना की ये सीख नहीं सुहाती। अपमानित कर वो माल्यवंत को सभा से निकाल देता है। रावण पुत्र मेघनाथ ने पिता को अपनी दृढ़ता से उत्साहित किया। कल प्रातः देखना मैं क्या करता हूँ, अभी से क्या कहूँ। इस प्रकार पिता पुत्र में मंत्रणा होते रात बीत गई। सवेरा हुआ, वानर सेना ने एक बार फिर दुर्गम गढ़ को चारों ओर से घेर लिया। राक्षस ऊपर से बड़े बड़े शिलाखंड तथा अन्य अस्त्र बरसाने लगे। घोर गर्जन तर्जन और वज्र जैसे अस्त्रों से प्रलय मच गई। वानर सेना प्रहार से घायल होती है किंतु मैदान नहीं छोड़ती। मेघनाद ने जब वानर और रीछ सेना द्वारा दुर्ग के घेर लिए जाने का समाचार सुना तो युद्ध घोष करता, डंका बजाता, किले से उतरकर युद्ध के लिए प्रस्तुत हुआ।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थे ए हरिहरन और रविंद्र साठे। आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। आप सुनेंगे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार सायं 6:30 से 7:20 तक कृषि कार्यक्रम, प्रायोजक नमामि गंगे एवं राज्य स्वच्छ जलापूर्ति उत्तर प्रदेश। KHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र और प्रोग्राम चल रहा है नमस्ते लखनऊ। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7 बजे का समय है और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। आज की स्वास्थ्य चर्चा में हमारी एक्सपर्ट नीना सोनकर आप सभी श्रोताओं के लिए लेकर आई हैं हर रोज की तरह एक महत्वपूर्ण जानकारी। आइए सुन लेते हैं आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपकी दोस्त नीना सोनकर और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे अंकोल की। अंकोल भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से दक्षिण भारत, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ भागों में पाया जाने वाला एक औषधीय वृक्ष है। ये वृक्ष जितना रहस्यमयी है उतना ही प्रभावशाली भी। लोक कथाओं में अंकोल को आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है और आयुर्वेद में इसे गंभीर रोगों के समाधान के रूप में देखा गया है। अंकोल का पौधा मध्यम आकार का होता है, इसकी शाखाएं नीचे की ओर झुकी होती हैं और इसकी छाल मोटी व हल्की दरारदार होती है। इसके फूल छोटे और सुगंधित होते हैं, लेकिन असली औषधीय गुण छिपे होते हैं इसके बीजों और जड़ में। आयुर्वेद के अनुसार अंकोल की जड़, छाल और बीज तीव्र वातनाशक, कीटाणुनाशक, शूलहर और विषहर माने गए हैं। सबसे पहले बात करें नर्वस सिस्टम यानी हमारी तंत्रिकाओं की, तो अंकोल एक बहुत ही प्रभावशाली नर्व टॉनिक है। जिन लोगों को बार बार हाथ पांव में झंझनाहट, नसों में खिंचाव या मांसपेशियों में असहजता महसूस होती है, उनके लिए अंकोल का प्रयोग लाभकारी होता है। इसकी जड़ से तैयार किया गया काढ़ा तंत्रिका प्रणाली को शांत करता है और उसमें आवश्यक पोषण पहुँचाता है। विशेष रूप से लकवा, मिर्गी या हाइपर एक्टिव न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में अंकोल की जड़ों का प्रयोग पारंपरिक वैद्यों द्वारा किया जाता है। इसके बीजों का उपयोग दंत रोगों में किया जाता है। पुराने समय में जब किसी व्यक्ति को दांतों में कीड़ा लगने, मसूड़ों में सूजन या दांतों की जड़ में

0: दर्द होता था तो अंकुल के बीज को पीसकर उसका लेप दांतों पर लगाया जाता था। इससे न केवल दर्द में राहत मिलती थी बल्कि दांतों की जड़ों को मजबूती भी बढ़ती थी। कुछ परंपराओं में तो इसे मंजन की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है। अंकुल की एक बहुत ही विशेष पहचान है उसका विषनाशक गुण। आयुर्वेद में इसे सर्पदंश यानी सांप के काटने की चिकित्सा में उपयोगी माना गया है। हालांकि ये जीवन रक्षक उपचार नहीं है लेकिन प्राथमिक उपचार के रूप में इसकी जड़ का लेप शरीर से विष को बाहर निकालने में सहायक माना जाता है। इसी तरह अगर किसी को कीड़े मकोड़ों ने काट लिया हो या शरीर पर फोड़े फुंसी के कारण विषाक्तता हो रही हो तब भी अंकुल की जड़ का उपयोग बहुत राहत देता है। अंकुल की छाल का उपयोग पाचन क्रिया को सुधारने में भी होता है। जब पेट में गैस अपच या भूख न लगने की समस्या हो तो इसकी छाल को उबालकर बनाया गया काढ़ा बहुत फायदेमंद होता है। ये पाचन अग्नि को जागृत करता है, आंतों को साफ करता है और शरीर के अंदर के विष को बाहर निकालता है। खासकर जब व्यक्ति को बार बार उल्टी या मिचली की शिकायत हो तब अंकुल का सेवन विशेष लाभ देता है। इस वृक्ष का उपयोग केवल शरीर को ठीक करने तक सीमित नहीं है बल्कि इसका मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव है। ऐसा माना गया है कि अंकुल का नियमित सेवन मन को शांति देता है, चिंता और अनिद्रा में राहत देता है और ध्यान करने की क्षमता को भी बढ़ाता है। कुछ योगी और साधक अंकुल की लकड़ी का प्रयोग साधना स्थानों पर करते हैं क्योंकि ये वातावरण को शुद्ध और शांत बनाता है। अंकुल का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। पुराणों में एक कथा मिलती है कि ये वृक्ष अत्यंत दुर्लभ है और इसमें अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा होती है। माना जाता है कि ये भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसकी लकड़ी से हवन किया जाए तो वातावरण शुद्ध होता है और मानसिक विकारों से मुक्ति मिलती है। ऐसे पौधे जो धार्मिक, मानसिक और शारीरिक तीनों स्तरों पर काम करते हैं वे हमारे जीवन में एक अलग ही स्थान रखते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा वृक्ष जो नर्वस सिस्टम को संतुलन दे, दांतों की रक्षा करे, विष से लड़ सके और साथ ही मन को भी स्थिरता दे, क्या वो केवल एक वनस्पति है? नहीं, वो तो एक संपूर्ण जीवन सहायक है। अंकुल हमें सिखाता है कि प्रकृति में हर चीज का एक उद्देश्य होता है और जब हम ध्यान से देखें, समझें और प्रयोग करें तो वही साधारण सी वनस्पति एक असाधारण औषधि बन जाती है। आज के समय में जब हम छोटी छोटी समस्याओं के लिए रसायनों की ओर भागते हैं, शरीर को डेली डोज की तरह दवाओं पर निर्भर बना देते हैं, तब अंकुल जैसे वृक्ष हमें याद दिलाते हैं कि हमारे पूर्वजों ने प्रकृति को पढ़ा, समझा और उससे जुड़कर जीवन को संतुलित किया। उनके ज्ञान में केवल जड़ी बूटियां नहीं थी, उसमें धैर्य था, अनुभव था और एक गहरा आत्मविश्वास था। मैं नीना सोनकर आज की इस स्वास्थ्य चर्चा से आपसे विदा लेती हूँ, इस आशा और आग्रह के साथ कि हम प्रकृति से जुड़े रहें, पारंपरिक औषधियों की ओर लौटें और शरीर, मन और आत्मा तीनों के स्वास्थ्य को एक साथ साधें। नमस्कार।
1: रोग नाशक औषधीय वृक्ष अंकुल। अभी आप इस विषय पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे आज की स्वास्थ्य चर्चा में। जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। नमस्ते, लखनऊ मॉर्निंग प्रोग्राम में इस वक्त समय है आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देने का। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आज रात 10 बजे आप सुनेंगे रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में जगदीश हुगर का तबला वादन। पूर्वाह्न 11 बजे सुर्खियों में कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। सामयिक चर्चा के अंतर्गत सुबह 9:15 पर आप सुनेंगे सरकार की ओर से अंत्योदय की दिशा में किए गए प्रयासों पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति विभाग के प्रोफेसर विजय मिश्र से आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की बातचीत। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समाप्त फरमाइएगा नूर बानो का मकाला जिसका उनवान होगा लड़कियों का आलमी दिन। इसके अलावा निदा फाजली की शायरी और अदमे खिदमात पर चर्चा करेंगे डॉक्टर मोहम्मद सईद अख्तर। पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। श्रोता पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम सुनेंगे शाम 7:31 पर, प्रस्तुति नीना सोनकर और सुभाष खन्ना की होगी। संस्कृत कार्यक्रम में दिन में 3:15 पर सुनना ना भूलें। राष्ट्रपति

सम्मान विश्व भारतीय सम्मान एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से विभूषित संस्कृत के जाने माने अध्येता प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडेय से संस्कृत वार्ता वेदोखिलम धर्ममूलम प्रस्तुत करता होंगी डॉक्टर शिवा राकेश। दोपहर 12 बजे बाल मंच कार्यक्रम में हमारे नन्हे साथी सुनेंगे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर विशेष प्रस्तुति नन्ही कलियां नई उपलब्धियां, संचालन ऋचा यादव का होगा। गलती से मिस्टेक सुनिए इरफान ह्यूमन की लिखी झलकी आज इतवार है में दिन में 1:15 पर। निर्देशक एवं प्रस्तुतकर्ता होंगे अतिश कुमार श्रीवास्तव। दिन में 1:30 पर अक्षवट कार्यक्रम में सुनिएगा सृष्टि श्रीवास्तव से की गई भेंटवार्ता, जीवन की दूसरी पारी में सकारात्मकता और माइंडफुलनेस। भेंट करता होंगी डॉक्टर अलका चौधरी। पराली प्रबंधन के आसान उपाय सुनिए डॉक्टर रमेश चंद्र मौर्य से की गई ये भेंटवार्ता, विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम आप सुनते हैं दिन में 3:30 पर। आज इस कार्यक्रम में विषय होगा बदलते मौसम में नाक कान गले की सुरक्षा। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर सूर्यकांत शुक्ला, संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शाम 4 बजे संकल्प कार्यक्रम में आप सुनेंगे सामाजिक कार्यकर्ता रोहित कुमार मीत से की गई भेंटवार्ता, उम्मीद की किरण ब्रेल लिपि विषय पर। भेंट करता होंगे मनीष कुमार। रामायण राम व साथी के गाए भोजपुरी लोकगीतों का आनंद लीजिएगा लोक झंकार कार्यक्रम में शाम 4:30 पर। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सुना ना भूलें प्रदीप तिवारी धवल से लोक भाषा अवधि में कहानी पाठ जहाज। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी क्रम में हमारे किसान भाई सुनेंगे तुलसी और अश्वगंधा उत्पादन विषय पर पुष्पेंद्र यादव से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। ये थे आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं बस कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सभी श्रोताओं का आज की विविधा में। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते, अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है उन्हें बारंबार प्रणाम है। आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामना।

सुबह की पहली किरण, मंदिर में गूंजती घंटियां, धूप की सुगंध और घर के आंगन में जगमगाता एक दीपक, नवराते, नौ रूप और करोड़ों भक्तों की एक ही पुकार, जय माता दी। ऐसा लगता है मानो सारी थकान कुछ पल के लिए मिट गई हो। यही तो है माँ के आगमन का एहसास। माँ जिनके आंचल में ममता है, आंखों में करुणा और हाथों में अन्याय के विरुद्ध उठने वाले अस्त्र, शक्ति की भक्ति का महापर्व शारदीय नवरात्र। तो आज की विविधा में बात नवरात्र आरंभ की।

नवरात्रि में माँ के नौ रूपों की पूजा का विधान है। इस समय महत्ता माँ की धार्मिक दृष्टि से नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और जीवन के हर पहलू को जागृत करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। शारदीय नवरात्र का आरंभ आज रविवार आश्विन मास की शुक्ल प्रतिपदा यानी 11 अक्टूबर से हो गया है। आज घट स्थापना के साथ ही माँ का आह्वान किया जाएगा। 19 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी और महानवमी के प्रमुख अनुष्ठान पड़ रहे हैं। नवमी तिथि अगले दिन तक रहने के कारण 20 अक्टूबर को भी नवमी हवन और व्रत के पारण जैसे अनुष्ठान किए जाएंगे। यूं तो माँ दुर्गा

सिंह की सवारी करती हैं। लेकिन नवरात्रों के पावन पर्व में धरती पर आते समय माँ की सवारी बदल जाती है। रविवार या सोमवार हो तो माँ हाथी पर सवार होकर आती हैं, शनिवार या मंगलवार तो माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं, गुरुवार या शुक्रवार हो तो माँ डोली पर और बुधवार हो तो नाव पर बैठकर धरती पर आगमन करती हैं। और इस बार नवरात्र रविवार से शुरू है तो माँ आ रही हैं हाथी पर सवार होकर, और शास्त्रों में हाथी पर माँ का आगमन बहुत शुभ माना गया है। ये संकेत है अच्छी बारिश, भरपूर फसल, सुख समृद्धि और खुशहाली का। यानी इस बार माँ अपने साथ झोली भरकर हम भक्तों के लिए ला रही हैं आशीर्वाद। इसी प्रकार माँ जिस दिन विदा होती हैं दोस्तों, दिन के आधार पर उनकी प्रस्थान की सवारी भी तय होती है। नवरात्रि में 9 दिन माँ के 9 रूपों की उपासना के हैं शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। ये 9 रूप नारी शक्ति के विविध आयामों को दर्शाते हैं। माता योद्धा, विद्या, करुणा, क्रोध, बल और मुक्ति का समागम है। नवरात्र है आत्मशुद्धि का समय। व्रत, उपवास, सात्विक भोजन और मंत्र जाप से हम सिर्फ शरीर ही नहीं अपने मन को भी साफ करते हैं। ऋतु बदलती है तो शरीर भी बदलाव मांगता है, और हमारे ऋषियों ने उपवास को ऐसे बांधा कि धर्म भी सधे और सेहत भी। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन, नन्ही बच्चियों के पांव धोकर उन्हें भोजन कराना, ये सिखाता है कि हर बेटी में माँ का रूप है, और जिस समाज में बेटियां पूजी जाती हैं वहां देवता भी वास करते हैं। अर्थात नवरात्र का संदेश साफ है, अंधेरा कितना भी गहरा हो, जीत हमेशा प्रकाश की होती है। माँ को सोने चांदी की आवश्यकता नहीं, उन्हें चाहिए बस सच्चा मन, साफ नियत और श्रद्धा। अगर इन 9 दिनों में हम अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और आलस्य रूपी महिषासुर को हरा दें तो समझिए हमारा नवरात्र सफल हो गया। कर्म, भक्ति और ज्ञान की त्रिविधि मंदाकिनी बहाने वाली माँ दुर्गा की भक्ति में अद्भुत शक्ति है, जो हम भक्तों के लिए वांछित कल्पतरु के समान है। माँ दुर्गा की पूजा के साथ हम सभी अपने जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें, अच्छे विचारों को अपनाएं और समाज में सकारात्मक बदलाव के वाहक बने। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति के रूप में विराजमान है, उन्हें बारंबार प्रणाम है।

आज की विविधा में बस इतना ही। सुनेंगे इसके अगले अंक में किसी अन्य विषय पर विविधा। दीजिए अनुमति वैशाली को। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से होगा। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: अभी आप आनंद ले रहे थे देश गान का, मीडियम वेव 330.0 सुनो। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः केस 7:19 होने को है। आपसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविंद्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। शारदीय नवरात्र आज से हुआ शुरू, दर्शन पूजन के लिए प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण आज वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बलरामपुर के रेहरा बाजार विकासखंड के बेलरिया गांव में 803 करोड़ रुपए से अधिक की 78 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर विकास के नए प्रतिमान स्थापित करने वाले जनपद के रूप में आगे बढ़ा है। श्री योगी ने कहा कि माँ पाटेश्वरी विश्वविद्यालय का सत्र शुरू हो चुका है, भवन तैयार होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकार्पण के लिए आमंत्रित किया जाएगा।
4: प्रगति की एक नई गति के साथ आगे बढ़ा करके बलरामपुर जनपद को आकांक्षात्मक जनपद से आगे बढ़ा करके संभावना वाले जनपद के रूप में प्रस्तुत करने में सफल होता है। आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता था कि बलरामपुर में भी कभी विश्वविद्यालय होगा, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है बलरामपुर में माँ पाटेश्वरी के नाम पर विश्वविद्यालय का सत्र प्रारंभ हो चुका है और बहुत शीघ्र उसका अपना भवन बनकर के तैयार होगा। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बलरामपुर में आमंत्रित करके उसका भव्य लोकार्पण का कार्यक्रम भी हम आयोजित करवाएंगे।
3: शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो गई है। आज सुबह से ही प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु माता

0: के दर्शन पूजन कर रहे हैं। लोग अपने घरों में भी कलश स्थापना कर पूजा अर्चना शुरू कर रहे हैं। आज पहले दिन माँ भगवती के प्रथम स्वरूप माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल के माता विंध्यवासिनी देवी मंदिर पर बीती मध्य रात्रि से ही नवरात्र मेला शुरू हो गया है। और विवरण हमारे मिर्जापुर प्रतिनिधि से।
1: माँ विंध्यवासिनी की जय जयकारों के बीच प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला प्रारंभ हो चुका है। कल से ही श्रद्धालुओं के विंध्याचल पहुंचने का सिलसिला अभी भी जारी है। भोर में कलश स्थापना व मंगला आरती के बाद जैसे ही मंदिर के कपाट खुले, समूची विंध्य नगरी घंटा घड़ियाल के साथ माँ के जय जयकारों से गूंज उठी। इस समय बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन कर त्रिकोण परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। मेला क्षेत्र को 3 सुपर जोन, 10 जोन व 21 सेक्टरों में विभाजित कर जोनल व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मेला की कमान संभाले हुए हैं। एसएम सभा, आकाशवाणी समाचार, विंध्याचल, मिर्जापुर।
0: नेपाल की सीमा से लगे बलरामपुर जिले में स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी है। वहां से हमारे प्रतिनिधि की रिपोर्ट।
2: बलरामपुर के तुलसीपुर स्थित देवीपाटन शक्तिपीठ मंदिर में मां के दर्शन पूजन के लिए दूर दूर से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। मंदिर परिसर मां के जयकारों से गूंज रहा है। वहीं नवरात्रि मेले को लेकर सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवीपाटन मंदिर में नवरात्र के पहले दिन पूजा अर्चना के लिए मौजूद हैं। पूजा अर्चना के बाद वो 9:30 बजे इस अवसर पर आयोजित बालिका सम्मान कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। राम कुमार मिश्र, आकाशवाणी समाचार, बलरामपुर।
0: वाराणसी के दुर्गा कुंड सहित विभिन्न देवी मंदिरों और अयोध्या की बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, जालपा देवी और पाटेश्वरी देवी मंदिरों पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गोरखपुर जिले में मातर कुल्हा देवी मंदिर और महाराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लहरा देवी मंदिर में भी ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु पहुँचने शुरू हो गए हैं। उधर दुर्गा पांडालों में एक ओर जहाँ साज सज्जा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, वहीं पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। नवरात्र के अवसर पर पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश के 24 जिलों के 26 प्रमुख देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक बधाई दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR News गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय करने और विरोध प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय राजधानी आ रहे CJP समर्थकों को रोकने के लिए एहतियाती कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। पत्र में केंद्रीय गृह सचिव ने CJP के प्रस्तावित भीड़ जुटाने की कार्यवाही को कानून व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था के लिहाज से गंभीर मामला बताया है। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से अपील की है कि उन्हें विकसित भारत का राजदूत बनकर राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। श्री मांडविया कल काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित माय भारत युवा सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अपने संबोधन में उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त भारत अभियान में भागीदारी बढ़ाने और डिजिटल मीडिया का सकारात्मक उपयोग करने की अपील की। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने एशियाई के पदक विजेताओं के साथ IIT BHU में प्रवेश पाने वाले मेधावी विद्यार्थियों और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को सम्मानित किया। श्री मांडविया आज वाराणसी के नमो घाट से संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय स्थित दीक्षा मंडप तक आयोजित फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 94वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनकी यात्रा जन सेवा से देश सेवा के संकल्प और निरंतर जन सेवा की भावना से प्रेरित रही है। इसी सेवा और सुशासन की सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में कार्य कर रही है। हमारी विशेष श्रृंखला में आज हम जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कैसे लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रही है।
3: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मई 2026 तक देश भर में गरीब परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ 50 लाख से अधिक निःशुल्क LPG कनेक्शन प्रदान किए जा चुके हैं। वर्ष 2021 में उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण उज्ज्वला 2.0 के शुभारंभ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा था,
4: हमारे जैसी अनेक पीढ़ियां तो

0: दृश्य को देखते हुए ही बड़ी हुई है। कल्पना कीजिए, उज्ज्वला नहीं होती तो हमारी इन गरीब बहनों की स्थिति क्या होती। उज्ज्वला योजना का एक और असर ये भी हुआ कि पूरे देश में एलपीजी गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का कई गुना विस्तार हुआ है।
1: वर्ष 2016 में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को लकड़ी, उपले तथा अन्य प्रदूषणकारी ईंधनों पर निर्भरता से मुक्त करना है। वाराणसी की रहने वाली सुनीता देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिलने के बाद जीवन बेहद आसान हो गया है।
2: पहले लकड़ी और उपलों पर खाना बनाना पड़ता था, जिससे धुआं होता था और आंखों में जलन भी होती थी। अब गैस सिलेंडर की मदद से कम समय में आसानी से खाना बना लेती हूँ। उज्ज्वला योजना ने हम जैसी महिलाओं के जीवन को सुविधाजनक बनाने में मदद की है, इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ।
1: योजना के तहत उज्ज्वला 2.0 के लाभार्थियों को पहला एलपीजी रिफिल और गैस चूल्हा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
3: भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी विकल्प शुक्ला का कल दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वे वर्तमान में आकाशवाणी रायपुर में उपनिदेशक के पद पर कार्यरत थे। वे 1993 बैच के अधिकारी थे। झांसी में आज मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में 16वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का शुभारम्भ हुआ। 21 अक्टूबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर की 29 टीमें भाग ले रही हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में 803 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, सरकार की योजनाओं से बलरामपुर ने स्थापित किए विकास के नए प्रतिमान। शारदीय नवरात्र आज से हुआ शुरू। दर्शन पूजन के लिए प्रदेश भर के शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में उमड़ रही श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पर्यटन विभाग कराएगा प्रदेश के 24 जिलों के 26 देवी मंदिरों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने विरोध प्रदर्शनों के चलते सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को दिल्ली पुलिस के साथ समन्वय बनाने और एहतियाती कदम उठाने के दिए निर्देश। और फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 94वां संस्करण आज वाराणसी में किया जाएगा आयोजित। केंद्रीय मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया कार्यक्रम में होंगे शामिल। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान, सड़क पार करवाएं, करें बुजुर्गों की मदद, अंदर से अच्छा लगेगा भले ही लगे थोड़ा वक्त, यातायात नियमों का करें पालन, कभी ना करें उनका उल्लंघन, यातायात सुरक्षा है अति आवश्यक, यही बने आपकी रक्षक, जब भी आप चलाएं कोई वाहन ध्यान रखें, करें नियमों का पालन।

रेडियो सेट पर आपने ट्यून इन किया है 747 किलो हर्ट्स और सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से हमारा मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन एआईआर ऐप और डीटीएच के माध्यम से भी। और अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अरुण कुमार भट्ट का तबले पर बजाया तीन ताल, हारमोनियम पर लहरा दिया है दिनकर शर्मा ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अरुण कुमार भट्ट का तबले पर बजाया तीन ताल। हारमोनियम पर लहरा दिया था दिनकर शर्मा ने। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ आकाशवाणी लखनऊ से 747 किलो हर्ट्स पर। हमारे कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। श्रोताओं नमस्ते लखनऊ मॉर्निंग प्रोग्राम को वाइंड अप करने का वक्त हो चला है। दीजिए अनुमति हमें नमस्कार, लेकिन सुनते रहिए आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित हमारे कार्यक्रम। हम आकाशवाणी लखनऊ से बोल रहे हैं। अगला प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से होगा, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ प्रारंभ। सऊदी अरब के अधिकारियों ने कहा, रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ तीसरा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में लगभग 13,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और लोकार्पण करेंगे। वे चेन्नई में लगभग 4,900 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मेट्रो रेल सेवा को रवाना करेंगे। श्री मोदी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के साथ मेट्रो में पूनमल्ली बाईपास स्टेशन से पूनमल्ली बाईपास स्टेशन कॉरिडोर में यात्रा भी करेंगे। प्रधानमंत्री 750 करोड़ रुपए से अधिक की रेल अवसंरचना परियोजनाएं भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनका शुभारंभ करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकसित 5 अमृत स्टेशन पलनी, वेल्लोर कैंटोनमेंट, अम्बासमुद्रम, परमकुडी और नमक्कल शामिल हैं।
1: प्रधानमंत्री सड़क विकास, बंदरगाहों और विज्ञान में नवाचार से जुड़ी कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें समुद्री बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, कार्गो हैंडलिंग क्षमता का विस्तार करने और लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखना और उद्घाटन करना शामिल है। श्री मोदी चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की मौजूदा मनाली रिफाइनरी में यूब ऑयल बेस्ड स्टॉक्स परियोजना की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री कामराजार बंदरगाह पर एक अतिरिक्त कोयला घाट परियोजना का भी उद्घाटन करेंगे और कंटेनर टर्मिनल के लिए कैपिटल डेजिंग कार्यों की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी आईआईटी मद्रास में सुधा गोपाल कृष्णन ब्रेन सेंटर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे और चेन्नई के जयगोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय स्कूल के स्वर्ण जयंती समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी पोरूर झील के निकट स्थित जलकंठेश्वर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना भी करेंगे। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को आज 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस योजना की शुरुआत पिछले वर्ष आज ही के दिन देश के 100 आकांक्षी कृषि जिलों में कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से की गई थी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस योजना के अंतर्गत 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं को एक साथ जोड़ा गया है। इसके अलावा राज्य सरकारों की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को भी शामिल किया गया है ताकि प्रत्येक जिले की कृषि संबंधी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप कार्य किया जा सके।
2: इस योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता, सिंचाई सुविधाओं, ऋण की उपलब्धता और फसल कटाई के बाद की आधारभूत संरचना में सुधार करना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना

0: क्रियान्वयन के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर 3 स्तरीय व्यवस्थाएं बनाई गई है। स्थानीय कृषि आवश्यकताओं के अनुरूप जिला कार्य योजनाएं तैयार की जाती हैं। वहीं 36 केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत 121 संकेतकों के माध्यम से प्रगति की निगरानी की जाती है। पहले वर्ष के दौरान योजना के लिए चुने गए सभी 100 जिलों ने अपनी कार्य योजनाएं तैयार कर ली हैं और उनका क्रियान्वयन जारी है। इन जिलों का औसत प्रदर्शन स्कोर अप्रैल 2026 में 18.85% से बढ़कर अगस्त 2026 में 46.89% हो गया। नितिका गुप्ता के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा के 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से प्रेरित है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टि से प्रेरित होकर सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। अपनी विशेष श्रृंखला में आज हम आपको गुजरात की बंदरगाह क्रांति के बारे में बता रहे हैं।
2: गुजरात के पास देश की सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है, लेकिन दशकों तक इसका पूरा लाभ नहीं उठाया जा सका। तटरेखा को केवल भूगोल न मानकर औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देखने के दूरदर्शी विजन के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीपीपी मॉडल के साथ निजी निवेश को आमंत्रित किया। बंदरगाहों को बिजली, सड़क, रेल और औद्योगिक क्षेत्रों से इस तरह जोड़ा गया कि फैक्ट्री सीधे बंदरगाह और बंदरगाह सीधे वैश्विक बाजार से जुड़ सके। इसी मॉडल पर मुंद्रा, हजीरा और पीपावाव जैसे देश के प्रमुख निजी बंदरगाह विकसित हुए। गुजरात का यही सफल मॉडल आगे चलकर सागरमाला के रूप में राष्ट्रीय नीति बना, जिसके तहत देश के बंदरगाहों की क्षमता 2014-15 के 1561 मिलियन टन प्रतिवर्ष से बढ़कर 2817 मिलियन टन प्रतिवर्ष हो गई और प्रमुख बंदरगाहों पर टर्न अराउंड टाइम भी घटकर आधा हो गया। भारत की समुद्री उपलब्धियां और हरित पहलों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
3: देश के कुछ बड़े पोर्ट्स ने पहली बार एक साल में रिकॉर्ड 15 करोड़ टन कार्गो हैंडल किया है। इसमें हमारा कंडला का दीनदयाल पोर्ट भी शामिल है। देश के कुल समुद्री व्यापार कारोबार का लगभग 1/3 हिस्सा अकेले हमारे कच्छ के ही बंदरगाह से हैंडल होता है।
2: इसी विजन के साथ गुजरात के कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हब बनने पर प्रकाश डालते हुए राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के सदस्य राहुल मोदी ने कहा,
4: जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री कार्यकाल में उनकी जो सोच थी कि समुद्र और बंदरगाह केवल कार्गो हैंडलिंग के साधन नहीं है बल्कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ इंजन बनने की पूरी ताकत रखते हैं, इसी सोच के साथ पोर्ट्स को उन्होंने रोड, रेलवे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर, एसईजेड, लॉजिस्टिक, हिंटरलैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा।
2: समुद्री तटों को आर्थिक प्रगति के इंजन में बदलकर भारत का यह बंदरगाह आधारित विकास देश को वैश्विक समुद्री मंच पर अग्रिम पंक्ति में स्थापित कर रहा है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
5: जालिम लोशन,
6: जालिम लोशन, जालिम लोशन, जालिम लोशन, वो है जालिम लोशन।
5: दाग खाज खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन।
7: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में कानून व्यवस्था को देखते हुए आज के लिए यातायात परामर्श जारी किया है। मौजूदा स्थिति के आधार पर सुबह 6 बजे से अलग अलग मार्गों पर यातायात में परिवर्तन किया गया है। पुलिस ने लोगों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने और किसी भी यात्रा से पहले यातायात संबंधी जानकारी लेने की सलाह दी है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने जानकारी दी है कि सुरक्षा कारणों से बंद किए गए सभी 45 मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश और निकास द्वार अब खोल दिए गए हैं। मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा भी बहाल कर दी गई है। इस बीच उत्तर रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने बताया कि आज सभी रेलगाड़ियां अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार संचालित हो रही हैं।
2: 10 अक्टूबर को उत्तर रेलवे द्वारा सुबह 4 बजे से दोपहर 2 बजे तक नई दिल्ली और निजामुद्दीन में आने वाली सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैफिक कंजेशन को ध्यान में रखते हुए कैंसिल की गई थी, ताकि यात्रियों को यह सुविधा न हो। 2 बजे के बाद

0: सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन दिल्ली और नई दिल्ली में निजामुद्दीन आने लगी और आज 11 तारीख है। 11 तारीख से तो सभी सेवाएं, चाहे मेल एक्सप्रेस हो चाहे पैसेंजर सर्विसेज हो, सभी सेवाएं सामान्य रूप से चलना प्रारंभ हो गई।
1: शारदीय नवरात्रि का महापर्व आज से शुरू हो गया है। 9 दिन का ये धार्मिक उत्सव माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना का प्रतीक है। श्रद्धालु इसे उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त करते हुए कहा कि माँ जगदम्बा का आशीर्वाद सभी के जीवन में प्रसन्नता, शांति, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि गुजरात में नवरात्रि के आगमन के साथ ही राज्य के सभी शहर भव्य रास गरबा समारोह के लिए तैयार हैं।
2: गुजरात में नवरात्रि का ये पर्व पारंपरिक गरबों प्रज्वलित कर, उपवास रखकर, घट स्थापन जैसे विशेष अनुष्ठानों और पारंपरिक रास गरबा नृत्य के साथ उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। शारदीय नवरात्रि के पहले दिन बनासकांठा प्रतिष्ठित अंबाजी मंदिर, पावागढ़ के महाकाली मंदिर और कच्छ के माताना मढ़ मंदिर सहित राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। त्योहारों के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गुजरात पुलिस ने राज्य भर के 22,000 से अधिक स्थलों पर कड़े प्रबंध किए हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार।
1: तेलंगाना का विशेष पुष्प उत्सव बथुकम्मा कल एंगलीपुला बथुकम्मा के साथ शुरू हुआ। 9 दिन तक मनाए जाने वाले इस उत्सव में महिलाएं तंगेड़ू, गुनुनु, गेंदा और गुलदाउदी जैसे रंग बिरंगे फूलों से बथुकम्मा तैयार करती हैं। काला सागर में जहाज से बचाए गए 3 भारतीय नागरिक रोमानिया से अब स्वदेश लौट रहे हैं। बुखारेस्ट में भारतीय दूतावास ने बताया कि साहिल संधु, अश्विनी कुमार और हरमन सिंह को उनकी वापसी के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराई गई है। काला सागर में सोमवार को जहाज एमवी रॉयद मम्मा दोव पर हुए हमले में घायल हुए क्रू सदस्यों में ये 3 भारतीय भी शामिल थे। सऊदी अरब में रियाद के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में 12 लोग मारे गए और 300 से अधिक घायल हुए। घरेलू हवाई अड्डे पर कल हुए इस हमले में 4 सऊदी नागरिक, 2 बांग्लादेशी और अमेरिका, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, सूडान तथा फिलिस्तीन के भी एक एक नागरिक की जान गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल इथियोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में अफ्रीका के लिए भारत के मिशन प्रमुखों के सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत और अफ्रीका ग्लोबल साउथ, एकजुटता, रणनीतिक स्वायत्तता, बहुध्रुवीयता तथा साझा विकास की आकांक्षाओं पर आधारित गहरे संबंध साझा करते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुझाव दिया है कि यूक्रेन को नया राष्ट्रपति चुनना चाहिए जो रूस के साथ संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौता करने में सक्षम हो। श्री ट्रंप की यह टिप्पणी उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर कहा था कि रूस तत्काल अमरीका और वैश्विक बाजारों के लिए 3,00,000 टन से अधिक डीजल की आपूर्ति करेगा। भारत आज इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलेगा। ये मुकाबला होलकर स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कल गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। कर्नाटक के तटीय भाग, कोंकण और गोवा में कुछ स्थानों पर आज गर्म तथा उमस भरा मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: क्या आपको किसी सरकारी विभाग से जुड़ी कोई शिकायत दर्ज करनी है?
4: तो आपकी सहायता करेगी भारत सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सीपी ग्राम्स पोर्टल पर समाधान दीदी।
3: समाधान दीदी 22 भारतीय भाषाओं में आपकी बात सुनती और समझती है। आपको बस अपनी शिकायत को बोलना है। समाधान दीदी की AI तकनीक आपकी शिकायत को सीधे सही मंत्रालय तक पहुंचाती है।
4: आज ही www.pjportal.gov.in पर जाएं और अपनी शिकायत दर्ज करें।
3: सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
1: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद मुकेश। आज सभी समाचार पत्रों ने नवरात्रि शुरू होने की शुभकामनाएं दी है। नवभारत टाइम्स लिखता है, देवी हमारे द्वार, शक्ति का वास हमारे आसपास। हिंदुस्तान की सुर्खी है, मंदिर सजे, शक्ति की भक्ति में आज से लीन होंगे श्रद्धालु। रामलीला मंचन का गणेश वंदना के साथ होगा शुभारंभ। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शब्द जनसत्ता ने प्रकाशित किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा

0: के लिए 56 विशेष बसें चला रही सरकार, दिल्ली की बसों में 2000 से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात। अमेरिका और रूस में डीजल डील, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से 7 अप्रैल तक डीजल सप्लाई बैन हटाया। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों में है। कैप्टन स्मिथ पर हमले की जांच, एनआईए को पायलट पर केस, दैनिक जागरण की खबर है। पत्र लिखता है, फ्लाई दुबई विमान अपहरण और आतंकी साजिश की होगी जांच। पहाड़ों के छोटे से गांव में बसता है मिनी सराय, मैक्लोडगंज से 2 किलोमीटर दूर धर्मकोट। राजस्थान पत्रिका ने यह खबर पर्यटन को बढ़ावा शीर्षक से प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का आज 1 वर्ष पूरा हुआ। उत्तर रेलवे ने कहा, आज सभी रेल सेवाएं सामान्य समय सारणी के अनुसार संचालित होंगी। देवी दुर्गा की आराधना का 9 दिवसीय पर्व नवरात्रि धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ शुरू हुआ। और भारत आज शाम इंदौर में वेस्टइंडीज के साथ 3रा T20 क्रिकेट मैच खेलेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 8:15 हुए हैं और अब आप सुनेंगे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर।

0: आज के अंक में हमारे प्यारे प्यारे बाल साथियों को आपकी अपनी नाज़मा दीदी का प्यार भरा नमस्कार। जानकारियों से भरपूर आज के इस एपिसोड में हमारे सभी बाल दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ मौजूद हैं हस्ती खिलखिलाती रोजना दीदी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
1: नमस्कार आप सभी को। बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग खूब मौज मस्ती कर रहे होंगे और नाज़मा दीदी बच्चों के साथ साथ आपका भी स्वागत है स्टूडियो में। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, आज आप अच्छी तो वैसे ही हैं, लेकिन आज आपका ये पिंक और व्हाइट सूट बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने बहुत दिनों बाद पहना है।
0: बिल्कुल ऐसा ही है, हमने सोचा भाई ये काफी दिनों से रखा हुआ है जी। और इसे आज पहनना चाहिए भाई।
1: अब आप ये बताइए मैंने इसका अंदाजा कैसे लगाया।
0: हाँ, कैसे लगाया
1: इसका अंदाजा? मैंने ऐसे लगाया कि जब आप जो ये सूट पहने हुए ना तुरंत ही प्रेस करके आप पहन के आई है।
0: हाँ बिल्कुल,
1: इसलिए मैंने ये अंदाजा लगा लिया कि हो सकता है बहुत दिन से रखा हो, आपने निकाला हो तो आप फटाफट पहनकर आ गई। चलिए, लेकिन बच्चों आपको एक बात बताएं, हम करेंगे मेन बात आपसे, आपस में तो हम बात करेंगे नाज़मा दीदी से, लेकिन पहले हमारे लिए हमारे बच्चे हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि हमारा ये साप्ताहिक कार्यक्रम है
0: और आज दिन भर मस्ती करने का प्लान होगा बच्चों का, है ना?
1: क्योंकि आज है रविवार और रविवार को तो ऐसे जाने नहीं दिया जा सकता है ना।
0: बिल्कुल सही कहा,
1: हफ्ते का एक दिन हमारे बच्चों के नाम।
0: जब मौज मस्ती की बात चली है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के रविवार के घूमने फिरने से। वो भी आपको लिए चलते हैं बाल दोस्तों दुनिया के 7 महाद्वीपों के सफर पर। पहला है बच्चों ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, जिसकी खोज 1606 में एक डच नाविक विल्सन जेम्स जुल ने की थी। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का जो है, बता दें आपको, ये दूसरा पृथ्वी पर सबसे बड़ा छोटा महाद्वीप है। लेकिन बड़ी बात यह है दुनिया में सबसे अधिक कंगारू यहीं पाए जाते हैं। आपको ये भी बताते चले, ये महाद्वीप प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। और मजेदार बात तो ये है कि यहीं पर लगभग 10,000 से भी ज्यादा सी बीच है। बच्चों आप घूमते घूमते थक जाएंगे पर ये बीच नहीं खत्म होने वाले।
1: अरे वाह, और पता है असल में हम पता है बच्चों हमारी ये खूबसूरत सी धरती 7 भूखंडों में बटी हुई है, यानी महाद्वीपों में। चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे नाज़मा दीदी ज्वाइंट्स एशिया और अफ्रीका की। ठीक, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है नाज़मा दीदी?
0: एशिया।

0: है, ये क्वेश्चन बन गया तुरंत, इसका आंसर ये हो गया।
1: बिल्कुल
0: बच्चों हमारा कार्यक्रम बहुत ध्यान से सुनिए आप, सच में इसे हम मानवता का विशालकाय घर कह सकते हैं। भारत, चीन, नेपाल, रूस, जापान इसी में आते हैं। बच्चों पूरी दुनिया लगभग 60वीं सदी आगे आबादी इसी महाद्वीप पर है।
1: बहुत अच्छी बात बता दी है आपने। अब इस नक्शे का पन्ना पलटकर अफ्रीका की ओर चलते हैं। ये दुनिया का दूसरे नंबर पर महाद्वीप है। यहाँ दुनिया सबसे गर्म और विशाल सहारा मरुस्थल मौजूद है यहाँ पर बच्चों, हम बता दें। साथ ही नील नदी भी। वन्य जीवों की बात करें तो हाथी, शेर, जिराफ, गेंडे जैसे शानदार जीव अफ्रीका की असली पहचान है। लेकिन बच्चों इसके अलावा यहाँ की राजनीतिक और सांस्कृतिक विविधता कमाल की है। और इस हम बता दें आपको, विशाल महासागरों को पार करते हुए बच्चों हम पहुँच गए हैं अमेरिका। यहाँ पर विज्ञान और प्रकृति दो अलग ही तरह की दुनिया देखने को मिलती है। एक तरफ है उत्तरी अमेरिका, जहाँ अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको जैसे देश हैं। ये पूरी तरीके से तकनीकी प्रगति की ओर और आधुनिक हाईटेक शहरों का पावर हाउस है बच्चों ये।
0: और बच्चों आपको बताएं, वहीं हम दूसरी तरफ देखें तो यानी दक्षिणी अमेरिका भी की तरफ, तो वहाँ हमारा ध्यान प्रकृति के बेजोड़ खजाने की ओर जाता है नाजमा दीदी, जहाँ एंडीज पर्वतमाला और ब्राजील के अमेजोन के घने वर्षा वन प्रकृति यहाँ अपने असली और शुद्ध रूप में दिखाई देती है।
1: क्या बात है।
0: और सबसे बड़ी बात बताइए, ये जो हमारा जो एंड्रॉइड सेट है ना, अगर हमारे बच्चे जो दूर दराज के हैं नहीं जा सकते हैं किसी कारणवश कहीं, तो वो अपने यूट्यूब पे फोन पे सब कुछ देख सकते हैं कि वो चीज कैसी है।
1: हाँ बिल्कुल।
0: तो उसे होगा क्या, आपको एक तो पता भी चल जाएगा और हर तरीके की जानकारी आज तो हमारी एंड्रॉइड सेट हमको दे ही देता है ना नाजमा दीदी।
1: बिल्कुल सही।
0: पहले के समय में इतनी बड़ी सुविधा नहीं थी, सिर्फ सुनते थे, पढ़ते थे और लोगों के द्वारा जो बात कहीं कोई घूम आया तो सुन लेते थे।
1: बिल्कुल। और सबसे पढ़ते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक आप किताबें पढ़िए
0: जी,
1: किताबों में सटीक जानकारी होती है।
0: बिल्कुल। और पता है नाजमा दीदी, फोन से कितना भी पढ़ लो लेकिन जो मेमोरी हमारी बुक्स पढ़ने से स्ट्रांग होती है वो किसी चीज से हो ही नहीं सकती।
1: हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा रोचना दीदी आपने। और बच्चों चलिए अब हम तीसरे भाग की ओर रुख करते हैं, यानी कि यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बारे में हमने शुरू में ही बताया था और यूरोप के बारे में हम आपको बताते हैं बच्चों। यूरोप को देखें तो क्षेत्रफल के लिहाज से एकदम छोटा लगता है, लेकिन विकास के मामले में एकदम चरम पर भी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन और ब्रिटेन, इन्हीं शक्तिशाली देशों ने तो आधुनिक दुनिया की नींव रखी है। यहाँ पर जो ऐतिहासिक इमारतें हैं और कलाकृतियाँ तो है ही, साथ ही ये वही जगह है जहाँ से औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई थी बच्चों।
0: जी। और बच्चों अब बात करते हैं चौथे भाग की, इसमें आता है नाजमा दीदी, प्यारे बच्चों आपका अंटार्कटिका यानी कि बर्फीला खजाना। ये दुनिया के निचले हिस्से में मौजूद है और ये पूरा का पूरा महाद्वीप बर्फ की एक जो है मोटी सी चादर से ढका हुआ है। और आपको ये भी बता दें, यहाँ ना कोई अधिक आबादी है बल्कि यूं कहें यहाँ कोई परमानेंट नहीं रहता, रहते हैं बस शोधकर्ता यानी जो खोज करते हैं, वैज्ञानिक हैं, और वैज्ञानिक जो इस जगह की जानकारी जुटाकर हम आप तक पहुंचाते हैं।
1: हाल की बात है, इतनी बर्फीली जगह पर रहना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है
0: जी।
1: और यहाँ तो हम बता दें बच्चों, असली घर है उन खुश मिजाज जीवों का जो सिर्फ बर्फ में ही रहते हैं, जैसे पेंगुइन हो गई, सील मछली हो गई, इसके अलावा और भी समुद्री जीव भी है वहाँ पर, और भालू हो गया जिसके बड़े बड़े रेशेदार बाल होते हैं। पता है बच्चों इस जगह, ये जगह जो है बेहद खास बनाती है वो क्या है
0: बताइए नाजमा दीदी,
1: वो है इस मोटी बर्फ के ठीक नीचे, पृथ्वी के नीचे यानी के साफ पानी का विशाल भंडार छिपा है
0: जी।
1: और ये भंडार पूरे वैश्विक इको संतुलन के लिए पूरी तरीके से जीवनदायी है।
0: अच्छा।
1: इस शानदार भौगोलिक सफर के बाद हम पहुंच गए हैं अपने अगले पड़ाव की ओर, यानी एंजॉयमेंट।
0: जी जी नाजमा दीदी, मैं आपका इशारा समझ जाती हूँ।
1: तो चलिए सुनते हैं प्यारा सा गीत
0: जी।

0: जी नाजमा दीदी।
1: और भाई रोचना, इतना प्यारा सा गीत आपने सुनवाया, वाकई में बड़ा इन्जॉयमेंट किया हमने। और इसी के साथ स्टूडियो में एक नन्हे मुन्ने बाल दोस्त हमारे साथ आ चुके हैं और उनसे आइए मीठी मीठी बातें करते हैं। और वो क्या बातें कर रहे हैं आइए सुनते हैं।
0: जी
1: कहने हैं, और एक नन्हे मुन्ने बाल दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में आ चुके हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और हम आपको बता दें नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों कि भाई इन्होंने ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है और क्रीमी कलर की इन्होंने पैंट पहन रखी यानी जीन्स, और बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो चलिए बातचीत का सिलसिला आरम्भ करते हैं। क्या नाम है आपका?
2: जी मेरा नाम जय गंगवार है, मैं उत्तर प्रदेश बरेली जिले का रहने वाला हूँ। मेरी माता का नाम श्रीमती धीरज कुमारी है और मेरे पिता का नाम श्री प्रेम पाल है।
1: भाई वाह, बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकुर कार्यक्रम में आकाशवाणी के स्टूडियो में। जैसा कि हमने देखा आपसे बातचीत की तो हमें पता चला कि आप बॉक्सिंग में बहुत शौक रखते हैं और कई तरह के कॉम्पिटिशन में भाग लिया है, तो ये कैसे आया आपके मन में, कैसे अपने आप में देखा इस प्रतिभा को?
2: जी मैं स्कूल में गया था एक दिन, तो वहाँ पे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने एक कोच बुलाए थे बॉक्सिंग के समर कैंप के टाइम।
1: अच्छा,
2: तो उन बच्चों को या उन कोच को देखते देखते मुझे

0: मन चढ़ा कि मैं भी बॉक्सिंग करूंगा, मुक्केबाजी करूंगा,
1: अच्छा
0: तो मेरा यह दिल हो गया। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे इस फील्ड में आना शुरू हो गया।
1: भाई वाह, क्या बात है। तो इसमें आपके कोच ने भी मदद की है।
0: जी,
1: क्या नाम है, उनका नाम जानना चाहेंगे हम।
0: श्रीमान मुकेश गंगवार जी,
1: कौन से स्कूल में पढ़ते हैं
0: मैं जैन नारायण सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज वैभव नगर बरेली में पढ़ता हूँ।
1: आप? अच्छा, कौन सी क्लास में हैं?
0: मैं नवम बा नवम
1: अच्छा, यानी 9th क्लास में
0: जी
1: हैं। तो भाई जय गंगवार, वाकई में आपका नाम ही इसे पता चल रहा है कि जय हो है। तो अच्छा लगता है, आपको अपना नाम पसंद है,
0: हाँ,
1: किसने रखा है?
0: मम्मी पापा ने रखा है।
1: हाँ, बॉक्सिंग का दूसरा नाम क्या है?
0: बॉक्सिंग का दूसरा नाम मुक्केबाजी है।
1: तो ये बताइए कि दुनिया में बॉक्सिंग के क्षेत्र में किन्हें जाना जाता है, कोई एक या दो नाम बताइए।
0: मुक्केबाजी के मतलब वर्ल्ड में दो ही बॉक्सर ऐसे हैं जिनका बहुत ज्यादा नाम है, क्रेज है। नंबर एक पे आते हैं मोहम्मद अली, नंबर दो पे आते हैं माइक टेसन, ये भी यूएसए से हैं।
1: अच्छा, और ये तो आपने दुनिया के बारे में बताया है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में आप किनको जानते हैं?
0: भारत में दो बॉक्सर हैं, लेडीज में है मैरी कॉम और बॉयज में है विजेंदर सिंह।
1: भाई वाह, क्या बात है। तो हमें बच्चों, आपको हम बता दें, हमें इनका जीके भी बहुत अच्छा लग रहा है, और देखिए कैसे जल्दी जल्दी हमारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। अच्छा जय, हम ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बॉक्सिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो हम बॉक्सिंग से संबंधित प्रश्न करेंगे, ताकि हमारे जो नन्हे मुन्ने बाल दोस्त अंकुर कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें बहुत सारी जानकारी इस क्षेत्र से मिले, है ना, उन्हें भी आगे बढ़ने में मदद मिले। तो ये बताइए जय, बॉक्सिंग खेलते समय अपनी सुरक्षा के लिए जिन चीजों का हम प्रयोग करते हैं वो क्या क्या है?
0: सबसे पहले सिर को बचाने के लिए हमें हेड गार्ड की आवश्यकता होती है, वो हमारे सिर पे लगता है। नंबर दो पे दांतों की सुरक्षा के लिए माउथ गार्ड का यूज होता है। नंबर तीन हमारी जो बेल्ट होती है, बेल्ट की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है।
1: जी, तो इसमें ग्लव्स भी होते हैं, शूज
0: हाँ,
1: वगैरह,
0: ग्लव्स होते हैं, रिंग शूज होते हैं, किट होती है
1: यानी कि एक पूरी यूनिफॉर्म के बारे में
0: जी।
1: जैने बता दिया है। और ये हमारी बॉक्सिंग खेलने से पहले अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, और ये यूनिफॉर्म पूरी होनी चाहिए, है ना। तो जय, हमें ये बताइए कि बॉक्सिंग खेलने के क्या नियम है,
0: सबसे पहले बॉक्सिंग खेलने के नियम है, बेल्ट से नीचे आप नहीं मार सकते,
1: यानी कि जो
0: और
1: पेट पर बेल्ट बनी
0: हाँ जी
1: होती
0: जी
1: है उससे नीचे नहीं
0: उससे
1: मार
0: नीचे नहीं मार
1: सकते।
0: सकते, आप उल्टे सीधे हाथ नहीं चला सकते, लात नहीं मार सकते, और ऊपर धक्का नहीं मार सकते, ना ही आप पकड़ सकते हैं।
1: काटना वगैरह
0: हाँ
1: जैसे कर लेते हैं, तो ये भी नहीं
0: हाँ ये नहीं
1: करना
0: करना चाहिए।
1: चाहिए, ये नियम के खिलाफ है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बता दी हैं आपने। तो ये बताइए, आप अब तक कहाँ कहाँ खेल चुके हैं, यानी कि कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर
0: जी, मैं
1: चुके
0: पहला
1: हैं?
0: कंपटीशन 2023 में लखनऊ में खेला था, स्टेट कंपटीशन। फिर दूसरा कंपटीशन मैं 2024 में बनारस में स्टेट कंपटीशन खेला था,
1: अच्छा,
0: उसमें भी मेरा कोई कंपटीशन नहीं रहा, लेकिन इस बार उम्मीद है कि इस बार मेडल आ जाएगा।
1: चलिए कोई बात नहीं है, मेडल नहीं मिला, लेकिन आपने एक मतलब पहल तो की, कंपटीशन में एक भाग तो लिया, आपको ये तो पता चला कि कैसे कंपटीशन होते हैं, क्योंकि बच्चों 9th क्लास में ही हैं, अभी शुरुआत ही है इनकी, तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तो जय, हमें ये बताइए कि जैसा कि आप बता रहे हैं कि हमने आपने कई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, तो वहां पर और भी आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे आ रहे होंगे, तो उनके सामने जब आपका मुकाबला हुआ तो आप डरे तो नहीं?
0: नहीं, पहली बार तो डर लगा था
1: अच्छा
0: 2023 में जब पहला
1: जी,
0: कंपटीशन हुआ था, लेकिन फिर दूसरी बार में नहीं लगा था।
1: अच्छा, तो आपको ये तो नहीं लगता है कहीं हम जब खेलते हैं तो हमारे चोट ना लग जाए, इस तरीके की कोई बात मन में आती हो?
0: नहीं, जब पहली बार खेलते हैं तो मन में तो आता है कि दांत उतना टूट जाए, कोई चोट ना लग जाए, कोई इंजरी ना हो जाए,
1: अच्छा,
0: लेकिन अब नहीं होता।
1: अब नहीं होता है ना, खेलते खेलते मतलब प्रैक्टिस भी हो गई है और बहुत ध्यान से भी खेलते हैं। अच्छा, जब कंपटीशन हम खेलते हैं तो फिर ये कहाँ सोचते हैं कि हमारे चोट लगेगी या क्या होगा, फिर तो ये रहता है कि भाई हमें जीतना है ना। अच्छा, ये बताइए कि इसमें पॉइंट का कैसे हिसाब होता है, कैसे क्या होता है, बताए जरा।
0: इसमें पॉइंट जहां हम टीका लगाते हैं अपने सिर पे, वहां पे अगर आपने एक पंच मार दिया तो आपका एक पॉइंट हो जाएगा। अगर
1: अच्छा
0: आपने पूरा मतलब एकदम साफ साफ सब लोगों को दिखाया कि आपने एक गुम्मा उसके मारा है तो आपको पॉइंट मिल जाएगा।
1: अच्छा
0: अगर आप लगातार उस पे चार्जिंग करते हैं तो आपको पॉइंट मिल जाएगा, ऐसे ऐसे पॉइंट मिलते रहते हैं आपको।
1: अच्छा, जब हम बॉक्सिंग खेलते हैं तो पंच कैसे बनाते हैं, जरा हमें दिखाइए।
0: ये हाथ लीजिए, उस पे सबसे पहले ये चार उंगलियां होती हैं, ये दबाइए है। उसके बाद इन चार उंगलियों के ऊपर अंगूठा रखिए अपना, फिर ये जो आगे की ये सब जो चार हड्डियां होती हैं उंगलियां,
1: जी

0: केवल इन्हें ही मारना होता है आपको।
1: पंजे की जो हड्डियां हैं,
0: पंजे की
1: ये चार हड्डियां मारनी होती है ऐसे करके, है ना?
0: हाँ
1: ऐसे करके।
0: ऐसे
1: तो जरा कैसे करते हैं जरा बताइए हमें, दिखाइए।
0: मतलब ये मारना होता है।
1: अच्छा ऐसे करके।
0: हाँ, केवल इतना हिस्सा।
1: अच्छा तो नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों हमें ये पंच करके दिखा रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, आप इसी बात से समझिएगा। और ये बताइए जय, जब आप कंपटीशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर साफ सफाई का ख्याल रखते हैं?
0: जी, साफ सफाई का ख्याल रखते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, खाते हैं वहीं पे कचरा डाल देते हैं, तो आपसे विनती है कृपया ऐसी चीजें ना करें, डस्टबिन में डालें या अपने साथ ले जाएं अगर आप
1: हाँ
0: कहीं आए हों तो।
1: बहुत अच्छी बात बता दी है जय ने। और देखिए साफ सफाई रखने से क्या होता है?
0: स्वच्छता रखने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं और साफ सफाई काफी अच्छी लगती है।
1: अच्छा लगता है जहाँ पर हम रह रहे हैं मियाँ, वहाँ पर उसके आसपास की साफ सफाई हो, तो
0: जी
1: वो
0: जी
1: कमरा हो या हमारे पढ़ाई लिखाई का, या फिर हमारा क्लास हो, हमारा स्कूल हो, है ना, तो वहाँ
0: वो
1: पर भी हमें ध्यान रखना चाहिए, है
0: हाँ
1: ना?
0: काफी
1: बहुत
0: अच्छा
1: अच्छा।
0: लगता
1: ये
0: है
1: बताइए खाने में क्या पसंद है आपको?
0: जी। खाने में घर का खाना काफी अच्छा लगता है, दाल चावल छोले
1: अच्छा
0: भटूरे ये सब चीजें घर की
1: अच्छा
0: अच्छी लगती
1: जैसे
0: हैं
1: बहुत से बच्चे बाहर का खाना पसंद करते
0: जी।
1: हैं।
0: काफी लोग जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, लेकिन वो सब नहीं खाना होता है असलियत में। वो फैट भी बढ़ाता है और फिर हमें ये भी नहीं पता वो कैसे कैसे बनता है।
1: बहुत अच्छी बात बता दी है, क्योंकि आप खेल से जुड़े हुए हैं, बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए तो इन चीजों को और भी अवॉइड करना चाहिए,
0: जी
1: है ना? और अच्छा ये बताइए बॉक्सिंग से क्या क्या लाभ है ये बताइए?
0: बॉक्सिंग से काफी सारे लाभ हैं हमारे, जो हम थोड़ा थक जाते हैं, हमारे में स्टेमिना की कमी होती है, तो वो भरपूर मात्रा में हमें मिल जाता है अगर हम प्रैक्टिस करते हैं। दूसरी बात, हमारा शरीर एकदम फिट रहता है, एकदम मतलब कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है, हम फिट रहते
1: यानी
0: हैं।
1: कि एक तरीके से एक्सरसाइज भी है
0: एक्सरसाइज
1: ना,
0: है ये।
1: और आत्मविश्वास में भी सुधार आता है, साथ ही तनाव से भी हमें राहत मिलती है और नींद की गुणवत्ता में भी सुधार
0: सुधार
1: होता है।
0: आता है।
1: बहुत अच्छी बात बता दी है। नन्हे मुन्ने बाल दोस्त आपको सुन रहे हैं जय, उनसे क्या कहना चाहेंगे?
0: मैं कहना चाहूंगा कि जो आपके अंदर टैलेंट है उसको छुपाइए मत, का बाहर निकालिए। जो आपके अंदर है, जो खेल के प्रति, डांस के प्रति, संगीत के प्रति है, तो उसे आप निखारिए, आप करके दिखाइए। घर वालों से आप कहिए, घर वाले आपको सपोर्ट देंगे।
1: बहुत अच्छी बात है, जैसे कि आपके माता पिता ने आपको सपोर्ट किया, आपके
0: जी
1: टीचर ने आपको सपोर्ट किया है। और हम भी कहना चाहेंगे कि जो आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा है अपने अंदर पहचानने की कोशिश कीजिए, है ना?
0: जी
1: और अंकुर कार्यक्रम जो है आपको भी आने का मौका देता है, स्टूडियो में आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि जय आए हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा के बारे में बताया है, इतनी सारी जानकारी दी है, अंकुर कार्यक्रम से आप भी जुड़िए। सभी नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों से हमारा कहना है, क्योंकि अंकुर कार्यक्रम जो है बहुत सारी जानकारी से भरपूर है। तो अंकुर कार्यक्रम आप सुनते हैं,
0: जी
1: आपको कैसे पता चला यहाँ पर आकाशवाणी में आपको रिकॉर्डिंग के लिए आना है या अंकुर कार्यक्रम में भाग लेना है?
0: जी अंकुर कार्यक्रम में हर संडे सुनता हूँ,
1: संडे
0: आठ
1: तक
0: पंद्रह से लेकर 9 बजे तक आता है।
1: तो इसमें बहुत सारी चीजें सुनवाई जाती हैं, बहुत सारी
0: जी
1: जानकारी दी जाती है, कहानियां सुनवाई जाती हैं। फोन पर भी हम नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों से
0: जी
1: बात करते हैं तो क्या अच्छा लगता है
0: मुझे
1: आपको,
0: सबसे अच्छा इसमें लगता है कहानियां, इसमें सबसे अच्छी लगती है मुझे।
1: क्योंकि वो मोटिवेशनल कहानियां होती हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: कोई ना कोई एक नई सीख नन्हे मुन्ने बाल
0: जी
1: दोस्तों को वो कहानी देकर जाती है। और सभी नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों को हम बता दें कि उनके अभिभावक भी सुन रहे होंगे इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पर जय के अभिभावक भी आए हुए हैं। तो क्या नाम है सर आपका?
2: मेरा प्रिंपल नाम है।
1: सर आप ये बताइए कि आपने अपने बच्चे में ये प्रतिभा कैसे देखी?
2: ये जब स्कूल जाता था तो उसमें स्कूल में समर कैंप वगैरह लगते थे,
1: जी
2: उसमें इसका रुझान हुआ था,
1: अच्छा
2: तो ये बोला पापा मुझे भी खेलकूद में जाना है, तो मैंने कहा ठीक है।
1: अच्छा
2: तो मुझे लगा कि इसमें कुछ हुनर जुनून है, तो इसको आगे बढ़ाया जाए, मोटिवेट किया जाए,
1: बहुत अच्छी बात है।
2: तो फिर हमने उसके लिए छूट दे दी पूरी तरीके से कि अगर
1: अच्छा
2: आप में टैलेंट है तो आप
1: यानी
2: आगे
1: कि आपने
2: बढ़िए,
1: सपोर्ट किया,
2: सपोर्ट।
1: तो आपने डांटा नहीं कि मतलब पढ़ाई भी करनी है तो आप इधर खेल में ना जाइए, ऐसा
2: नहीं
1: कुछ?
2: नहीं डांटा तो नहीं, मगर साथ साथ समझाया ये कि थोड़ा बहुत पढ़ाई पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि
1: अच्छा
2: शिक्षा के बिना तो
1: सब कुछ
2: सब
1: अधूरा
2: कुछ
1: है,
2: अधूरा है।
1: क्योंकि शिक्षा जो है एक रोशनी
2: हाँ
1: है जो राह
2: शिक्षा एक
1: दिखाती है और टैलेंट हमें आगे
2: आगे
1: बढ़ाता है,
2: बढ़ाता है,
1: तो दोनों का साथ होना बहुत
2: बहुत
1: जरूरी है।
2: जरूरी है दोनों
1: तो
2: से।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि शिक्षा के बिना बच्चों हम आगे नहीं बढ़ सकते, शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप और आगे तक कहाँ तक अपने बच्चे की हेल्प करेंगे ताकि ये बहुत ऊंचाइयों को छू सके?
2: जहाँ तक बच्चा जाना चाहे वहाँ
1: जी
2: तक सपोर्ट करेंगे जितना हो
1: मतलब
2: सकता
1: आप
2: है।
1: साथ देंगे।
2: हाँ
1: तो यहाँ पर नन्हे मुन्ने बाल

0: दोस्तों के पेरेंट्स भी हैं, उनसे क्या कहना चाहते हैं बताइए।
1: मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि बच्चों में अगर उनके टैलेंट है तो उस टैलेंट को छुपाए ना, उसको निकालें, बाहर निखारें, बच्चे का सपोर्ट करें ताकि बच्चे अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकें,
0: आगे बढ़
1: आगे
0: सके,
1: बढ़
0: अपना
1: सकें,
0: फ्यूचर
1: अपना
0: ब्राइट
1: फ्यूचर
0: कर
1: ब्राइट कर
0: सके।
1: सकें।
0: जी, बहुत अच्छी बात बता दी है आपने, और हम भी नन्हे मुन्ने बाल दोस्तों के माता पिता से कहना चाहेंगे कि ऐसा होता है कि बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, कुछ नेचुरली होते हैं और कुछ जो होते हैं बच्चे देख करके सीखते हैं, तो अपने बच्चों में छिपी प्रतिभा को देखिए
1: जी
0: और उसे निकालने की कोशिश कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि हमारे बच्चे में क्या टैलेंट है, वो क्या करना चाहता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों का सपोर्ट करें और उनको आगे बढ़ाने में मदद करें।
1: थैंक यू अंकुर, और आकाशवाणी के लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा।
0: थैंक यू सो मच। पर चलते चलते कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे बताइए।
1: तारे जमीन पर बम बम बोले सुनना चाहेंगे।
0: हाँ भाई, क्या बात है, बहुत अच्छा सॉन्ग है ये, और लीजिए आपकी पसंद पर आ रहा है ये प्यारा सा गीत।

0: बम बम बोले मस्ती में डोले। भाई हम देख रहे थे कि रोशना दीदी भी खूब मस्ती में डोल रही
1: थी। जी बिल्कुल नाजमा दी, अपने दिन याद आ गए।
0: तो कौन कौन से खेल खेले हैं आपने ये बताइए।
1: जब इस समय हम मतलब पढ़ते तो हम हर समय ही हैं, काम जब तक जीते तक पढ़ते हैं, लेकिन जिस समय हम स्कूलिंग में मतलब 6th 7th 8th के लगभग में बात कर रही हूँ, तो उस दिनों हम 9th 10th तक तो वॉलीबॉल बैडमिंटन से हमारा साथ रहा है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि हमारा जो कॉलेज था वहाँ वॉलीबॉल की बहुत अच्छी सुविधा थी और हमें ये रहता था जब तक इस नेट में डाल नहीं लेंगे अपनी वॉलीबॉल तब तक हम अभी इस तक करके नहीं है, लंच बाद में करेंगे, पहले इसमें डाल लेंगे।
0: बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन किसी दिन हम भी लॉबी में बाहर खेलेंगे, हम भी खिलाड़ी आप भी खिलाड़ी वॉलीबॉल की। ठीक है,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। और बच्चों चलिए जानते हैं निदा फाजली के बारे में। प्यारे बाल साथियों, क्या आपने कभी सोचा है, रोशना दीदी आपने भी कुछ सोचा है कि कुछ शब्द हमारे दिल में इतनी गहराई तक कैसे उतर जाते हैं?
1: जी जी।
0: और कभी कोई कविता हमें हंसा देती है और कभी कोई गीत पुरानी याद दिला देता है
1: जी।
0: और कभी कहीं किसी किताब में पढ़ी गई छोटी सी पंक्ति भी हमें अपनी जिंदगी की बड़ी बात समझा देती
1: है। बहुत बड़ी बात समझा देती है, नाजमादी शब्दों का बड़ा असर होता है।
0: हाँ, आज हम ऐसे ही शायर और गीतकार की जिंदगी पर रोशनी डालेंगे जिन्होंने बहुत सरल शब्दों में जिंदगी की बड़ी बड़ी बातें कह दी हैं। जी हाँ बाल साथियों, वो है निदा फाजली। कौन थे, क्या थे और कहाँ से थे निदा फाजली, आइए जानते हैं।
1: जी बाल साथियों, 12 अक्टूबर 1938 को दिल्ली में जन्मे निदा फाजली, वैसे इनका नाम मुक्तदा हसन था।
0: और बच्चों हम ये भी बताएं कि इनका बचपन ग्वालियर में बीता और शिक्षा भी यहीं से प्राप्त की। इनके पिता शायर थे तो इस वजह से निदा फाजली का घर का माहौल शायराना था। इसी खास वजह से शायरी और साहित्य की खुशबू पहले से इनके घराने में मौजूद थी,
1: विरासत में मिली थी।
0: इसी वजह से निदा फाजली जी भी आगे चलकर शायर बने। लेकिन बच्चों निदा फाजली जी की एक खासियत ये थी कि वे जो भी लिखते थे वो आसान लफ्जों में लिखा करते थे ताकि लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी हो।
1: और वैसे बच्चों उनके लिखे गीत आपने खूब सुने होंगे, अक्सर आकाशवाणी बरेली यानी यहीं से प्रसारित कर आपका खूब मनोरंजन भी करवाया जाता है।
0: बिल्कुल रोशना दीदी, हम देखते हैं जो हमारे अनाउंसर हैं वो बड़े प्यारे प्यारे से गीत बजाते हैं यहाँ से। और कुछ गीत के बोल इस प्रकार से हैं इनके, जैसे कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता
1: जी,
0: और तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। सुर फिल्म का गीत है आ भी जा और आ भी जा। इसके साथ ही निदा फाजली ने कई सारे बहुत उम्दा शेर भी लिखे हैं जो इस तरह से हैं, दुनिया जिसे कहते हैं
1: जादू का खिलौना है, मिल गया तो मिट्टी है और खो गया वो सोना है।
0: वाह क्या बात है।
1: नाजमा दी आपको एक बात बताएं, ये जो वाली है ना लाइन, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, सच बात है, जो हमें मिल जाता है ना उसकी तो हम कद्र करते नहीं है, जाहिर सी बात है। और जो हमें बहुत आयत में आराम से मिल जाता है उसकी हम कद्र नहीं करते।
0: ठीक।
1: और पता जो हमारे पास नहीं है ना, हम उसके लिए हर समय रोते हैं, गम बनाते हैं
0: मतलब।
1: और जबकि कहा यह गया है वही पर्याप्त है जो

0: प्राप्त है, मतलब जो आपके पास है वही आपके लिए बहुतेरा है।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
0: और जो है, लेकिन हम लोग होता क्या है, जो नहीं मिलता सिर्फ उसके बारे में सोचते हैं,
1: सोचते हैं।
0: और ये भी बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छे से जीना है तो कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है, किसी के पास कुछ है नाजमा दीदी बारे बच्चों, तो किसी के पास बहुत कुछ नहीं है। बस पता है, हमें अपने से नीचे वाले को थोड़ा सा हम देखते हैं तो हमें सब्र आ जाता है।
1: बिल्कुल। और इसी शायरी से पता चलता है कि फाजले साहब कम लफ्जों में
0: बहुत गहरी बात कह रहे थे। हाँ।
1: जी, उनकी सरल भाषा, उनकी शायरी ही उनकी पहचान बनी।
0: जी,
1: फाजले साहब का जुड़ाव जगजीत सिंह जी के साथ खूब अच्छा रहा। इसके अलावा फाजले साहब की गजलों को कई गायकों ने आवाज भी दी। वो हिंदी और उर्दू दोनों जुबानों में लिखा करते थे। खुद की लिखी उनकी किताबों की बात की जाए तो लफ्जों का पुल, मोर नाच, आंख और ख्वाब के दरमियां, खोया हुआ सा कुछ जैसे काव्य संग्रह प्रमुख है।
0: जी,
1: उन्हें 1998 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 2013 में पद्मश्री से नवाजा गया। प्यारे बाल साथियों, उनकी जिंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि बड़े विचार कहने के लिए हमेशा मुश्किल लफ्जों की जरूरत नहीं होती, कभी कभी छोटे शब्द भी दिल को छू जाते हैं, है ना रोचना दीदी?
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: वाकई में शेर व शायरी में, जब हम बता दें आपको, हाई स्कूल में थे, हाई स्कूल से इंटर तक उर्दू रही है, हमने गजलें भी पढ़ी हैं, हमने बहुत से शेर जो शायर थे उनकी जिंदगी को भी हमने करीब से जाना है। वाकई में बहुत मजा आता है।
0: और पता है नाजमा दीदी, हमारे बच्चों के लिए तो सबसे एक जो हम शायरी अभी ये कहना चाहेंगे बच्चों से, लफ्ज हैं, शब्द हैं कि लक्ष्य, लक्ष्य हर किसी को अपना लक्ष्य बनाना चाहिए ना। बच्चों को तो खास तौर से पढ़ रहे हैं भाई, उन्हें आगे बढ़ना है ना। हमारे बच्चे छोटे नौनिहाली कल का भविष्य है, तो लक्ष्य उतना ही पास होता है जितना जितना ईमानदारी से प्रयास होता है।
1: बिल्कुल सही।
0: मतलब आप अपने काम से ऑनेस्ट रहिए, अपनी पढ़ाई में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ये नहीं है कि आप बैठे तो हैं किताब लेके और दिमाग चल रहा है मोबाइल में कि ये अरे मुझे पतंग उड़ाने जाना है, करने आना है, तो आप कैसे उससे ऑनेस्ट है? आप तो डिसऑनेस्ट है यहाँ। अपने जब पढ़ रहे हैं तो उस समय पढ़ाई कीजिए, खेल रहे हैं तो उस समय जम के खेलिए।
1: बिल्कुल,
0: इस चीज का ध्यान रखिए।
1: और हम तो ये कहेंगे कि एक अपना टाइम टेबल बनाइए।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: टाइम टेबल से ही पढ़ाई करें, टाइम टेबल से ही खेलें और टाइम टेबल से ही अपना खाना पीना करें।
0: इस समय बच्चों पे कोई बर्डन नहीं होता।
1: हाँ,
0: मानेंगे बात?
1: बिल्कुल सही है।
0: तो आप जो चाहे अपना अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और रोचना दीदी, अब थोड़ा सा जंगल की तरफ चले।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जंगल की तरफ तो चलना ही चाहिए। हरी भरी जंगल हो, कितना अच्छा लगता है।
1: और वो भी चलते हैं बच्चों अमेजन के जंगल में। बाल साथियों, आपको बता दें अमेजन का जंगल दक्षिण अमेरिका में है। वैसे तो इस जंगल के कई हिस्से कई देशों तक फैले हैं, जैसे पेरू, कोलंबिया, गुआना और फिर भी और देश जो है, लेकिन ब्राजील में इसका जो है रोचना दीदी हम आपको बता दें बहुत बड़ा हिस्सा आता है।
0: जी,
1: ये एक बहुत बड़ा रंग बिरंगा अद्भुत वर्षावन है।
0: ये नाजमा दीदी, यहाँ दिन में भी रात लगती है।
1: हाँ, हाँ,
0: अमेजन कितना घना जंगल है,
1: इतना घना जंगल है।
0: क्योंकि बच्चों इन वनों में साल भर तक वर्षा होती है जिसके कारण ये हर समय हरा भरा रहता है। इन वनों में अभी भी ऐसे वन्य जीव हैं जिनमें तो हम वैज्ञानिक तो क्या वैज्ञानिक तक नहीं जानते कि कौन कौन से जीव हैं, जंतु हैं। और यहीं पर आपको जगुआर, बंदर, टूकन पक्षी, नीले पीले हरे तोते, हर तरीके के। तो और अमेजन की नदियों में मीठे जो वो वहाँ की गुलाबी डॉल्फिन है, मतलब है वो यहीं पर गोल्डन पॉइजन के जो फॉर्म में है, वो चमकी नीले रंग वाले मेढक, हर तरीके के अवसर, अरे ऐसे भी लड़का होता है।
1: हाँ,
0: ये
1: हाँ।
0: देखेंगे तो आप चौंकेंगे।
1: बिल्कुल सही कहा दी है, कितनी सारी चीजें आपने बता दी हैं इस जंगल के बारे में, तो बच्चों आपको बड़ी हैरत हो रही होगी। और अगर हम बताएं औषधीय पौधों की बात करें तो गुआराना है, कैट्स क्ला है, अयाहू आस्का, जिसका उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। ये दुर्लभ जड़ी बूटियों के नाम है बच्चों।
0: जी।
1: और आपको बताएं रोचना दीदी, ट्रांसपेरेंट जीव देखने पर ऐसा लगता है जैसे पानी की बूंद गिर रही हो।
0: मेरा मतलब है कि अगर कोई देखने जाए तो सोचेगा।
1: हाँ।
0: यूट्यूब वगैरह पे आप देखिए तो आप पूछेंगे अरे ऐसे भी होते हैं।
1: हाँ।
0: जो तोते होते हैं ना, पीले भी तोते मिलेंगे। हाँ, वहाँ आपको पीला तोता देखा है आपने?
1: नीले पीले सब देखे,
0: हरे देखे होंगे आपने,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन पीला तोता आप वहाँ देखेंगे, वाकई बहुत प्यारा।
1: बहुत अच्छी बात आपने बता दी है। और ऐसे कई जीव अपने शरीर के रंग और आकार से आसपास के वातावरण में ऐसे घुल मिल जाते हैं बच्चों कि उन्हें ढूंढना अपने आप में चुनौती है।
0: वही।
1: ये जंगल कार्बन को अपने भीतर संचित करता है तथा मौसम के जल चक्र को प्रभावित करता है। यही नहीं, ये जंगल जो है असंख्य जीवों को घर देता है। अमेजन के जंगल में ही आदिवासी समुदाय भी हैं, यानी कि आदिवासी भी यहाँ पर रहते हैं।

0: की परंपराएं और भाषाएं और जीवन शैली एकदम बिल्कुल अलग
1: बिल्कुल
0: है।
1: अलग है, जो वहां पर रहते हैं उनका अपना रहन सहन है
0: जी
1: जी। और नाजमा दीदी पता है एक बात और भी है
0: क्या
1: अमेजन के जंगलों की,
0: क्या है,
1: आप यहाँ पे जो है देखने जाएं तो यहाँ दिन में भी रात लगती है,
0: अरे बड़ी
1: इतना
0: गलत
1: घना
0: की बात
1: जंगल
0: है,
1: है
0: बिल्कुल सही
1: जी।
0: कहा आपने।
1: हाँ
0: और बता दें कि आज है 11 अक्टूबर, बच्चों
1: जी
0: हम आपको बता दें हर साल 11 अक्टूबर को दुनिया भर में बालिकाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता
1: आता
0: है
1: है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस
0: दिवस।
1: आज है।
0: और इसकी थीम क्या है रोचना दीदी?
1: इसकी थीम है कि जो इस समय 2026 की थीम है वो है बाल विवाह समाप्त करें और लड़कियों के अधिकारों में निवेश करें
0: बिल्कुल सही बात
1: जी।
0: है। तो जो लड़की है भाई वो अपना ध्यान रखें और माता पिता भी उनका ध्यान रखें, लड़कियों की सुरक्षा बेहद इंपॉर्टेंट है
1: जी
0: और हम चाहेंगे उनकी जो सुरक्षा है उसको लेकर बहुत एहतियात बरतें।
1: बिल्कुल
0: और इसके साथ ही जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी अपने माता पिता के बगैर कहीं ना जाएं, क्योंकि अब मेले भी लगने वाले हैं, देखिए दशहरा
1: बिल्कुल
0: भी आने वाला
1: जी
0: है,
1: जी और
0: तो
1: अपने आप को सुरक्षित रखिए।
0: सुरक्षित
1: और हम
0: रखें
1: अपने जो बच्चे हैं उनसे एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि आप सेल्फ डिफेंस जरूर सीखें,
0: बिल्कुल
1: आत्मरक्षा के जो गुण हैं वो जरूर सीखें, उसकी ट्रेनिंग आपको जरूर लेनी चाहिए जिससे कि आप अपनी रक्षा सुरक्षा अपने आप भी कर सकें। और पता है नाजमा दीदी
0: जी
1: हमारी जो बच्चियां हैं उन्हें थोड़ा तेज भी होना चाहिए, तेज
0: हाँ
1: जैसे कि मतलब ये होना चाहिए कि आसपास आप सफर कर रही है कुछ भी है कि दूसरा जो सामने वाला व्यक्ति है अलर्ट रहना चाहिए कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत या नुकसान
0: आ
1: उठा
0: सकती है,
1: जाएंगे,
0: बिल्कुल
1: है ना
0: सही बात बता
1: ये
0: दी है।
1: है।
0: और अनजान व्यक्ति से सफर में बात ना
1: जी जी
0: करें
1: जी और नाजमा दीदी एक बात बताइए,
0: जी।
1: आप बचत करती हैं?
0: हाँ बचत करते हैं,
1: बचत तो करनी ही चाहिए,
0: अरे
1: आप
0: बिल्कुल
1: क्या मैं क्या सभी को बचत करनी चाहिए जी।
0: क्योंकि
1: हाँ
0: ये बच्चों हम बता दें अगर आप बचत नहीं करेंगे, यानी कि मान लीजिए आपके मम्मी पापा ने आपको 10 रुपीज दिए तो
1: जी
0: उसमें से 5 रुपीज खा लीजिए, 5 रख दीजिए
1: हाँ,
0: वो
1: 2 रुपीज
0: नेक्स्ट
1: तो बचाइए कम से कम,
0: टाइम।
1: कितना भी खा लीजिए अगर आपने 8 रुपए खर्च कर लिए तो
0: हाँ
1: 2 रुपीज तो आपको बचाने चाहिए,
0: बचाने
1: क्यों
0: चाहिए,
1: पूछिए क्यों,
0: क्यों
1: ताकि आप इसे कल को यूज कर
0: कल के
1: सकें।
0: काम आए,
1: और जब आप अभी छोटे से करेंगे ना तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी,
0: बिल्कुल सही
1: क्योंकि
0: कहा
1: नाजमा
0: आपने।
1: दीदी हमारा जो ये पूरा जो होती है ना लाइफ ये हमारी आदतों पर डिपेंड होती है,
0: बिल्कुल
1: जैसी
0: सही
1: हम
0: कहा
1: आदतें
0: आपने।
1: अपनी बना लेते हैं ठीक है।
0: और
1: तो
0: भाई जब गुल्लक की बात चली है, पैसे बचाने की बात चली है,
1: हाँ
0: तो हम बता
1: बताइए
0: देंगे गुल्लक एक नहीं कई तरह की होती है। मिट्टी की गुल्लक तो जानते ही है भाई,
1: जी जी
0: जोड़ा
1: जी
0: और उसमें फोड़
1: जी जी और पता है इसे क्या कहते हैं
0: दिया
1: हम लोग बच्चों की गुल्लक के लिए, पिग्गी बैंक, पिग्गी
0: हाँ
1: बैंक बोलते हैं हम लोग
0: बिल्कुल,
1: इन्हें जी
0: ये पारंपरिक और सबसे सस्ती होती है, इसे तोड़ने पर ही पैसे निकलते हैं बच्चों,
1: जी
0: जो
1: मट्टी की
0: बच्चों में
1: गुल्लक
0: लक्ष्य पूरा करने का एहसास कराती है, हम
1: जी
0: आपको बता दें। और रोचना दीदी एक इलेक्ट्रॉनिक भी तो होती है ना,
1: जी अब तो कई तरह की गुल्लक हैं
0: हाँ
1: बाजार में जाके देखिए आप
0: बिल्कुल, इसमें आप
1: जी,
0: पासवर्ड भी डाल सकते
1: पासवर्ड
0: हैं
1: लॉक ऑटोमेटिक फिंगरप्रिंट सेंसर सब, नोट खींचने की सुविधा भी होती है और जो बच्चों को बिल्कुल असली बैंक जैसी अनुभव देती है।
0: आहा,
1: और आज
0: क्या
1: मैं दीदी
0: बात
1: एक
0: है,
1: बात बताएं बच्चों के लिए,
0: हाँ हाँ बताइए।
1: बिहार की राजधानी पटना में बच्चों द्वारा ही संचालित एक अनोखा बैंक है
0: अच्छा,
1: जिसका नाम है गुल्लक बच्चा बैंक
0: अरे वाह,
1: जी। और इसकी शुरुआत पता कब हुई थी इस बैंक
0: हाँ
1: की?
0: कब हुई थी
1: बाल
0: बताइए।
1: दिवस पर हुई थी जिसमें 8 से 16 वर्ष आयु तक के बच्चे सदस्य बनकर अपने पैसों का प्रबंध करना सीखते
0: अरे
1: हैं
0: वाह क्या बात
1: जी
0: बताइए आपने, तो फिर तो हमारे नन्हे मुन्ने बाल दोस्त अंकुर प्रोग्राम सुन रहे होंगे और इन
1: जी
0: बातों का ध्यान रखेंगे। और बाल दोस्तों अब बारी आ गई है आज के 5 सवाल की। तो पहला सवाल है, मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? और
1: जी
0: दूसरा
1: और
0: सवाल कौन
1: सेकंड
0: सा
1: नंबर
0: है?
1: क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है? और नाजमा दीदी अब बताइए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना
0: परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा
1: जी
0: है?
1: भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा केंद्र कौन सा है? और फोर्थ नंबर क्वेश्चन है हमारे प्यारे बच्चों, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? और नाजमा
0: और
1: दीदी लास्ट बनाइए बताइए क्वेश्चन बच्चों को आप
0: लास्ट है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो आपको बताना है। और पिछले संडे को जो हमने 5 सवाल पूछे थे उनके जवाब इस प्रकार है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? बच्चों इसका उत्तर है जड़त्व का नियम। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा था, ग्लोब पर देखने पर कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? तो बच्चों इसका उत्तर है कर्क रेखा। और तीसरा प्रश्न था कि AI का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म बतानी थी आपको, इसका उत्तर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन था, ओजोन परत मुख्यतः किस मंडल में पाई जाती है? तो बच्चों इसका आंसर है समताप मंडल। और पांचवा और आखिरी प्रश्न था, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो बच्चों इसका उत्तर है त्वचा।
1: और
0: नाजमा दीदी
1: जी।

0: भी इशारा कर रही है।
1: अरे वाह, क्या बात है। और रोचना दीदी, हम बच्चों को बता दें कि कमेंट्स करते रहिएगा। और एक
0: जी
1: बात हम और भी बता दें कि बाल दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि हेलो अंकुर की रिकॉर्डिंग हर माह के दूसरे रविवार को 9:30 पर की जाती है और तीसरे रविवार को प्रसारित की जाती है। ऐसे में वे सभी बच्चे जो अंकुर कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार हमसे साझा कर सकते हैं। तो फोन

0: विचार हमसे साझा कर सकते हैं, तो फ़ोन उनके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। और फ़ोन करने के लिए हम टेलीफोन नंबर बता दें 2517200, और कमेंट्स करने के लिए हम बता देते हैं ईमेल आईडी है ankurakashwadibareli@gmail.com।
1: जी, और नाजमा दीदी
0: जी,
1: आप समय को भी देख लीजिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: घड़ी इशारा कर रही है।
0: बिल्कुल
1: जी,
0: वो क्या है कि रोजना दीदी जब बच्चों के पास बैठ जाते हैं ना, तो बस मानो लगता है कि उन्हें कुछ ना कुछ नई से नई जानकारी उन्हें दी जाए, उन्हें बताया जाए।
1: परिवर्तन तो संसार का नियम है।
0: बिल्कुल बिल्कुल नियम है, और हमें समय भी देखना है, समय के हिसाब से चलना है
1: जी।
0: इसीलिए आज्ञा लेते हैं, नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे बच्चों का साप्ताहिक कार्यक्रम अंकुर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 9 बजे हैं और अब आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
1: प्रस्तुत है गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन।
2: गंगवार हॉस्पिटल निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
3: समय से पूर्व पैदा हुए बच्चों के इलाज की विशेष सुविधा।
2: अविकसित फेफड़ों के उपचार के लिए सर्फेक्टेंट थेरेपी।
3: टेम्परेचर नियंत्रण के लिए विशेष इंक्यूबेटर जिराफ ओमनी बेड।
2: सांस नियंत्रण के लिए सीपैप वेंटिलेटर HFNC और ईयर वो मशीनें।
4: बच्चों के जन्म के समय होने वाली जटिलताओं के लिए
2: खास तरह के वेंटिलेटर HFO ऑक्सीलेटर क्रिटिकल थेरेपी हाइपोथेरेमिया।
3: ब्रेन मॉनिटरिंग के लिए CFM बेड साइड इको अल्ट्रासाउंड की सुविधा।
2: साथ ही बच्चों में पीलिया सेप्टिक इन्फेक्शन निमोनिया जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज की विशेष सुविधा। बरेली का अत्याधुनिक बाल चिकित्सालय
3: गंगवार हॉस्पिटल
2: निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली।
4: इमरजेंसी सेवाओं के लिए डायल करें 9457096487।
5: स्वस्थ बचपन कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं मुकेश कुमार पांडे और मेरे साथ हैं बरेली के वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका।
6: श्रोताओं को नमस्कार और पांडे जी आपको भी मेरा नमस्कार।
5: डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि भाई बहुत कम दिनों का बच्चा घर में पैदा हुआ है और सभी को चिंता होने लगती है। आप डॉक्टर हैं, आप बच्चों का और विशेष तौर से जो नवजात शिशु हैं उन्हीं के इलाज के विशेषज्ञ हैं। आखिर जो कम दिनों के बच्चे हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या वाकई में बहुत सीरियस होते हैं?
6: देखिए, कम दिनों के बच्चों को जो हम विभाजित करते हैं
5: जी,
6: वो बच्चा कम दिनों का माना जाता है जो 37 हफ्ते से पहले गर्भकाल के पैदा होता है।
5: अच्छा,
6: तो इसमें एक बच्चे वो हैं जो कम समय के होते हैं जिनको हम बोलते हैं लेट प्रीटर्म, और एक बच्चे होते हैं बेरी प्रीटर्म
5: जी।
6: तो जिन बच्चों का वजन 1 किलो या उससे भी कम होता है उनको बोलते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज
5: जी,
6: और जो 1 किलो से 1.5 किलो तक के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं वेरी लो बर्थ वेट बेबीज
5: जी जी,
6: और 1.5 किलो से 2.5 किलो तक के बच्चे को बोलते हैं लो बर्थ वेट बेबीज।
5: अच्छा,
6: तो ये कैटेगरी है गेस्टेशनल एज के हिसाब से है।
5: अच्छा,
6: ना जो बच्चे 32 वीक्स से पहले होते हैं उनको अर्ली प्रीटर्म बोलते हैं, जो 32 वीक्स और 37 वीक्स के बीच में होते हैं उनको लेट प्रीटर्म बोलते हैं।
5: अच्छा,
6: तो हर ग्रुप के बच्चों की अलग परेशानियाँ होती हैं और उनका इलाज भी अलग होता है, और जैसे जितना वजन बच्चे का कम होता है उस बच्चे को उसी हिसाब से इलाज होता है, और उनका इलाज में जो जेंटलनेस है या जो उनको इलाज चाहिए उसमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है।
5: जी जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम उन बच्चों की बात करना चाहेंगे आपसे जो वाकई में बहुत ही कम दिनों के बच्चे हैं। आपने वजन भी बताया, आपने उनकी एज भी बताई, कितने गर्भकाल के बच्चे हैं, तो उनमें क्या समस्याएं होती हैं?
6: देखिए, जो आज की डेट में एज ऑफ वायबिलिटी मानी जाती है वो 24 वीक्स और कुछ जगह 23 वीक्स, मतलब 24 हफ्ते यानी 6 महीने का गर्भकाल पीरियड है वहाँ से पेरी वायबल एज शुरू हो जाती है।
5: अच्छा,
6: और तो वो बच्चे होते हैं 400 ग्राम के, 450 ग्राम,
5: इतना कम वजन के,
6: इतने कम वजन के, और वो बच्चे सर्वाइव कर जाते हैं।

0: और उनको अच्छा इलाज मिले। इस समय भी मेरे पास दो बच्ची हैं जिनका वज़न एक का 480 ग्राम है, एक का 500 ग्राम है। और तो इतने कम वजन के बच्चे जिनका कि गेस्टेशनल एज 26 वीक्स है, उनको
1: जी
0: तो आप काफ़ी बच्चों को बचा सकते हैं, लेकिन 26 वीक से जो नीचे हैं उन
1: जी
0: बच्चों को इलाज में थोड़ा मुश्किल आती है और कई बार उनके साथ समस्या हो जाती है। तो जो कम वजन के बच्चे होते हैं उनमें एक तो हर चीज़ उनकी नाजुक होती है,
1: जी
0: अंग बहुत प्रीमेच्योर होते हैं और उनको इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन बच्चों में जो समस्याएं आती हैं, जैसे कि शुरू में आता है HMD,
1: जी
0: जिसको हाइलाइन मेम्ब्रेन डिजीज बोलते हैं, आजकल की नई भाषा में उसको नियोनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बोलते हैं,
1: अच्छा
0: NRDS।
1: जी
0: तो बच्चों के फेफड़ों में एक सब्सटेंस होता है जिसको सर्फेक्टेंट बोलते हैं, इन बच्चों के अक्सर वो कम होता है,
1: अच्छा
0: तो उसको आर्टिफिशियली आपको लंग्स में
1: डालना पड़ता है
0: डालना पड़ता है,
1: जी
0: तो उसको सर्फेक्टेंट थेरेपी बोलते हैं। उसके लिए आजकल जो सबसे अच्छा तरीका माना जाता है, वो बच्चे को CPAP पे लेके और बिना इंटूबेट किए सर्फेक्टेंट डालना। पहले
1: जी
0: क्या था, इंटूबेट करते थे, इंश्योर टेक्निक थी, इंटूबेशन करके आप सर्फेक्टेंट डाल देते, बाद में ट्यूब निकाल लेते थे।
1: जी
0: लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम में कि बच्चे को आप CPAP लगाइए, इंटूबेट मत करिए, उसको डायरेक्ट सर्फेक्टेंट दीजिए, उसका सर्फेक्टेंट देने का कैथेटर आता है, या NG से भी दे सकते हैं, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से भी दे सकते हैं।
1: जी
0: तो वो सर्फेक्टेंट देने के बाद बच्चे को आपको मॉनिटर करना पड़ता है कितना आपको FiO2 देनी है। बच्चे को ऑक्सीजन ज़्यादा भी नुकसान करती है, जो उसका जो प्रीमेच्योर ब्रेन है, और जब ऑक्सीजन ज़्यादा दी जाती है तो बच्चे की आँखों को हमेशा के लिए नुकसान हो सकता है,
1: ओहो
0: जिसको हम बोलते हैं रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी।
1: जी
0: तो उसका ध्यान रखना पड़ता है। आते इमेच्योर होती हैं तो इनको सिर्फ माँ का दूध ही देना चाहिए, और दूध भी तब बहुत ही मेजर्ड अमाउंट में देते हैं। ये भी देखना होता है कि दूध बच्चे डाइजेस्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे,
1: जी
0: उनका डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा, स्टूल पास हो रहा नहीं हो रहा, स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा, कल ब्लड तो नहीं आ रहा। और जो जैसे अभी बात कर रहे थे हम लोग न्यूनेटल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की,
1: जी
0: अगर माँ का इलाज जहाँ हो रहा है और उनकी जो डॉक्टर साहिबा हैं वो उनको ये आभास है कि इसमें प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, तो आजकल जो दिया जाता है एंटीनेटल स्टेरॉयड,
1: जी
0: तो एंटीनेटल स्टेरॉयड अगर किसी माँ को लग गया है
1: जी
0: तो उसके बच्चे में ये HMD या NRDS होने की संभावना कम हो जाती है।
1: बिल्कुल
0: तो एक ये बहुत बड़ी आज की देन में ये फायदा है।
1: डॉक्टर साहब, हम और भी महत्वपूर्ण बातें आपसे जानेंगे आप, लेकिन उससे पहले जानेंगे आपकी पसंद का वो गीत जो आज पहले हमारे श्रोता सुनेंगे।
0: मनपसंद मूवी का सॉन्ग है सुमन सुधा रजनीकांत।
1: जी, लता मंगेशकर के स्वर से सजा ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद पर।

0: बच्चों का इलाज कर देते हैं आज के दौर में, ये इंट्यूबेट करना क्या होता है?
1: इंट्यूबेशन मीन्स एक इंडोटेकल ट्यूब होती है जो बच्चों को हम लोग जब वेंटिलेट करते हैं तो इंट्यूबेट का वो ट्यूब आपके ट्रेकिया में डालते हैं,
0: यानी गले में डालते हैं,
1: गले
0: मुंह के रास्ते
1: नहीं, सांस के रास्ते,
0: सांस के रास्ते,
1: वो ट्रेकिया में डालते हैं और उसको कनेक्ट करके बाद फिर वेंटिलेटर जोड़ते हैं। तो इंट्यूबेशन एक तरह का इन्वेजिव प्रोसेस माना जाता है और आजकल सारे इन्वेजिव प्रोसेस को हम लोग डिस्करेज करते हैं क्योंकि जहाँ पे भी इन्वेजिव प्रोसेस होता है वहाँ पे चांस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ते जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो प्रीमेच्योर बच्चों में एक तो ये NRDS हो गया, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस हो गई, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो गया, IVH हो गया, इंटरवेंट्रिकुलर हेमरेज जिसको हम लोग बोलते हैं, तो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं। और आपका स्किन बहुत थिन होती है तो स्किन में हमें एडेसिव लगाते समय भी ध्यान रखना होता है
0: जी।
1: और आपका आंखों में ROP हो गया, उधर बच्चों में खून की कमी हो जाती है जिसको एनीमिया प्रीमेच्योरिटी बोलते हैं
0: जी,
1: जो तो खून की कमी हो जाती है और फिर इन्फेक्शन सेप्सिस होने के चांस बहुत होते हैं और इन बच्चों में फंगल इन्फेक्शन यानी फंगल सेप्सिस होने के भी चांस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, अक्सर इनकी प्लेटलेट काउंट कम हो जाती है, कई बार TLC में ल्यूकोपीनिया हो जाता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन है जिनको आपको डेली आपको देखना पड़ता है, मॉनिटरिंग करनी पड़ती है कि इनका जैसे सेचुरेशन है 94 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 94-95 से और 90 और 93 के बीच में है वो सेचुरेशन अच्छा माना जाता है जिससे कि चांस ऑफ ROP कम हो जाते हैं
0: जी जी,
1: है ना। तो चूंकि इन शिशु के सारे ऑर्गन्स
0: जी
1: समय से पहले बच्चा पैदा होने के कारण कम डेवलप है तो सभी जगह से दिक्कत आती है
0: जी जी। बहुत महत्वपूर्ण बात है और ऐसे बच्चों को जो वाकई में बहुत कम दिनों के बच्चे हैं उनको स्वस्थ रख पाना अपने आप में चुनौती भरा काम है। डॉक्टर साहब, कई बार तो बच्चों को आप लोग भर्ती करते हैं अस्पताल में और जो बहुत कम दिनों के बच्चे होते हैं बहुत लंबे समय तक रहते हैं, क्या कोई शर्त होती है इतने लंबे समय तक इन बच्चों को भर्ती रखना ही पड़ेगा नर्सरी में या अस्पताल
1: जो
0: में?
1: इनके डिस्चार्ज क्राइटेरिया है वो जब कब छुट्टी होना चाहिए
0: जी जी,
1: तो जो बच्चे जब घर जाने से पहले उसका ऑक्सीजन हट जाना चाहिए
0: जी,
1: घर जाने से पहले उसको दूध इतना पीना चाहिए कि उसका वजन डेली बढ़ना चाहिए
0: जी,
1: घर जाने से पहले उसको कोई गंभीर तकलीफ तो नहीं है वो चेक होना चाहिए, जैसे उसकी आंखों की जांच होनी चाहिए, कानों की जांच होनी चाहिए
0: जी,
1: उनको उस तरह की कोई तकलीफ तो नहीं है। तो वजन बढ़ना बहुत ज़रूरी है बच्चे का, ऑक्सीजन वगैरह हटना और कोई उसको ऐसी IV एंटीबायोटिक या IV कोई दवाई ऐसी तो नहीं लग रही जो हॉस्पिटल में ही लग पाए
0: जी,
1: तो वो घर जाके लगाने में परेशानी हो सकती। तो ये डिस्चार्ज क्राइटेरिया और कम से कम बच्चे का वजन 1.6 kg वेट होना चाहिए तभी इस अवस्था में बच्चा पहुंच पाता है कि वो माँ का दूध पी पाए ठीक से और वेट गेन करे।
0: डॉक्टर साहब, एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहूँगा, बहुत कम समय और बहुत सीमित शब्दों में लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चों का इलाज बहुत महंगा होता है, क्या सच्चाई है? हालांकि समस्या गंभीर है तो इलाज तो थोड़ा महंगा
1: होता है। देखिए, बच्चों का इलाज महंगा नहीं होता, क्या होता है कि बच्चे हम लोगों के पास बहुत देर से पहुँचते हैं, बहुत ही गंभीर अवस्था में पहुँचते हैं, तो जितना बच्चा गंभीर होता है इलाज उतना ही महंगा हो जाता है क्योंकि उतनी ज़्यादा मशीन उसको लगती है। जब यही बच्चे समय से अगर आपको मिल जाएं, कम गंभीर अवस्था में मिल जाएं, तो उनका इलाज सस्ता होता है और जो हम लोगों के यहाँ इलाज है दिल्ली वगैरह में इसका 5 गुना ज़्यादा महंगा इलाज
0: जी,
1: वहाँ पे नर्सरी का एक दिन का खर्चा 60,000 से 1,00,000 रुपये तक के बीच में है जबकि हमारे यहाँ मैक्सिमम खर्चा जब बच्चा वेंटिलेटर पे भी जाता है तो 10,000 से 15,000 के बीच में आता है
0: जी।
1: तो वो खर्चा देखा जाए तो 1/5, 1/4 खर्चा है दिल्ली के अपेक्षा
0: जी जी। निश्चित ही, अब डॉक्टर साहब कौन सा गीत आप सुनवाएंगे हमारे श्रोताओं को?
1: देखिए सर, गीत है तकदीर पिक्चर का 7 समुंदर पार से।
0: तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं डॉक्टर कुलदीप गंगवार साहब की पसंद का ये गीत। और अब इसी के साथ आज के स्वस्थ बचपन कार्यक्रम से मुझे यानी मुकेश कुमार पांडे को डॉक्टर कुलदीप गंगवार जी के साथ दीजिए अनुमति। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे।

0: आप सुन रहे थे
1: गंगवार बाल चिकित्सालय निकट महिला थाना चौकी चौराहा बरेली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन बचपन।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम स्वस्थ बचपन। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 9:15 हुए हैं। अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

आप सुन रहे हैं विविध भारती पर इस वक्त कार्यक्रम चित्रलोक। हम दिल दे चुके सनम इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, करसन सरगठिया की आवाज में महबूब के बोल हैं।

0: कविता कृष्णमूर्ति, विनोद राठौर, करसन सरगठिया और साथियों के स्वरों में ये गीत आपने सुना हम दिल दे चुके सनम फिल्म से।
1: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
2: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
1: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
4: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबा फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति

0: डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
2: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जिद पे आ गई।
1: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
4: स्वरों को जब आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
1: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो सिर्फ विविध भारती पर।
5: श्रोताओं, अमिताभ बच्चन का जन्मदिन, आज के फनकार, ये कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा अभिनेता अमिताभ बच्चन पर। आलेख एवं स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुति शकील बख्शी की, और ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे सुबह 9:30 पर और पुनः रात 9:30 पर। जरूर सुनिएगा। और अब कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति।

लव यात्री। इस फिल्म का गीत देवनेगी योयो हनी सिंह की आवाज में अभी आप सुन रहे थे। शब्बीर अहमद, योयो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला ने इस गीत को लिखा था। तनिष्क बागची ने तर्ज बनाई थी। और अब इस गीत के साथ ही कार्यक्रम चित्रलोक यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को नमस्कार। और साथ ही आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर कर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: कौन है तुम?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती।
0: अगर आप दोबारा पूछेंगे कौन हो तुम, तो वो कहेंगे
1: विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा चलवे।
0: सारी दुनिया को रहता है उनका इंतजार।
3: उनका इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
0: वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर क्या आपको इंग्लिश आती है?
4: नो कर लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज।
0: लोग उनको छोरा गंगा किनारे वाला कहते हैं।
5: छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खाई के पहन बनो रस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला।
0: भाई हमने आज ये सोचा कि हम अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन की अपनी पारी को शुरू किया था। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी हैं। बल्कि हम तो आज अमिताभ बच्चन के डायलॉग दर डायलॉग आपको सुनवाएंगे।

0: ये वो डायलॉग हैं जो आपके जहन में ताजा हैं और इनके जरिए आप अमिताभ की अभिनय यात्रा से होकर गुजरेंगे।
1: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ। 1, 2, 1, 2, 3, 4।
0: सबसे पहले चलते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद की तरफ। ये फिल्म साल 1971 में आई थी और अमिताभ बच्चन की आवाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये उनके शुरुआती दौर की फिल्म थी।
2: मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको। डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो, रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।
0: हम इस साल की दो महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें करेंगे। पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने वाला सीन, फिल्म नमक हराम।
3: विकी, किस साले ने 100 रुपए हाथ उठाया? बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध आजमाना चाहता है? आजा सामने, कुत्तों कमीनों, अब हाथ उठा के दिखाओ। आओ देखे कि खाल ना खिंचवादी, तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे?
0: इसके बाद आ जाइए साल 1973 की तरफ, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जहां से अमिताभ बच्चन का असली सफर शुरू होता है।
4: तुम्हारा नाम शेर खान है?
5: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई।
4: जब तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
5: साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम
6: शराबी उपद्रवी
5: नहीं साहब।
4: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं।
5: मतलब का बात बोलू साहब?
0: जैसे जैसे अमिताभ बच्चन आगे की फिल्में करते गए, उनकी आवाज पहले की बजाय ज्यादा कड़क होती चली गई और संवादों की अदायगी का दम बढ़ता चला गया।
4: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
7: क्यों?
4: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
0: 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है,
8: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
9: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
8: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा, मौसी कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
9: हार जाता है?
8: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
9: तो क्या जुआरी है?
8: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना, फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है?
9: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो, शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
8: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है, अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
9: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
8: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
9: हाय हाय, बस यही

0: कमी रह गई थी तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
1: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
0: तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
1: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
2: भला सन 1975 से आगे हम कैसे जा सकते हैं जब तक कि हम इस खास सीन का जिक्र ना कर लें। आज इतने बरस बाद भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को ये डायलॉग ज़बानी याद है।
3: आज खुश तो बहुत होगी तुम। देखो, जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश होगे तुम, बहुत खुश होगे कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी मां है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो। मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो।
2: इस जज्बाती सीन के बाद जरा वो सीन सुन लीजिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से हमने लिया है। अमिताभ बच्चन का बिल्कुल अलग रंग जो उन्हें बड़ा एक्टर बनाता है।
4: आइए आइए प्रेमल बाबू।
3: मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूं। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा।
4: क्यों,
3: क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अरे भैया, कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी।
4: मेरे ख्याल से तुम रहने दो।
3: ओहो सुनो तो सही, मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूं मैं बन के नहीं, तुम बन के। और तुम बन के जो कहता हूं वो समझती है मैं कह रहा हूं। कहता मैं ही हूं, कहता मैं ही हूं, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम।
4: क्या बकरी की तरह मैं लगा रखी है? सीधी तरह बात करना।
3: सीधी तरह कहां से करूं? आपको तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया, मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए, हूं ना?
4: होना नहीं है ना।
3: हाँ है ना। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार की दिल की बात कहना चाहता हूं तो वो समझती है कि परिमल जो कंबख्त शादीशुदा है।
4: कंबख्त क्या?
3: परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है। इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूं वो मुझसे नहीं बोलूंगा।
4: तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है।
3: नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात।
4: नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा।
2: जी हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा और लेखक ने लिखा। इसीलिए अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ये कारनामा करते नजर आए।
5: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of the Ronda Basa. Hey! My name is Anthony Gonsalves.
6: What's that? This?
5: Right. My name is Anthony Gonsalves.
2: अमिताभ बच्चन जैसा नायक दुनिया में अकेला ही होता है, फिर चाहे उसका नाम एंथनी गोंसाल्विस हो, डॉन हो या विजय। साल 1978, त्रिशूल।
7: मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए कि जो काम दूसरों ने 25 बरस में किया है मुझे एक बरस

0: दुनिया में कम लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। मैं सोचा था पता नहीं आ पाएंगे या नहीं।
1: अगर ये जश्न तुम्हारी कामयाबी की खुशी में है तो मुझे आना ही चाहिए था, इसलिए कि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी में मेरे उन दो टेंडर्स का भी हिस्सा है जो तुम्हें भंडारी के जरिए मिले थे।
0: मैं तो मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। यकीन कीजिए मिस्टर आर के गुप्ता, जिंदगी में जो कुछ भी आपसे मिला वो मैं भूला नहीं हूं। वो तो एक कर्ज है जिसे एक न एक दिन मैं जरूर उतारूंगा। जरा ठीक से साफ कीजिएगा वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे।
1: नहीं, मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया।
0: मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते।
1: तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो एक सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है। बाद में पता चला तुम जख्म।
2: यहां तक आते आते अमिताभ बच्चन के अभिनय का सूरज अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। साल 1978 में एक और फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर।
3: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, समाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला। उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सर पर हाथ रखा। मैं रो पड़ा, उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कब के मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है। मैं उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पे वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप चाह सकते।

0: और अब हम आ गए हैं सन 1981 की तरफ, जब अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक तीन महत्वपूर्ण फिल्में आईं। फिल्म कालिया।
1: इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
2: आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा, समझे?
0: इसी साल आई फिल्म नसीब।
3: ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है, यहाँ बुलाना हो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ।
4: अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें?
3: तुम मेरे को घर छोड़ गए? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने।
4: मैंने तो खाना खाया ही नहीं उसके साथ।
3: बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया, ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है कितना अच्छा है, वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता।
4: मैंने तुम्हें यहाँ बक बक करने के लिए नहीं बिठाया।
3: अच्छा क्या, ठीक है बक बक नहीं करता है।
4: कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है।
3: अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बक बक करता है, फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बैलेट फेयर जाना है।
4: अच्छा वहाँ रहते हो?
3: नहीं नहीं।

0: हर शनिचर हमारा इंतजार होता है।
1: इंतजार? कौन करता है?
0: अपना महबूब।
1: महबूब?
0: हाँ, अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। हाँ, एक घंटा मुलाकात होता है तबियत हरी हो जाती है। अभी आप मिलेंगे ना, देखना कितने प्यार से मिलते। दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो।
2: एकदम सही जगह पर लाके पटका।
3: और साल 1981 में ही आई अमिताभ बच्चन की एक और महत्वपूर्ण फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला।
4: जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीं चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें। मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है।
5: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती, तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती, तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
3: साल 1984 अमिताभ बच्चन की एक बहुत यादगार भूमिका फिल्म शराबी।
6: आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए।
7: क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं। अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको।
6: ओ, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां हैं?
8: सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूं।
6: नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए अगल बगल नहीं, हमारे सामने रहा कीजिए ताकि हम आपकी मूछें देख सकें। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का। मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना।
8: ये तो आपका बड़प्पन है।
6: मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती। हमारा तो कोई पन नहीं। ये देख, मैदान सफर चट।
8: बात कहने की मालिक।
6: देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक हो करके हमें मालिक मत कहा करो। कहो क्या काम है?
8: सरकार, अगले महीने मेरी बेटी की शादी है।
6: वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है। हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो।
9: नथुलाल जी, आपकी तीन बेटियां हैं ना?
8: नहीं मुंशी जी, मेरी पांच बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं। जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है।
6: हमारे अकाउंट में से नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए।
7: 2.5 लाख रुपया?
6: हाँ सक्सेना साहब, 50 हजार के हिसाब से हमारी पांच बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं। कल का क्या भरोसा नथुलाल जी? मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। क्यों? चलो बट ठीक है। हमने
3: हमारे लिए ये बड़ा ही मुश्किल था कि अमिताभ बच्चन की कौन सी फिल्मों की संवाद आपको सुनाएं और कौन सी फिल्मों के छोड़ दें। अब अमिताभ बच्चन के इस दौर की कुछ फिल्मों के बेमिसाल डायलॉग्स। फिल्म मोहब्बतें।
10: परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के तीन स्तंभ हैं। ये वो आदर्श हैं जिससे हम आपका आने वाला कल बनाते हैं। आपसे पहले जो यहां से गुजर चुके हैं वो आपके लिए बहुत ऊंचे सिद्धांत छोड़ गए हैं। आज वो सब अपनी अपनी जगह बहुत कामयाब लोग हैं। कुछ बड़े लेखक

0: कुछ बड़े बिजनेसमैन, कुछ बड़े नेता, पर उन सब में एक चीज सामान्य है, वो सब अपनी सारी जिंदगी इस गुरुकुल के सिखाए हुए उसूलों पे चले। आज आप सबको उस कामयाब वंश का हिस्सा बनने का मौका दिया जा रहा है। हम आप सबको इस देश के चारों कोनों से चुन चुनकर यहां लाए हैं, इस विश्वास के साथ कि आप में वो काबिलियत है जो एक कामयाब इंसान बनने की होनी चाहिए। पर कोई भी कामयाबी इतनी आसानी से नहीं मिलती। हर बड़ी कामयाबी के पीछे एक बहुत बड़ा बलिदान होता है। आज आपने इस गुरुकुल में कदम रखकर बाहर की दुनिया अपने पीछे छोड़ दी है। जब तक आप यहां हैं, गुरुकुल ही आपकी दुनिया है।
1: फिल्म बागबान का ये जज्बाती कर देने वाला मोनोलॉग।
2: बागबान मेरे बारे में या किसी एक इंसान के बारे में नहीं है, ये किताब है बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच फैले हुए सन्नाटे के बारे में। ये किताब है एक पीढ़ी और दूसरी पीढ़ी के दरमियान टूटे हुए हर पुल के बारे में। ये किताब है झुके हुए उन कंधों के बारे में जिन पर बैठकर कभी कुछ बच्चों ने जिंदगी के मेले देखे थे। ये किताब है कांपते हुए उन खाली हाथों के बारे में जिन्होंने अपने बच्चों के नन्हे हाथों को पकड़कर उन्हें चलना सिखाया था। ये किताब है लरसते हुए उन होठों के बारे में जिन पर कभी लोहियां थी मगर अब परसों से खामोश।
1: फिल्म पीकू का ये संवाद, ये मस्ती।
3: ए पीकू, अरे फ्लाश में पानी नहीं है।
4: ऐसे वॉक करने से कुछ नहीं होगा, जाके बैठिए बाथरूम में, हो जाएगी।
3: आई नो माई सिस्टम बेटर ऑन यू।
5: आपको ना कॉन्स्टिपेशन यहाँ पर है, यहाँ पर।
6: इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है।
7: कमाल है, आप हर बात को पेट से कैसे जोड़ देते हैं।
1: निर्माता सुजीत सरकार की फिल्म पिंक का ये संवाद जो गली गली घर घर में गूंजा।
8: नो नो योर ऑनर, ना सिर्फ एक शब्द नहीं, अपने आप में एक पूरा वाक्य है योर ऑनर। इसे किसी तर्क, स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माय क्लाइंट सेड नो योर ऑनर and these boys must realize no का मतलब नो होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो।
1: सबसे आखिर के लिए हमने चुना है दो महानायकों का आमना सामना, सन 1982, फिल्म शक्ति।
9: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
10: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
9: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा।
10: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
9: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
10: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
9: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
10: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
9: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
11: दोस्तों, हमारी कोशिश यही रही कि भी किस तरीके से आप तक नए से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाए, और हमारी ये कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसके बारे में आप ही अपनी राय हमें नवाजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम जो यूनिस ने आप लोगों के लिए पेश किया, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है कि यूनिस जब मेरे पास आया ये सारे डायलॉग्स का कंसेप्ट लेके और इतने डायलॉग्स लेके, तो यकीन मानिए कि मेरे सर के ऊपर से चला गया कि अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग प्रोग्राम में लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और किसको छोड़ दें, क्योंकि अमिताभ बच्चन की अदायगी, किरदार का अंदाज बयां, उनका आवाज के ऊपर अपना किस तरीके का भाव है और किस तरीके का वजन है उनका, उस सब को देखते हुए कोई भी डायलॉग छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल हमने जो कोशिश की वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं।

0: प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
1: तो अब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी के साथ अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत।
2: आज के फनकार।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, प्रातः के 10 बजे हैं और अब आप सुनेंगे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी पसंद में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आप सभी का पहला कमेंट हम तक पहुंचा है, पोटिया करा दुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू का। गंज डुंडवाला से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, उस्मान अंसारी, यासीन हाशमी। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। करबला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। मोहल्ला हलवाइयां शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर का। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहि, ऋतिक और बलबीर सिंह का। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश श्रिंकी, कपिल वेदराम, कैलाश सुनील, खुशबू आरोही और स्वाति मौर्य का। ग्राम व पोस्ट हनरपुर मटकरी जिला बरेली से हैं शाहरुनूर अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी, मोइन अंसारी, तस्लीम अंसारी और डीजे प्रधान का। और ये कमेंट हमारे पास आया है सनैया धन सिंह बरेली से हैं, राय सिंह पाल, एनपी सिंह, धर्मवीर भारती, रविन्द्र यादव, प्रेमपाल दिवाकर, जुगेंद्र यादव, महेंद्र पाल, अनुज पाल और काजल पाल का। सफेदो सिटी से हैं नानक खन्ना, चंचल खन्ना, लवली खन्ना और रजत खन्ना, लव खन्ना, कुश खन्ना और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बाल कृष्ण शर्मा, परवीन शर्मा, राहुल शर्मा, मनीष शर्मा। बागपत उत्तर प्रदेश से हैं संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया और अपार ढिंगिया। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से हैं गजान येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले और स्वाति येले। छत्तीसगढ़ लोरमी से हैं नारायण खांडे, रजनी खांडे, तुषार खांडे और समीर खांडे। रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनोद बंडलकर, वीणा बंडलकर, विविधा बंडलकर। ग्राम महेशपुर खेम से हैं आप सभी लोग तौफीक अहमद सिद्दीकी, अतीक अहमद सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश सिद्दीकी। पद्मा टाकिज नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन, राजेंद्र जी शाह। गांव फरासी जिला हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। गढ़ी कोटाहा जिला पंचकूला हरियाणा से हैं सिराजुद्दीन अंसारी, नसीबन बेगम, अक्रम अंसारी, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी का। लौटडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि, नितिन जगमोहन, भुवनेश्वरी देवी, सुधीर नूतन, रामानंद कश्यप। करावल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इस्टार और नरगिस खातून का। राजकमल रेडियो श्रोता संघ आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से हैं सैयद दूनू, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तानले। दोतर जोड़ा आष्टी से हैं दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते। साधुल शहर राजस्थान से हैं रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। चर

बरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से हैं दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथ ही इनके दोस्त। मुंडा टोला डोंडी लोहारा से हैं डोमेंद्र नेताम और गंगेश्वरी नेताम। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है अवतार और इस गीत को गाया है आशा भोसले, नरेंद्र चंचल और साथियों ने।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: पशुओं को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, इस समय आपने ट्वीन किया है आकाशवाणी का बरेली केंद्र, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 एफएम पर। तो श्रोताओं, आज से हमारे माता रानी के नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और आप सभी लोग इस समय पूजा भी कर रहे होंगे, साथ ही साथ हमारा रेडियो भी सुन रहे होंगे और माता रानी आप सभी के घरों में खुशहाली लाएं, बस यही हम माता रानी से कामना करते हैं। और ये कमेंट हम तक पहुँचा है आप सभी लोगों का, नई वाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से हैं वेद मिड्डा और अलका मिड्डा, मुजफ्फरपुर बिहार से हैं आर्यन राज, रोहित राज और पीयूष कुमार, कृष्णा पार्क दिल्ली से हैं सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना गुरुवंश सिंह जोड़ा, गांधीनगर महेश्वर मध्य प्रदेश से हैं श्याम यादव और सोना यादव, भोपालगढ़ राजस्थान से हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार का, प्रदीप सलूजा, संगीता सलूजा, प्रथम सलूजा, जनकपुरी नई दिल्ली से हैं आप सभी लोग, गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा, सार्थक शर्मा, कंच डुंडवारा उत्तर प्रदेश से हैं आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी, पलारी छत्तीसगढ़ से हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग पुनाराम देवांगन और कृष्णा देवांगन का, आदर्श नगर मलोट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, निवान शर्मा, स्वीट मास्टर सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, और इन्होंने सभी को जो है नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं आप सबको भी। कुलीपाड़ा कटिहार से हैं आप सभी लोग विवेक रमण, अक्षित रमण, परिधि रमण, विनीत रमण, राजेश भारती, विभा रानी, आदित्य राज, प्रिया, प्रियंका, प्रेरणा, प्रगति और साथी हैं आशीष प्रिंस। ये कमेंट हमारे पास आया है राजकोट गुजरात से हैं रश्मि झरना और भरत कुमार, गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से हैं जीवन विश्वकर्मा और मंजू विश्वकर्मा, अल्लागंज जनपद शाहजहांपुर से हैं आप सभी लोग आरवी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय, दीक्षा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त, चनौरा जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से हैं बनवारी लाल कुशवाहा, मंजुलता कुशवाहा, राम और श्याम, रवि आर्यन और साथी, कांट रोड लदावली से हैं माया देवी, ऋतिक, आदित्य कसाना और अजीत कसाना, ग्राम रसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, तल्लीताल नैनीताल से हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत, वान्या, लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली युवान और आर के राजा का, एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन और आशीष राजा का, कस्बा उगेती जिला बदायूं से हैं सद्दाम हुसैन सिद्दीकी, सितारा सिद्दीकी, साद सिद्दीकी, समद सिद्दीकी और सादिक सिद्दीकी, संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से हैं एडवोकेट वारिस अली खान, इस्लामुन्निशा, शकील अहमद, शहनाज खान और दानिश का, चंद्रपुर जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ से हैं विनय कुमार दुबे, कलावती दुबे, अनुष्का दुबे, अश्विनी दुबे, शौर्य दुबे, पंचकुला चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना, रिधान खुराना और तुलसी मस्किन का, रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना हर्षित, खुशी गोस्वामी, लगान पंडरी छत्तीसगढ़

से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल और भारती बघेल का। गांव बांडी वाला फजिलका पंजाब से हैं ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया का। सुरेंद्र खुराना न्यू मुल्तान नगर दिल्ली से हैं, रिंगी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। अहमदगढ़ मंडी पंजाब से हैं मोहम्मद अनवर अंसारी, रवीना आफिया, जावेद अख्तर, जैस्मीन शकीला, सना समा, हिना रजिया सुल्ताना, सुराज अंसारी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। गांव अरायन जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से हैं डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल, पूनम चालिया और इनके परिवार के सभी सदस्य। गांव खुकरा वाली श्रीगंगानगर से हैं विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी और शगुन का। ईदगाह गेट मुरादाबाद से हैं शफीक अहमद अंसारी, रईस दुल्हा अंसारी और इनके सभी दोस्त। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। कुटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दिव्या नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। इस्लाम नगर पबसरा जिला बदायूं से हैं भाई सत्यदेव कुमार राणा, विष्णु कुमार राणा। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर जिला बरेली से हैं सर्वेश कश्यप, राज, सुमित, अमित कश्यप, आर्यन कश्यप, दीपेश कश्यप, शिवम और इनके परिवार के सभी साथी और इनके सभी दोस्त। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। शनि बाजार कस्बा उगहती बदायूं से प्रभाकर गुप्ता, अवदेश, सचिन, देव, प्रियल, कायरव और गौरी गुप्ता का। ये कमेंट हम तक पहुंचे हैं मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से हैं भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई, फिरोज, मुस्कान और नगमा नाज मंसूरी का। ग्राम व पोस्ट गोठा खंडुआ से हैं राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, दिलीप, माधुरी, प्रदीप, सविता, सत्यम, शीतल, राधा मिश्रा, सलोनी, शिवम और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके सभी दोस्त। अडार नाथगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू, करण, राहुल साहू और चंपा साहू। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए। इस गीत को गाया है हेमलता ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अनुपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
4: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1-800-1805-145 पर कॉल करें।
5: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का आपकी पसंद में। उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं, मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी और शिवन्या गोस्वामी का। अनारकली बाजार जगरा पंजाब से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, विनोदपुरी। नई मस्जिद करेली से हैं इंतजार भाई अंसारी, बेटी हिब्जा नूरी, नथू नन्हे, सूरज मौर्य, जाहिद और मुशर्रफ भाई। आजाद रेडियो श्रोता संघ रजोखर बाजार से हैं अररिया बिहार से शरीफ आरजू और गुड्डू रंगीला का। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा, नानकचंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। असालतपुरा मुरादाबाद से हैं मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, मोहम्मद जुबैर अंसारी, तनवीर आलम अंसारी। चांद वाली मस्जिद मुरादाबाद से हैं मिराज अंसारी और वसीम अंसारी। मजनू का टिल्ला से हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। जिला बरेली ग्राम करेली से हैं मोहम्मद आमिर अंसारी, शमीम अंसारी, माहनूर अंसारी, नसरीन अंसारी, समा अंसारी। धनवंतरी नगर जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं अशोक सिंह, सुनीता सिंह, अंकिता सिंह, ऋषभ सिंह, प्यारी गुड़िया, वेदा सिंह। संबलपुर कांकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। मंसूरी रेडियो लिसनर्स क्लब बाजार रोड मुंगिसापुर से हैं मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शविस्ता, मोहम्मद नसीब, पलक लुबना, अलजिबा, अयान मंसूरी, यश मंसूरी और नुमेर मंसूरी का। छत्रपति शिवाजी नगर खंडवा से हैं राजेश सेन और सुरेखा सेन। पूर्णा देगांव से हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रेया थोरात और बंटी थोरात। वडिंग खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का। गांव जाखोद राजस्थान से हैं शंभू दयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत सुंदरलाल, योगेश कुमार, दीपक कुमार, कुमारी पूजा खट्टक। मछली गोदाम कही मुड़ा रायगढ़ से हैं पुरुषोत्तम सिंह, उषा सिंह, ऋषभ सिंह। यादव मोहल्ला सनावत से हैं दिलीप मालाकार, सुनीता मालाकार, योगेश मालाकार, मुस्कान और जितेंद्र का। स्मिता रेडियो फेसबुक लाइव शो ग्रुप से हैं भाटापा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, हरविंदर सिंह चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वीरेंद्र वर्मा, रानू अग्रवाल, अंकिता जोशी, लक्ष्मी ध्रुव, बेबी वैदेही, बेबी हंसिका जोशी। जगदलपुर बस्तर से हैं पूनम नायडू जी।

ग्राम कुंदर की मुरादाबाद से हैं एम मुनाजिर खान, फरासत फारूकी, मुअज्जम मुस्तफ़ा और गौसिया बी। सोंगा धमतरे छत्तीसगढ़ से हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार और हियांश कुमार चंदन का। खरसावा झारखंड से हैं सुकुना नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। मोहल्ला ख्वाजा नगर कुंदरकी से हैं जाकिर खान, नाजिम खान, सुहेब खान, अरीफ खान, जिक्र नूर, हलीमा सादिया। झज्जर हरियाणा से हैं बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हैं दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। जनकपुरी सहारनपुर से हैं जॉन डिक्रेस्टो, रोजी डिक्रेस्टो, पर्ल डिक्रेस्टो और विलिस डिक्रेस्टो। गांव सिद्धूवाला सूरतगढ़ राजस्थान से हैं इंद्राज जियाड़ी, अंकुश जियाड़ी। आकोट से हैं विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डावेराव। मदरसा गेट भावपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान इरशाद, अरमान इरशाद, नवेद इरशाद और अजरा तबस्सुम का। मानहर दरवाजा एटा से हैं नवी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशफ अब्बासी। किदवई नगर सिद्धपुरा टाउन से हैं जुबेर अली खान, सबिया अंजुमन खान। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से हैं गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से हैं रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गरवी और बेबी बॉय हिमाक्ष का। बरवट वकाल बुलडाणा से हैं नारायण हागे, कमल हागे, दिव्या हागे, जय हागे। पैराडाइज कॉलोनी अमरावती से हैं सैयद भाई, सुफियान, अनस, आयजा। सरोज चौक से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हादिया खान, आफिया और मुस्ताबा खान। कश्मीर से हैं पीरजादा मिराज दिन, नजम दिन, केसर दिन। सलार पहलगाम से हैं आप सभी लोग। गांव कुमार हेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर, साइना हसन, अक्सान अदीब, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम। और ये कमेंट हम तक आया सुंदर नगरी दिल्ली से हैं मोहम्मद कौसर नियाजी, मोहम्मद फयान नियाजी, मोहम्मद रिहान नियाजी। ग्राम नादियाली जिला बदायूं से हैं फिरोज खान, नूरी फिरोज, अरबाज खान, शानबाज खान और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से हैं मौर्य मंदिर से रतन माला मौर्य, मुकेश प्रिंस, प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश मौर्य और मन्नू भाई का। दुदली नैनीताल उत्तराखंड से हैं हरीश शर्मा और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। अररिया बिहार से हैं सोमिया नजमीन, रुकैया आफरीन, रिहाना परवीन और माहे आरजू का। रावर करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। और ये हम तक पहुंचा है मैसेज स्टेट असम से हैं हितेंद्र दास और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य। ये कमेंट भेजा है आप सभी प्यारे श्रोताओं ने। जोगी हाट तशाना बाजार अररिया बिहार से हैं सरफराज आलम जी, मोहम्मद जाहिद आलम, अब्दुल वाहिद प्रवेश, अब्दुल वाजिद, अब्दुल अजीज, बेगम खालिदा जिया, गजाला प्रवीण, शबाना प्रवीण एवं अनोखा प्रवीण। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है हिना और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर ने।

और ये कमेंट हम तक आया है आप सभी प्यारे श्रोताओं का। गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से हैं मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता का। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिज का और तन्मय गजबिये का। हिंगोली महाराष्ट्र से हैं शाहजी भोड़के, श्रीमती नंदा भोड़के, हनुमान और उत्तम जमदाड़े का। ये कमेंट हमारे पास आया है आप सभी लोगों का। परीमहल कासगंज से हैं नबिल खान, अराफा खान, इल्मा खान, असलम सैफी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मनकारा मंदिर बीजे कॉलोनी खरगैना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर, हितेश, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या, रचना भारती, ओमवती भारती, खनक, शकुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रताप सिंह का। ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर से हैं मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान दे, स्वाति सिंह, तान्या, गौतम और इनके सभी दोस्त। श्रोता रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का। पटियाली रोड गजनुडवारा से हैं आमिर हुसैन, बेगम तैयबा शेख, फौजिया शेख, आहिर हुसैन, अरहान हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्य। शेरकोट बिजनौर से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम, अजीम, अदीम, अब्दुल गनी, अलमीर सन्नत और साथ ही इनके दोस्त। गांव भटुनी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रेहांश मेहर और साथी हैं षष्टि मेहर और इनके परिवार के सभी सदस्य साथ ही इनके सभी दोस्त। ये कमेंट हमारे पास आया कस्बा मंडी बागपत से हैं अग्रवाल मंडी बागपत से आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, सरिक अली खान। भूत कछार छत्तीसगढ़ से हैं दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, प्रीतम, धनराज मरकाम। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखे लाल वर्मा का। ये कमेंट हम तक पहुंचा है अरुण कुमार का। बड़ी गेवी चौराहा वाराणसी से हैं आप सभी लोग और आपके परिवार के सभी सदस्य। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां का ये कमेंट हम तक पहुंचे आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से। ग्राम टोडरपुर भुड़ बैसली बदायूं से हैं पीएस यादव, अजय पाल सिंह यादव, पवन कुमार, मयंक, प्रभात कुमार, मुन्नी देवी, नीतू सिंह, प्रतिभा यादव, प्रतिज्ञा यादव, नेमपाल सिंह यादव। नरकोड़ा छत्तीसगढ़ से हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी का। बुलंदशहर से हैं उमेश कुमार गौड़, उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। जेल रोड रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हैं सौरभ निषाद, प्रकाश कुमार, बबलू निषाद, तरुण, श्रीनिका और श्रीनिजा। ईदगाह जनूबी जिला पंजाब से हैं मोहम्मद हफ्जुरहमान, हबीब मलिक, खलाली मलिक और अली रहमान का। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, मुन्नी कुमारी, चांदनी कुमारी, नंदिनी कुमारी। बुलंदशहर से हैं उमेश गौड़, रानी गौड़। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा। ये कमेंट हम तक आया है आप सभी लोगों का। सहारनपुर से हैं राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव, अभिषेक नामदेव। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से हैं उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी जी, सोनू, मोनू, राहुल, रश्मि, प्रियंका, षष्टि, आरुष, शौर्य, दिनेश। अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से हैं राम राव नितोने, शारदा नितोने, सानिका और रिया का। असालतपुरा मुरादाबाद से मोहम्मद फरीद अंसारी, मोहम्मद रजा अंसारी, मोहम्मद बिलाल अंसारी, जुबेर अंसारी, तनवीर आलम अंसारी का। चांद वाली मस्जिद मुरादाबाद से हैं मेराज अंसारी और वसीम अंसारी। ये कमेंट हमारे पास आया है आप सभी लोगों का। श्रोता कोशिश किया कीजिए जब आप हमें एक बार मैसेज कर देते हैं तो बार बार मैसेज नहीं करा कीजिए और लोगों को भी मौका दीजिए और ताकि और श्रोता भी हमें नए नए मैसेज करें तो हम उनका पढ़ें। बार बार मैसेज रिपीट करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत, फिल्म का नाम है

श्रोताओं, ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी प्यारे श्रोताओं का। जिला खरगोन सनावन मध्य प्रदेश से हैं अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज आयुषी, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना। सुदामा नगर खंडवा से हैं लक्ष्मी नंदनी, रोहित ऋतु और मुकेश जगताप का। और ये प्यारा सा कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। अकोट जिला अकोला महाराष्ट्र से हैं रामराव, शारदा, सानिका, रिया और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सहारनपुर से हैं राधा नामदेव, अपर्णा नामदेव और अभिषेक नामदेव का। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजू कुमार, बिट्टू कुमारी, अर्चना कुमारी, चांदनी कुमारी, मुन्नी कुमारी और नंदनी कुमारी का। और ये कमेंट हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का। रश्मि झरना और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। अद्भुत दीक्षित का ये कमेंट हम तक पहुंचा है मणिनाथ बरेली से। ये कमेंट हमारे पास आया है शेरकोट बिजनौर से है नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम और अजीम का। सोंगा धमतरी छत्तीसगढ़ से है फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार चंदन, देविका रानी, गजेंद्र कुमार चंदन और हियाश कुमार चंदन का। पटियाली रोड गंज डुंडवारा से हैं तैयबा, फौजिया, आहिल, अरहान और इनके परिवार के सभी सदस्य और साथी इनके दोस्त। डाबकी रोड अकोला से हैं सुशीला देवी, सदानंद और कुमार गौरव मंडूरकर का। रघुवीर नगर से हैं दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का। खेल बाजार पानीपत से हैं नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य लाडो, कोयल मल्होत्रा, ननक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुग्गू भाविक सिक्का। ग्राम पंचायत पाकरगंज तहसील फरीदपुर से हैं शिवम, अभयमीत, भगवान देव, स्वाति, तान्या गौतम और साथ ही इनके सभी दोस्त। परिमल काजगंज से हैं नबील खान, राफा खान, इल्मा खान और साथी जो है एम असलम सैफी। शाजी भोड़के, श्रीमती नंदा भोड़के, हनुमान भोड़के आपने भेजा है। उत्तम जमदाड़े हिंगोली महाराष्ट्र से कमेंट हम तक। रिंगी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। इस्लाम नगर पवसरा से हैं सत्यदेव कुमार राणा और विष्णु कुमार राणा का। श्रोताओं, कोशिश किया कीजिए कि हम तक आपके जो है मैसेज, जब आप एक बार मैसेज करेंगे और कंटिन्यू लिस्टिंग रहेगी तो आपका नाम बोला ही जाएगा। ये मत सोचिए कि हम कई बार करेंगे तो तभी हमारा नाम बोला जाएगा। गोंदूर रोड धुलिया महाराष्ट्र से हैं मनोहर मगर, यामिनी मगर, उदयन और अर्पिता का। कटरा चांद का प्रांश बली से हैं जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, दृष्टि मौर्य और मानवी मौर्य का। ग्राम कैली पुरानी मस्जिद बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर अंसारी, इस्लामुद्दीन अंसारी, मुन्ना भाई और आशिक हुसैन अंसारी का। हितेंद्र दास जी का ये कमेंट हम तक पहुँचा है आसाम से। दादरी गेट भिवानी से हैं कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल, कुणाल मेहरा। रावर करनाल से हैं ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया। अररिया बिहार से हैं सोमिया, रुकैया, रिहाना और माहे आरजू का। नया पारा भिरई जिला बालोद छत्तीसगढ़ से हैं बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, ईश्वर राज ठाकुर, पप्पू ठाकुर, प्राची और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। पोटिया कलादुर्ग से हैं संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। कटरा चांद का पनाशेर बरेली मौर्य मंदिर से हैं प्रियांशी, पुष्पा, गौरव, चंद्र प्रकाश, मनु भाई का। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर से हैं नारायण भाऊ खड़से, ललिता आशा रानी खड़से, संजना परी खड़से, कड़ेश कार्तिक खड़से, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी, स्वाति प्रयागराज चौधरी और गांव कुमार हेड़ा। सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सर अदीब, नाजिया, आफिया, इब्राहिम और सद्दाम का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आपकी पसंद में अपनी पसंद के गीतों को। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। प्रातः के 11 बजने वाले हैं

0: और अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम आपका पत्र मिला। प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति में सहयोग दिया है गजेंद्र यादव ने।
1: में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपका। आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार गजेंद्र जी और सभी श्रोताओं को भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का और हम उम्मीद करते हैं

0: आप सभी का और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी मजे में होंगे, आनंद से होंगे, स्वस्थ होंगे और मौसम की जो मार पड़ी है उससे पार पा रहे होंगे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने,
0: क्योंकि हमारे बहुत सारे श्रोता किसान हैं तो मौसम की मार तो पड़ी है, काफी बारिश हुई है और अभी ओले भी पड़े हैं तो मुश्किल की घड़ी है, लेकिन इस मुश्किल से जूझते हुए फिर उभरना भी है, बहुत आवश्यक है।
1: जी मित्रेश, सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं और दोनों ही आते हैं। हमारे बरेली और आसपास के क्षेत्रों में अभी पिछले कुछ एक दिन पहले ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन हमारे देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां अभी भी सूखा जैसी स्थिति बनी हुई है। तो खैर, ये जो मौसम है कब करवट बदले कोई पता नहीं, लेकिन बहुत सारी बातें हैं, इन सब परिस्थितियों के बीच जीना है और हंस के मुस्कुरा के जीना। आकाशवाणी बरेली भी अपनी पूरी कोशिश करता है कि आपको इन जो ऐसे पल होते हैं उनमें फिर भी आपका संबल बने,
0: बिल्कुल, और मनोरंजन करता रहे
1: और जानकारियां देता रहे, है ना।
0: तो बिना देर किए अब शुरू किया जाए।
1: हाँ, आज का आपका पत्र मिला कार्यक्रम शुरू करते हैं। और हमारे
0: और यहाँ पे ये भी बता दें कि एक बार गैप हो गया था तो पुराना वाला जो आपका पत्र मिला पिछले रविवार प्रसारित हुआ था।
1: जी जी,
0: तो आप लोग धैर्य बना के रखे, हम लोग साथ बनाए रखे, इसके लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार है।
1: और आज तो मित्रेश जी हमारे पास दो एक पत्र भी आए हैं।
0: जी जी,
1: और ये पत्र जुलाई और अगस्त के पत्र हैं। हमारे श्रोताओं को हम सूचित कर दें जिन्होंने हमें ये पत्र लिखे होंगे कि उनको इस बात का यकीन है कि आपके पत्र हमारे पास अब पहुंचे हैं।
0: जी जी, मलाल ना रहे,
1: जी
0: पत्र आपके शामिल किए जा रहे हैं।
1: तो डॉक्टर मसरूर खान साहब हैं ककराला बदायूं से और आपका पत्र मिला है, ये इनका पत्र हमारा जुलाई का पत्र है।
0: क्या लिखते हैं?
1: पूरे परिवार को हमारी ओर से सबको नमस्कार।
0: नमस्कार,
1: आशा है कि आप सभी सानंद होंगे।
0: सानंद हैं।
1: आकाशवाणी बरेली के हम पुराने नियमित श्रोता हैं और मेरा अटूट संबंध है आपसे। अभी एक सप्ताह पहले इन्होंने किसी से बातचीत की तो इनको बहुत अच्छा लगा।
0: क्या बात,
1: और कह रहे हैं कि जो हमारे यहाँ किसानवाणी कार्यक्रम में गुरुदेव मिश्रा जी थे उनसे इनकी बातचीत हुई तो अच्छा लगा और पता लगा कि वो अब वहाँ पर कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत करते हैं।
0: तो कई साल हो गए, 4 साल 5 साल हो गए।
1: जी जी, कहते हैं कि आप हमारे पत्रों पर ध्यान देंगे, हमारे जो भी पत्र आपको मिलेंगे उनको शामिल करते रहिएगा और बाकी कार्यक्रम का जो समय है वो आधा घंटा है, इसको बढ़ाने का कार्यक्रम कोशिश करें। आपकी फरमाइश कार्यक्रम का
0: तो बढ़ ही चुका है, वो तो 1 घंटे का है, आप शायद अपडेटेड नहीं है।
1: जी जी,
0: और जुलाई में आप लिख रहे हैं तो जुलाई नहीं, वो तो कई महीनों से 1 घंटे का हो चुका है।
1: जी,
0: तो आप थोड़ा सा अपडेटेड हो जाइए,
1: बिल्कुल,
0: है ना, और अभी 5 साल पहले के जमाने से में मत रहिए।
1: जी
0: जी, बहुत समय बीत चुका है, तो नए जमाने में नए कलेवर के साथ आकाशवाणी के कार्यक्रम पेश किए जा रहे हैं, उनको सुनिए और अपने खुद को भी अपडेट करिए। पत्र लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: फरमाइशी कार्यक्रम तो मिथिलेश जी सब 1 घंटे के आसपास ही हैं लगभग।
0: हाँ बिल्कुल, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो।
1: अच्छा, ये जो हमारे साथी हैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई साहब हैं और इनका ये पत्र मुझे लग रहा है ये भी काफी पुराना है, ये तो 21/8 अगस्त का है।
0: अगस्त का है,
1: उसके बाद भी इनके कई सारे ईमेल्स हमें मिल चुके हैं,
0: हम शामिल कर चुके हैं,
1: तो अब
0: हर तरीके से जुड़ते हैं।
1: हाँ, अच्छा, डार्क लेट हो जाती है तो ईमेल पहले आ जाता है, वो पढ़ लिया जाता,
0: बिल्कुल,
1: है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, और क्या है,
1: तो आप उधर ही चलते हैं,
0: स्विच हो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है।
1: हाँ,
0: क्योंकि कम्युनिकेट होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, आपकी बात हम तक पहुंचने से मतलब।
1: तो आप ईमेल की तरफ चलते हैं।
0: हाँ जरूर,
1: श्रोताओं हम आपको बता दें कि कार्यक्रम में अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो आपका पत्र मिला bareli@gmail.com पर अपना ईमेल हमें भेज सकते हैं कार्यक्रमों से संबंधित, और एक फोन नंबर भी है जिस पर व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप आपका पत्र मिला के लिए अपने मैसेज भेज सकते हैं। 9457395859 ये है नंबर। और अब आज का पहला ईमेल।
0: जी,
1: हमारे ये जो साथी हैं विनेश कुमार श्रीवास्तव जी निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से हैं। लिखते हैं कि पेड़ पौधे और वन्य जीव, इनसे ही धरती रहे सजीव, वन्य जीवों की रक्षा करें, पर्यावरण की सुरक्षा करें।
0: क्या बात,
1: आप सबको मेरा नमस्कार।
0: नमस्कार, और हम उम्मीद करते हैं कि आप ही नहीं, आप जैसे तमाम श्रोता पेड़ पौधों की रक्षा कर रहे होंगे अपने क्षेत्र में।
1: बिल्कुल,
0: वैसे भी हमारा बरेली और आसपास का इलाका जो है बहुत हरा भरा है,
1: बिल्कुल
0: हरियाली पर्याप्त मात्रा में है, बादल आते हैं तो यहीं
1: ठहर जाते हैं और इसका नतीजा हमने देखा है ना, अभी पूरे परिसर में घुटनों घुटनों तक पानी था।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: है ना। तो आकाशवाणी परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
0: आपको भी।
1: बीते दिनों तेज बारिश में जब आकाशवाणी परिसर में पानी भरने के कारण प्रसारण बंद कर दिया गया था, तब आप लोगों ने बहुत ही प्रयास करके पानी को निकाला और प्रसारण को शुरू कराया। इसके लिए मिथिलेश जी और गौरव जी को हम बधाई देते हैं।
0: जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और गौरव जी ही नहीं बल्कि इसमें हमारी जो अभियांत्रिकी की टीम है
1: जी,
0: उसमें जो अभियांत्रिकी प्रमुख हैं और साथ में इस समय कार्यालय प्रमुख भी हैं
1: जी,
0: दीपक सक्सेना जी
1: जी,
0: उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका है। साथ में आकाशवाणी आगरा से
1: जी,
0: जो उस समय सहायक

0: अभियंता थे, उनका प्रमोशन भी हो गया,
1: जी
0: सहायक निदेशक अभियांत्रिकी हो चुके हैं वो वाजपेयी जी,
1: जी
0: वो भी आए थे उन लोगों के प्रयास से, क्योंकि टेक्निकल में तो अपना तंग ही है,
1: जी
0: हम तो प्रोग्राम वाले हैं,
1: जी
0: लेकिन हाँ जो भी हमारी हमने कोशिश की कि हाँ प्रशासन से कुछ सहयोग मिले या किसी भी तरीके से बुलडोजर मंगवाने में कोशिश थी,
1: पानी निकालने के लिए हमें
0: हाँ
1: पंप चाहिए थे,
0: पंप चाहिए थे, तो ये सब इंतजाम हमने कोशिश किए। बाकी टेक्निकल टीम इसमें लगी रही कि किस तरह प्रसारण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके।
1: जी
0: इस समय भी हम जो स्टूडियो में बैठे हुए हैं तो करीब करीब 2 फुट पानी लगने के निशान यहाँ पड़े हुए हैं,
1: दिखाई दे रहे हैं दीवारों
0: दिखाई
1: पे।
0: दीवारों पे दिखाई दे रहे हैं। तो और आगे क्या लिखते हैं?
1: आगे लिखते हैं कि केंद्र के सभी प्रोग्राम इस समय बहुत अच्छे चल रहे हैं।
0: क्या बात।
1: 2 अक्टूबर को फिल्म माई फ्राइडे में बार कोड से संबंधित साइबर क्राइम के बारे में जानकारी अच्छी थी।
0: क्या बात है।
1: 4 अक्टूबर को अंकुर में धरती के अनोखे जीवों और भारत के ऐतिहासिक स्थलों के बारे में जानकारी ज्ञानवर्धक लगी। रोचना जी द्वारा आपकी पसंद की प्रस्तुति अच्छी लगी। 5 अक्टूबर को देवेंद्र रावत जी ने आपकी पसंद अच्छा पेश किया। 6 अक्टूबर को इन्होंने झमका गिरारे में नीतू जी द्वारा IVRI के वन्य प्राणी विभाग से अन्य वन्य प्राणियों के विषय में बहुत अच्छी जानकारी दिलवाई।
0: वो सप्ताह चल रहा है
1: जी। आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में शीशपाल जी द्वारा विषय जानवरों को जू में रखना कितना सही, इसको लेकर प्रस्तुति अच्छी थी। 7 अक्टूबर को इन्होंने ग्राम जगत में धूम्रपान को लेकर जो चर्चा सुनी अच्छी लगी इनको। यंग बरेली में संजय जी द्वारा जिम्नास्ट कोच लेखा रानी जी से बातचीत अच्छी थी। 8 अक्टूबर को आपकी पसंद में नीतू जी द्वारा नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि देते हुए जो प्रस्तुति दी वास्तव में बहुत अच्छी थी। झुमका गिरारे में उस दिन का टॉपिक बदलकर नाना पाटेकर जी पर श्रद्धांजलि स्वरूप जो किया गया वो प्रोग्राम काबिले तारीफ था।
0: क्या बात है।
1: और नीतू जी की जो प्रेजेंटेशन है वो अंदाज बहुत खास और अच्छा है। और आपकी बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम में परवेश जी द्वारा नाना पाटेकर जी को श्रद्धांजलि स्वरूप प्रोग्राम अच्छा था। उनका कौन सा किरदार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, ये विषय अच्छा रहा। शानदार प्रस्तुतियों के लिए आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।
1: विनेश कुमार श्रीवास्तव जी, निकट बैंक सेंटर, चनेटी बरेली, कैंट से।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका लिखने के लिए, और हमारे कार्यक्रम अच्छे लग रहे हैं। और जैसा कि बात है, हम लोग जो महान अभिनेता वेटरन एक्टर नाना पाटेकर जी का जो निधन हुआ उस दिन हम लोगों ने 3 प्रोग्राम किए। बहुत छोटी सी तुच्छ श्रद्धांजलि थी हमारी ओर से, क्योंकि उनका अभिनेता के रूप में जो करियर तो है, उनकी आप बातें सुनेंगे, उनका पूरा व्यक्तित्व किस तरह सादगी से भरा हुआ है, और उनकी जो बातें हैं और जिंदगी के प्रति जो अप्रोच था
1: जी,
0: वो बहुत कुछ सिखाता है। और मैं कहूंगा कि लाइमलाइट से दूर रहे वो, इसलिए बहुत सारी चीजें सब तक पहुंच नहीं पाई
1: जी।
0: तो मुझे लगता है सबको पहुंचाना चाहिए, ऐसे तमाम लोगों जो भी हमारे बीच हैं या थे और वो लाइमलाइट से दूर रहे, उनकी बातें सब तक पहुंचाना चाहिए हमें
1: जी।
0: और जो अच्छी लगे उन्हें फॉलो भी करना चाहिए। तो और आपको हमारे प्रोग्राम अच्छे लग रहे हैं, हमारा तो कर्तव्य है वैसे लोक सेवा प्रसारक के रूप में कि जो भी अच्छी बातें हैं आप तक पहुंचाई जाए, तो उसी का हमने कर्तव्य का निर्वहन किया है। तो आपको अच्छी लगी तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
1: अब खुर्जा चलते हैं।
0: अरे वाह,
1: हाँ, चलिए। ये हर बार जब शब्द बोलते हैं तो एकदम आप तैयार हो जाते हैं चलने के लिए। चलिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो याद
0: कुछ
1: है,
0: तो कुछ तो है।
1: कुछ सोचा भी है।
0: हाँ,
1: कभी गए?
0: नहीं, जा तो नहीं पाए।
1: क्यों?
0: क्योंकि दरअसल मुझे मैदानी इलाकों से ज्यादा पहाड़ पसंद है।
1: ओहो, पहाड़ों की ठंडी ठंडी हवाएं, वादियां,
0: वादियां,
1: गहराइयां, ऊंचाइयां।
0: हाँ, हाँ, और वहाँ जाके अभी जैसे हाल ही में हम एक जगह गए थे पांडव खोली। तो ये द्वारहाट से कुछ दूरी पे कुक्कू झीना करके जगह है, वहाँ से ट्रेकिंग करके जाना पड़ता है। तो पांडव खोली वो जगह है जहाँ पे कहा जाता है पांडव अज्ञातवास के दौरान वहाँ पे रहे थे। तो वहाँ पे काफी ऊंचाई पे है, बहुत शांत जगह है और जंगलों से होके गुजरना होता है। तो ऐसे कुछ यात्राएं हम कोशिश करते हैं कि कर लें, तो मुझे वही पसंद है। और ऐसी जगहों जाके फिर लगता है कि बस यहीं रह जाए,
1: ये भी बात है,
0: वहाँ से आने का मन ही नहीं करता है।
1: चलिए, तो अगर कभी दिल्ली जाना हुआ,
0: हाँ,
1: तो खुर्जा होके चलेंगे।
0: हाँ, दिल्ली जाना हुआ तो
1: है ना,
0: जरूर चलेंगे।
1: और वो जो चीज है जिसके बारे में अभी जिक्र नहीं करेंगे, फिर करेंगे कभी। तिलकराज अरोड़ा जी हमें बताते हैं कि सप्रेम नमस्ते कहते हैं पहले तो।
0: नमस्ते।
1: 2 अक्टूबर का फिल्मी फ्राइडे इनको बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में लाइव जो प्रश्न का इंतजार करते रह गए, तो पिछले हफ्ते पूछा नहीं गया था।
0: अच्छा अच्छा,
1: हाँ। अच्छा। और 3 अक्टूबर का इनको आपकी बात का विषय, एक ऐसी सीख जिसने आपका जीवन आसान किया, बड़े ही महत्वपूर्ण विषय पर देवेंद्र जी ने शानदार कार्यक्रम पेश किया। कार्यक्रम में इसी विषय से संबंधित श्रोता साथियों के कमेंट भी अच्छे थे और बेहतरीन अंदाज के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 4 अक्टूबर का इनको अंकुर कार्यक्रम नाजमा दीदी और रोशना मिश्रा के साथ इन्होंने सुना, पसंद आया। और इसी दिन का कार्यक्रम इन्होंने श्रोता मंच में संजय कुमार जी ने श्रोता परस राम साहू जी से जो बातचीत की वो प्रशंसा योग्य थी। 7 अक्टूबर को इन्होंने आपकी बात का विषय सुना, क्या आपको

0: पहले कभी पूर्वाभास हुआ है और जो कुछ देर में सच हो गया हो, बहुत सुंदर था। इस विषय पर जो देवेंद्र जी ने बातचीत की श्रोता साथियों से वो बेहद पसंद आई, कमेंट भी शानदार अंदाज के साथ शामिल किए गए। हरीश मौर्य, मुनव्वर जहां, नीतू त्रिपाठी, शीशपाल जी, सभी की सुंदर प्रस्तुति के साथ कार्यक्रम सुने, पसंद भी आए और हम आपका दिल से शुक्रिया प्रकट करते हैं।
1: आपका भी हम शुक्रिया प्रकट करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये शुक्रिया बार बार हमें देने का मौका मिले और थोड़ा ज्यादा मीठे तरीके से मौका मिले।
0: अच्छा, मतलब धीरे धीरे उधर ही जा रहे हैं। आगे बढ़े।
1: जी जी, जरूर।
0: अनोखे लाल मौर्य जी हैं कटरा चांद का पुराना शहर बरेली से।
1: क्या लिखते हैं?
0: आपका पत्र मिला, पेश करने वालों को प्यार भरा नमस्कार।
1: आपको भी बहुत बहुत गुड़ भरा नमस्कार।
0: मित्रेश जी, इनका जो ईमेल है ना, इस ईमेल को अगर आप अगर एकदम पढ़ें तो जो लिखा है वो मिस्टेक्स हैं, बहुत सारी
1: मिस्टेक्स है ना। कोई बात नहीं, मेल कर रहे हैं, यही ज्यादा है।
0: कोशिश करेंगे।
1: पोस्ट कार्ड पे लिखते थे
0: जी जी,
1: और अब मेल करने लगे हैं, तो यही बहुत अच्छी बात है। जमाने के साथ आगे बढ़ रहे हैं
0: जी,
1: ये कम है।
0: इन्होंने शुक्रवार को सुबह फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम सुना, इनको बहुत अच्छा लगा।
1: क्या बात,
0: कार्यक्रम बहुत पसंद लगा और बातचीत बहुत अच्छी थी। इस कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए जाते हैं, तो दिन में चांद दिखाई नहीं देता वैसे। इनको चार चांद खैर दिखाई दिए,
1: सुबह सुबह चार चार चांद।
0: हाँ,
1: गए।
0: वही दो,
1: बहुत अच्छी बात है।
0: अच्छा, लिखते हैं कि हम इसी दिन शाम को 5:30 पे लकी 3 कार्यक्रम इन्होंने सुना देवेंद्र भाई के साथ। जो गाने सुनवाए गए बहुत अच्छे थे, कार्यक्रम सुनने में बहुत अच्छा लगा। सुबह रविवार को 8:15 पर अंकुर कार्यक्रम इन्होंने सुना नाजमा दीदी के साथ। बच्चों के लिए जो जानकारियां थी अच्छी थी, बाल गीत भी सुनवाए गए, ये भी बहुत अच्छे थे। और इस कार्यक्रम की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसी दिन शाम 5:30 पर इन्होंने मन भवन सुना मुनव्वर जहां के साथ, और इसमें शब्दावलियों पर जो गाने सुनवाए गए थे वो भी अच्छे लगे। कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया गया। सोमवार को सुबह 10 इन्होंने आपकी फरमाइश कार्यक्रम सुना, और इसमें श्रोताओं के कमेंट पर जो गाने सुनवाए गए थे बड़े ही प्यारे गाने थे। और इसी दिन दोपहर 1 इन्होंने अनुरोध गीत कार्यक्रम सुना। पत्रों को बहुत शामिल किया, गाने भी एक से बढ़कर एक थे। और वैसे आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम अच्छे चल रहे हैं। धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद आपका भी अनोखे लाल मौर्य जी। इसी तरह आप बने रहिए, बहुत पुराने श्रोता हैं आप
0: जी।
1: सारे कार्यक्रम आपको अच्छे लग रहे हैं, अच्छी बात है। और कुछ अनोखी बात हो तो बताइएगा।
0: बिल्कुल, अगली बार इंतजार रहेगा। है ना। एडवोकेट वारिस अली खान साहब हैं संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से।
1: क्या लिखते हैं?
0: जब जीवन में कुछ नहीं होता तो इंसान के धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ मिल जाता है तब उसके व्यवहार की परीक्षा होती है।
1: क्या बात है।
0: 24 सितंबर का आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में शिप्रा मिश्रा ने बहुत सुंदर ढंग से पेश किया।
1: हाँ।
0: विषय था, क्या आपके किसी परिजन के साथ डिजिटल फ्रॉड हुआ है? आप इसके प्रति कितने सजग हैं? 25 सितंबर का इनको आपकी पसंद अच्छा लगा, और 25 का ही आपकी बात आकाशवाणी के साथ लकी 3 अनुरोध गीत संजय जी ने जबरदस्त पेश किया। शो पेश करने का अंदाज बड़ा ही लाजवाब और शानदार रहता है उनका।
1: क्या बात।
0: कहते हैं कि 26 सितंबर को आपकी पसंद मुझे बहुत पसंद आया, और 29 को आपकी पसंद अमृता जी ने पेश किया, 30 सितंबर का आपकी पसंद हरीश जी ने भी अच्छा पेश किया, 1 अक्टूबर को नीतू त्रिपाठी जी प्रेजेंट आपकी पसंद भी अच्छा था, और इसी दिन का आपकी बात आकाशवाणी के साथ विषय आपने आज स्वच्छता का क्या कार्य किया है,
1: क्या, क्या,
0: ये भी अच्छा लगा। 2 अक्टूबर का इनको आपकी पसंद दिलकश अंदाज में भाग गया, और कहते हैं कि बुलंद आवाज में सभी कमेंट्स की बड़ी आसानी से शामिल किया जाता है। मित्रेश जी, आपसे गुजारिश की थी कि
1: अच्छा।
0: दोपहर 1 आने वाला अनुरोध गीत का वक्त आप दोपहर 2 या 3 से कर दें, जिससे मुझे सुनने में कोई असुविधा ना हो, लेकिन आपने इस बात पे गौर नहीं किया। और आप भी शायद लखनऊ के रहने वाले हैं, ये जानकर मुझे खुशी हुई।
1: लखनऊ का तो नहीं
0: जी,
1: दरअसल मैं रहने वाला मूल निवासी तो बलिया जिले का हूँ।
0: अच्छा अच्छा
1: जी। हाँ, बलिया में दसड़ा तहसील पड़ती है
0: जी,
1: वहाँ एक छोटा सा गांव है लोहटा, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे, कई सारे गांव तो अपने नाम से मशहूर हैं
0: जी,
1: वो उसे कोई नहीं जानता
0: जी।
1: तो वो छोटा गांव मेरा पैतृक निवास है, वहाँ से फिर बलिया जिले में भी मकान है, वो भी पैतृक निवास है, भृगु आश्रम
0: जी।
1: बलिया के लोग शायद आप लोग जानते होंगे भृगु बाबा
0: जी। बिल्कुल।
1: हाँ, ददरी का मेला वहीं लगता है, उसमें फिर वहीं के हम लोग रहने वाले हैं। उसके बाद जब आकाशवाणी में मेरा चयन हो गया तो मेरी पहली तैनाती जो है वही थी लखनऊ,
0: लखनऊ में।
1: तो लखनऊ से इस तरह से जुड़ाव है, वहाँ से फिर मेरा ट्रांसफर हो गया 2022 में अगस्त में, तो 1 सितंबर 2022 को यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था
0: जी।
1: तो ये पूरी कहानी है लखनऊ से जुड़ाव की।
0: चलिए, एक कहानी अभी बाकी है।
1: हाँ, और
0: एक कहानी अच्छा। ये खुश होने वाली है।
1: अच्छा अच्छा,
0: अपना चेहरा थोड़ा सा इधर। हाँ, क्या बात है।
1: अच्छा अच्छा,
0: ये इन्होंने गलत नहीं लिखा है।
1: क्या लिखा?
0: 100% बिल्कुल खालिस और बिल्कुल सही बात।
1: क्या लिखा है?
0: आप पर दाढ़ी बहुत अच्छी जमती।

0: इसे आप सेट करा लें, यू लुक वेरी स्मार्ट।
1: बाप रे, दाढ़ी, सही बात है। तो इसके पीछे मैं रीजन बता दूं कि पहले मैं दाढ़ी नहीं रखता था, क्लीन शेव रहता था मैं। और जब शादी हो गई तो मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि दाढ़ी रखिए आप,
0: अच्छा
1: तो उन्हीं की सलाह पे हम फिर दाढ़ी रखना शुरू कर दिए।
0: इसीलिए जम रही है।
1: और हाँ, इसीलिए हो सकता है। और उसमें बहुत ग्रे शेड आ चुके हैं, जाहिर सी बात है, हमारी उम्र की क्या, अब हमारे कम उम्र के लोगों के भी
0: बिल्कुल
1: बाल सफेद हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई है। तो उसमें क्या होता है, कई बार सफेद ही छोड़ देते हैं। मैं थोड़ा सा लापरवाह भी हूँ इन सब चीजों में, अपने प्रति थोड़ा सा लापरवाह हूँ, तो उसमें छूट जाती है और समय नहीं मिल पाता। इस बीच जो प्रसारण वगैरह बाधित हो गया था, उस दौरान भी एकदम समय नहीं मिल पाया, है ना, तो दाढ़ी बढ़ जाती है कई बार और सफेद भी दिखती है। तो फिर भी कोशिश करता हूँ कि हाँ, जब क्योंकि फोटो वोटो खींचती है, वीडियो बनते हैं,
0: जी,
1: तो उसमें दिखता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा लुक आए और सामने वालों को, देखने वालों को भी अच्छा महसूस हो कि हाँ भाई, एक संजीदा व्यक्ति हमारे लिए कुछ प्रस्तुत कर रहा है
0: जी,
1: और आपको अच्छा लग रहा है, तो ये तो अच्छी बात है।
0: तो ये
1: और
0: रिमार्क तो अच्छा रहा,
1: हाँ,
0: है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जहां तक आपने एक बात कही है पहले कि 1 बजे जो
0: हाँ,
1: अनुरोध गीत
0: जी जी
1: आपको,
0: बिल्कुल।
1: तो उसमें यह है कि हमारा गजलों का जो प्रोग्राम है 2 बजे, रसरंग, तो गजलों का और ये लोकगीत वगैरह का, लोकगीत फिर दोपहर में भी चाहिए होते हैं, इसलिए वो प्रोग्राम रखा गया है। और दूसरे 2:30 बजे से 3 बजे विविध भारती हम लोग रिले करते हैं, उस समय जाता है सदाबहार गीत,
0: जी
1: सदाबहार नगमे। तो दरअसल सुबह जाता था हमारे स्टेशन से 7:30 बजे या शायद बाद में,
0: 7:31 से प्रोग्राम जाता था पुराने
1: पुराने
0: फिल्मी
1: फिल्मी
0: गीतों
1: गीतों का,
0: का। जी
1: तो वो बंद करना पड़ा। लेकिन बंद करने पे ये हुआ कि हमारे स्टेशन सुनने वाले लोगों की वो इच्छा कैसे पूरी की जाए,
0: जी
1: तो उसी लिए 2:30 बजे से 3 बजे का विविध भारती का सदाबहार नगमे,
0: जी
1: उससे कवर करने की कोशिश की है हमने।
0: जी
1: तो और 3 बजे से जो 4 बजे का प्रोग्राम विविध भारती से जाता है,
0: जी
1: वो है सखी सहेली, तो वो प्रोग्राम भी बहुत ही अच्छा जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, हमने ये 1 बजे से अनुरोध गीत किया है, और कोई बात नहीं है। और आपकी जो आपके बात आकाशवाणी के साथ प्रोग्राम होता है,
0: जी
1: उसकी रिकॉर्डिंग हम 2 से 3 के बीच करते हैं, वो कभी 2:30 बजे से हो जाए
0: जी
1: या कभी 2 बजे से हो जाए, वो एडिटिंग करनी पड़ती है,
0: जी बिल्कुल।
1: उसके लिए टाइम के हिसाब से हम लोग थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं। तो ऐसे समय में अगर 2 बजे हम कर दें ये आपका अनुरोध गीत, तो हमारे साथी जो है वो बिजी हो जाएंगे,
0: बिल्कुल
1: और 4 बजे से प्रोग्राम पेश कर, मतलब जाना होता है ऑन एयर,
0: जी
1: तो ऐसे में एडिटिंग का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बहुत सारी ये दुश्वारियां हैं जिसकी वजह से ये टाइम चेंज करना बड़ा मुश्किल सा है।
0: जी
1: और फिर भी अगर बहुत सारे श्रोता कहेंगे कि हाँ ये टाइम चेंज करो, तो बिल्कुल, हम तो आपके गुलाम हैं।
0: जी
1: बंदा हाजिर है ना, ये समझ लीजिए। तो 1 बजे, और ये भी है, 1 बजे का टाइम इसलिए रखा गया है कि दोपहर का ये समय होता है, लंच का समय आने वाला होता है, या कुछ लोग लंच कर भी रहे होते हैं, तो खाना खाते खाते अपनी फरमाइशी गीत सुनना बड़ा मधुर लगता है। कई लोग बता भी रहे थे हमें
0: जी
1: कि बड़ा अच्छा लगता है कि हम खाना खाते हुए रेडियो ऑन कर लेते हैं, बहुत मजा आता है। और 2 बजे जो रसरंग होता है, गजलें होती हैं स्लो, तो एक तरह से हम लोग इधर 1:30 बजे खाना खाया, उसके बाद एक छोटी सी नैप, कुछ कुछ लोग नैप लेते हैं,
0: झपकी
1: झपकी लेते
0: जी
1: हैं, तो वो 2 बजे का मधुर गाना, गजल, रसरंग,
0: जी
1: रस के रंग में डूब के 20 मिनट भी अगर आदमी आराम कर ले, तो फिर आगे आधा दिन और एक्टिव हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये हमारी कोशिश है, इसके पीछे ये सोच है। कैसा लगा बताइएगा
0: मिथिलेश जी। अब चलते हैं वारसी क्लब, सिंधौली, मीरगंज, बरेली।
1: हाँ,
0: जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख कुछ कह रहे हैं।
1: बिल्कुल, क्या कहते हैं। और पहले तो ये अपना क्लब के मेंबर्स बढ़ाएं,
0: हाँ,
1: तीन ही तक सीमित रहेंगे क्या,
0: देखते हैं
1: हाँ
0: अगले ईमेल में पता चलेगा।
1: हाँ, पहले भी हमने कहा था कि
0: जी
1: ये 3 नहीं 30 होने चाहिए।
0: 300 होने चाहिए।
1: हाँ बिल्कुल, मतलब 3 से 30 तो हो,
0: जी
1: फिर 300 होंगे, तो क्लब की संख्या बढ़ाई है पहले तो।
0: बिल्कुल। लिखते हैं कि कार्यक्रम आपका पत्र मिला के प्रस्तुत करता आदरणीय श्री मिथिलेश श्रीवास्तव जी और साथी को हमारी ओर से प्यार भरा आदाब।
1: आदाब आपको भी।
0: आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले तमाम कार्यक्रम हमें हमेशा की तरह रोचक, ज्ञानवर्धक, मनोरंजन से भरपूर लगते हैं।
1: क्या बात।
0: 26 सितम्बर को पहली सभा के कार्यक्रम संजय जी ने बेहतरीन जानकारियों और मधुर गीतों के साथ पेश किए। 29 सितम्बर को पहली सभा के कार्यक्रम अमृता जी ने पेश किए। आपकी पसंद कार्यक्रम इनको बहुत अच्छा लगा। 1 अक्टूबर का अनुरोध गीत नीतू जी ने बेहतरीन अंदाज में पेश किया, हमें भी कार्यक्रम में शामिल किया, इसके लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: इसी दिन आकाशवाणी पर जो कार्यक्रम रहा आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, देवेंद्र जी ने स्वच्छता के विषय में श्रोताओं से बातचीत की, आम जनता को जागरूक किया, ये कार्यक्रम भी बेहद पसंद आया।
1: क्या बात।
0: अब बात की जाए फिल्मी फ्राइडे के प्रेजेंटेशन की, तो कोई जवाब नहीं, फिल्मी फ्राइडे तो सुपर शो है ही। इसके अलावा आपकी पसंद कार्यक्रम में बेशुमार श्रोताओं के कमेंट शामिल किए जाते हैं।

0: श्रृंखला में कहते हैं कि शामिल है मोहम्मद परवेज जी, रोचना मिश्रा जी, मुनव्वर जहां, ब्रजेश तिवारी जी, शीश पाल जी और आपकी पूरी टीम। आपकी मेहनत, लगन और खूबसूरत प्रस्तुति के जरिए श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का काम बखूबी अंजाम दे रही है। हाल ही में आकाशवाणी परिसर में जल भराव के कारण जो प्रसारण में व्यवधान उत्पन्न हुआ उसका हमें बेहद अफसोस रहा, मगर ऐसे कठिन समय में भी आकाशवाणी बरेली की पूरी टीम ने जिस मेहनत, सूझबूझ और लगन के साथ परिस्थितियों का सामना किया, श्रोताओं तक प्रसारण पहुंचाने की मुमकिन कोशिश की, वो काबिले तारीफ है।
1: बिल्कुल, हम चूंकि लोक सेवा प्रसारक हैं, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं, बस कुछ ज्यादा नहीं कर रहे हैं
0: जी।
1: और आप सभी श्रोताओं की दुआएं हैं, इतना प्यार है कि हम लोग अपना काम आसानी से कर सके, फिर से प्रसारण बहाल कर सके। और उसमें खासतौर पे अभियांत्रिकी विभाग के लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाई, क्योंकि उसमें हुआ क्या था कि जैसे इस समय हम लोग स्टूडियो में बैठे हैं, ये ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है उधर कंप्यूटर पे, तो ये इसके पीछे केबल्स गई होती हैं, ऑडियो केबल
0: ट्रेंच के माध्यम से
1: जो ट्रेंच है जमीन के नीचे, मतलब छोटी छोटी नालियों की तरह बनाया गया है और उसमें तार हैं गए हुए, तो वो जो जगह है ट्रेंच है उसमें पानी भर गया, बाहर पानी भरने की वजह से अंदर पानी आ गया, तो इसकी वजह से अब उसमें अगर उस इलेक्ट्रिसिटी भी जाती उसके भी तार जाते हैं तो खतरनाक हो गया था, इसलिए बंद करना पड़ा था। और जब जल स्तर कम हुआ तो शुरू कर दिया गया,
0: इसके लिए भी बहुत प्रयास किया गया, सब साफ सफाई, वो जो पानी था उसकी गंदगी और ये
1: निकाली गई बिल्कुल। और पहले तो ऊपर से केबल लगा के प्रसारण शुरू किया गया किसी तरह, और उसकी एक मुख्य वजह है जो आकाशवाणी के बाहर जो नाला है उस नाले से, एक तो नाला गंदा हो जाता है उधर कांदरपुर और उधर चनेटी से भी आता है, और उसमें जल निकासी का कोई खास इंतजाम नहीं है, इस वजह से भी इससे प्रशासन को अवगत भी कराया गया है, लेकिन अब देखते हैं, अभी तो कोई खास कार्रवाई हो नहीं पाई
0: जी। एक शायरी भी है इनकी, आवाज में अपनापन हो तो फासले मिट जाते हैं, आकाशवाणी के नाम दिलों में उतर जाते हैं, सफर चाहे कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, सच्चे प्रसारण के रिश्ते हमेशा निभाए जाते हैं।
1: क्या बात है, बहुत खूब।
0: आगे बढ़े
1: जी।
0: अब चलते हैं मौला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर की तरफ। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, राजी खान, बिट्टू भैया, हिना कौशल लिखते हैं।
1: क्या लिखते हैं?
0: मुझे रिश्तों की लंबी कतार से मतलब नहीं,
1: क्या बात,
0: कोई दिल से मेरा हो तो एक शख्स ही काफी है।
1: बहुत खूब, बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि वाकई अगर हमारे बहुत ज्यादा दोस्त होने जरूरी नहीं है, एक ही दोस्त काफी है अगर वो एकदम दिल से जुड़ा हो।
0: बिल्कुल, आपको हमारा प्यार भरा सलाम।
1: सलाम, आदाब, बहुत अच्छे हैं, आप कैसे हैं बताइएगा।
0: रेगुलर लिसनर हैं आपके और सभी प्रोग्राम सुनते हैं, अच्छे भी लगते हैं। फिल्मी फ्राइडे आपका पत्र मिला, हेलो बरेली, मन भावन अनुरोध गीत युववाणी झुमका गिरारे, 1 अक्टूबर का अनुरोध गीत जो देवेंद्र जी ने पेश किया था, इनको बेहद अच्छा लगा।
1: क्या बात,
0: और कहते हैं कि नीतू त्रिपाठी जी ने पेश किया ये कार्यक्रम, इनको अच्छा लगा। 30 सितम्बर का भी इनको प्रेजेंटेशन अच्छा रहा, अनुरोध गीत मुनव्वर जी ने पेश किया था वो भी अच्छा लगा, 29 सितंबर का आपकी पसंद अमृतर जी ने पेश किया ये भी अच्छा लगा, 28 सितंबर का इनको अनुरोध गीत जो शीशपाल जी ने पेश किया था बेहद पसंद लगा। आकाशवाणी बरेली का प्रसारण शुरू करने के लिए पूरी टीम को धन्यवाद, मेहनत से प्रसारण फिर से शुरू कराया गया है आपके द्वारा, और आगे कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, तो इसके लिए भी अभी से प्रयास कीजिएगा।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी, आप सबकी दुआओं के लिए, और पूरी तरह प्रयासरत हैं कि कुछ न कुछ ऐसे पुख्ता इंतजाम हो जाए कि भविष्य में ऐसा ना हो
0: जी।
1: इसमें हमारे कुछ दिन पहले अभी क्लस्टर प्रमुख साहब भी आए थे
0: जी,
1: वो सब देख के गए हैं
0: जी।
1: देखते हैं हमारा जो विभाग है आगे क्या करता है।
0: मिथिलेश जी, अब चलते हैं हम अपने व्हाट्सएप नंबर, वही नंबर है जो पुनः नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये आपके काम भी आ सकता है नंबर, है ना, 9457395859। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे दोस्तों ने भी कुछ अपने संदेश में भेजे हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम के लिए।
1: हाँ, क्या लिखते हैं?
0: ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद मुनाजिर और अबरार हुसैन अंसारी कहते हैं, पेश करने वाले आप दोनों साथियों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब।
1: आदाब।
0: सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, सबसे अच्छा कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ लगता है, इस कार्यक्रम में जो विषय दिया जाता है उससे जुड़े श्रोताओं के विचार बड़े लाभदायक होते हैं।
1: क्या बात,
0: गीत भी अच्छे लगते हैं। इन दिनों हेलो किसान कार्यक्रम प्रसारित नहीं हो रहा है, बताइए।
1: हेलो किसान इन दिनों की बात नहीं है, जब वो प्रसारण बंद था तो चूंकि सारी केबल्स खराब थी, मतलब काम नहीं कर रही थी, पानी घुस गया था, तो टेलीफोन लाइन भी तो खराब थी, तो उस वजह से हेलो किसान डिस्टर्ब हुआ था। वगैरह, और अब तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, फोनिंग प्रोग्राम सारे जा रहे हैं
0: जी। खरसावा झारखंड से शुक्र नायक जी कहते हैं कि आपको हमारी ओर से नमस्कार, 4 सितंबर को आपके पसंद कार्यक्रम में सिर्फ एक गीत बजा नहीं कि हमारे मोबाइल पर आपके कार्यक्रम सुनाई नहीं दिए। और ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ही ऐसा हुआ है या औरों के साथ भी ऐसा हुआ?
1: ये तो दूसरे श्रोताओं से पूछिएगा, बाकी हमारे यहाँ से तो प्रसारण जारी था।

0: ग्राम पोस्ट गोटा खंडुआ से रामबाबू मिश्रा, कृष्णा देवी और इनका पूरा परिवार हमसे कार्यक्रम के बारे में बताते हैं। आपके कार्यक्रम को प्रस्तुत करने वाले भाई मिथिलेश योगेंद्र जी और साथी को हमारी ओर से एक्सप्रेस भाई को नमस्कार।
1: नमस्कार
0: प्रिय महोदय आपके
1: एक्सप्रेस भाई नमस्कार।
0: होता है तो इस एक्सप्रेस के साथ ही उसी स्पीड से चल रहे हैं क्योंकि वक्त जो है ना वो धीरे धीरे हमसे कह रहा है।
1: ब्लिंक करके
0: आपके
1: वक्त के पीछे जो बैठे हुए हैं
0: वो भी इशारा कर रहे हैं कि अब हटो और भी प्रोग्राम रिकॉर्ड होने हैं।
1: सोनी सागर जी हैं
0: जी
1: और देवेंद्र रावत
0: जी भी
1: हैं, अशरफ भी हैं
0: जी।
1: तो करते हैं फटाफट
0: जी। कहते हैं कि 2 अक्टूबर को जो कार्यक्रम पेश किया गया था आपकी पसंद बहुत ही सुंदर और मनमोहक रहा। एक वैसे प्रोग्राम तो सभी एकदम मस्त चल रहे हैं तो मन में आया कि 2 अक्टूबर को एक देशभक्ति गीत हमने छांटा तो आपको भेज रहे हैं, बाकी तो और कुछ लिखा नहीं।
1: कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और भी आगे लिखिएगा, तफसील से लिखिएगा।
0: रणजीत सिंह जी हैं गोरखपुर से। 1 अक्टूबर को आपकी बात आकाशवाणी के साथ पर चरित्र की साफ सफाई विषय अच्छा था। भजन संध्या इसी दिन शाम 5:05 पर सुना, ये भी अच्छा लगा। 2 अक्टूबर को इन्होंने शाम 7 बजे कृषि पाठशाला में विषय रहा साइलेज निर्माण, किसानों के लिए एक व्यावसायिक अवसर, डॉक्टर सुमन सेन और मिथिलेश जी की बातचीत हमने सुनी।
1: जी जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा लग रहा है तो
0: जी
1: वो प्रोग्राम, बल्कि जो हमारा ही प्रोग्राम है IVRI बरेली से प्रायोजित भी है
0: जी।
1: तमाम वहाँ से वैज्ञानिक आते हैं और वो पाठशाला बिल्कुल पाठशाला की तरह ही है, जैसे स्कूल जाते हैं एक नया विषय सीखने को मिलता है वैसा ही है।
0: अच्छा ये पूछ रहे हैं एक बात कि अधिकतर आकाशवाणी केंद्रों से 4 अक्टूबर 2026 से कार्यक्रमों में परिवर्तन किए गए हैं, और क्या आकाशवाणी बरेली में भी कोई परिवर्तन हुआ है या नहीं किया है?
1: नहीं नहीं अभी नहीं किया जा रहा है क्योंकि पहले से ही सारे कार्यक्रम काफी अच्छे चल रहे हैं, आप लोगों की तारीफ भी मिल रही है और कुछ सभी श्रोताओं की कुछ ऐसी तब्दीली के लिए कुछ सुझाव वैसे कुछ आए नहीं है
0: जी।
1: तो सब कुछ अच्छा चल रहा है तो आगे भी चलता रहे
0: बिल्कुल।
1: और बाकी हो सकता है हम अगले अप्रैल से कुछ बदलाव करेंगे, वो भी प्रोग्राम्स नए प्रोग्राम लॉन्च करने के बजाय जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनको ही और बेहतर करने की कोशिश करेंगे, जमाने के हिसाब से करेंगे और इम्प्रेसिव बनाएंगे
0: जी।
1: और श्रोताओं को और ज्यादा से ज्यादा जगह मिले ये कोशिश करेंगे।
0: तो मिथिलेश जी अब तो चलना पड़ेगा
1: जी,
0: क्योंकि अब तो कतई वो लोग खड़े हो गए हैं, कह रहे हैं कि सर
1: अब अगले प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग करनी है।
0: तो फिर ऐसा करते हैं ना, अपने श्रोताओं को कार्यक्रम में शामिल होने के तरीके बता देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पहला तरीका है ईमेल के माध्यम से आप आ सकते हैं, आपका पत्र mila.bareilly@gmail.com पर ईमेल कीजिए। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं जिसके नंबर को हमने कार्यक्रम में भी 2 बार हाईलाइट किया है, कार्यक्रम के शुरू में और अभी थोड़ी देर पहले
1: जी।
0: और फिर अभी फिर बता दे रहे हैं है ना, नंबर है 9457395859। और इसके अलावा कार्यक्रम में पत्र अगर आप भेजना चाहते हैं तो कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली पिनकोड 2430001 पर पत्र लिखिए। हम अपने सभी श्रोताओं के सुख की कामना करते हैं और आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र
1: और मिथिलेश को दीजिए अनुमति,
0: कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सप्रेम
1: नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपका पत्र मिला, प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की और प्रस्तुति में सहयोग दिया था गजेंद्र यादव ने। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं अब आप सुनेंगे सब रंग, और सब रंग में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पहले ये भजन जिसे गाया है लखवीर सिंह लखा ने।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: श्रोताओ लीजिए सबरंग में, अब सुनिए अनुराधा बॉर्डवाल और सुरेश वाडेकर की आवाज में ये भजन।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान, घर घर पर दस्तक देकर होगी सभी रोगों की रोकथाम।
2: उत्तर प्रदेश सरकार ने ठाना है, संक्रामक रोगों को फैलने से बचाना है।
1: ध्यान रहे, बुखार में देरी पड़ेगी भारी, इसलिए बुखार होने की स्थिति पर निकटतम सरकारी अस्पताल जाएं तथा उचित चिकित्सक की सुविधा पाएं।
2: 1 से 30 अप्रैल तक चलेगा ये अभियान। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 पर कॉल करें।
3: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
5: क्या हो गया ऐसा?
4: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
5: ये कमाल कैसे हो गया?
4: मैंने www.pgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोलकर दर्ज किया और देखो तुरंत एक्शन हुआ।
5: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
4: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
6: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और लीजिए, आप सुनिए रूप कुमार राठौर और सोनाली राठौर की आवाज में ये गजल।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं सब रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और लीजिए, आप सुनिए तरन्नुम नाज के स्वर में ये गजल।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सब रंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।
1: मेगाहर्ट्ज यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, airbareli@cbs.gmail.com।

पतझड़, सावन, बसंत, बहार, ये सब हैं वृक्षों के उपहार। यातायात नियमों का पालन कीजिए, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपने और अपने आगे के वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। धीरे चलें, सुरक्षित चलें और सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचें। स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दें। अपने और अपने आगे के वाहन से उचित दूरी बनाए रखें। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 12 बजने वाले हैं और अब आपको जोड़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रमों से, जिन्हें हम रिले करेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से।

नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बलरामपुर में शिक्षा की उड़ान पहल के अंतर्गत स्टडी टेबल और आशीर्वाद पत्र के वितरण के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की कोई बेटी बहन या महिला हो, उसकी सुरक्षा सरकार के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का

सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के अंदर मिशन शक्ति का अभियान इसी क्रम में संचालित हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी तय किया है कि जिस परिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना या मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिलेगा, उसकी राशि घर की मालकिन के नाम पर जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जयप्रकाश नारायण ने अपना पूरा जीवन स्वतंत्रता संग्राम में युवा शक्ति को संगठित करने, ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और स्वतंत्रता के बाद सर्वोदय के लिए काम करने को समर्पित कर दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण का जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्रीय हित के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत जी राम जी योजना के अंतर्गत प्रदेश में अधिक मानव दिवस सृजन के उद्देश्य से 12 अक्टूबर को प्रदेश भर में विशेष रोजगार सृजन दिवस आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कल लखनऊ से ग्राम्य विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों एवं प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक कर विशेष अभियान की तैयारियों और मानव दिवस सृजन की प्रगति की समीक्षा की। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। प्रदेश भर के देवी मंदिरों और भक्ति पीठों में भक्त सुबह से ही दर्शन पूजन कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रसिद्ध शक्तिपीठ विंध्याचल में शारदीय नवरात्र मेला प्रारंभ हो चुका है। मां विंध्यवासिनी मंदिर में अब तक 1 लाख से अधिक श्रद्धालु शीश नवाकर दर्शन पूजन कर चुके हैं। वाराणसी के दुर्गाकुंड सहित विभिन्न देवी मंदिरों और अयोध्या के बड़ी देवकाली, छोटी देवकाली, जालपा देवी और मां पाटेश्वरी देवी मंदिर पर भी दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। गोरखपुर जिले में मां तरकुलहा देवी मंदिर और महराजगंज जिले के आद्रवन स्थित लेहड़ा देवी मंदिर में भी ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए हैं। सीतापुर के पवित्र नैमिषारण्य धाम स्थित मां ललिता देवी मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ सुगम दर्शन के लिए कतारों में खड़ी नजर आई। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकेंगे 1 बजे। जुड़े रहिए FM रेनबो से।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल दुबग्गा लखनऊ।
1: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी।
2: थायराइड इम्बैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड दुबग्गा।
3: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो, सुरों का लखनवी एहसास।
0: डेसमंड टूटू का एक कोट है कि होप इज बीइंग एबल टू सी दैट देयर इज लाइट डिस्पाइट ऑल द डार्कनेस, यानी कि आशा वो रोशनी होती है जो कितना भी घुप अंधकार क्यों ना हो आपको रास्ता दिखाती है। जीवन में भी कभी कभी ऐसा ही कुछ माहौल बन जाता है, ऐसा मौका आ जाता है कि हमें समझ नहीं आता किधर जाएं, कौन सा रास्ता चुनें, क्या करें और क्या ना करें। ऐसे में आपके काम आते हैं आपके अपने दोस्त, जो कि ना सिर्फ आपको सही सलाह देते हैं बल्कि आपको हिम्मत बंधाकर मुसीबत से निकलने का रास्ता भी दिखाते हैं। नमस्कार दोस्तों, दोपहर के 12:06 हो रहे हैं, आप हैं 100.7 FM रेनबो पर, यानी कि एक ऐसे दोस्त के साथ जो हर

0: अदम आपका साथ निभाता है और आपको सही रास्ता भी दिखाता है। इसी दोस्ती को निभाते हुए हम हर हफ्ते लेकर आते हैं आपका अपना वीकली हेल्थ शो, हेल्थ एंड फिटनेस, जहां आपकी मुलाकात होती है मेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट से, ताकि आपको मिल सके सही जानकारी और सेहत से जुड़े सवालों के भरोसेमंद जवाब। मैं हूं ज्योति और आज हम खास तौर पर बात करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसके बारे में बात करना तो दूर, सोचने से भी हम कतराते हैं। मैं बात कर रही हूं कैंसर की। कैंसर यानी एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में ढेर सारे सवाल, आशंकाएं, डर, संदेह और ना जाने क्या क्या जन्म लेने लगता है। लेकिन क्या कैंसर का नाम सुनकर डर जाना ही हमारी प्रतिक्रिया होनी चाहिए, या फिर सही जानकारी, समय पर पहचान और विशेषज्ञ की सलाह के साथ आगे बढ़ना चाहिए? इन्हीं सवालों पर बात करने के लिए आज हमने खास तौर पर आपके लिए, जी हाँ, हमारे प्यारे श्रोताओं के लिए इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर आशुतोष मिश्रा को, जो कि हैं जाने माने कैंसर विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे श्रोताओं और हमारे चैनल की तरफ से।
1: धन्यवाद मैम, आपके माध्यम से श्रोताओं के प्रश्नों का मैं उत्तर दे पाऊंगा, आपके माध्यम से मैं सही जानकारी और सही सलाह जो आवश्यक लोग हैं उन तक पहुंच पाएगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, वो आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं बिल्कुल तैयार। तो आपके मन में कोई सवाल हो कैंसर से जुड़ा हुआ, आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। फोन नंबर हमारे वही पुराने 0522-223-8845 या फिर 0522-223-8852। इन दोनों में से कोई भी नंबर आप डायल कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं fmakashwanilakhnow@gmail.com पर। तो चलिए डॉक्टर साहब से समझते हैं कि कैंसर के सफर में सही सलाह और सही राह कैसे चुनी जा सकती है। डॉक्टर साहब, इससे पहले कि हम हमारे पहले कॉलर से बात करें, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कैंसर का नाम सुनना मतलब एक ऐसा स्टिग्मा है कि हमें लगता है पुराना हमारा कर्म है जो है कैंसर के नाम पर, इस विषय में आप क्या कहें?
1: जो होते हैं जैसे शुगर है,

0: को कैंसर के ठीक होने की संभावना 80% होती है। अगर वही
1: जी
0: कैंसर का पेशेंट स्टेज 3 और स्टेज 4 में आता है
1: जी
0: तो कैंसर ठीक होने की संभावना 80 से कम होकर 20% हो जाती है।
1: मतलब टाइमिंग बहुत मैटर करती है, सही समय पर डॉक्टर के पास पहुंचना बहुत जरूरी है।
0: जी मैम, अगर हम कैंसर को समय से डायग्नोस कर ले जाते हैं
1: जी
0: तो कैंसर के ठीक होने की संभावना काफी बढ़ जाती है। लेकिन दुर्भाग्यवश हम,
1: जी
0: या यूं कह लिया जाए कि सही जानकारी के अभाव में हम सही समय पर नहीं पहुंच पाते और हम तब पहुंचते हैं जब कैंसर स्टेज 3 या स्टेज 4
1: डॉक्टर
0: में।
1: की सलाह ले सकते हैं। इस विषय में भी हम डॉक्टर साहब आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बहुत छोटे से कॉमर्शियल ब्रेक के बाद।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड दुबग्गा।
1: सुधा रानी गुप्ता जी का ईमेल है, डॉक्टर साहब हमारे सामने ये पूछ रही हैं कि कैंसर कितना ला इलाज होता है, क्योंकि कैंसर का मतलब ही हम समझ लेते हैं कि अब इलाज में सिर्फ हमें पैसे ही खर्च करना है, कोई फायदा तो होना नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादातर केसेस ऐसे ही देखे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये तो सुधा रानी जी कह रही, आपका क्या कहना है एज अ स्पेशलिस्ट?
0: मेरा ये कहना है कि जो हमने वर्ड लाइलाज बोला है,
1: जी
0: लाइलाज का ये कतई मतलब नहीं है कि उसका इलाज नहीं है।
1: जी
0: लाइलाज का मतलब है उसका क्योर नहीं है,
1: जी
0: उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ओके
0: और कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि
1: है। तो डॉक्टर साहब, ये तो सुधा रानी जी कह रही, आपका क्या कहना है एज अ स्पेशलिस्ट?
0: मेरा ये कहना है कि जो हमने वर्ड लाइलाज बोला है,
1: जी
0: लाइलाज का ये कतई मतलब नहीं है कि उसका इलाज नहीं है।
1: जी
0: लाइलाज का मतलब है उसका क्योर नहीं है,
1: जी
0: उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: ओके
0: और कंट्रोल करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसा कि सुधा मैडम ने बात करी कि क्या बोलते कि ये हम सिर्फ पैसे खर्च कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब जो भी सुविधाएं होती हैं, जो भी इलाज होता है,
1: जी
0: जो भी दवाइयाँ होती हैं, जो भी टेस्ट होते हैं, उनके जो भी मूल्य हैं वो तो हमें देने ही हैं। और कैंसर लाइलाज का मतलब ये है कि कैंसर भी क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: तो अगर स्टेज 4 का कैंसर है, स्टेज 4 के कैंसर को हम कंट्रोल करते हैं, आपको अपने डॉक्टर से जहां पर आप परामर्श ले रहे हैं या आपके कोई संबंधी हैं उनका इलाज जहां पर भी चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से बोलिए कि स्टेज 4 कैंसर में क्या आपने कैंसर के जीन का टेस्ट कराया कि नहीं कराया।
1: ओके
0: जीन का टेस्ट मतलब कि NGS होता है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कैंसर के जीन की स्टडी करना।
1: जी
0: क्यों करना? कि क्या हम कोई ऐसा टारगेट ढूंढ सकते हैं जिसके अगेंस्ट कोई टारगेटेड थेरेपी है या नहीं है।
1: ओके
0: तो टारगेटेड थेरेपी के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा? जीन देखने पड़ेंगे। जीन कहाँ देखने पड़ेंगे? जो कैंसर की बायोप्सी हुई है उसमें देखने पड़ेंगे।
1: जी
0: तो लाइलाज का ये कतई मतलब नहीं है कि इलाज नहीं है, लाइलाज का मतलब ये है कि हम क्योर नहीं कर सकते, कंट्रोल कर सकते हैं।
1: तो सुधा जी, आप इतनी दुखी जो आपने मैसेज किया है, बस यही कहा जा सकता है कि डॉक्टर साहब, आप क्योंकि ये जाने माने ऑन्कोलॉजिस्ट हैं,

0: जाने माने विशेषज्ञ हैं और ऑफ कोर्स इस फील्ड में जो नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इससे ये अपडेटेड रहते हैं, तो बस इतना ही हम आपसे कह सकते हैं कि किसी अच्छे विशेषज्ञ से सलाह जरूर लीजिए। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि आशा ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, जीवन जीने की क्षमता को ये बढ़ाती है जब आप सही जगह जाते हैं, सही सलाह लेते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। डॉक्टर साहब, हमारे कॉलर से हम बात करते हैं। हेलो।
1: हेलो मैडम, गुड आफ्टरनून।
0: गुड आफ्टरनून,
1: संजय बोल रहे हैं लखनऊ से।
0: जी संजय जी।
1: डॉक्टर नमस्कार।
2: नमस्कार जी, बताइए।
1: डॉक्टर जी बताइए, जैसे ये प्रोस्टेट कैंसर जैसे जो होता है, जो मेल्स में कॉमन कैंसर है
2: जी,
1: और दूसरा ये इससे कॉज क्या है, मतलब क्यों हो जाता है प्रोस्टेट कैंसर आजकल थोड़ा यंग एज में भी हो रहा है, और दूसरा लोग कहते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर तो अगर थोड़ा सा कुछ आप डिस्टर्ब कर दिया ऐसा कोई एक पार्ट तो आप देखते कि कैंसर है कि नहीं, और तेज सर्वाइव होता है, क्या ये सच है या झूठ है?
2: देखिए, आपका पहला सवाल तो ये है कि प्रोस्टेट कैंसर के बारे में आपने बोला, ये है क्या?
1: जी सर।
2: तो जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे व्यक्ति में कुछ परिवर्तन आते हैं
1: जी,
2: वैसे ही प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है, समय जैसे जैसे बीतता है, जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट जो ग्लैंड होती है उसका आकार थोड़ा बढ़ता है
1: जी,
2: और 60 साल की उम्र के बाद प्रोस्टेट कैंसर ऐसा नहीं कि सब में होता है, होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो प्रश्न आपका रहा कि युवाओं में भी क्या बोलते कि ये प्रोस्टेट कैंसर देखा जा रहा है, युवाओं में प्रोस्टेट कैंसर जो देखा जा रहा है, हमें सबसे पहले उन परिवार की फैमिली हिस्ट्री के बारे में जानना आवश्यक रहता है कि कहीं आपके बाबा आपके पिताजी को भी कैंसर प्रोस्टेट का रह तो नहीं चुका है। अगर परिवार में प्रोस्टेट कैंसर रन कर रहा है, उन परिवारों में प्रोस्टेट कैंसर अगली पीढ़ी में जल्दी आने की संभावना रहती है, तो हमें कैसे बचा जाए? एक सामान्य पब्लिक के लिए 60 साल के बाद हमें साल में एक बार ब्लड का टेस्ट होता है जिसको PSA बोलते हैं, वो हमें देखा जाना चाहिए। और जिन परिवारों में प्रोस्टेट कैंसर फैमिली के साथ रन कर रहा है, उन परिवारों में जो अगर पिताजी को 50 साल की एज में प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो उससे 5 या 10 साल पहले से ही अगली पीढ़ी के लोगों को PSA का टेस्ट करा करके देखा जाना चाहिए, और टेस्ट की क्या रिपोर्ट आती है उसके आधार पर विशेषज्ञ की सलाह लेकर के आगे बढ़ना चाहिए।
1: डॉक्टर से ये हार्मोनल भी होता है?
2: प्रोस्टेट कैंसर जो है इसमें एक ट्रीटमेंट जो हमारा एंड्रोजन होता है, जो पौरुष हार्मोन होता है, पौरुष हार्मोन वैसे ही काम करता है जैसे को जैसे फसल बढ़ाने में खाद का काम होता ना, जैसे खाद होती, खाद क्या करती है, फसल को बढ़ाती है, वैसे ही एंड्रोजन हार्मोन प्रोस्टेट कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ाने में हेल्प करता है। इसीलिए आप देखते होंगे प्रोस्टेट कैंसर के मरीजों को सबसे पहले आर्कियेक्टमी, मतलब कि जो वृषण होते हैं, जो स्क्रोटम या सामान्य भाषा में गोलियां बोलते हैं, उनको काटने की सलाह दी जाती है।
0: संजय जी,
1: कैंसर
0: जी,
1: हेलो
0: जी, बताइए।
1: डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट कैंसर जैसे अगर कहते हैं कि इसको थोड़ा सा हमें छेड़ दिया था और तेज सर्वाइव होता है, या ये भी सही है?
2: ऐसा नहीं है, छेड़ने का प्रश्न आपका बायोप्सी से होगा।
1: जी जी जी।
2: बायोप्सी हमें दिशा देती है, हमें बताती है कैंसर है या नहीं है, अगर कैंसर है तो किस प्रकार का है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी आपके सवाल के लिए। तो डॉक्टर साहब, कई सारी बातें हमारे सामने आई। पहली बात तो ये जो बड़ी एक कॉमन सा मिथ है कि अगर कैंसर को छेड़ दिया तो वो बड़ी तेजी से बढ़ता है, ये काफी बार मैंने भी लोगों को डिस्कस करते हुए सुना है, तो आपने क्लैरिटी दी कि ऐसा नहीं होता है, इट्स अ मिथ, ये एक भ्रम है और हमें इस भ्रम को अपने मस्तिष्क से दूर करना है। दूसरी बात, आपने बार बार जेनेटिक्स की बात करी, तो डॉक्टर साहब जेनेटिक्स क्या बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? अगर किसी के परिवार में कैंसर की हिस्ट्री है तो क्या उसे होगा ही होगा?
2: ऐसा नहीं है कि उसको हो ही जाएगा
0: जी,
2: होने की संभावना बढ़ जाती है।
0: ऑलराइट,
2: हम कुछ कैंसर के नाम लेकर के उदाहरण के साथ आपको बताने का प्रयास करेंगे
0: जी।
2: महिलाओं में स्तन कैंसर
0: जी,
2: ओवरी कैंसर
0: जी,
2: पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर
0: जी,
2: और दोनों में ही कोलोन कैंसर और पेनक्रियास कैंसर।
0: ओके,
2: ये कुछ कॉमन कैंसर्स हैं जिनमें हमें जेनेटिक्स को जान लेना

0: आवश्यक होता है.
1: ओके
0: okay. एक फेमस एक्ट्रेस रही है एंजेलिना जोली.
1: ओके okay.
0: हमने सबने नाम सुना होगा.
1: जी जी.
0: उनके फैमिली में एक BRCA1/2 जीन रन कर रहा था. BRCA1/2 जीन अगर वो पैथोजेनिक है,
1: ओके
0: okay. मतलब कि अगर वो हार्मफुल है, अगर वो जीन कैंसर के रूप में बदल चुका है
1: जी,
0: तो हमें प्रोफाइलेक्टिक को सर्जरी करानी पड़ती है.
1: ऑलराइट.
0: एंजेलिना जोली ने क्या कराया
1: जी?
0: बायलैटरल मैस्टेक्टमी कराई. दोनों स्तन हटवा दिए अपने.
1: ओके okay.
0: और दोनों ओवरी हटवा दी.
1: अच्छा.
0: क्योंकि उन्होंने समय रहते उन्हें ये पता लग गया कि उनकी फैमिली में BRCA1/BRCA2 पैथोजेनिक वेरिएंट रन कर रहा है. उन्होंने अपना टेस्ट कराया तो उन्हें भी ये पता चला कि उनमें भी BRCA1/BRCA2 एक पैथोजेनिक जीन उनके अंदर है.
1: ओके okay.
0: उन्होंने समय रहते सर्जरी करवा ली और आज वो कैंसर मुक्त, यानी कैंसर उनको हो ही नहीं पाया.
1: ओके okay. तो डॉक्टर साहब, अगर कैंसर की चांसेस हैं तो उस अंग को हटा देना यानी कि सर्जरी करा लेना, क्या यही एक इकलौता उपाय है, इकलौती हेल्प होती है, या कुछ और भी उपाय होते हैं? मान लीजिए अगर कोई अपने एक पर्टिकुलर ऑर्गन को नहीं हटाना चाहता बॉडी से, तो उसे क्या करना चाहिए, क्या कोई और उपाय हैं?
0: फिर हमें रेगुलर स्क्रीनिंग, रोबस्ट स्क्रीनिंग.
1: ओके okay.
0: मतलब कि हमें टाइमली जो भी गाइडलाइंस एडवाइस करती हैं, हमें उन प्रोटोकॉल के साथ अटैच होकर के टाइमली स्क्रीनिंग के साथ अधेयर रहना चाहिए.
1: तो कौन से टेस्ट हैं जिससे कि आपको टाइम रहते पता चल सकता है कि कहीं आप खतरे के निशान के अंदर तो नहीं आ गए? इस विषय में भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले हम लेंगे एक बहुत छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक.
2: शरीर में हार्मोन्स की कमी या अधिकता गंभीर रोगों का कारण बन सकती है, जैसे डायबिटीज टाइप 1 एंड टाइप 2, बच्चों में विकास की रुकावट, महिलाओं में PCOD और बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी.
3: थायराइड इंबैलेंस, दिमाग में कैल्शियम का असंतुलन, एडिसन्स डिजीज, पिट्यूटरी ग्लैंड के इश्यूज, PCOD या मेनोपॉज जैसी हार्मोनल समस्याओं का बेहतरीन इलाज चरक हॉस्पिटल में अनुभवी और स्पेशलिस्ट डॉक्टर की देखरेख में एट हरदोई रोड, दुबग्गा.
1: 12:23 और ठीक 6 सेकेंड्स. आप हैं ज्योति के साथ इन द प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस, और हमेशा की तरह आज फिर हमारे साथ हैं एक जाने माने विशेषज्ञ. हमने स्पेशली इनवाइट किया है हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर आशुतोष मिश्रा को, जो कि देश के जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं, और आप इनसे कैंसर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि आज का टॉपिक ही है, विषय है हमारा, सही सलाह और सही राह कैसे चुने. डॉक्टर साहब, हमें लगातार कॉल्स आ रही हैं, तो और इंतजार करने के बजाय हम सीधे अपने कॉलर से बात करते हैं. हेलो, इनका तो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया, शायद इन्हें हमने इंतजार ज्यादा करा दिया है. लेकिन डॉक्टर साहब, मैं वापस आना चाहूंगी मेरे उसी सवाल पर. एक हेल्दी पर्सन को जिसको कोई सिम्टम्स नहीं है, हल्का कभी कभार जुकाम बुखार हो गया, कभी कभार कोई डाइजेस्टिव इश्यू हो गया, उसको कौन से टेस्ट कराते रहना चाहिए ताकि समय रहते सही इलाज मिल सके कैंसर के खिलाफ?
0: कैंसर, पर्टिकुलर अगर कैंसर की बात करें
1: जी,
0: कैंसर की स्क्रीनिंग
1: जी
0: दो बातों पर निर्भर करती है. पहली बात है एज क्या है व्यक्ति की, दूसरी बात है रिस्क कितना है
1: जी.
0: रिस्क कितना है से मतलब कि फैमिली हिस्ट्री.
1: ओके
0: okay. कि फैमिली में कोई जो 4-5 कैंसर जिनके हमने नाम लिए, ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलोन कैंसर, पैनक्रियास कैंसर,
1: ओके
0: okay. क्या फैमिली में इनकी हिस्ट्री है कि नहीं है?
1: ओके okay.
0: अगर हिस्ट्री है तो उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनिंग चेंज हो जाएगी. हमें अर्ली एज में स्क्रीनिंग शुरू करनी पड़ेगी. अगर एक सामान्य व्यक्ति है जिसके परिवार में कोई भी कैंसर की हिस्ट्री नहीं है
1: जी,
0: अगर वो महिला है तो 40 साल की उम्र के बाद साल में एक बार मैमोग्राम, जिसको हम लोग स्तन का एक्सरे बोलते हैं,
1: ओके okay.
0: साल में एक बार करना चाहिए. पुरुषों में 60 साल के ऊपर साल में एक बार PSA का टेस्ट कराना चाहिए.
1: ओके okay. तो ये वो टेस्ट हैं जो कि महिलाओं को और पुरुषों को अलग अलग कराने की आप सलाह देते हैं.
0: yes,
1: क्या कोई ऐसे टेस्ट भी हैं जो कि महिलाओं और पुरुषों दोनों को कराने चाहिए? जैसे कभी कभार हम लोग हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, बहुत सारे ब्लड के टेस्ट करा लेते हैं, तो इन द सेम मैनर क्या हम कोई और टेस्ट भी करा सकते हैं?
0: सामान्य तौर पे तो मैं कैंसर को लेकर के कोई टेस्ट रिकमेंड नहीं करूंगा.
1: ओके okay.
0: क्योंकि गाइडलाइंस भी रिकमेंड नहीं करती है
1: जी.
0: जो मैंने कहा

0: कैंसर के टेस्ट स्क्रीनिंग के लिए सिर्फ दो बातों पर निर्भर करते हैं, व्यक्ति की एज क्या है
1: जी?
0: और व्यक्ति कितने रिस्क पे है। रिस्क का मतलब फैमिली हिस्ट्री से है।
1: ओके, तो फैमिली हिस्ट्री बहुत मैटर करती है, लेकिन जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर आप टेस्ट कराते रहें और सही समय पर पता चल जाए कि आपकी समस्या कितनी गहरी है और समस्या है भी कि नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको सही दिशा में डायरेक्शन मिल सकता है। डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो।
2: हेलो
1: जी, नमस्कार, अपना नाम बताएं और अपना सवाल डॉक्टर साहब से पूछें।
2: जी मैम, हम बोल रहे हैं धानपुर से और जिला बहराइच, नाम दुर्गेश सिंह।
1: ओके दुर्गेश जी, अपना सवाल पूछें।
2: जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैंसर बीमारी लगभग कितने प्रकार की होती है मैम, किस प्रकार की?
1: ओके
0: बेटा, कैंसर बीमारी डिपेंड करती है शरीर के किस हिस्से की है। अगर हम इसको क्लासिफाई करना चाहें, अगर इसको हम क्लासिफिकेशन करें, तो मोटे तौर पे तो एक सॉलिड कैंसर होता है, एक हीमैट वाला कैंसर होता है, एक ब्लड का कैंसर होता है, ब्लड के अलावा एक कैंसर होता है। अगर कुछ आपका व्यक्तिगत सवाल है सिर्फ, अगर ये कैंसर कितने प्रकार का है, तो ये कैंसर कई प्रकार का होता है और कई प्रकार से उसको क्लासिफाई किया जाता है। मोटे तौर पे ब्लड कैंसर और सॉलिड कैंसर, जो फेफड़े का कैंसर है, स्तन कैंसर है, मोटे तौर पे हम दो ही प्रकार से इसको हम बांटते हैं।
2: तो सर
0: जी,
2: तो लगभग कितने समय पर इसका जांच कराएंगे तो हमका इसका पता चलेगा कि है या नहीं है?
0: बेटा, जांच अगर किसी व्यक्ति को कोई सिम्टम आ रहे हैं, कोई लक्षण दिख रहे हैं, उसके आधार पर टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त दिया और डॉक्टर साहब से बात की। डॉक्टर साहब, आप बार बार एक बात कह रहे हैं सिम्टम्स की, तो कौन से सिम्टम्स हैं जब हमें सोचना चाहिए कि अब हमारी बीमारी एक नॉर्मल सी बीमारी नहीं रही, शायद कुछ ऐसा हो गया जिसके लिए हमें ऑन्कोलॉजिस्ट से डिस्कस करना चाहिए? कब हम ये समझेंगे, क्योंकि सर्दी, जुकाम, बुखार, कभी कभी पेट की गड़बड़, यहाँ दर्द वहां दर्द, ये तो बड़ी कॉमन सी चीजें।
0: मैम, कैंसर मतलब असामान्य गांठ।
1: ओके,
0: सब लोग जानते हैं
1: जी
0: कि ये गांठ आ गई है।
1: ओके,
0: शरीर में कहीं पर भी कोई परिवर्तन, गांठ के रूप में या कोई छाला मुंह का या कहीं का, जो लंबे समय से नहीं भर रहा है, एंटीबायोटिक्स या अन्य दवाइयां जो दी जाती हैं उनको लेने के बाद भी, या वजन घट रहा है बिना कारण। अगर हम डाइटिंग कर रहे हैं और वजन कम कर रहे हैं, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, अगर बिना वजह वजन घट रहा है, अगर असामान्य रक्त स्राव हो रहा है,
1: ओके,
0: तो हमें जरूर, या मोशन और यूरिन की हैबिट यानी कि मल और पेशाब की हैबिट में कोई परिवर्तन आ रहा है, लंबे समय से बुखार अगर बना हुआ है और बुखार का कारण पता नहीं चल पा रहा है, तो जरूर हमें इन लक्षणों की उत्पत्ति क्यों हो रही है, उसका क्या कारण है, उसको जरूर जानना चाहिए। और ये मैं कहना चाहूंगा कि हर गांठ कैंसर नहीं होती और हर कैंसर में गांठ है ये भी जरूरी नहीं होता।
1: लेकिन फिर भी अगर कोई बीमारी लंबे समय से परेशान कर रही है तो डॉक्टर से सलाह लेने में कोई हर्ज नहीं है, बस यही कहना है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब, एक हमारी ये कॉलर भी इंतजार नहीं कर पाए, तो हमारे सुनने वालों को बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि खास तौर पर बस आपके लिए आज डॉक्टर आशुतोष मिश्रा ने वक्त निकाला है ताकि ये कैंसर से जुड़ी हुई आपकी भ्रांतियों को दूर कर सके, आपको सही सलाह दे सके किस रास्ते पर जाना है, कौन सा इलाज कराना है, इस विषय में आपको बता सके। तो इस विशेष अवसर के लिए ऑफ कोर्स आपको इसका लाभ उठाना चाहिए हमारे फोन नंबर से 0522223845 एंड 0522223852। डॉक्टर साहब, हमारी कॉलर से बात करते हैं और जानते हैं कि हम कैसे इनकी मदद कर सकते हैं। हेलो
3: जी, नमस्कार।
1: नमस्कार,
3: मैं जिसी कृष्ण नीमगांव से बोल रहा हूँ जी।
1: ओके,
3: लखीमपुर खीरी पड़ता है
1: जी।
3: हमारे जी मित्र है, उम्र जी 60 वर्ष है।
1: ओके,
3: उनके जो बलगम जी जब वो खांसते हैं तो खांसी नहीं आती, लेकिन जब बलगम जब गला साफ करते हैं तो जी उसमें ब्लड आता है।
1: और ये कब से हो रहा है?
3: ये जी लगभग 12-13 दिन हो गया है।
1: 12-13 दिन
3: जांच हुई है, खांसी भी नहीं है।
1: हाँ।
3: और दवाइयाँ पहले बुखार की खाई है 2-3 महीने पहले।
1: ओके, 60 साल की उम्र आपने बताई, राइट?
3: हाँ, 62 साल है।
1: 62 साल की उम्र है डॉक्टर साहब।

0: बलगम में खून आना शुरू हो गया है, तो क्या ये अलार्मिंग है?
1: देखिए, आप जैसा बता रहे हैं कि बुखार आ रहा है काफी समय से और बलगम में
2: आता था, अब नहीं आता। इस कंधे के ऊपर रीढ़ में जी दर्द बहुत बना रहता है, लगभग आता तो 1 साल से है, लेकिन ठीक हो जाता है, फिर वैसे ये कंधे और रीढ़ दर्द होती है।
1: देखिए, बलगम में खून आना ये सामान्य बात नहीं है। बुखार बुखार की दवा लेने के बाद चला जाएगा, कुछ एंटीबायोटिक लेने के बाद चला जाएगा, लेकिन अभी भी बलगम में खून अगर आ रहा है तो हम एक सलाह देंगे, विशेषज्ञ पास जाइए। और अगर हम एडवाइस यहाँ से करना चाहेंगे तो हमें एक जरूर छाती का स्कैन करना चाहिए, ये देखने के लिए कि आखिर बलगम में खून क्यों आ रहा है।
0: और मोर ओवर 62 ईयर्स की एज है आपके दोस्त को, जैसे कि डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि अपना रेगुलर चेकअप कराते रहना चाहिए, डॉक्टर साहब ने थोड़ी देर पहले ही सलाह दी थी। परेशान मत होइए, डॉक्टर से सलाह जरूर लीजिए।
2: सर जी, एक्सरे हुआ है, बलगम जांच हुई, उसमें भी कुछ नहीं निकला है।
1: ये बहुत प्रारंभिक जांचें हैं। एक बार मैं आपसे पुनः निवेदन करूंगा, एक बार सास के डॉक्टर से मिलिए और वो जो आपको सलाह देते हैं हमें वो सलाह माननी चाहिए।
0: बलगम में खून आना, अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर साहब ने कहा था कि अगर कहीं से रक्त स्राव हो रहा है, बुखार बना हुआ है, वजन कम हो रहा है, तो ये भी चीजें ऐसी हैं जिनको हमें सीरियसली लेना ही लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, आप इतनी अच्छी बातें हमारे सुनने वालों को बता रहे हैं और मुझे लगता है कि कैंसर को लेकर इतना डर इसीलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रांतियां बहुत फैली हुई हैं, तो इन भ्रांतियों से मुक्त करने के लिए हमारे फ्रेंड्स को, हमारे सुनने वालों को आप हेल्प कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी से हमारी तरफ से पेशकश आपके लिए ये रहेगी कि आपकी पसंद का गाना हम जरूर प्ले करें और ये एक छोटा सा ग्रैटिट्यूड टोकन होगा। तो आपकी पसंद का गाना सुनाने के लिए एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर से बात करेंगे हमारे लिसनर से। तो ब्रेक पर जाने से पहले आपको याद दिला दूं कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा, जो कि जाने माने कैंसर विशेषज्ञ हैं। आप इनसे कैंसर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, डायरेक्टली इनके संपर्क में आकर 0522223 8845 एंड 0522223 8852 जो हमारे पुराने नंबर्स हैं स्टूडियोज के, वही आज भी फंक्शनल है। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी वो भी वही पुराना, fmakashwani@gmail.com। तो डॉक्टर साहब से आपकी बात होगी, लेकिन फिलहाल जैसे कि मैंने कहा था कि एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड आपको हम सुनाने जा रहे हैं आपकी पसंद का गाना फिल्म हनुमान अंश से।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल @ हरदोई रोड दुबग्गा।

0: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
1: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज डाइट प्लान और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
0: चरक हॉस्पिटल आज हरदोई रोड दुबग्गा।
2: आप सुन रहे हैं 100.7 FM रेनबो सुरों का लखनऊ।

0: 12:37 और ठीक 48 सेकंड्स आप हैं इन द प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस जो कि है आपका अपना वीकली हेल्थ शो. आज खास तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर आशुतोष मिश्रा जो कि कैंसर की फील्ड के जाने माने विशेषज्ञ हैं. तो अगर आपका कोई सवाल है आप डायरेक्टली इनसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे फोन नंबर्स या फिर ईमेल के जरिए और अपने सवाल पूछ सकते हैं. डॉक्टर साहब इस वक्त भी हमारे साथ एक कॉलर हैं. हेलो हेलो जी. हाँ जी नमस्कार.
1: नमस्ते मैडम
0: जी बताएं जी अपना सवाल पूछें प्लीज.
1: कन्हैया लाल गोस्वामी बोल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट
0: जी.
1: हाँ
0: हाँ
1: जैसे मैडम खांसी जुकाम या कुछ हो जाता है
0: हाँ खांसी जुकाम हो जाता है तो कभी कभी ब्लड इन्फेक्शन भी हो जाता है ये आपने बोला राइट.
1: ब्लड का सैंपल लेते हैं तो आपसे बोलते हैं कि जांच करवाइए.
0: बिल्कुल ठीक है. हाँ
1: फिर वो बोलते हैं बाद में कि इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी
0: आपकी आवाज़ बहुत क्लियर तो नहीं मिल रही है. मुझे लग रहा है कि शायद आपका कुछ नेटवर्क का इशू है लेकिन जितना मैं समझ पा रही हूँ डॉक्टर साहब सर्दी जुकाम होती है तब भी ब्लड का सैंपल कई बार लिया जाता है ब्लड की जांच की जाती है. तो क्या ब्लड की जांच के जरिए उस जांच के जरिए हम पता कर सकते हैं कि कहीं कोई और खतरनाक बीमारी तो नहीं है? हाँ
1: संभावना
0: ओके. तो हमें कैसे पता चलेगा कि कहीं ये कैंसर तो नहीं है? जो ब्लड की जांच होती है क्या उससे हमें क्लैरिटी मिल सकती है? सिंपल एक ब्लड के टेस्ट से क्या हम जान सकते हैं?
2: जैसा कि श्रोता का सवाल है बलगम खांसी और बुखार
0: जी.
2: बलगम और खांसी बुखार
0: जी
2: क्यों आ रहा है हमें वो क्यों जानना है? क्यों जानने के लिए एक सिंपल हम सीधे कैंसर सोच करके हम इन्वेस्टिगेशन करना नहीं शुरू करते. सबसे पहले कोई सामान्य इन्फेक्शन निमोनिया जैसा तो नहीं हो गया है
0: जी.
2: पहले उसके सामान्य जो टेस्ट होते हैं वो कराए जाते हैं उसके आधार पर एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाती हैं. अगर फिर भी आराम नहीं मिलता है फिर आगे के टेस्ट एडवाइस किए जाते हैं.
0: मतलब हर बार अगर आपको जुकाम है या अगर बाई चांस आपको बलगम की समस्या है कोई और समस्या है तो बिल्कुल घबराइए नहीं. हर एक समस्या का मतलब ये नहीं होता है कि वो अल्टीमेटली इलीट करने वाली है कैंसर में ही. डॉक्टर साहब एक और

0: कॉलर हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: जी, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज आप अपने रेडियो सेट से दूर हो जाइए जी। अपना सवाल पूछें प्लीज
1: जी। मैडम मेरा क्वेश्चन ये है, सबसे
0: जी।
1: पहले तो मैडम आपको डॉक्टर साहब आप सभी जी को मेरा सादर नमस्कार,
2: नमस्कार
1: और आपके ये नवरात्रि की आपको दोनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं
0: जी। आपको भी
1: जी। एंड मैडम मैं ग्राम गेंडा कली नंबर 1 टनकपुर जनक चंपावत उत्तराखंड से बात कर रहा हूँ जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अगर शरीर में कोई गांठ वगैरह है और उस गांठ में कोई दर्द महसूस नहीं होता है, तो क्या ऐसी गांठों से भी कोई कैंसर होने की संभावना है? और सर सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है, जैसे किडनी की इतना ऐसा होता है कि मतलब पेशेंट को जैसे पाइल्स की प्रॉब्लम होती है या ऐसे भवन की प्रॉब्लम होती है और वो अंदरूनी गांठ होती है, तो ऐसे कोई गांठों से भी मतलब कैंसर इंफेक्शन होने की संभावना होती है?
2: मैं आपके दो अलग अलग सवाल समझ पा रहा हूँ, एक गांठ और एक लेटरिन के रास्ते खून आना, राइट?
0: जी, इनका यही मतलब है डॉक्टर साहब। इनका सवाल ये है कि अगर कहीं पर गांठ है तो क्या हर गांठ में हमें परेशान होने की बात है? और दूसरी बात है कि शरीर के अंदरूनी कैंसर में, क्योंकि वो तो गांठ हमें दिखनी नहीं है, अगर इंटरनल ऑर्गन्स में कुछ है तो अगर ब्लीडिंग हो रही है या पाइल्स की भी वजह से कई बार ब्लीडिंग होती है, तो हम कब समझें कि अब मामला थोड़ा सीरियस हो गया है?
2: पहली बात, कैंसर के लक्षण में मैंने पहले कहा था कि हर एक गांठ कैंसर नहीं होती
0: जी
2: और कैंसर गांठ के रूप में ऐसा भी नहीं होता। अगर कोई असामान्य गांठ है जो आपको अभी लग रही है कि 5, 10, 15 दिन से और वो आकार बदल रही है, तो जरूर क्या बोल हमें डॉक्टर के पास जाकर के संपर्क करना चाहिए कि सर ये 15 दिन से गांठ आ रही है, इसका आकार बढ़ रहा है या ये असामान्य लग रही है, एक बार आप मुझे देख करके गाइड करिए ये क्या है क्या नहीं है। कई सारी सामान्य गांठें हम लोग के शरीर में होती हैं जिनको हम लाइपोमा बोलते हैं,
0: जी
2: जो फैट सेल्स होती हैं, फैट सेल्स एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, वो भी गांठ का रूप ले लेती हैं। हम कहीं लाइपोमा और कोई दूसरी गांठ जो रोग वाली है उसमें हम कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं, हमें इस पर भी एक बार विचार करना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि अगर कोई गांठ 15, 20 दिन या 1 महीने से नई गांठ आपको महसूस हो रही है, आकार उसका बदल रहा है, तो हमें संपर्क करना चाहिए। दूसरा प्रश्न आपका है पाइल्स, हिमोराइड्स या बवासीर, अगर सामान्य भाषा में कहा जाए, जो आंतों के कैंसर होते हैं उनका भी एक लक्षण होता है लैट्रिन के रास्ते खून आना। अगर ये डॉक्टर ने देख करके बता ही दिया है कि आपको पाइल्स की समस्या है, अन्य कोई समस्या नहीं है, पाइल्स का इलाज कराइए आपको आराम मिल जाएगा। अगर पाइल्स की समस्या है, इलाज के बाद भी आराम नहीं मिल रहा है और रक्त के साथ साथ आपको लगातार कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज बना हुआ है, आपकी बॉवल हैबिट्स यानी कि मल त्यागने की गतिविधियों में अगर परिवर्तन आ रहा है, तो जरूर किसी कैंसर या फिर एंडोस्कोपिक डॉक्टर जो कि पेट के डॉक्टर होते हैं उनसे एक स्कोपी के बारे में जरूर निवेदन करना चाहिए।
0: डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही सरल भाषा में हमारे इन श्रोता के सवालों के जवाब दिए। हमारे एक और श्रोता हमारे साथ फोन लाइन पर है, लेकिन इनसे बात करने से पहले एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक।
3: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
4: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
3: माई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
4: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
0: 12:44 हो गए हैं डॉक्टर साहब, और हमारे एक श्रोता बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। हेलो हेलो जी, हेलो डॉक्टर साहब, ये तो शायद कहीं चले गए, लेकिन हम मेरे सामने ईमेल्स बहुत सारे हैं, तो आगे बढ़ने से पहले हम ईमेल्स भी ले लेते हैं। मोनू सेठ जी ने पूछा है कि जो पान मसाला खाते हैं उनमें डर होता है कैंसर होने का, लेकिन कई बार लोग इलायची तक नहीं खाते, उनको कैंसर क्यों हो जाता है?
2: एक सामान्य एग्जाम्पल देकर के मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि हम घर से बाइक लेके निकलते हैं
0: जी,
2: हेलमेट लगा लेते हैं, हेलमेट लगा लेना चोट नहीं लगेगी इसकी गारंटी नहीं होता, वैसे ही हम पान मसाला नहीं खाते हैं और हमें कैंसर नहीं होगा।

0: इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है अगर शोध अध्ययन ऐसा कहता है। जो लोग पान मसाला या स्मोक या अल्कोहल लेते हैं उनमें कैंसर होने की संभावना ज्यादा होती है, बशर्ते जो इनका सेवन नहीं करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आजकल जो प्रोसेस्ड फूड इतना चल रहा है, कई बार लोग बाहर भी खाना खाते हैं, पैकेट बंद खाना भी बहुत खाने लग गए हैं, क्या इसकी वजह से भी कैंसर के मामले देखने में बढ़े हैं इधर?
0: अध्ययन जो कहता है
1: जी
0: प्रोसेस्ड मीट,
1: जी
0: खासकर रेड मीट, प्रोसेस्ड रेड मीट, ये कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। बाकी और खान पान की चीजों से कैंसर होने का खतरा है ऐसा अध्ययन अभी तक प्रूफ नहीं करता।
1: लेकिन आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे हमारे सुनने वालों को? हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर ताजा फल सब्जियां आराम से मिल जाती हैं।
0: हेल्दी डाइट लेने से आप हेल्दी महसूस करेंगे। आप हेल्दी डाइट लेना एक दैनिक दिनचर्या का पार्ट होना चाहिए। आप अगर हेल्दी डाइट लेते हैं तो उससे आपका वजन संतुलित रहता है। अगर आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, अनहेल्दी डाइट एक इनविटेशन होता है बीमारी का। आप अनहेल्दी डाइट लेंगे, मोटापा बढ़ेगा, शुगर आएगी, ब्लड प्रेशर की शिकायत रहेंगी, फिर वो कहीं ना कहीं जाकर के आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगा इन फ्यूचर। मैं ये नहीं कहता, शोध भी ये नहीं कहती कि मोटापे से कुछ कैंसर हो ही जाएगा, लेकिन हाँ कुछ कैंसर्स हैं जिनमें मोटापा एक कारक होता है, एक कारण होता है, और कुछ कैंसर ऐसे भी हैं जिनमें कैंसर का इलाज उतना प्रभावी नहीं होता जितना सामान्य मरीजों में होता है। तो आपकी अनहेल्दी डाइट आपको मोटापे की तरफ लेकर के जाएगी। अब अध्ययन तो ऐसा नहीं कहता कि हाँ ये अनहेल्दी डाइट से कैंसर हो ही जाएगा, सिवाय सिर्फ जो प्रोसेस्ड मीट है वो तो अध्ययन कहता है कि कैंसर के रिस्क को बढ़ाने वाला है। लेकिन हम सभी को एक हेल्दी डाइट तो लेनी ही चाहिए।
1: तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपको बहुत सी समस्याओं से बचा सकती है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी एडवाइस किया। हेलो, हेलो जी,
2: हेलो,
1: हाँ जी डॉक्टर साहब, हमारी कॉलर हमारे साथ, चलिए हम जानते हैं ये क्या पूछना चाहती हैं। हेलो
2: ज्योति मैम, नमस्ते।
1: नमस्कार, नीलू जी। जी नीलू जी, हाँ, बताएं।
2: मैम ये मेरे पापा की 60 साल एज है और मैंने पहले टाइफाइड बुखार आया था, तो उसकी जांच हुई अल्ट्रासाउंड मैम, तो बड़ा सा आराम मच गया था और 6 महीने से ही पापा को हार्निया प्रॉब्लम हो गई थी, उसका भी इलाज हुआ, डॉक्टर कह रहे थे मतलब ऑपरेशन होगा, फिर हम लेके गए तो डॉक्टर बोले कि ठंडी में होगा, उसके बाद मैम पापा को पीलिया हो गई थी और गैस प्रॉब्लम हो गई थी, तो अभी हाल ही में मैंने हेलेट में इलाज करवाया तो कुछ समझ नहीं आया, फिर उसके बाद अभी 1 अक्टूबर को मैं सिविल हॉस्पिटल लेके गई, पापा की जाँच हुई, अल्ट्रासाउंड हुआ और सिटी स्कैन हुआ, तो मैम डॉक्टरों ने बोला है कि मतलब लीवर बहुत डैमेज हो गया है, पापा को खाना पानी कुछ हजम नहीं हो रहा है, तो मैम कुछ प्लीज अगर हो सके तो बताइए, हम डॉक्टर साहब को दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर जो सर इंटरव्यू दे रहे हैं अपना।
0: आप सारी रिपोर्ट्स लेकर के कल चरक अस्पताल में आ जाइए, हम एक बार रिपोर्ट्स का अध्ययन कर लेंगे। और एक बार ये जो पीलिया और कमजोरी, पीलिया आना भी कैंसर का एक लक्षण हो सकता है, तो एक बार आप जो पहले की जांचें हुई हैं आप कल लेकर के आ जाइए, हम साथ बैठ करके जो भी उचित परामर्श होगा हम देंगे आपको।
2: बस मेरे यही सोचती कि मेरे पापा ठीक हो जाए सर, बस मेरी जिंदगी वापस आ जाए, अभी हम आपको सुन रहे थे तो सर मैंने कहा कॉल करती दिखाती।
1: नीलू जी आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप
2: बस मैं बहुत दूर है, बस मेरे पापा आप सब विभाग से ठीक हो जाए, बस मैं यही ऊपर वाले से चाहती हूँ माता रानी आप अपनी कृपा जरूर दिखाइए, मेरे पापा ठीक हो जाए बस।
1: नीलू जी आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि हिम्मत, आशा और विश्वास ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत सारी समस्याओं को आसान कर देती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं। डॉक्टर साहब हम एक और ईमेल ले लेते हैं। नीलू जी हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, हमारी शुभेच्छाएं आपके साथ हैं, बहुत जल्द आपकी समस्याएं जरूर सही हो जाएंगी। डॉक्टर साहब मुनेश कुमार राज का लखीमपुर खीरी से ईमेल है, इन्होंने लिखा है क्या कैंसर अगर होता तो गांठ में दर्द नहीं होता, और आजकल ब्लड कैंसर के मामले ज्यादा सुनने में आ रहे हैं, क्या ये छूने से, किसी का जूठा खाने से या बातचीत करने से फैल जाता है, कृपया इस विषय में भी हमें जानकारी दें।
0: आपके 3 प्रश्न है, पहला प्रश्न है

0: कि गांठ दर्द नहीं दे रही है तो क्या कैंसर नहीं है? दूसरा, ब्लड कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं। तीसरा, ये छूने से, साथ बैठने से, बात करने से फैलता है या नहीं फैलता? ये तीन प्रश्न आपके हैं। तो हम सबसे पहले तीसरे प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगे। पहली बात कि कैंसर छूने से नहीं फैलता, कैंसर जूठा खाने से नहीं फैलता, कैंसर साथ बातचीत करने और साथ रहने से नहीं फैलता, बशर्ते अगर परिवार में या आसपास कैंसर का अगर कोई मरीज है तो हमें उसका मनोबल बढ़ाने की आवश्यकता है, ना कि उसे इग्नोर करने की आवश्यकता है। कैंसर के मामले दिन प्रतिदिन इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि विज्ञान ने धीरे धीरे प्रगति करी है और जांचों का दायरा, जांचों के माध्यम बढ़े हैं, इसीलिए हमें कैंसर के मामले ज़्यादा निकल करके सामने आ रहे हैं। कुछ वर्षों पहले ना इतनी जांचें थीं, जब जांचें ही नहीं थी तो हमें पता ही नहीं चल पाता था कि व्यक्ति को क्या बीमारी है, क्या बीमारी नहीं है। क्योंकि आज हमारे पास जांचें हैं, इसलिए हम डायग्नोज कर पा रहे हैं कि हाँ, कैंसर के मामले भी हमारे सामने आ रहे हैं।
1: तो सीधी सी बात है ये कि क्योंकि समय रहते हमें पता चल जा रहा है, तो हमें पता भी चल रहा है कि ये समस्याएं बढ़ रही हैं। सीधी सी बात है कि अगर हमें सही समय पर सही जानकारी, सही सलाह मिल जाती है, तो जैसा कि डॉक्टर साहब कई बार कह चुके हैं, कैंसर कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि लाइलाज है, अगर टाइमली हमें इंटरवेंशन करने को मिल जाता है। डॉक्टर साहब, एक और कॉलर हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार,
2: हम कहना चाहते हैं
0: जी,
2: ज्यादा खटाई मिठाई खाने से बनता है क्या?
0: नहीं नहीं, ये खटाई मिठाई खाने से क्या वो कैंसर तो नहीं बढ़ता है। आप जैसा, जो आपको जो अच्छा लगता है जरूर खाएं, लेकिन जो अति सर्वत्र वर्जते, जो कहा जाता है कि हाँ, बहुत अधिक मात्रा में कुछ भी आप सेवन करेंगे तो वो आपको नुकसान दे सकता है, लेकिन वो नुकसान इतना दे कि आपको कैंसर हो जाए, ऐसा नहीं है।
1: तो डॉक्टर साहब, डाइट को लेकर के अगर आप कुछ खास कहना चाहें, थोड़ी देर पहले मैंने फास्ट फूड की भी बात कही, प्रोसेस्ड फूड की भी बात कही, अगर आप दो लाइन्स में क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए, कैसे हमारा खाना पीना भी कैंसर को बढ़ा सकता है, इस विषय में अगर जानकारी दे सके तो हमारे श्रोता लाभान्वित होंगे। इस विषय में मैं आपसे बात करूंगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
3: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
1: क्या खाएं और क्या ना खाएं, क्या कुछ इस तरह के फूड भी होते हैं जो कि कैंसर को बढ़ाते हैं, इस विषय में डॉक्टर साहब से हम बात करेंगे। लेकिन पहले हमारे कॉलर जो कि अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून। आपसे एक गुजारिश करूंगी, थोड़ा सा अगर आप नेटवर्क में आ जाएं और अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकें तो। जी, नाम बताएं।
5: मेरा नाम गुड़िया है।
1: गुड़िया जी, बताएं।
5: मेरे पापा 2023 में गिर गए थे।
1: ओके।
5: तो उनकी छोटी आंख का ऑपरेशन हुआ था और उनसे मतलब कि अब जब होने जाते हैं तो लाइटिंग में लड़ा था।
1: छोटी आंत का ऑपरेशन डॉक्टर साहब हो चुका है और अब इनके स्टूल में ब्लड की समस्या है।
0: अगर स्टूल में ब्लड की समस्या बनी हुई है काफी लंबे समय से, तो एक बार मैं यही परामर्श आपको दूंगा कि एक बार हमें विशेषज्ञ से राय लेना है कि वो पाइल्स की समस्या है या फिर वो कुछ अंदर आंत की समस्या की वजह से ब्लड आ रहा है, वो हमें देखा जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, एक और ब्रेक लेने का टाइम हो गया है और उसके बाद हम लौट कर आएंगे अपने उसी सवाल पर।
6: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
7: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
6: माई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट ना आए।
7: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
1: डॉक्टर साहब, जो सवाल था मेरा वो था ये कि बदलती हुई लाइफस्टाइल की वजह से भी क्या कैंसर के मामले बढ़ गए हैं, कैंसर का मरीज बनाने में।
0: मैं ये कहना

0: चाहूंगा अध्ययन के अनुसार खान पान की अगर हम बात करें तो प्रोसेस्ड रेड मीट
1: जी
0: ये जरूर कैंसर को बढ़ावा देता है। और अगर हम अच्छी बात करें
1: जी
0: कि हम खाने में क्या शामिल करें, ब्रोकली, टर्मेरिक जिसको हल्दी बोलते हैं, और बेरीज, ब्लूबेरीज, अध्ययन कहता है कि ये कैंसर के रिस्क को कम भी करते हैं। तो हमें अपनी डाइट में क्या रखना है, क्या हटाना है, ये रेड मीट, प्रोसेस्ड फूड हटाना है, ब्रोकली, ब्लूबेरीज एंड टर्मेरिक ये ऐड करना है। और सबको ही एक हेल्दी डाइट, सबको पता है कि हेल्दी हमारे लिए क्या है। एक जो स्मोक करता है उसको भी पता है कि स्मोकिंग ये अच्छी हैबिट नहीं है, ये हमें नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन फिर भी वो करता है। तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है वो हमें पता है। हमारी एडवाइस यही रहेगी, खाने की थाली में ब्रोकली, ब्लूबेरी एंड टर्मेरिक ये होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए, प्रोसेस्ड रेड मीट नहीं होना चाहिए।
1: तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि हम वही खाएं जो कि हमारे शरीर के लिए अदरवाइज भी बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, कैंसर जब कभी होता है तो पहला क्वेश्चन यही आता है कि क्या हम बच पाएंगे, लेकिन आपने शुरुआत में ही कहा कि हर कैंसर फेटल नहीं होता, हर बार कैंसर होने का मतलब ये नहीं होता कि आप बच नहीं पाएंगे, तो ये तो आपने क्लियर बता दिया। मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कोई नए डेवलपमेंट्स हुए हैं इस फील्ड में, क्योंकि आप जाने माने विशेषज्ञ हैं, तो हमारे श्रोताओं के लिए कोई आशा की किरण कुछ अगर आप खास कहना चाहें तो।
0: मैं उन सभी मरीजों या उनके परिवार वालों से कहना चाहूँगा, अगर आपके डॉक्टर ने कह रखा है कि ये स्टेज 4
1: जी
0: यानी कि फैली हुई बीमारी है
1: जी जी,
0: तो हमें अपने इलाज करने वाले डॉक्टर से जरूर पूछना है कि सर क्या आपने हमारे कैंसर के जीन का अध्ययन किया है कि नहीं किया है, क्या आपने हमारे कैंसर का NGS करवाया है कि नहीं करवाया है। उसको करवाने के पीछे का उद्देश्य है कि क्या कोई टारगेटेड मेडिसिन हमारे घर वाले या हमको क्या दी जा सकती है कि नहीं दी जा सकती है, इस विषय में जरूर अपने विशेषज्ञ से पूछना चाहिए।
1: तो बात बस इतनी सी है कि हर फील्ड की तरह मेडिकल साइंस की फील्ड में भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, और ये डेवलपमेंट ऑफ कोर्स कैंसर के इलाज को भी आसान बना रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक और सवाल आपसे करना चाहूंगी कि वैकल्पिक इलाजों के बारे में काफी कुछ कहा जाता है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी इस कमर्शियल ब्रेक के बाद।
2: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज, एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
0: मैं ये कहना चाहूंगा, हम कैंसर के मरीजों में जो इलाज देते हैं वो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, जो गाइडलाइंस हजारों मरीजों पर टेस्ट करके बनी हुई होती हैं उनके आधार पर हम मरीजों को दवाइयां लिखते हैं। जो वैकल्पिक इलाज दे रहे हैं वो एविडेंस बेस्ड है या नहीं है उसकी जानकारी वही लोग दे सकते हैं, लेकिन हमारे श्रोताओं को हमें ये बताना है कि हम लोग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हम दवाइयां देते हैं। जो आप लोग को वैकल्पिक दवाइयां दे रहे हैं वो शायद दवा का नाम भी नहीं लिखते, तो हमें भ्रांतियों से बचना है और हमें सही समय पर सही डॉक्टर के पास जाकर के सही परामर्श लेना है।
1: ये शरीर बहुत कीमती है और इसे हमें एक्सपेरिमेंट्स के लिए, मतलब लेबोरेटरी नहीं बनाना है, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बार बार कहा, सही समय पर सही जगह सही इलाज, और फिर ऑफ कोर्स जैसे कि कहा जाता है कि आशा के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याएं ऐसे भी सॉल्व हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, कैंसर से जुड़ी हुई आशंकाओं को समझाने के लिए और सही जानकारी देने के लिए हमारे स्टेशन की तरफ से
4: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजे हैं और अब आप सुनेंगे अनुरोध गीत आपके पत्रों पर आधारित।

श्रोताओं, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अनुरोध गीत में, और साथ ही कीजिए स्वीकार हमारा प्यार भरा नमस्कार। और श्रोताओं, आज आप सभी लोगों का पहला पत्र हम तक पहुंचा है, गुरु नानक नगर मलोट पंजाब से हैं राजीव सेतिया, रजनी सेतिया, आरती सेतिया और तनिष सेतिया। गांव चौहलदा बागपत से हैं संजय ढिंगिया, नमन, मुस्कान और कुणाल। गांव कुमार हेड़ा जिला सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, गुलजार जहां, अजहर हसन, इब्राहिम, नाजिया और आफिया। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली, नदीम अली और जुनैद अब्बासी का। ग्राम रट्टे नगला अलीगंज एटा से हैं दीपक शाके, ज्योति शाके, अंकित शाके और पूजा शाके, साथी हैं सक्षम शाके। वीरम गांव गुजरात से हैं हेतल कृष्णा, जैमीन भवसार, अजीत भवसार, भावेश और सनीका। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 प्राण शहर बरेली से हैं अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, आरोही और स्वाति का। कस्बा शीशगढ़ से हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। मनकारा मंदिर बीजे कॉलोनी करगेना बरेली से हैं बेनी सिंह सागर, पन्नीलाल सागर, आशीष कुमार, अमर सिंह, हितेश सागर, वंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी, एकता, दिव्या, रचना, श्रीमती ओमवती भारती, रवनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और प्रथम सिंह का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है स्वर्ग से सुंदर और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने। शब्द रचना है आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

श्रोताओं, यह पत्र हम तक पहुंचा है छत्तीसगढ़ बाटापार अतरेंगी से हैं द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और जावेंद्र कुमार वर्मा का। परिमहल कासगंज से हैं आबाद खान, गजाला खान, अल्ताफ नवील, एम असलम सैफी। गंजुडवारा से हैं शमसुल कमर राही। पुराना होली चौक ग्राम करगैना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, युवराज शर्मा, इशिता वीर, संदीप, चंचल, सूरज, चिंकी, अब्रार अंसारी और लाल मोहम्मद अंसारी। मोहला दुर्गा प्रसाद विसलपुर जिला पीलीभीत से हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा परिवार के सभी सदस्य। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत घमणाकर राही, सरिता घमणाकर, सिद्धांत प्रिंस एकांश, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं शैलेश घमणाकर, वैशाली, श्वेता, सुमित ध्वनि और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। फूलबाग किला छावनी बरेली से हैं विशन दत्त भारद्वाज, शिवदत्त भारद्वाज, गंगा दत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवकी देवी भारद्वाज, शिप्रा नीलम भारद्वाज, मुन्नी देवी भारद्वाज और श्री राम राठौर का। मोहल्ला हलवाइयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, इकबाल, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजा रानी और हीना कौसर का। राजनंद गांव से हैं याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा। जिल रोड रायगढ़ से हैं रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी का। ग्राम बुड़गहन छत्तीसगढ़ से हैं रामदुलारी प्रजापति, रामशरण प्रजापति, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता प्रजापति और शशिकांता प्रजापति का। सरोज कमरावती महाराष्ट्र से हैं कमरुल्ला, नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, असमा सारिया, शुएब खान, मुस्ताबा खान, राउत भाई और शाहिद भाई। गांधीबाग अकोला से हैं रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर। चंडीगढ़ से हैं सतीश अनेजा और विमला अनेजा। मिलक भूजपुर आशा जिला मुरादाबाद बड़ी मस्जिद के पास से हैं रजा हुसैन, शाहिद हुसैन, आदिल हुसैन और शहजाद हुसैन। खमरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। ग्राम बगबुड़ व पथरिया से हैं नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है तमन्ना फिल्म का ये गीत। इस गीत को गाया है कुमार सानू ने। इस गीत को लिखा

किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है। पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।

श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं अनुरोध गीत आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली ऑन 100.4 FM पर। और ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी श्रोताओं का। वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। करुणा मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। गड़गिया बरेली मस्जिद के पास से हैं मोहम्मद केसर शमसी, अजीम शमसी, सलीम शमसी, नवेद शमसी और उनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। इस्लामपुरा सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश कौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। गंज डुंडवारा से हैं मुनव्वर लल्ला भाई, मिर्जा नसरीन बबली, अरबाज खान, शाहबाज खान, पप्पू भाई, अफसाना बेगम, महज अभी शेख और इनके परिवार के सभी सदस्य। दसमले चौक परतूर जालना से हैं जयश्री दसमले, शिवानी दसमले, अर्चना काटे, आकांक्षा, सुधाकर, सौरभ, सुरेश, अप्पा दसमले। मस्तानपुरा तापूर्णा जैसे हैं अनंता भगत, अरुणा भगत, लोचना भगत और चेतन कुमार भगत का। जलगांव से हैं आप सभी लोग सन्नी मुन्ना, बंडू दादा, रविंद्र सोनार, नरेंद्र डंगवाल, संतोष कुमार सोनार। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुविया निवादा गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, शेरपुर कला गाजीपुर से हैं अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय और नवनीत राय। पीपरपारा पालचुवा मुंगेली छत्तीसगढ़ से हैं उत्तरा कुमार दिवाकर, परमेश्वरी दिवाकर, योगिता दिवाकर, नितिन वंशिका दिवाकर। ग्राम बठेना पाटन बलकरण से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति वर्मा, मुरली शिवम। चटौदा सारा गांव से हैं सुजान, सुहद्रा वर्मा, आयुषी, निर्मला और कृष वर्मा। रिंगनी छत्तीसगढ़ से हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। दतरेंगी से हैं भागवत वर्मा, लेवई से हैं गुलाबदास मानिकपुरी, लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, चर डोगरी रिपरिया से हैं दुर्गाराम साहू और औरंगाबाद से हैं शीतल राजेश, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश का। वज्रगंज जिला बदायूं से हैं प्रेम कमल वाशने, सुशीला कमल वाशने, प्रभात अमरीश, सलोनी सचिन, नीरू देविका, कार्तिक वेदरिचा और ऐश्वर्या कमल वाशने का। बड़ी जंक्शन से हैं गरीब भाई, नासिर भाई, सादिक भाई, मोहन लाल सोनू, विक्की भारद्वाज, पदम भारद्वाज, सुंदर भाई, प्रदीप पाल और नमन का। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से हैं दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लवि श्रीवास्तव का। शिवाजी चौक छत्तीसगढ़ से हैं राजिम से अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और कृष श्रीवास्तव का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। इस गीत को गाया है अलका याग्निक और कुमार सानू ने। संगीत से सजाया है अनु मलिक ने।

श्रोताओं, ये पत्र हम तक पहुंचा है आप सभी लोगों का अनुरोध गीत में। बिलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जेबू निशा बेगम, अक्रम सैफी और आबाद खान का। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा। डाबर तालाब लोनी से हैं रजा अहमद, आरिश हुसैन, ईशान हुसैन, मरियम और बुशरा का। अशरफ खां छावनी मंदिर के सामने से हैं रामप्रसाद शर्मा, जयश्री देवी, वंदना शर्मा, मनोरमा देवी, अजय शर्मा, वंश छोटी, गौरी काकू, रीता, विनोद कुमार और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी। इनके दोस्त पुराना तलब डुमराव से हैं वली उल्लाह अंसारी, अरमानाज अंसारी और सोनम का। सारीमपुर बक्सर से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा बिहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी और बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती का। यादव मोहल्ला सुनावत मध्य प्रदेश से हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता और मुस्कान का। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास से हैं चनेठी बरेली से मुस्कान, विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव। मनोट कैंप पंजाब से हैं सतीश मिगलानी, सीमा शाइना, विशाल मिगलानी, सुप्रिया, अनमोल धर्मपाल और रमेश मिगलानी। प्रमिला आलोट जिला रतलाम से हैं मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजू भाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। आप सभी ने पत्र भेजा था प्रमिलागंज आलोट से। अजीत नगर मनोट पंजाब से हैं शिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर और रौनक दीप कौर का। आदर्श नगर मनोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा। और ये पत्र हमारे पास आया है जिला बरेली पुरानी मस्जिद करेली बरेली से बबलू अब्रार, मोहम्मद तबरेज अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी और मस्तान बाबा का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है मेरे यार की शादी है। इस गीत को गाया है उदित नारायण और सोनू निगम ने और साथ ही सभी साथियों ने।

FM 100.4 MHz यानी कि आकाशवाणी बरेली आपकी सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट्स का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@cbs.gmail.com। एक बार फिर से सुन लीजिए, airbareli@cbs.gmail.com।

श्रोताओं, आप सभी का पत्र हम तक पहुंचा है रोद गीत में। पीर बहुड़ा बरेली से हैं आजाद खान दिलशाद मुस्तकीम और तबस्सुम। गैंगटा काशी धर्मपुर बरेली से हैं फहीम खान सिद्दीक अली साबिया। धुने नगर से हैं काठू ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया। उनके परिवार के सभी सदस्य बसाती इनके दोस्त महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा। ग्राम लोहारी से राजेश कुमार धनजे, राहुल कुमार धनजे, विशाल कुमार धनजे, शीला गायत्री। खुर्दी रोड मानपुर से हैं विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद, नीतु वैद। ग्राम अमलेश्वर से हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया ठाकुर का। बेरडी से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक, प्राची और तनु करमरकर का। डोंगरगांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये का। दिल्ली शहनमोरी गेट से हैं कन्हैयालाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार का। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से हैं सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र यादव, आनंद सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सुरश्री यादव का। अस्तुपुरा जिला मऊ से हैं मजर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, सादिक और साजिद। बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन, अब्दुल्ला आजाद। कनेरा मोहल्ला पटियाला से हैं बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से हैं बहरामपुर से त्रिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, वर्मा अभिषेक, सीमा वर्मा, अमित वर्मा, सचिन, समरराज आर्यन, बेबी आरोही, इशिका और अंजलि श्वेता वर्मा का। कुंज निवास धाकुन इज्जत नगर बरेली से हैं वीके जौहरी विनोद, अर्चना जौहरी, अर्पी जौहरी और शहना बी का। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से हैं हरदेव मीका, बलविंदर विरक, जैतिक विरक और मीका विरक का। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत। फिल्म का नाम है फिर मिलेंगे और इस गीत को गाया है सोनू निगम और श्रेया घोषाल।

और श्रोताओं, अब अनुरोध गीत की ये आखिरी पेशकश आप सभी के पसंद पर। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति और थनक्ष आरू साहू का। बक्सरिया फरीदपुर बरेली से हैं रामप्रसाद तोमर, मुरली देवी, मनोरमा देवी, भाग्यवती तोमर, रक्षपाल और बिट्टू तोमर का। लच्छनपुर से हैं रामजी साहू, जीवन लाल रजक।

मोपका भट्टापारा से हैं, भेवेंद्र कुमार साहू, लक्की हर्षित, सुमित्रा साहू जसपुर उत्तराखंड से हैं, रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रिफाकत, रानी तबस्सुम रुखसार और मोहम्मद आशिफ का। बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साई से हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेंद्र जी का। आजाद नगर लक्सर हिद्वार से हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साफिर राही और मेहराजहां। सुंदरखेड़ राजमाता नगर बुलडाणा महाराष्ट्र से हैं नरेंद्र नरवाड़े, ज्योति नरवाड़े, आकांक्षा नरवाड़े और आकाश कुमार का। बठिंडा पंजाब से हैं जगवाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जयस नायक, शोभा नायक और इनके परिवार के सभी सदस्य। मीरगंज बरेली से हैं अजीम अलवी, भाई कल्लू अलवी और दानिश सैफी। साथी हैं ताहिर महमूद और सुनील वर्मा। नजीबाबाद से मॉडल टाउन करनाल से हैं सुधीर नूतन, किरण ठाकुर, संदीप बुगलानी, जगमोहन प्रजापति। कृष्णानगर टीवी टावर सेमरी हिल्स नागपुर से हैं नाना डोंगर दिवे, रमाताई डोंगर दिवे, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षा ताई और राहुल डोंगर दिवे का। जिला बदायूं कस्बा बिलसी से हैं रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन अलवी, जानवी अलवी, हानिया, निजाकत, शाहीन, आहिल बाबू अलवी और आदिल अलवी का। ये पत्र हमारे पास पहुंचा है बहड़ी से अंजुम भाई और खालिदा बेगम का। लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला हराबाद राजस्थान से हैं हर्षिता, रामेश्वर, कान्हा, सफलता, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर बाई, प्रभुलाल बागरी, सत्यम, शिवम और सुंदरम का। ये पत्र हमारे पास पहुंचा है आप सभी प्यारे श्रोताओं का। ग्राम बिहारी से हैं आप सब, ग्राम बिहारी और रजबगढ़ से हैं आप सभी लोग, परवीन, सरफुद्दीन, वली, डब्लू और इनके परिवार के सभी सदस्य व साथी इनके दोस्त। सरगुजा मेन पार्ट से हैं सोनिया थापा, सोनम थापा, रेशमा थापा, आदिबा थापा। बठिंडा रोड डब्बाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। आप सभी लोगों ने पसंद किया है ये गीत, फिल्म का नाम है चलते चलते और इस गीत को गाया है अभिजीत और अलका याग्निक ने। शब्द रचना है जावेद अख्तर की और संगीत से सजाया है जतिन ललित ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत आपने पत्रों पर आधारित। जी हाँ, और हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर।

हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं। 100.4 FM पर श्रोताओं दोपहर के 2 बजे हैं और अब आप सुनेंगे रस रंग। रस रंग में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पहले ये देवी लोकगीत। ये लोकगीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सरिता कक्कड़ की आवाज में।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोता लीजिए, सुनिए अब उषा अग्रवाल की आवाज में ये लोकगीत।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं रस रंग आकाशवाणी के बरेली केंद्र से, जहां हैं आप वहां हैं हम, ओनली 100.4 FM पर। और लीजिए सुनिए अभी कव्वाली।

श्रोताओं लीजिए, आप सुनिए रस रंग में ये देवी गीत, लोकगीत। शशिलता के सुर में ही सुनवाते हैं आपको ये देवी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे रस रंग। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM पर। दोपहर के 2:30 होने वाले हैं। अब आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से। रिले करेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गाना है आओ प्यार करें। इस फिल्म से आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है उषा खन्ना का।

0: हम सब आईसीयू यानी इंटेंसिव केयर यूनिट के नाम से एकदम डर जाते हैं, दहशत में आ जाते हैं।
1: अभी तो हम बहुत अच्छे स्थिति में हैं। जो मृत्यु दर होता है, मोर्टेलिटी है, वो 10% भी नहीं होती है।
0: आईसीयू में कैसे की जाती है मरीजों की देखभाल और क्या चल रहा होता है डॉक्टरों के मन में?
1: हम लोग है तो इंसान ही ना, पर्दे के उस पार जाके डॉक्टर हो जाते हैं, बट फीलिंग तो वही रहती है ना, फीलिंग थोड़ी ना बदल जाएगी।
0: हमने बुलाया विविध भारती के स्टूडियो में इंटेंसिव केयर स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप वर्मा को। सेहतनामा 12 अक्टूबर शाम 4 बजे और 13 अक्टूबर सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आपकी परछाइयां, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहंदी अली खां के बोल, मदन मोहन का संगीत।

0: रचते हैं फिल्मों का बैकग्राउंड म्यूजिक।
1: बैकग्राउंड म्यूजिक सिर्फ म्यूजिक यानी कंपोजर का काम नहीं है, वो डायरेक्टर का एक विजन होता है।
0: उन्होंने बताया बहुचर्चित फिल्म हनुमान अंश में पार्श्व संगीत का अनुभव।
1: तो इसके लिए मैं एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का चुनाव कर रहा था कि जो कि एक ओवरऑल फिल्म के दौरान ये बजे, वहाँ रहे, उसकी अनुभूति हो, पर आप पिन पॉइंट ना कर पाए कि क्या इंस्ट्रूमेंट बज रहा है।
0: अपनी संगीत यात्रा और जीवन यात्रा के किस्से हमसे बांटने आ रहे हैं म्यूजिक कंपोजर और बैकग्राउंड म्यूजिक के महारथी धीरेन्द्र मुलकलवार। सुनिए बॉम्बे टॉकीज 17 अक्टूबर शाम 4 बजे से और 18 अक्टूबर सुबह 10 बजे से देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में असद भोपाली का लिखा हुआ गाना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत, फिल्म आया तूफान।

0: संगीत की दुनिया, लेखन की संवेदना और रचनात्मक सफर की कुछ अनकही बातें। इस बार मैटिनी शो में हमारे साथ होंगे संगीतकार और लेखक डॉक्टर शरद मणि त्रिपाठी। उनसे होगी संगीत, साहित्य और उनकी रचनात्मक यात्रा पर दिलचस्प बातचीत।
1: स्वरों को जो आप ध्यान से देखेंगे, उन पर गौर करेंगे, उनको साधेंगे, तब वो चीज आपको मिलेगी जो साइंटिफिक होगी।
0: साथ होंगे कुछ सुर, कुछ शब्द और ढेरों यादें। 17 अक्टूबर सुबह 11 बजे मैटिनी शो, सिर्फ विविध भारती पर।
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। चित्रलेखा इस फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, संगीत है रोशन का।

शकील बदायूनी का लिखा और रवि का संगीत बद्ध किया ये गाना आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है दूर की आवाज।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: दिया ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवी एफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजों में शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना आइए अब सुनते हैं। शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम आई मिलन की बेला।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, बेटी बेटे। इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल शंकर जयकिशन का संगीत है।

0: इस गीत के साथ ही आज का सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम संपन्न होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।
0: आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम आप सुनेंगे मंजू द्विवेदी के साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में।
1: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियाँ एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
1: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है। कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्टकार्ड भेजें। और ये चिट्ठियां आपको भेजनी कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
3: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
4: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।

तो चलिए आज के इस मनचाही गीत कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहला गीत सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना। आशा भोसले की आवाज, आनंद बख्शी की बोल और संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। इस गीत को सुनना चाहते हैं रमन अग्रवाल लुधियाना से। और इसके अलावा फरमाइश भेजने वाले हमारे श्रोता हैं विवेक देशमुख, दीपक विज देशमुख और अनिरुद्ध देशमुख। आपका पत्र आया है समता कॉलोनी

देशमुख, आपका पत्र आया है समता कॉलोनी कठोरा रोड अमरावती महाराष्ट्र से, और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन और अंकुश अरोड़ा ने फरमाइश भेजी है, और प्रणाम सिटी खंडवा से सुभाष खंडाले, मंदा खंडाले, राजेश अंजलि और पिंटू खंडाले का पत्र हमें मिला है। आइए सुनते हैं लोफर फिल्म का ये गाना।

और बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य, ग्राम जंजगिरी दुर्ग से मयंक कुमार मैथिल और विनय कुमार मैथिल, जवाहरगंज जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। आपकी पसंद का है धरती फिल्म का ये गाना।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गाना है धरती फिल्म से, आवाज मोहम्मद रफी की, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत शंकर जयकिशन का। इस गाने को सुनने के लिए फरमाइश हमारे पास आई है बाबा बैजनाथ धाम झारखंड से मनोज केशरी, पूजा केशरी और श्रद्धानंद केशरी की, श्री रामपुर भोकर से हरिभाऊ बिड़वे, पूजा, अनिकेत, शुभांगी, श्रावण और अनीता बिड़वे की।

आपका मनचाहा अगला जो गीत है वो लता मंगेशकर और बप्पी लहिरी की आवाजों में आपकी खातिर इस फिल्म का गाना है, शैली शैलेंद्र के बोल और संगीत।

गीत बप्पी लाहिरी का। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है धाड़ी नांदूरा से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य और वैशाली बाठे ने, और इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया ने, आजाद नगर बक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां ने, और इसके अलावा विनोद कुमार अफ्रीका वाला, इनका पत्र आया है पातड़ी जिला सुरेंद्र नगर गुजरात से, और नंदग्राम गाजियाबाद से बाबूराम आनंद, बीना गौरव, प्रतीक्षा शिवानी, चंचल और खुशी आनंद का। आपकी पसंद का है आपकी खातिर इस फिल्म का ये गाना।

खांजी पीर उदयपुर से जब्बार मोहम्मद, फरीदा बानो, नजीब खान, बाबू भाई और अशरफ खान, ग्राम बगोता जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से रामेश्वर रैकवार, पीयूष, तरुण, दीपेश, दयानंद और राम मिलन रैकवार और महामाया प्रसाद ओझा। आपका पत्र अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ से आया है। सहारनपुर से सुरेश नारंग, आशु पथिक, सोनाली और कृषिव नारंग। कृष्णानगर टीवी टावर सेमिनरी हिल्स नागपुर से नाना डोंगर दिवे, रमाताई, सीमाताई, रीमाताई, दीक्षाताई और राहुल डोंगर दिवे का पत्र हमें मिला है। आपने फरमाइश किया है भाभी फिल्म के गाने के लिए। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें, राजेंद्र कृष्ण के बोल और संगीत है चित्रगुप्त का।

अगला जो गीत है जिसकी फरमाइश हमें श्रोताओं ने लिख भेजी है वो है दीवाना फिल्म का गाना। कुमार सानू, अलका याग्निक और साथियों की आवाजें, समीर के बोल हैं, संगीत है नदीम श्रवण का। फरमाइश करने वाले श्रोता हैं छत्तीसगढ़ पथरिया भरेवा से चंदूलाल सिंगरोल, नारायणी सिंगरोल, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरोल, रणपिस ने अकोला से शिवराज भारती, टीना तनीषा, राज भारती, रीनाताई, रोहित और राज भारती। इसके अलावा नरोत्तम गोड़ लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से फरमाइश भेज रहे हैं और रथ चौक बहादुरपुर से संतोष कुमार सोनार, नरेंद्र दड़गंगवाल, रविंद्र सोनार, सन्नी मुन्ना और बंडू दादा। इसके अलावा एरोड्रम थाने से इंदौर से ये पत्र आया है, रेखा, संतोष रघुवंशी, शोभा, भूपेंद्र, बबीता, सुरेंद्र, पूजा, विक्की रघुवंशी का, स्वाति प्रयाग चौधरी, मालती चौधरी, गणेश कार्तिक, संजना परी खर्चे और ललिता नारायण खर्चे का। आपकी पसंद का ये गाना दीवाना फिल्म से।

0: दीवाना फिल्म का ये गाना यही था आज के मंचाई गीत कार्यक्रम का अंतिम गाना। इस कार्यक्रम में कार्यक्रम सहयोग हमें मिला धनश्री साठे से और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कांबले। अब मंजू द्विवेदी को आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: मन चाहेगी
2: मन चाहेगी
1: मन चाहेगी यह है विविध भारती।
2: नाट्य तरंग श्रोताओं, आज आपको सुनवाते हैं प्लास्टिक की घास, सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग। निर्देशक दीना नाथ।
3: मिस्टर शर्मा करमारकर के दफ्तर से निकलकर बिरला मंदिर की तरफ रवाना हुए। चलते चलते मन में कई किस्म के विचार उठ रहे थे।
4: करमारकर साहब जरूर मेरी मदद करेगा, पर बड़ी गलती हुई। करमारकर साहब के पास जाते हुए मुझे कुछ फल वल ले जाने चाहिए थे। फल कितने महंगे हो गए हैं। कुछ भी हो, ऐसे मुश्किल वक्त में पैसे का मुंह नहीं देखना चाहिए।
5: ओ देख के चलो, तुरी जाना है चलो, तो तू उत्ते पहुंच जाना सी।
6: ओए केड़े पिंडो आया है?
5: पता नहीं तेनू, शहर विच लोकी फुटपाथ ते चलदे ने।
3: अपने ही शहर में मिस्टर शर्मा आज परदेसी लग रहे थे। थके हारे घर पहुंचे तो मिस्टर शर्मा बाहर ही खड़ी थी।
7: क्यों जी, कुछ बात बनी?
4: हाँ, आज करमारकर साहब से मिला था।
7: क्या कहते हैं?
4: कहते हैं ऑल द बेस्ट।
7: इसका मतलब?
4: सब कुछ ठीक हो जाएगा।
7: हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। चलो बलाकटी।
8: ये कैसे समझ गया तुमने कि बलाकटी? करमारकर साहब ने सिर्फ यही तो कहा है कि उनकी प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा।
7: यानी वो खुद कुछ नहीं करेंगे?
4: कोशिश करेंगे।
7: तो आज के जमाने में ये भी कौन करता है? दोपहर को पड़ोसन आई थी, कह रही थी भटनागर साहब की भी एक बार ट्रांसफर हुई थी, मगर उन्होंने रुकवा ली थी।
4: हो सकता है।
7: कह रही थी भाई साहब से कहना, उनसे सलाह मशवरा कर ले।
8: अरे तुम तो जानती हो वो शराबी कबाबी आदमी है। पिताजी कहा करते थे शराब की इल्लत से बचने के लिए जरूरी है कि शराबी की संगत से बचो।
7: हाय हाय, जरा सी सलाह लेने से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा क्या? जाओ जाओ, मिलाओ ना दो मिनट।
8: ओहो, लेकिन वो
7: दो मिनट बात करने में क्या हर्ज है तो अपना पड़ोसी ही ना। अच्छा।

0: ठीक है, तुम कहती हो तो चला जाता हूँ।
1: अरे आइए आइए शर्मा जी।
2: नमस्ते नमस्ते
1: नमस्ते। अरे साहब धन्यभाग्य हमारे, आप हमारे घर पधारे।
2: अरे साहब कैसी बात कर रहे हैं आप,
1: इतने करीब रहकर भी कभी आए नहीं हैं
2: आप तो जानते ही हैं, दिन भर दफ्तर में ही निकल जाता है, काम इतना है कि घर पर भी लाना पड़ता है।
1: आप देखिए।
2: हाँ बस मैं ठीक हूँ ठीक हूँ।
1: और सुनाइए।
2: वो बस ऐसा था कि
1: पहले ये बताइए क्या लेंगे आप।
2: नहीं,
1: पानी है सोडा?
2: नहीं नहीं मैं नहीं लेता, ये मैं नहीं लेता।
1: मैं भी नहीं, आई डोंट ड्रिंक।
2: वो बात ये है, मैं आपसे कुछ सलाह लेना चाहता था, योर एडवाइस।
1: आई डोंट ड्रिंक।
2: हाँ वो तो बहुत अच्छी बात है, दरअसल हुआ क्या कि अचानक
1: यू नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
2: हाँ हाँ
1: आप इसे अपना ही घर समझ।
2: जी हाँ जी हाँ, मैं अपना ही घर समझ कर आया हूँ। क्या बताऊँ, बहुत विपता आन पड़ी है, मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
1: बहुत बुरी बात, मैंने बस सब छोड़ दिया है। आई डोंट ड्रिंक।
2: सुना है आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि?
1: हाँ क्या हुआ?
2: सुना है आपके भी ट्रांसफर का कुछ चक्कर चला था।
1: चक्कर? घनघोर चक्कर, बट आई डोंट ड्रिंक।
2: मैं वो ट्रांसफर की बात कर रहा था।
1: ट्रांसफर करना किसी को घर से उजाड़ना, बहुत कोशिश की उन्होंने, बहुत कोशिश की।
2: फिर आपने क्या किया?
1: बहुत कोशिश की उन्होंने।
2: फिर आपने क्या किया?
1: मैंने
2: हाँ हाँ आपने क्या किया?
1: मैं ऊपर गया।
2: हाँ
1: और कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी।
2: फिर
1: मैंने उनसे कहा मेरी ट्रांसफर रोक दी जाए।
2: तो आपकी ट्रांसफर रोक दी गई? फिर
1: मैं और ऊपर गया।
2: अच्छा फिर
1: वहां भी न रुके
2: तो
1: मैं और ऊपर गया।
2: और वहां? हाँ फिर वहां क्या हुआ?
1: वहां क्या होना था? आई डोंट ड्रिंक।
2: और वो लोग?
1: वो लोग नहीं माने।
2: फिर आपने क्या किया?
1: करना क्या था, कह दिया उनसे।
2: क्या
1: कह दिया उनसे? नहीं मान दे तो कर लो ट्रांसफर। पहले इसके के ऑर्डर मेरे दफ्तर पहुंचे, मैंने लीव ले ली।
2: छुट्टी ले ली? कितनी?
1: एक महीने की, फिर दो महीने की, फिर तीसरे महीने की।
2: लेकिन इतनी लंबी ली?
1: मेडिकल।
2: यानी आपने ऐसे ही सर्टिफिकेट वगैरह?
1: नो मिस्टर शर्मा, आई डोंट ड्रिंक।
2: जी जानता हूँ, लेकिन वो सर्टिफिकेट?
1: पहले तीन महीने का झूठा सर्टिफिकेट और उसके बाद का सच्चा।
2: क्या मतलब?
1: तीन महीने की छुट्टी थी, काम का कुछ था नहीं। ऐसे ही कभी कभार जरा सा शौक कर लेता था। वैसे यू नो आई डोंट ड्रिंक। बस तीसरे महीने लीवर, यू नो मिस्टर शर्मा, लीवर।
2: जिगर जिगर
1: बस बोल गया, हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ा, छूटे सर्टिफिकेट की जरूरत भी खत्म हो गई।
2: हाँ और आपके ट्रांसफर ऑर्डर्स?
1: जब दफ्तर ज्वाइन ही नहीं करूंगा तो ऑर्डर सर्व कैसे करेंगे? सारे कहते थे ट्रांसफर रुक नहीं सकती, अब रुकी है ना, साल भर से ये नहीं रुकी है बराबर।
3: हाँ जी मिला है, क्या मशवरा दिया उन्होंने?
2: शराब पियो, अपना जिगर खराब करो, अस्पताल में दाखिल हो जाओ। सरकारी ट्रांसफर तो अपने आप रुक जाएगा, इस दुनिया से ट्रांसफर भले ही हो जाए।
4: मैंने तो आपको पहले ही कहा था पिताजी, ये सब एक्शन बेकार है, सीधी उंगली से कभी घी नहीं निकलता, बिना ढोल बजाए कोई नहीं सुनता।
2: तो क्या करूं फिर?
4: मेरी मानिए तो यूनियन लीडर से मिलिए।
2: यूनियन? मैंने तो आज तक किसी यूनियन को ज्वाइन नहीं किया।
4: यही यही यही तो गलती की है आपने, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मेरी मानिए, कल सुबह यूनियन के लीडर से मिलिए, जो काम ऑफिसर्स नहीं कर सके ये मिनटों में कर लेते हैं।
2: लेकिन हमारी यूनियन का लीडर तो शायद घनश्याम है।
4: ओ, जो कोई भी हो उसके घर जाकर उससे फौरन मिलिए।
2: ये कैसे हो सकता है, वो तो क्लास फोर है।
4: और बस बस यही तो कमजोरी है हम लोगों में, हम लोग क्लासों के चक्कर में फंसकर बट गए। क्लास वन क्लास टू से नहीं मिलता, क्लास टू क्लास फोर से बात नहीं करना चाहता, और इसी बात का फायदा उठाकर वो आप पर वार करते हैं, इंसानों को उंगलियों पर नचाते हैं।
3: ठीक ही तो कहता है किशन, उस नीच को भूल के जहाँ से भी मदद मिलती हो ले लेनी चाहिए, जरूर मिल आई जाकर सुबह उससे।
2: अच्छा अगर तुम लोग कहते हो तो मिल आऊंगा। हाँ मैंने आ गया क्या?
3: वो बेचारा भी इसी चक्कर में किसी से मिलने गया है।
2: और उषा?
3: उषा उसने तो कल से रो रो के अपना बुरा हाल कर रखा है, ना कुछ खाया है ना पिया है।

0: इस ट्रांसफर से उसे इतना सदमा
1: हुआ। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, उसके तो आंसू भी नहीं थमते।
2: अरे बस बस उषा, धीरज रखो, क्यों रो रो कर अपना मन हलकान कर रही हो?
1: न जाने तुम किस पत्थर के बने हो, मैं तो ये सोच सोच कर कि हम हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने वाले हैं, बस होश ही गवा बैठी हूँ। पढ़ने की कोशिश करती हूँ तो आंखों में पानी भर आता है और तुम्हारी सूरत डूबती नजर आती है।
2: मौत से पहले मन में कायरों का काम है, जब जुदा होने का वक्त आएगा तब जुदाई की आग में जलकर जी लेंगे। लेकिन अभी तो तुम मेरे पास हो, फिर अभी से रोना धोना क्यों?
1: तुम मतलब होते ही बेवफा हो, बस सिर्फ इस पल के जीने को जीना समझते हो। मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे साथ जीने के ख्वाब देखे हैं, लेकिन पिताजी के इस ट्रांसफर ने मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर कर दिए।
2: घबराओ नहीं उषा, भगवान ने चाहा तो ये ट्रांसफर जरूर रुक जाएगा और तुम्हारे ख्वाब चकनाचूर होने से बच जाएंगे। तुमने सुना नहीं, सच्चे प्रेमियों की आहो पुकार में बड़ी शक्ति होती है। आओ हम और तुम मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि वो दो दिलों को टूटने से बचा ले और इस ट्रांसफर को रुकवा दे।
1: राकेश, भगवान हमारी सुन लेंगे।
2: अगर प्यार हमारा सच्चा है तो
1: मेरा तो बिल्कुल सच्चा है।
2: और मेरे प्रेम पर कोई संदेह है तुम्हें?
1: संदेह ना करूं तो और क्या करूं? हम लोग इतनी विपता में फंसे, तुमसे हमेशा हमेशा के लिए जुदा होने का खतरा है और तुम सिर्फ भगवान से प्रार्थना करने को कहते हो।
2: हाँ हाँ, उसकी दो वजह है, एक भगवान की शक्ति अपरंपार है और दूसरे उसका सेवा मैं कर ही क्या सकता हूँ। मैं किसी बड़े आदमी का बेटा नहीं हूँ जो इस ट्रांसफर को रुकवा सकूं।
1: मुझे पहले पता होता तो मैं ये भूल कभी ना करती।
2: कैसी भूल उषी?
1: किसी कवि की बजाय किसी बड़े आदमी के बेटे से प्रेम करती।
2: हाँ हाँ, तो अभी क्या बिगड़ा है, जाओ ढूंढ लो कोई।
1: तुम जानते हो ना, कोई शरीफ लड़की बार बार प्रेम नहीं कर सकती, इसीलिए ऐसा कह रहे हो।
2: उषा चुप करो, चुप कर जाओ मेरी प्यारी, मेरी जान से दुलारी, अब चुप कर जाओ। जुदाई के वक्त तो रोना ही रोना है, कुछ आंसू उस वक्त के लिए बचा के रखो। मैं वचन देता हूँ, अगर तुम आगरे चली गई तो मैं संडे के संडे तुमसे मिलने वहां आया करूंगा।
1: आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, मुझे यकीन है मेरे जाते ही तुम मुझे भूल जाओगे।
2: उषा, अगर तुम्हें कभी ऐसा लगे कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ
1: तो
2: तुम भी मुझे हमेशा के लिए भुला देना।
1: मैंने तुमसे प्रेम भूलने के लिए नहीं, तुम्हें पाने के लिए किया है। सुनो, मुझे एक तरकीब समझ में आई है।
2: क्या?
1: हम शादी कर ले।
2: ये कैसे हो सकता है?
1: बारात लाकर, बाजी बजाकर।
2: नहीं, मेरा मतलब है, मेरे माँ बाप तैयार हूँ, तुम्हारे माँ बाप माने तो।
1: मैं कह दूंगी अपने पिताजी से, या तो अपनी ट्रांसफर रुकवाए या दिल्ली छोड़ने से पहले मेरी शादी तुम्हारे साथ करते जाए। बस मैंने फैसला कर लिया है।
3: सुना, आपकी बेटी क्या कह रही है?
0: क्या बात है?
3: कहती है अगर ट्रांसफर ना रुकी तो वो यहाँ किसी से शादी कर लेगी।
0: लेकिन मैंने तो अभी उसकी शादी कहीं तय नहीं की।
3: राम जाने क्या उल जलूल बक रही है।
0: हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहा है मेरी। जरा सा संकट आया तो सारा परिवार ही मेरी जान का दुश्मन हो रहा है।
4: इस छछुंदर की अकल तो मैं ठिकाने लगा दूंगा। आप जल्दी से जाइए, घनश्याम जी से मिलिए।
0: घनश्याम जी?
4: ओफो पिताजी, समझा कीजिए, लीडर यूनियन का हो या देश का, उसके साथ जी लगाया ही जाता है।
0: जी
4: जी।
5: आज 19 जून है और सुबह सवेरे ही मिस्टर शर्मा चले हैं यूनियन लीडर घनश्याम जी से मिलने।

0: आइए आइए बड़े बाबू, धन्य भाग हमारे, आपके चरण हमारी कुटिया पर पड़े। आपने कष्ट क्यों किया, सेवक को बुला भेजा होता।
1: अरे तुमने मुझे पहचान लिया घनश्याम जी?
0: क्या बात करते हो बड़े बाबू, 15 साल पहले मेरी पोस्टिंग आपके ही दफ्तर में तो थी। क्यों?
1: मुझे तो याद है, पर बहुत वक्त गुजर गया था इसलिए मैंने सोचा कि शायद।
0: क्या पियेंगे आप, ठंडा या गर्म? अरे सुनती हो, जरा देख तो कौन आया है, जरा शरबत वरबत तो
1: नहीं? नहीं, नहीं, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है।
0: हा?
1: मुझे जरा जल्दी ही वापस भी जाना है। हाँ, वो मैं अपने एक निजी काम से आया था।
0: हुक्म दें।
1: वो ऐसा है कि मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं।
0: ट्रांसफर?

0: और आपकी राम राम राम, यह किस दुष्ट का काम है?
1: ट्रांसफर जिस किसी ने भी किया है वह खुद ही भुगतेगा। हाँ तो बात इतनी सी है कि किसी तरह अगर ये ट्रांसफर रुक जाए तो।
2: किसी तरह से क्या बड़े बाबू, हर तरह से ये ट्रांसफर रुक नहीं होगी। आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैं आज ही ऊपर जाता हूँ और ये ट्रांसफर रुकवाता हूँ। अगर सीधी तरह नहीं माने तो परसों से स्ट्राइक, फिर नहीं माने तो हंगर स्ट्राइक, जनरल स्ट्राइक।
3: क्यों खड़ा है?
4: कुछ नहीं, वो
3: इस जुलूस के साथ है?
4: नहीं नहीं, मैं तो अपने काम से जा रहा हूँ।
3: तो भैया जाओ जाओ अपने काम पर जाओ, खड़े खड़े तमाशा क्या देख रहे हो?
4: हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। क्यों भाई साहब, ये मिस्टर घनश्याम जी का क्वार्टर?
5: वो सामने जहाँ बहुत से लोग बैठे हैं।
4: धन्यवाद धन्यवाद।
3: कहिए। कहिए क्या बात है
4: जी? वो घनश्याम जी का निवास।
3: ठीक है बोलिए।
4: उनसे मिलना है।
3: अपॉइंटमेंट लिया है?
4: नहीं अपॉइंटमेंट तो नहीं लिया।
3: फिर मुश्किल है, किसी और रोज आना।
4: लेकिन काम बहुत जरूरी था।
3: बिना जरूरी काम के तो यहाँ कोई आता नहीं। घनश्याम जी इस वक्त एक उपमंत्री जी से टेलीफोन पर बातचीत कर रहे हैं, इसके बाद दो MP उनसे मिलने के इंतजार में, और फिर वह दूसरी यूएन के सेक्रेटरी साहब भी आए हुए हैं।
4: कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर इंतजार कर लूंगा।
3: आपका नाम?
4: HP शर्मा।
3: ठीक है, बाहर लान पे बैठ जाइए, मौका मिला तो बुला लूंगा।
4: थैंक यू। सुनिए, यहाँ एक गिलास पानी मिलेगा?
3: इधर पीछे नल है।
4: थैंक यू।
3: मिस्टर शर्मा अंदर आइए।
4: थैंक यू। नमस्कार घनश्याम जी।
6: आइए रतनलाल जी, कहिए।
4: जी मैं HP शर्मा।
6: हाँ काम बताइए।
4: घनश्याम जी बहुत अनर्थ हुआ है मेरे।
6: वही तो पूछ रहा हूँ
4: जी। मेरे ट्रांसफर ऑर्डर्स आ गए हैं 17 जून को सुबह 10:29 पर, जब मैं दफ्तर में।
6: साल में कितनी बार होती है ऐसी ट्रांसफर?
4: 25 साल में पहली बार, पूरे 25 साल बाद।
6: तो फिर अनर्थ कैसा?
4: लेकिन जब इतने साल नहीं किया तो अब क्यों?
6: भाई वो तो सरकार की मर्जी है।
4: लेकिन हमारी मर्जी भी तो उन्हें पूछनी चाहिए थी, अगर आप चाहें तो।
6: देखो रतनलाल
4: जी, HP शर्मा हूँ। HP शर्मा, देखिए 15 साल पहले आपकी पोस्टिंग मेरे ही डिपार्टमेंट।
6: ठीक है, आप ऐसा कीजिए, अपनी रिप्रेजेंटेशन मेरे पास छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा।
4: लेकिन रिप्रेजेंटेशन तो मैं लेकर नहीं लाया हूँ
6: जी। बड़े अजीब आदमी है आप भी, रिप्रेजेंटेशन साथ तक नहीं लाए।
4: मैंने सोचा आपसे जबानी।
6: अरे साहब, इतनी बड़ी यूनियन का पूरा बोझ है मेरे कंधों पर, जरा सोचिए जुबानी में क्या क्या याद रख सकता हूँ।
4: मैं अभी लिख लाता हूँ।
6: उधर बाहर बाबू को दे दीजिए। जी सुनती हो?
4: नहीं नहीं, पानी पानी का कष्ट न करें मैं।
6: ओहो, हमारी यूनिफॉर्म भिजवा दो, दफ्तर को देर हो रही है।
7: जिस दौड़ धूप में 17, 18 और 19 जून गुजरे, उसी दौड़ धूप में 20 जून भी गुजर गई, लेकिन शर्मा जी को अपनी समस्या का अभी तक कोई हल नजर नहीं आया। दिन भर शर्मा जी इस दफ्तर से उस दफ्तर की खाक छानते रहे। उषा शर्मा राकेश का हाथ पकड़ पकड़ कर शादी के लिए मनाती रही, शादी न हुई तो अपनी जान दे देने की धमकी देती रही। उधर कृष्ण कुमार सिगरेट पे सिगरेट फूंक सारी दुनिया फूंक डालने की तरकीबें सोचता रहा। मिसेस शर्मा हर तरह से मिस्टर शर्मा को यकीन दिलाने लगी कि ये मामला अब इंसान के बस से बाहर हो चुका है, इसे अब या तो सिर्फ भगवान या भगवान का कोई पहुंचा हुआ भगत ही हल कर सकता है, यानी नक्षत्र बाबा को बुलवाकर यज्ञ करवाया जाए। विनय हर शाम मिस्टर शर्मा को अपने दोस्त के डैडी से मिलने के लिए तैयार करता रहा।
8: आइए आइए मिस्टर शर्मा, मैं तो कई दिनों से आपके आने की राह देख रहा था। वो विनय ने बताया था मुझे।
4: हाँ, आना तो था, बस
8: ऐसे मामलों में देर नहीं करनी चाहिए। वैसे आजकल आपके मिनिस्टर कौन है?
4: जी वो मिनिस्टर तो, लेकिन ऑर्डर्स तो किसी अफसर ने।
8: नो नो नो, मैं ये अफसरों को मुंह बिल्कुल नहीं लगाता। यू नो आई कीप ओनली टॉप कॉन्टेक्ट्स।
4: जी
8: आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप मुझे जरा तमाम डिटेल्स लिखकर दे दीजिएगा, मैं आज ही आदमी काम पर लगाता हूँ। यू नो अंग्रेजों का जमाना इस लिहाज से बहुत अच्छा था, रिश्वत देकर सब काम हो जाते थे। लेकिन अब आजकल तो ये सब चलता नहीं है, बस

0: कॉन्टैक्ट की बात है
1: जी,
0: कॉन्टैक्ट मैं करूंगा, आप सिर्फ डिटेल्स दे दीजिएगा। बाकी जो हमारे आदमी इधर उधर जाएंगे उनके खर्चे वगैरह के लिए, वो आप ऐसा कीजिए कि अभी कोई 5,000 रुपए छोड़ जाइए, बाकी खर्चा मैं कर लूंगा, बाद में आता रहेगा।
1: 5,000?
0: हाँ, बस मेरा ख्याल है कि इतना ही खर्चा और आएगा।
1: वो तो
0: क्या किया जाए,
1: वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास तो इतना
0: पैसा। अरे शर्मा जी, ये कोई खर्चा थोड़े ही है, ये तो इन्वेस्टमेंट है। इस सीट पर रहेंगे तो कई 5,000 आ जाएंगे।
1: ना ना, ऐसी बात नहीं है, ऐसी कोई सीट नहीं है ये।
0: तो फिर ट्रांसफर से परेशान क्यों है?
1: मुझे मैं अपने घर से बेघर हो जाना नहीं चाहता। देखिए ना, मेरा सारा घर बर्बाद हो रहा है, सारा परिवार बिखर जाएगा।
0: अम्बक, ऐसा कुछ नहीं होगा, वैसे आपकी मर्जी है। बात यह है शर्मा जी कि मेरा बिजनेस ही पब्लिक रिलेशंस का है। आपका ये काम 1,500 में हो सकता होता तो ना मानता, लेकिन खर्चा तो 10,000 हो सकता है। अब इतना पैसा मैं भी कहां से, आप भी सोचिए।
1: आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस में होता तो इस ट्रांसफर को रुकवाने के लिए 20,000 भी खर्च कर डालता, लेकिन क्या करूं, सारी जिंदगी की जमा पूंजी भी इतनी नहीं कि 5,000 खर्च कर सकूं।
0: ओह, आई सी। अरे मैं तो भूल ही गया था, आपके लिए ठंडा मंगवाओ।
1: नहीं नहीं, बस शुक्रिया, फिर कभी हाजिर हो जाऊंगा।
0: आपका अपना ही घर है, वैसे कभी कोई काम हो तो बिना झिझक चले आइएगा। कॉन्टैक्ट मांगने में मुझसे बेहतर आपको कोई नहीं मिलेगा।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: नक्षत्र बाबा कह रहे थे बड़ा ही अच्छा मुहूर्त निकला है यज्ञ का।
1: यज्ञ तो ठीक है, पर पीछे ये हलवाई वगैरह।
2: 201 ब्राह्मणों का भोज करवाना है यज्ञ के बाद।
1: 201 ब्राह्मणों का?
2: हलवा पूरी समेत कुल 7 पकवान पकेंगे। वो तो कह रहे थे वनस्पति में बनवा लो, पर मेरा मन नहीं माना, देवताओं का यज्ञ है, यहाँ कंजूसी कैसी। मैंने देसी घी के भी कनस्तर मंगवा लिए।
1: मगर इतना पैसा
2: तो कौन सा अभी दे देना है, जब तनख्वाह आएगी हिसाब चुका देंगे।
3: पिताजी, कोई आपसे मिलने आए?
4: अरे भाई जिजमान, आओ आओ, पूर्ण आहुति का समय हो गया है।
1: जो भी हो से बैठाओ, मैं यज्ञ करवा लूँ।
2: नक्षत्र बाबा, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी है, आप भी यज्ञ में कोई कमी ना छोड़े, ये ग्रह तो किसी तरह चलना ही चाहिए।
4: कैसी बातें करती हो देवी, नक्षत्र बाबा के यज्ञ कभी निष्फल नहीं जाते।
2: बाबा, ग्रह चल जाएंगे ना।
4: भाई, अन्य महात्मा संत ग्रहों से प्रार्थना कर अपने जिजमानों के काम निकलवाते हैं, लेकिन नक्षत्र बाबा अपने योग बल से ग्रहों के ऑर्बिट बदल डालते हैं। ऑर्बिट? ऑर्बिट का मतलब समझती है ना देवी?
1: मैं समझता हूँ महाराज।
4: तो ये भी समझ ले हर प्रसाद की तेरी जगह आने वाले दुष्ट के नक्षत्र बहुत बलवान हो रहे थे, हमने अभी अभी अपनी तपस्या के योग बल से देखा।
1: सच बाबा?
4: हाँ, देवी को बताया था हमने कि कर 1.5 तोले सोने का दान।
1: 1.5 तोला सोना?
4: देवी के दान करते ही अपने यज्ञ बल से हमने दुष्ट के ग्रहों के ऑर्बिट ऊपर नीचे कर डाले।
1: राजन जी, 1.5 तोला सोने का दान?
2: ये वक्त क्या सोने का मुंह देखने का है। बाबा, अब तो ट्रांसफर रुक जाएगी ना?
4: अवश्य रुक जाएगा, अवश्य रुक जाएगा।
1: सच कह रहे हैं आप?
4: अरे, ग्रहों के ऑर्बिट बदलते ही वो दुष्ट अपनी बुद्धि खो बैठेगा, फिर रास्ता खो बैठेगा, और फिर भी अगर उसने इधर आने की हिम्मत की तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। बोलो, जब चार्ज लेने वाला ही नहीं आएगा तो चार्ज देने वाला कहाँ जाएगा।
1: धन्य हो बाबा, धन्य हो।
5: माजी माजी माजी,
2: क्या बात है, ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो?
5: माजी, पूरे 200 ब्राह्मण तो जीन चुके हैं, परंतु 201वां ब्राह्मण नहीं मिल रहा है और मुहूर्त निकलता जा रहा है।
2: हाय भगवान, ये कैसा अपशकुन है, अब क्या होगा?
6: मैं आपकी कुछ सहायता कर सकता हूँ?
7: पिताजी, ये आपसे मिलने आए थे।
6: ओह, आप क्या 100% ब्राह्मण चंद्रकांत यादव?
2: तेरी महिमा अपरंपार है भगवान, क्या समय पर ब्राह्मण भेजा है। जाओ बेटा, ले जाओ इन्हें और आदर सम्मान के साथ भोज करवा।
7: आइए चंद्रकांत जी।
2: देखा आपने, आज का दिन कितना शुभ है, हर कार्य अपने आप संपन्न हो रहा है। एक ब्राह्मण कम हो गया तो मानो स्वयं भगवान ब्राह्मण का रूप धरकर मेरे घर में आए।
7: चंद्रकांत यानी सीके यादव? नहीं, ये चंद्रकांत,
2: क्या ब्राह्मण नहीं?
1: सी के यादव है
2: तो क्या ब्राह्मण?

0: ये भगवान नहीं यमदूत है, यमदूत।
1: क्या कह रहे हैं आप?
0: ये हमारे लिए यमदूत है, ये वही है, वही है। नक्षत्र बाबा तो कहते थे कि छिन्न भिन्न हो जाएगा, रास्ता भूल जाएगा। अरे ये दुष्ट तो साक्षात घर में आधम का और भोजन भी खा गया।
1: ये क्या कह रहे हैं आप?
0: यही है वो चंद्रकांत यादव, यानी सी के यादव, जिसने कल मुझसे चार्ज ले मुझे यहाँ से रिलीव करना है। बस लाजवंती अब राम नाम ही बोलो, अंतकाल आ गया।
1: ए राम कैसा अंधेर है। अरे कोई नक्षत्र बाबा को तो बुला के लाओ जल्दी।
2: नक्षत्र बाबा तो जीम कर कभी के जा भी चुके।
1: आइए आइए, भोजन दक्षिणा सब व्यर्थ हो गया, सब व्यर्थ हो गया।
3: अब रोने धोने से क्या फायदा माँ?
4: बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर शर्मा। अरे ये क्या हुआ, आप लोग इस कदर उदास क्यों हैं?
1: अब हम तो चंद घड़ियों के ही मेहमान हैं।
4: लेकिन हुआ क्या है मिस्टर शर्मा?
3: खा पी कर कितना भोला बनता, पहले मालूम हो जाता कि तुम कौन हो तो हलवे पूरी के बजाय किसी और तरह से तुम्हारी खातिर करते।
4: लेकिन मेरा कसूर क्या है, मैंने किया क्या है?
3: तो सच सच बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो?
4: आप तो जानते हैं मिस्टर शर्मा, मैं इंदौर से आया हूँ और कल मुझे आपसे चार्ज लेना है।
1: तुम सचमुच आ गए हो?
4: क्या मुझे नहीं आना चाहिए था?
0: कहाँ के रहने वाले हो?
4: इंदौर का।
0: और तुम्हारे पिताजी?
4: इंदौर के।
0: और तुम्हारे दादा?
4: दादा, पड़दादा और लकड़ दादा सभी इंदौर के।
0: फिर भी तुम मुंह उठाए यहाँ चले आए?
4: लेकिन मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, सरकारी नौकर हूँ, जहाँ भी ट्रांसफर होगा जाऊँगा।
0: इसलिए कि तुम लोगों का अपनी धरती अपनी सभ्यता से कोई लगाव नहीं है। अगर जरा भी मान सम्मान वाले होते तो अपने पूर्वजों का घर छोड़ने से पहले अपने प्राण दे देते।
1: और यमदूत की तरह यहाँ आके हमारा घर बार न उजाड़ देते।
4: लेकिन मैंने किसका घर बार उजाड़ा है?
1: किसका नहीं उजाड़ा है पिताजी, पिताजी अब क्या होगा?
0: जाने का समय आ गया है बेटा।
3: सब तरकीबें नाकाम हुई, कुछ भी न वफा ने काम किया।
1: जाने से पहले मेरे हाथ तो पीले करते जाइए, आप ना हुए तो कन्यादान कैसे होगा पिताजी?
3: फिक्र ना करो उषा, बहनदान का कर्तव्य मैं निभा दूंगा।
5: बट पिताजी, आई कांट गो टू आगा विद यू।
0: ठीक ही कहते हो बेटा, इस संसार में कौन किसके साथ गया है।
4: दिल्ली से आगरा 100-125 मील का फासला भी नहीं शर्मा जी, इस मामूली से ट्रांसफर से आप इस कदर परेशान हैं?
0: सारा परिवार तबाह हो गया है, घर से बेघर हो गया हूँ और तुम इसे मामूली सा ट्रांसफर कहते हो? तुम उन लोगों में से हो जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी धरती, अपने घर से कोई लगाव नहीं। तुम लोग अपनी धरती माँ से अपना संबंध तोड़ चुके हो।
4: शायद आप ठीक ही कहते हैं, लेकिन आज 4.5 इंच की जड़ों वाली दूब बनकर धरती से चिपके रहने का युग नहीं, आज मॉडर्न युग है। मॉडर्न युग में रहने के लिए जब हमने सूती कपड़े छोड़ प्लास्टिक के कपड़े पहनने शुरू कर दिए हैं शर्मा जी, तो अपना जीवन प्लास्टिक की घास होना चाहिए, यहां उखड़े वहां लगे, सदा हरी भरी।
5: प्लास्टिक की घास कहां मिलती है पिताजी?
0: चंद्रकांत जैसे बेवकूफों के सर पर।
6: 22 जून साल का सबसे लंबा दिन चढ़ चुका था। सुबह के 6 बजे थे। लोधी रोड के क्वार्टर नंबर F2 15/614 के सामने एक 3-व्हीलर खड़ा था, जिसमें मुख्त सिर सा सामान रखा जा रहा था। HP शर्मा सिर झुकाए बाहर निकले। सारा परिवार गुम सुम उन्हें नई दिल्ली स्टेशन के लिए रवाना होते हुए देख रहा था। लाचार बेबस शर्मा जी ने बड़ी हसरत से क्वार्टर पर लगी अपनी छोटी सी नेम प्लेट की तरफ देखा और 3-व्हीलर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता

0: प्लास्टिक की घास, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आप सुन रहे थे। सुरेंद्र गुलाटी के लिखे इस नाटक के निर्देशक थे दीनानाथ। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: वो बताएंगे फिल्म की शूटिंग की कहानियाँ, सृजन की बातें, साझा करेंगे सिनेमा की बातें, अपने जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से।
2: एज अ भक्त, एज अ नीम करोली बाबाज फॉलोअर, तो मैं उनकी जीवन दर्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, पर एज अ फिल्म मेकर मैं क्या दे रहा हूँ समाज को, तो उसमें मैं भाषा दे रहा हूँ, उसमें बोलियों के बारे में बता रहा हूँ, उसके बारे में मिट्टी बता रहा हूँ कि मिट्टी क्या है, उसके बाद मैं स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहा हूँ, मानवीता को डिस्कस कर रहा हूँ, संवेदना को डिस्कस कर रहा हूँ, मैं द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ आसक्ति अनासक्ति को डिस्कस कर रहा हूँ।
1: वो है हनुमान अंश के निर्देशक विशाल चतुर्वेदी।
3: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: आज के मेहमान 14 अक्टूबर शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जिद पे आ गई पार्वती पार्वती पार्वती।

0: ये है विविध भारती।
1: उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 4 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये कार्यक्रम शुरू होने से पहले आप सारे श्रोताओं को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी आज आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन बात कर रहे हैं?
3: जी मैम अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम।
3: मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी बात कर रहा हूँ।
2: जी वकार जी कैसे हैं आप?
3: जी मैं अच्छा हूँ।
2: और क्या कर रहे हैं इस समय?
3: मैम इस समय तो मैं कॉल लगा रहा था।
2: अच्छा,
3: और कॉल लग भी गया।
2: बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने कॉल लगाई और आपकी कॉल लग गई। आज दिन भी तो कितना मुबारक है ना।
3: हाँ मैम बहुत ही मुबारक दिन है, शारदीय नवरात्र शुरू हो चुके हैं।
2: जी
3: जी मैम। और आज का आपका विषय भी बहुत अच्छा है।
2: जी हाँ जी हाँ, विषय ऐसा है जो हर इंसान तो क्या, जो परिंदे हैं हर चीज को टच करता हुआ विषय है।
3: सभी से जुड़ा हुआ, सभी से, ये केवल इंसानों से जुड़ा हुआ शब्द नहीं है। माँ का जो स्वरूप है हर, ये चाहे पशु हो पक्षी हो,
2: जी जी
3: है ना मैम,
2: पूरी प्रकृति से जुड़ा हुआ है आज का विषय। तो आप बताइए आपको माँ का कौन सा स्वरूप सबसे ज्यादा पसंद है?
3: माँ का जो स्वरूप है मैं, मुझे ममतामय, जो माँ की ममता वाला स्वरूप है।
2: जी
3: जी, जब बच्चा जन्म लेता है और समय जो उसको प्यार मिलता है और जो माँ की खुशी होती है बिल्कुल एकदम दोगुनी हो जाती है।
2: जी जी वो तो है। अच्छा एक बात बताइए, कभी आपने, वैसे तो माँ अपने बच्चे के लिए सारे त्याग भी करती है, बलिदान भी करती है और बहुत प्यार करती है और खेलना हंसना बोलना सब कुछ बच्चे के साथ उसका जीवन ऐसा रहता है कि बच्चे को ही समर्पित रहता है, लेकिन कभी कोई आप अपनी जो माँ है उसमें

0: कभी आपने ऐसा लगा कि ये तो मेरी माँ देवी के जैसी लग रही है कि इसने ऐसा काम किया कि ये काम तो एक भगवान के स्वरूप या देवी के स्वरूप?
1: हाँ, अरे मैम, एक चीज और भी है ना, जो माँ होती है ना मैम, वो भगवान का ही एक रूप है और उसी का दूसरा रूप है।
0: जी जी, तो आपको कभी कब ऐसा, कौन सा ऐसा काम आपने देखा या कौन सी ऐसी बात आपकी जिंदगी में हुई जो आपको ऐसा लगा कि अरे ये तो सबसे हटके माने
1: मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ
0: जी,
1: ये कुछ गलती हो जाती है, बचपन में भी हो जाती है, बड़े होके भी कुछ गलती ऐसी हो जाती है।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लेकिन बचपन में भी ऐसा होता है कि जब जो माँ है बच्चों को बहुत अधिक मतलब मारती है, उसकी पिटाई करती है, गुस्से में होती है, और उसके बाद वो खुद रोती है। ये मुझे सबसे अच्छा माँ का जो स्वरूप है वो लगता है कि वो उसको मतलब डांटने के या मारने के बाद भी वो बहुत रोती है अंदर से, भले ही वो सामने

0: देखने के या मानने के बाद भी वो बहुत रोती है अंदर से, भले ही वो सामने से कितने कठोर लगे, लेकिन एकांत में जाकर वो उसको फील करती है कि मैंने उसको क्यों मारा।
1: आपने माँ के इस रूप का बयान करके मेरी आंखों में आंसू ला दिए।
0: विषय ही ऐसा है कि चाहे वो पशु पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, कि जो, और पहली बार तो ये है मैम जो ये प्रोग्राम हमारा है, ये प्रोग्राम भी मुझे लग रहा है कि मतलब पूरा प्रोग्राम ही खत्म हो जाएगा, जो माँ के स्वरूप है, माँ की जो ममता है, उसका गुणगान खत्म ही नहीं होगा,
1: खत्म ही नहीं,
0: प्रोग्राम खत्म हो जाएगा।
1: जी जी बिल्कुल सही कहा, और बहुत अच्छे विचार आपने हमारे श्रोताओं के सामने रखे। और आज आपकी कॉल लगी है, गीत बताइए कौन सा सुनवा।
0: मैम गीत भी मैं इसी से मिलता जुलता सुनना चाहूंगा, फिल्म का नाम है लाडला
1: जी,
0: और उसका गीत है।

0: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: सबसे पहले मैडम आपको, तमाम सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैम।
0: जी आपको भी नमस्कार हम सबकी तरफ से।
1: जी आपकी आवाज़ से लग रहा है मेरी मुनव्वर जहाँ से बातचीत हो रही है इस प्रोग्राम में।
0: जी बिल्कुल आपने सही पहचाना, आपकी मुनव्वर जहाँ से बात हो रही है। नाम बताइए अपना।
1: मैं बात कर रहा हूँ आपसे जिला रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से, अमरजीत बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा अमरजीत जी कैसे हैं आप?
1: मैं काफी अच्छा हूँ मैडम, आप बताइए आप लोग कैसे?
0: आपके
1: आकाशवाणी बरेली परिवार में सभी लोग कैसे?
0: सब बरेली परिवार के सभी लोग खुश हैं, अच्छे हैं। और आप लोगों की कॉल्स आ जाती है, सारे लोग मिलके सुनते हैं किन किन श्रोताओं की कॉल्स आई थी और सुन के और ज्यादा खुश हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल मैम, और आकाशवाणी बरेली केंद्र वो केंद्र है जिसे हमें साथ ही साथ गीत और संगीत सुनने को मिलता है बराबर, और वो जानकारियाँ मिलती है जो हमारे परिवार के लिए और हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए काफी लाभदायक होती है।
0: जी बिल्कुल, लेकिन आज इस कार्यक्रम में हम आपसे एक जानकारी लेने वाले हैं। जी आज की जानकारी ये है, जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं तो आप बताइए आपको माँ का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है?
1: जी माँ का रूप तो मुझे सारे ही रूप अच्छे लगते हैं। जैसे अपनी घरवाली माँ की बात करें जिसने हमें जन्म दिया है,
0: जी जी,
1: तो वो माँ जब हमारे नाम से याद करती है, अगर हम कहीं बाहर होते हैं तो फोन कॉल के जरिए बात करती है, तो पूछती है हमारा बेटा कैसा है, और हम भी अपनी माँ को प्यार दे के उसी रूप से कहते हैं कि माँ जी हम बहुत अच्छे हैं, आप बताइए आप कैसी हो। और माँ को इतनी फिक्र होती है अगर घर से कहीं बेटा बाहर है काम के सिलसिले में या गांव में ही घर से बाहर है और वो उसने खाना नहीं खाया है, तो हमको कई यार दोस्तों से भी पूछेगी, जो फैमिली के लोग होते हैं भाई लोग उनसे ही मालूम करती है कि वो भाई तेरा दिखाई नहीं दे रहा। माँ को काफी चिंता लगी रहती है और उसी तरह माँ की फिक्र अपने बेटे को भी होना चाहिए और वो हम करते हैं।
0: जी बिल्कुल, बहुत खुशनसीब है वो माँ जिनके बेटे या बेटियाँ उनके बच्चे उनकी फिक्र करते हैं। अच्छा आप ये बता रहे हो कि माँ की सारी जो रूप है अच्छे लगते हैं, माँ जो पिटाई करती है वो रूप कैसा लगता है?
1: जी मैम मेरी माँ ने खास करके अभी तो मुझे पीटा नहीं है, बाकी हमारे डैडी जी हैं तो वो डांट देते हैं, बाकी हमारी माँ तो नहीं डांटती है, काफी प्यार देती है।
0: अच्छा,
1: और बाकी हम सारे भाई काफी होशियार हैं, और क्योंकि अक्सर हम अगर कोई भी गलती करते हैं तो उस गलती को हमें मान लेना चाहिए कि हमने वो गलती की है, तो उसको हम खुद साझा कर लेते हैं कि हमने गलती कर दी है, तो उस गलती को हम घर वालों से बता भी देते हैं और अक्सर उस गलती का हम ऐतराज भी करते हैं कि हमसे गलती हुई है।
0: जी जी, और ऐसा होना चाहिए अगर कोई गलती हो गई है या कुछ है तो अपने घर वालों को, जिसमें कि माँ जो शब्द है माँ जो शख्सियत है उसको तो बिल्कुल अंधेरे में नहीं रखना चाहिए, जो कुछ है बच्चे को माँ के सामने खुली किताब की तरह होना चाहिए, क्योंकि माँ का पूरा जीवन ही बच्चों के लिए होता है ना?
1: जी क्योंकि मैम माता पिता जीवन में एक बार मिलते हैं, जिंदगी अगर माँ बाप के साथ हंसी खुशी से अगर बीत जाए तो उसका बड़ा जीवन और कुछ नहीं है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल अमरजीत, बहुत अच्छे विचार आपने हमारे श्रोताओं के समक्ष रखे, और आज आप बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैं गीत सुनना चाहूंगा इस दिन मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।
0: चलिए आप से भरा हुआ ये गीत सुनते हैं आपके साथ सारी श्रोता। हेलो
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन बात कर रही है?
2: मैडम मैं आपकी नियमित श्रोता दीक्षा पाठक बात कर रही हूँ जिला शाहजहानपुर।
0: जी दीक्षा पाठक जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो
2: जी मैडम।
0: जी दीक्षा, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आपको माँ का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी?
2: जी मैडम वैसे तो मुझे मैडम 9 के 9 ही रूप पसंद है, लेकिन ज्यादा वो मैडम जो छोटी छोटी कन्याएं आती है वो रूप पसंद है माँ का, कर्ज का रूप।
0: छोटी छोटी कन्याएं आती है माँ का वो रूप पसंद है?
2: जी जी।
0: अच्छा जिसमें कन्याओं को खाना खिलाया जाता है।

0: सिखलाया जाता है।
1: जी जी, और माँ की सेवा भाव समर्पित करता है ये जो ये कर्म जो है, ये काम आप जो करते हो, तो ये माँ को सेवा भाव के नजरिए से कन्याओं को खाना खिलाया जाता है ना?
0: जी जी
1: जी। और आपके जो घर में आपकी मम्मी है, तो उनको देखकर आपको कौन सी माँ का रूप ध्यान में आता है?
0: जी मैडम, उनको देख के तो मुझे मैडम दुर्गा माँ का ध्यान आता है। मैडम
1: दुर्गा माँ का ध्यान आता है, ऐसा क्यों?
0: जी मैडम, क्योंकि दुर्गा माता जो है मैडम हमारी रक्षा करती है। वैसे देवी तो मैडम एक ही है, मतलब उनके रूप अलग अलग है, तो मैडम हमें दुर्गा माता का रूप उनमें नजर आता है कि
1: अच्छा,
0: वो हमारी रक्षा करती है, हमें हमारा लालन पालन करती है मैडम।
1: जी जी जी, बहुत बहुत अच्छी आपने बात बताई। और अपने माँ में जो आप माँ दुर्गा को देखती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा लगा कि वो लालन पालन करती हैं, रक्षा करती हैं, और सब बातों में माँ जो है वो सबसे आगे आती है अपने बच्चों के लिए, है ना? और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बच्चों की अगर गलती भी होती है, तब भी वो कहती है नहीं हमारे बच्चे की गलती नहीं है, आंचल में छुपा लेती है ना? जी।
0: आज मैडम कोई काम आए ना आए मैडम, दुख में सुख में माँ काम आती है, दुख में इतना भी परेशान।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी दीक्षा?
0: मैडम मैं सुनना चाहती हूँ मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, काल रात्रि है कल्याणी।
1: ठीक है ठीक है, आप सुनिए अपनी पसंद का अपने रेडियो सेट पर ये गीत।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है। कौन बात कर रहे हैं?
0: सुखलाल वर्मा, पीलीभीत, उत्तर प्रदेश से।
1: सुखलाल जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, मैं तो बहुत पुराना श्रोता हूँ आपका।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल,
0: 1995 से हूँ।
1: अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतने पुराने श्रोता हैं और इतने समय से जुड़े हुए हैं। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नवरात्र के ऊपर है, क्योंकि आज से नवरात्र भी शुरू है। आपने आपके घर में भी सारी तैयारियां चलती होंगी नवरात्र की। तो आप ये बताइए इस माहौल में कि आपको माँ का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है?
0: सबसे बढ़िया तो दुर्गा का रूप पसंद है मेरे को
1: जी।
0: और यही बेसिक पे अभी आपका टॉपिक देगा तभी यही सोच के फोन लगा रहा हूँ।
1: अच्छा अच्छा जी, तो मतलब क्यों पसंद है ये बताना चाहेंगे कुछ इस बारे में?
0: ये तो सब रूप अच्छे हैं वैसे, एक जैसे पुराने सुने हैं दुर्गा जी करके
1: जी,
0: माँ पिता के जमाने से सबसे ही दुर्गा ज्यादा पसंद है। जाके नौ नाम पता लगे, पहले तो एक ही नाम पता था।
1: जी जी जी, होता है ऐसा कि बचपन में जो मेन नाम होता है वो पता होता है, लेकिन उसके बाद पता चलता है कि अरे इसके पीछे ये सारी चीजें भी हैं, है ना? तो बचपन से जो नाम आपने माँ दुर्गा का सुना था वही नाम आपको, वही रूप
0: दिल में बसा हुआ वही पसंद है।
1: जी जी, तो आज आप बताइए माँ दुर्गा के लिए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: एक फिल्म है प्रेम जाल, उसमें एक भजन है माता के द्वार पर जाओ चाहे नाम जपो घर बैठे।
1: ठीक है, हम भेजते हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का ये भजन।

0: हेलो
1: जी, आपकी बात आकाशवाणी के साथ हो रही है, कौन बात कर रहे हैं?
0: जी मैं ग्राम गोपी क्रिया तहसील भांडेर जिला दतिया बुंदेलखंड मध्य प्रदेश से राहुल पाल बोल रहा हूँ।
1: जी राहुल पाल जी, कैसे हैं आप?
0: मैं बढ़िया हूँ दीदी, आप कौन बोल रही हैं?
1: मैं मुनव्वर जहाँ बात कर रही हूँ। नमस्ते, और क्या करते हैं राहुल पाल आप?
0: मैं तो दिल्ली फरीदाबाद NCR में रह के प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ दीदी।
1: अच्छा, प्राइवेट जॉब करते हैं, रेडियो सुनते हैं हमारा?
0: जी जी, मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते रहते हैं आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम।
1: जी जी, बहुत बढ़िया। और आज जैसे कि बात चल रही है, नवरात्र चल रहे हैं, और आज बात चल रही है आपको माँ का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है, तो इस बारे में राहुल पाल जी आप क्या कहना चाहेंगे?
0: वैसे तो माँ के सभी रूप बहुत ही हैं
1: जी,
0: जिनमें चाहे वो कोई भी रूप उठा के देख ले तो सारे रूप अच्छे हैं, और सब रूपों में माँ विराजमान हैं और उनकी आराधना पूजा वंदना करते हैं। और आज से नवरात्रि चालू भी हैं
1: जी,
0: तो हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं, चाहे वो माँ शैलपुत्री हो या माँ ब्रह्मचारिणी हो या माँ चंद्रघंटा है, माँ कुष्मांडा है, तो ये सभी रूपों की पूजा होती है और हर एक दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। जैसे पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है, जिसमें कहे कि सफेद रंग और पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं वो, इस रूप में भी उनकी पूजा होती है और आज उन्हीं का दिन है, आज पहला दिन है माँ शैलपुत्री का।
1: अच्छा जी जी जी, तो ये जो पूजा होती है मतलब यही है कि माँ का रूप कोई सा भी हो उसका काम सिर्फ कल्याण करने का है ना, ये हम कह सकते हैं आसान शब्दों में?
0: सारे रूप कल्याण करने के लिए हैं, अपने भक्तों को खुशहाल बनाने के लिए हैं, उन्हीं के लिए, इसी चीज के लिए।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आज आपने अपने राहुल पाल विचार रखे हमारे सारे श्रोताओं के सामने, बहुत अच्छा लगा। आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
0: आज आप मुझे सुनवा दीजिए, फिल्म का नाम रहेगा मती, और गीत के बोल रहेंगे दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे, दगा नहीं करेंगे सुना, इस तरीके के बोल हैं।
1: जी जी, आप अपने रेडियो सेट पर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: हेलो
1: हेलो।
0: जी, कौन बात कर रही हैं?
1: नमस्कार, मैं सद्दाम अली बात कर रहा हूँ।
0: जी सद्दाम अली, कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं ग्राम शिमला चंपतपुर तहसील औला जिला बरेली से बोल रहा हूँ।
0: कैसे हैं आप?
1: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: सब बढ़िया है। और आज का टॉपिक तो और भी ज्यादा दिल को छू लेने वाला है, जैसे कि नवरात्र चल रहे हैं और टॉपिक है आपको माँ का कौन सा रूप सबसे ज्यादा पसंद है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: वैसे तो मैं माँ के सभी रूप ही अच्छे हैं। माँ जो भी मानो बच्चे के लिए करती है, अच्छी दुआ करती है।
0: जी
1: चाहे किसी रूप में सही, अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो माँ का आशीर्वाद ही लेकर निकलते हैं और माँ से हमें दुआ प्राप्त होती है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, माँ के सारे रूप अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए कल्याण करने के ही लिए हैं, भला करने के ही लिए हैं, है ना? और उसके भक्तों को भी चाहिए और जो उनके बच्चे हैं उनको भी ये चाहिए कि अपनी माँ का ध्यान रखें, पूजा अर्चना करें, जिस तरह से भी उसे खुश करना चाहें वो पूरी कोशिश करें, है ना?
1: पूरी कोशिश करना चाहिए। जी मैम,
0: जी बिल्कुल। और एक चीज और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि कई जगहों पर देखा है कि नव दुर्गे शुरू होते हैं तो पूजा अर्चना में सारे लोग लगे होते हैं, लेकिन जो अपने घर में अपनी माँ होती है लेकिन उसका कहीं ना कहीं अनादर होता है ना? तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस रूप की पूजा कर रहे हैं, जिस माँ के रूप की पूजा कर रहे हैं, वही रूप एक हमारे घर में हमारे सामने है, हमें उसका भी आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना? और उसकी हाँ उसकी खुशी के लिए सब कुछ करना चाहिए।
1: जी मैम।
0: जी सद्दाम अली, आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैम फिल्म का नाम है लाडला और गीत के बोल है, याद सताती है मुझको बुलाती है, याद तुम्हारी जब जब मुझको आती है।
0: ठीक है सद्दाम अली, हम भेज रहे हैं आपके रेडियो सेट पर आपकी पसंद का।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ। अभी तक आप सुन रहे थे फोन कॉल्स पर रिकॉर्डिंग की हुई बात, और अब बात आ जाती है आपके फेसबुक के द्वारा जो आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी विषय पर हमारे पास ढेर सारे कमेंट बॉक्स में भरमार आ गई है कमेंट्स की, जिसमें पहला कमेंट आया है राय सिंह पाल का। ये लिखते हैं, शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ का हर रूप अपने आप में दिव्य, करुणामयी और भक्तों को सही राह दिखाने वाला है। और आगे इन्होंने माँ के 9 रूप पूरी तरह से लिखे हैं, जिसमें पहला रूप लिखा है शैलपुत्री, और लिखा है ये स्थिरता और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। दूसरे दिन पूजा जो होती है ब्रह्मचारिणी की होती है, और लिखते हैं कि ये पूजा ये जो माँ है तपस्या और सदाचार का प्रतीक है। तीसरे दिन की देवी माँ चंद्रघंटा है, इनके मस्तक पर घंटे का आकार का अर्ध चंद्र है, ये शांति सौभ्यता और वीरता का प्रतीक है। कुश मांडा चौथे दिन इनकी पूजा की जाती है, और लिखते हैं इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति माना जाता है। स्कंद माता पांचवें दिन इनकी पूजा होती है, ये भगवान स्कंद की माता है, और लिखते हैं इनका ये रूप मातृत्व और असीम वात्सल्य से भरा हुआ होता है। आगे छठे दिन जो इन्होंने बताई है, तो कात्यायनी की पूजा की जाती है। इन्हें जो लिखा है ये धर्म और वीरता का प्रतीक लिखा है, और काल रात्रि सातवें दिन इनके इस रूप की पूजा की जाती है, और लिखते हैं ये माँ का सबसे भयानक रूप है जो दुष्टों का नाश करता है, लेकिन अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल देता है, इसलिए इन्हें शुभ करी भी कहा जाता है। और आठवें दिन के लिए ये लिखते हैं, आठवें दिन जो पूजा होती है महागौरी की पूजा होती है, ये अत्यंत गौरव और शांत रूप है, ये पवित्रता शांति और गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि लाने वाली है। और नवे दिन की जो पूजा है वो सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, सभी प्रकार की सिद्धियों और ज्ञान को देने वाली देवी है। आगे लिखते हैं, शास्त्रों और अध्यात्म के अनुसार माँ का सबसे प्यारा रूप स्कंद माता और महागौरी को माना जाता है, क्योंकि इन रूपों में माँ की असीम वात्सल्य यानी कि ममता और शांत स्वभाव झलकता है। हालांकि वास्तव में माँ का सबसे प्यारा रूप वही है जो एक भक्त के हृदय को सबसे ज्यादा छूता है। एक संकट में फंसे भक्त के लिए दुष्टों का नाश करने वाला माँ कालरात्रि का रूप सबसे प्यारा और रक्षक जैसा हो सकता है। आगे लिखते हैं, ज्ञान और शांति वाले के लिए माँ महागौरी या सिद्धिदात्री का रूप सबसे प्रिय हो सकता है। माँ तो करुणामयी है, इसलिए उनके सभी रूप भक्तों के लिए कल्याणकारी हैं, अत्यंत प्रिय हैं। ये राय सिंह पाल सनैया बरेली से हैं। इन्होंने बहुत सारे माँ के रूपों को दर्शाया, 9 जो रूप हैं उनका पूरा वर्णन किया, और हमें उम्मीद है कि जिन श्रोताओं को नहीं भी पता होगा माँ के रूपों के बारे में, उन्होंने भी ये इनका इतना प्यारा मैसेज विस्तार से सुनकर और उन्हें भी मालूम हो गया होगा। अगला मैसेज जो हमारे पास आया, गंगा सिंह रावत रामपुर रोड हल्द्वानी से, ये लिखते हैं, मुझे माँ दुर्गा के सारे रूप पसंद है, माँ के विविध रूप माँ के भक्तों के लिए ही है। माँ का सप्तम रूप चंडी का है, जिसे वो दुष्टों का संहार करती है। नवरात्र में ये रूप हमें अपने अंदर की बुराइयों जैसे झूठ, ईर्ष्या, मंद मोह, काम को समाप्त करने की प्रेरणा देता है।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है आपकी बात आकाशवाणी के साथ फेसबुक के माध्यम से। अगला हमारे पास जो कमेंट आया है, ग्राम व पोस्ट हरहरपुर मटकली जिला बरेली से शाहरुख नूर अंसारी भेजने वाले हैं। लिखते हैं कि माँ की मोहब्बत दुनिया की सबसे खूबसूरत नेमत है। माँ की आवाज, उसकी मुस्कुराहट, उसके हाथों का खाना और उसकी छोटी छोटी आदतें हर बच्चे के दिल के करीब होती हैं। मेरी माँ का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब मैं बहुत ही ज्यादा छोटा था, इसलिए मुझे उसके साथ बिताए बचपन के लम्हे याद नहीं है। लेकिन आज जब लोगों से सुनता हूँ कि हर बच्चे को अपनी माँ की हर चीज प्यारी होती है, तो दिल में एक ख्याल आता है कि काश मुझे भी अपनी माँ की मोहब्बत को करीब से महसूस करने का ज्यादा मौका मिलता। माँ की कमी क्या होती है, ये वही समझ सकता है जिसकी माँ

उससे बिछड़ गई हो, माँ दुनिया से रुखसत हो जाए, तब भी उसकी कमी दिल में हमेशा बाकी रहती है। मेरी गुजारिश है कि जिनकी माँ जिंदा है वे उनकी खिदमत करें, उनकी कद्र करें और उन्हें हमेशा खुश रखने की कोशिश करें, क्योंकि माँ की मोहब्बत का कोई बदल नहीं होता। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि मेरी माँ समेत तमाम मरहूम माओं की मगफिरत फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। और लिखते हैं इसी दुआ के साथ, मुझे इजाजत दीजिए। शाहरुख अंसारी ने बहुत प्यारा मैसेज दिया है माँ की मोहब्बत से जुड़ा हुआ। वाकई एक लास्ट में जो मैसेज है कि जिन लोगों की माँ हैं तो वो उनकी कद्र करें और उन्हें, हालांकि माँ की हर दुआ हर नेमत बच्चों के लिए होती है, लेकिन आज के वक्त में बच्चे कहीं ना कहीं पीछे हट रहे हैं इस नेमत से, माँ जैसी नेमत से, तो वो अपनी माँ जैसी नेमत का एहतराम करें, उनसे मोहब्बत करें और उन्हें खुश रखने की कोशिश करें। और आज से नवरात्र जैसे कि शुरू है, आज ही के दिन से आप सारे लोग ये प्रण लें कि आप अपनी माँ को कभी भी दुखी नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले कमेंट की ओर, लेकिन हमें ये बहुत ही दुख देती है ये चीज़ कि आप लोग अपने नाम पते तो लिख देते हैं लेकिन जो हमारा टॉपिक होता है उस पर कोई बात नहीं लिखते हैं। इसी तरह से एक हमारे पर जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से इन्होंने जो भेजा है, मुकेश वगैरह ने, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है। आज के जो टॉपिक है इतना प्यारा टॉपिक है, माँ के ऊपर तो हर इंसान का दिल कहने के लिए कुछ ना कुछ चाहता है और आज से नवरात्र शुरू है, आज के लिए तो इन्हें कुछ ना कुछ कहना चाहिए था, भले से यही कह देते कि नवरात्र की शुभकामनाएं, आकाशवाणी बरेली गदगद हो जाता, खुश हो जाता। लेकिन अफसोस, इनका मैसेज हमें मिला लेकिन इन्होंने कुछ भी कमेंट में नहीं किया, कहा है हमसे। और अगला जो मैसेज है वो है तालिब अंसारी राजा कटरा बाराबंकी से, और ये लिखते हैं, माँ के सभी रूप अनमोल हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है, कम शब्दों में पूरी बात कह डाली है। अगले जो हमारे पास कमेंट आया है, ये आया संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से, ये वारिस अली खान, इस्लामुन्निसा, शकील अहमद, शहनाज खान, सलीम अहमद और दानिश, ये लिखते हैं, आवाज़ की दुनिया के प्यारे से दोस्त को खान परिवार का प्यार भरा सलाम, आप सब लोगों को भी हम सब की तरफ से सलाम। आज के विषय से जुड़ते हुए मुझे कहना है कि मुझे माँ का चंद्रघंटा रूप पसंद है क्योंकि उनका रूप शांति और साहस का प्रतीक है। मैं भी शांति प्रेमी हूँ और माँ के आशीर्वाद के मुझ में किसी भी संघर्ष से टकराने का साहस है। अच्छी बात है। और इन्होंने ये भी एक मैसेज दिया है साथ में कि माँ के जिन जिन रूपों की आप पूजा करते हैं वो चीज़ें अपने अंदर भी डेवलप करें, यानी कि वीरता, साहस, सच्चाई, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें अपने अंदर भी डेवलप करें, तभी आप माँ के सच्चे और अच्छे भक्त कहलाएंगे। अगला जो कमेंट हमारे पास आया, ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी और लालू मिस्त्री अंसारी लिखते हैं, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारी तरफ से प्यार भरा आदाब। लिखते हैं आगे, आज विषय आपको माँ दुर्गे का कौन सा रूप बस से ज्यादा पसंद है। माँ दुर्गे के 9 रूप हैं, माँ दुर्गा शैलपुत्री, पतरस, हिमालय पुत्री आदि। वैसे तो माँ के कोई रूप नहीं होता है, जिस रूप में माँ हमारे साथ हों वही हमारे लिए खास है। ओके, आगे लिखते हैं, अगर हम सही हैं तो माँ का स्वरूप हमारे किसी भी रूप में मिल जाएगा, हमें तो माँ का हर रूप पसंद है। बिल्कुल अच्छी बात कही है इन्होंने भी, लेकिन शुरू में इन्होंने कुछ लिखा है कि माँ दुर्गे के 9 रूप होते हैं और कुछ रूपों के इन्होंने वर्णन भी किया है और माँ का हर रूप पसंद है। और ये बात हकीकत है, अगर माँ गुस्से में आकर मतलब डांट भी देती है, डपट भी देती है, तो उससे भी बच्चों का भला होता है। इसी चीज़ को अगर हम दूसरे रूप में, नज़रिए में ले लें कि अगर कोई किसी माँ के भक्त पे कोई संकट या परेशानी आती है, कोई भी होता, तो वो सोचने लगता है कि हमसे क्या कुछ ऐसा गलत हुआ था जो हमारे जीवन में ये संकट या कुछ आया, और ये सोचकर वो फिर से सीधे राह पर आ जाता है। भक्त माफ़ी मांग लेता है और माँ फिर से उसे अपने आंचल में समेट लेती है।

श्रोताओं, कार्यक्रम है आपकी बात आकाशवाणी के साथ फेसबुक के माध्यम से। अगला जो हमारे पास कमेंट आया है, यह आया है ग्राम व पोस्ट गोठा खंडुआ से। भेजने वाले राम बाबू मिश्रा, कृष्णा देवी, शीतल मिश्रा, राधा मिश्रा, सलोनी, शिवम, और आगे ये इन्होंने लिखी है अपने जो बात लिखी है। देखो जी, माँ तो माँ ही होती है, अब माँ के किस रूप की प्रशंसा करें। माँ के सभी रूप प्यारे व निराले होते हैं, हम तो माँ के सभी रूपों के कायल हैं। न जाने किस रूप में आपको हमको माँ के दर्शन हो जाएं, और हमको आपको किस रूप में आकर अपनी कृपा अपनी ममता की बारिश कर दे, जिससे आपका व हमारा कल्याण हो जाए। तो हम तो माँ के सभी रूपों की प्रशंसा करते हैं और सभी रूप बहुत पसंद हैं। बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। वाकई माँ का कौन सा रूप क्या पता कब आकर कल्याण कर दे भक्तों का। अगला जो हमारे पास मैसेज आया है, आरवी सिंह भेजने वाले हैं, ये थाने के सामने नगर पंचायत अल्लाहगंज जनपद शाहजहांपुर से लिखते हैं, हमें तो माँ के सभी रूप अच्छे लगते हैं, चाहे उनका कोई सा भी रूप हो। अगला प्रदीप कुमार है, ये रामपुर रोड किला छावनी बरेली से ये लिखते हैं, जैसे कि आज का टॉपिक आपने विषय दिया है, आपको माँ का कौन सा रूप ज्यादा पसंद है, तो माँ का हर रूप निराला है, चाहे वो दुर्गा माता का हो, पहाड़ों वाली मैया का हो, काली माता का हो, या फिर लक्ष्मी वैष्णवी माता का हो। और हम तो प्रातः 5 बजे से उठकर सबसे पहले माता के भजन सुनते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं और हमारा दिन अच्छा जाता है। बहुत अच्छी बात है ये। आगे लिखते हैं, और संध्या की बेला में भी भजन से ही माता की भेंट सुनते हैं और अपने कार्यों को विराम देते हैं। आगे बस क्लोजिंग करते हैं ये कहकर कि आप सभी को नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हमें आकाशवाणी बरेली के सभी कार्यक्रम अच्छे लगते हैं।

और आपकी बात आकाशवाणी के साथ बहुत अच्छा लगता है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने तारीफ भी की है इस कार्यक्रम की। और वाकई ज़्यादातर लिसनर के कहना है कि माता के सभी रूप अच्छे लगते हैं। अगले जो हमारे लिसनर हैं वो हैं हरीश शर्मा और पूरा शर्मा परिवार, ये दुदुली नैनीताल उत्तराखंड से लिखते हैं। जहाँ तक मुझे लगता है कि माँ के सभी रूपों में पूजनीय हैं, भले ही वो किसी रूप में हो, उसकी तो माया ही अपरंपार है, माँ तो माँ होती है। हमारी तरफ से आप सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और दुआ दी है इन्होंने, माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करे। अगला जो हमारे पास मैसेज आया, कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से जमुना प्रसाद मौर्य, किरण मौर्य, आज का विषय बहुत ही अच्छा है। आकाशवाणी बरेली के सभी भाई बहनों को नवरात्रि की शुभकामनाएं। माँ के तो सभी रूप अच्छे लगते हैं, माँ दुर्गा नवरात्रि में सबकी मनोकामना पूरी करे। अनोखे लाल मौर्य ये है कटरा चांदखा पुराना शहर बरेली से लिखते हैं, माता रानी सबको ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे और नवरात्रि की शुभकामनाएं इन्होंने दी है। आगे नानक खन्ना है, इन्होंने भी नवरात्रि के पावन पत्र का बहुत ही प्यारा सा पोस्टर भेजा है आज के दिन का, और लिखा है कि सभी लोगों को नवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अगला जो हमारे पास मैसेज आया है उमेश कुमार गौड़, ये लिखते हैं माँ के सभी रूप अच्छे हैं, माँ के रूप की पसंद की आवश्यकता नहीं है, माँ जग तेरे चरणों में आया। बहुत प्यारी बात कही है कि उसके रूप को पसंद करने ना करने वाली कोई बात नहीं है और उसके सारे ही रूप अच्छे हैं। उमेश कुमार गौड़ लिखते हैं माँ के सभी रूप अच्छे हैं, इनका तो हो चुका है। और अगला जो आया है राधा नामदेव, माँ कालाकारी का रूप इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। अगला जो मैसेज आया है पप्पू राजा खुशदिल का, ये लिखते हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं लिखा है और चकला बाजार समाना शहर पंजाब से केवल इन्होंने नाम और पता लिखा है। तो हमारी आप सब से गुजारिश है कि आप सभी लोग ऐसा ना करा करें, अगर आप अपने कमेंट भेज रहे हैं तो उसके साथ अपने नाम पते के साथ ज़रूर ये लिखकर भेजें कि आपको कौन से जो विषय है उस विषय से ताल्लुक रखने वाला जो भी आपके मन के विचार हो या कुछ भी कोई भी बात हो वो आप ज़रूर हमें लिखकर भेजें। ऐसा नहीं है कि आप खाली नाम और पते के साथ अपना मैसेज भेज देते हैं। और अगली उम्मीद हमारी ये होगी कि जो भी मैसेज करेगा अपने नाम पते के साथ जो विषय होगा उसके बारे में हमें ज़रूर बताएंगे।

श्रोताओं, आज का कार्यक्रम बस यहीं तक। एक बार फिर आप सारे लोगों को नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब इस कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां को दीजिए इजाजत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब हम आपको आज की सभा और कल की सभा में रेलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी

श्रोताओं, आज शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मन भावन। 5:45 का समय रहेगा एक मुलाकात का। इस मुलाकात में होगी श्री राजेश कुमार शर्मा से मिथिलेश श्रीवास्तव की बातचीत। आज शाम 6:00 युवा दो सुनेंगे अपना कार्यक्रम युवाणी। शाम 6:30 पर होगा कार्यक्रम ग्राम जगत। इसमें आज होगी चर्चा उर्दू शिक्षा आधुनिकीकरण पर। साथ होगा क्षेत्र संकलित कार्यक्रम। शाम 7:00 का समय रहेगा कानूनी सलाह का। विषय होगा बहनामा कराते समय ध्यान रखने योग्य बातें। इसमें बात की है श्री योगेंद्र यशेंद्र सिंह से। आज शाम 7:31 पर आप सुनिए कार्यक्रम जनमंच। आज का एक विषय होगा समाज में संस्कारों का मूल्य। प्रतिभागी होंगे राजकुमार और अनुष्का। श्रोताओं, कल सुबह 8:15 पर आप सुनेंगे बरेली के हालचाल कार्यक्रम नमस्ते बरेली में। 8:45 पर लोकधुनों पर आधारित कार्यक्रम लोकगीत। कल सुबह 9:00 सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम सेहत की पाठशाला, लाया है दीपमाला डॉक्टर सोमेश मेहरोत्रा के संग। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को आप सुन सकेंगे कल सुबह 9:15 से। 9:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान है। डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल इसकी विशेषज्ञ होंगी।

प्रायोजक फोकस नेत्रालय बरेली। आपकी पसंद होगा कल सुबह 10 बजे से सोशल मीडिया पर आधारित। सब रंग के रंग बिखरेंगे आपके रेडियो सेट पर कल पूर्वाहन 11 बजे से। कल 11:30 से आप सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों को। कल दोपहर 1 बजे से अनुरोध गीत आपके अपने पत्रों पर आधारित आपकी फरमाइश पूरी करता हुआ कार्यक्रम। कल शाम 3:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का उमंग। आपकी बात आकाशवाणी के साथ एक नए विषय को लेकर हाजिर होगी कल शाम 4 बजे से। इसकी रिकॉर्डिंग होगी कल दोपहर 2 बजे से हर रोज की तरह। भजन संध्या का आनंद।

भजन संध्या का आनंद लीजिएगा कल शाम 5:05 से। नारी संसार 5:30 पर चर्चा के विषय होंगे नवरात्रि द्वितीय दिवस, साथ होगी एक और चर्चा, विषय होगा अर्थराइटिस दिवस के बारे में। कल शाम 6:00 युवा एक्सप्रेस आपके रेडियो सेट पर आकर रुकेगी कार्यक्रम युवाणी में। कल का सवाल होगा भारत की पहली LNG पावर ट्रेन किससे संबंधित है। ग्राम जगत की गठरी खुलेगी कल शाम 6:30 से। कल शाम 7:00 अक्षय वट, इसमें भेंट होगी समन अफरोज से। कल शाम 7:31 पर सुनिए कार्यक्रम अनुरोध गीत, आपके अपने पत्रों पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। श्रोताओं, ये तो थी हमारी आज की सभा और कल की सभा में रिलेवा प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। दोस्तों, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 5:05 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या।

श्रोताओं, इसी भजन के साथ आज की भजन संध्या यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, आपको बता दें, आज आपने कुमार विष्णु के स्वर में भजन सुने थे, माँ की भेंट।

श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। शाम के 5:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम मन भावन।

हेलो हाय आदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मन भावन। दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप भी इस कार्यक्रम में अपना पत्र लिखना चाहते हैं, अपने मन की बात लिखना चाहते हैं, समाज में जो कुछ भी हो रहा है, जो चाहते हैं आप इस टाइप का कुछ भी, अपने दिल की बात, अपने मन के विचार हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। कार्यक्रम मन भावन द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड 243001। श्रोताओं आपको बता दें, बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान ये सोचता है कि हम 4 या 10 लोगों से करें, लेकिन पहले के टाइम में, लेकिन आज भी ये वक्त चलता है कि जब पंचायतें होती हैं वहाँ दिल की बातें, चौपाल लगती है, दिल की बातें 4 लोग 5 लोग मिलकर करते हैं और उन लोगों में बातें शेयर करके बहुत अच्छा सुकून महसूस करते हैं। इसी तरह का एक कार्यक्रम है हमारा मन भावन, जिसमें आप अपने दिल की बात जो कहते हैं वो सारे श्रोताओं से शेयर की जाती है, वो सारे श्रोता सुनते हैं और कुछ लोग अपने जीवन में भी उतारते हैं। और अगर आप भी इस तरह से कोई दिल हल्का करने वाली बात हमसे शेयर करना चाहें तो मोस्ट वेलकम, सिर्फ और सिर्फ 100.4 आकाशवाणी के बरेली केंद्र पर। दोस्तों इसी तरह से बहुत सारे खत हमारे पास मन भावन में आए, जिसमें सिलेक्टेड पत्र आज हमने जो सिलेक्ट किए हैं वो पहला पत्र है क्रांतिकारी छात्र परिषद भूड़ बरेली से रजत कुमार भेजने वाले हैं। ये लिखते हैं, आज सर्वत्र असत्य अधर्म भीड़ का सड़कों पर हंगामा दिखाई देता है। ऐसा इनको महसूस होता है कि हर जगह झूठ है, अधर्म है और हर जगह भीड़ का हंगामा जैसा लगा रहता है। और आगे लिखते हैं, आदमी बिना मतलब मिलता भी नहीं है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो कि सच नहीं बोल पाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है जैसे झूठ बोलने से उनकी मर्यादा और बढ़ रही है, वो और अच्छे हो रहे हैं दूसरों की निगाहों में, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। बहुत अच्छी बात इन्होंने ये लिखी है कि दिखावा नहीं करना चाहिए और जहाँ तक हो सके सच बोलना चाहिए, और अपने धर्म के हिसाब से अगर कोई भी इंसान हो, अपने धर्म के हिसाब से चलेगा तो वो अच्छे ही रास्ते पे चलेगा। और आगे इन्होंने गाने की फरमाइश की है, तो वो गाना भी कुछ इनका इसी तरह से इनके जो बातें लिखी है उसी चीज़ों को दर्शाता हुआ है।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है मन भावन। मन भावन कार्यक्रम में ये दूसरा पत्र हमारे पास आया छावनी अशरफ खान पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से। भेजने वाले हैं राम प्रसाद शर्मा। ये लिखते हैं, दोस्तों जो भी माता पिता हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए, वही अपनी मंजिल सही पाते हैं जो अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते हैं, बूढ़े होने पर उनकी सेवा करते हैं, उन्हें मान सम्मान देते हैं, वही लोग दुनिया में भी मान सम्मान पाते हैं। बहुत अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि आजकल ज़्यादातर देखा जाता है लोग जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप पर इतना गुस्सा करते हैं कि भले से मन में उनके प्यार भरा होता है लेकिन सामने से बर्दाश्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। इसी के चलते अगर माँ बाप कोई बात कह देते हैं, उन्हें गुस्सा आ जाता है, तो वो ये नहीं सोचते हैं हमारे माता पिता हैं, हमारे टीचर हैं, शिक्षक हैं, कुछ भी नहीं समझ में आता है और गुस्से में जो आता है चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो ये मैसेज आज की युवा पीढ़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके लिए नसीहत देता हुआ है कि अपने माता पिता का आदर करें, सम्मान करें। भले से अगर उनकी राय आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, उनकी राय को सुने, फिर उनके सामने अपनी राय रखें, क्योंकि जब वो आप उनकी राय का आदर करके सुन लेंगे, फिर जब अपनी राय रखेंगे तो वाकई उन्हें जो अच्छा लगेगा वो बाद में यही कह देंगे कि आप अपनी राय के हिसाब से काम कर लीजिए। लेकिन आपको पहले अपने माँ बाप का आदर करना होगा, उनकी बात को पहले रखना होगा, क्योंकि जब इंसान अपने माँ बाप की बात सुनता है ना तो उन्हें बहुत खुशी होती है, उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा मान सम्मान, हमारा वर्चस्व आज भी बाकी है हमारी बेटे पर, हमारी संतान पर, हमारी औलाद पर।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है मन भावन और इस कार्यक्रम का ये खत आया है गंज ढूंढवारा से। भेजने वाले हैं मुनव्वर लल्ला। लिखती हैं, अगर आपको इस बेमुरव्वत दुनिया में खुश व खुर्रम रहना है, तो हर तरह के गम और गुस्से से आजाद रहना है, तो किसी को हद से ज्यादा दिल में बसाने की कोशिश मत कीजिए। इसलिए कि अगर आपको वो छोड़कर और मुंह मोड़कर चला गया, तो तकलीफ इतनी ही होगी जितनी आपके दिल में उसकी मोहब्बत होगी। अब इस दुनिया या खास में और आम में कोई फर्क नहीं रह गया है, और जो लोग आम लोग हैं वो ना होने के बराबर हो गए हैं। हर कोई अलग और खास नजर आने में इतना मसरूफ है कि अब आम लोग नापैद हो चुके हैं। इसलिए अगर कोई आम शख्स मिले तो उसकी कद्र कीजिए। माने यकीन, आजकल के दौर में वो बहुत ही खास है। बहुत अच्छा इन्होंने मैसेज किया है कि हर किसी इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा बिल्कुल भी ना करें। और हद से ज्यादा मोहब्बत की इन्होंने बात की है कि ज्यादा दिल में बसाने की कोशिश ना करें। अगर वो शख्स मुंह मोड़ कर चला गया और आपको छोड़ कर चला गया, तो आप तड़प कर रह जाओगे, दिल थाम कर रह जाओगे और कुछ हाथ नहीं आएगा। तो लिहाजा इनका ये मैसेज हमारे जितने भी श्रोता हैं सुन रहे होंगे और इस पे अमल भी करेंगे कि जान लें, पहचान लें कि जिसे हम इतना करीब जान रहे हैं वो करीब हमारे होने के काबिल है भी या नहीं।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मन भावन। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 5:45 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है एक मुलाकात। इसमें राजेश कुमार शर्मा से बात की है मिथिलेश श्रीवास्तव ने।
1: दोस्तों नमस्कार, आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक मुलाकात की, जिसमें हम बरेली शहर के किसी खास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। उनके व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं, कृतित्व के बारे में जानते हैं। तो इसी सिलसिले में आज हमने अपने स्टूडियो में एक बेहद खास व्यक्ति को आमंत्रित किया है, डॉक्टर राजेश शर्मा। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका स्टूडियो में।
2: बहुत धन्यवाद आपका।
1: सभी दोस्तों को बताना चाहेंगे कि पत्रकार, साहित्यकार, फिल्मकार, अभिनेता और नाटककार, लेखक भी हैं, और साथ में आप एक जानी मानी यूनिवर्सिटी में डीन भी हैं पत्रकारिता विभाग के। तो मल्टी टैलेंटेड हैं। क्या कुछ इन्होंने नहीं किया है ये सोचना पड़ेगा कि ये काम इन्होंने नहीं किया है।
2: जी मैं बताता हूँ, आपने जिसका जिक्र नहीं किया, मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ और मेरे पास एक फैक्ट्री भी रही है। पिछले 30 सालों से मैं एक पैकेजिंग यूनिट भी संभाल रहा हूँ, मैं उसका चेयरमैन हूँ।
1: चेयरमैन है तो बताइए, बहुत सारी चीजें हैं जो हम आप जानते भी नहीं है, उन पे आप काम कर रहे हैं। तो सर पहला सवाल तो यही होगा हमारा कि इतने सारे काम सर एक साथ कैसे कर लेते हैं, वो भी जैसे सबके लिए 24 घंटे ही होते हैं।
2: जी हाँ,
1: कैसे मैनेज कर लेते हैं?
2: वो ऐसा है कि आपके काम अलग होते हैं, ब्रेड एंड बटर के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, शौक आपके अलग होते हैं। अब ये क्या है कि शौक अगर मुख्तलिफ हैं आपके, यानी कि पढ़ना मैंने अपने 6th क्लास से शुरू कर दिया लिटरेचर को, जो आप वैसा पढ़ते हैं एकेडमिक पढ़ते हैं वो तो पढ़ते ही है, लेकिन 30 क्लास से ही मुझे पत्रिकाएं घर में बहुत आती थी। उन दिनों हमारे यहाँ जैसे कि एक जो अखबार देने आता था तो पत्रिकाओं का बंच लेके आता था, पूरे महीने रोज पत्रिकाएं बदल के हमारे पास आया करती थी। तो पत्रिकाएं पढ़ते पढ़ते लिटरेचर का शौक हुआ, फिर हम अमृतलाल नागर को, शिवानी को, बहुत सारे राइटर्स को पढ़ने लगे और धीरे धीरे वो बढ़ता गया जो आज इतना हो गया कि मेरे पास अपनी 10,000 किताबों से ज्यादा की लाइब्रेरी है।
1: 10,000 किताबों?
2: जी हाँ,
1: क्या बात है सर, मतलब ये तो रिकॉर्ड है, बहुत ही कमी लोगों के पास होगा।
2: फिर जब पढ़ना समझ में आने लगा तो फिर हम उस पर रिव्यूज भी करने लगे, समीक्षाएं भी करने लगे, इंटरव्यूज भी करने लगे राइटर्स के। तो ये तो एक राइटर्स की तरफ चला। इसी बीच में हम दिल्ली जाया करते थे अपनी फैक्ट्री के काम के सिलसिले में, तो हम वहां पर मंडी हाउस जाया करते थे, NSD जाया करते थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, वहां की जितनी आर्ट गैलरीज लगती थी उनको देखने जाया करते थे। तो हमारा परिचय पेंटिंग से, कला से, आर्ट से, थिएटर से और खासतौर से इंडियन क्लासिकल डांसेस से भी हुआ। तो कथक है या भरतनाट्यम है, बड़े गौर से हमने देखे। वहीं पर हमने बिस्मिल्लाह खान साहब को सुना, वहीं हमने अंदर अली खां को सुना सीरी फोटो ऑडिटोरियम में। तो ये फिर हमारा गया आर्ट और आर्ट की तरफ। फिर जब शहर में थे तो हमें कल्चर समझ में आया कि इसी शहर को कैसे कल्चर दिया जाता है, कौन लोग हैं जो कल्चर देने वाले होते हैं। तो इस तरह से आर्ट है, लिटरेचर है, थिएटर है, फिर फिल्में आने लगी, अलीगढ़ बनवाई हमने। मेरा मानना था कि फिल्म ना एक बहुत बड़ा काम होता है, उसमें बहुत सारा पैसा भी इन्वॉल्व होता है, वो बिजनेस होता है अपने आप में। मनोरंजन अपनी जगह है लेकिन उसमें एक बिजनेस भी इन्वॉल्व होता है। तो अगर छोटे शहर में फिल्में बन रही थी और इधर लगातार मैं देख रहा था कानपुर में, देहरादून में,

0: फिल्म में आनी थी, तो मैं चाहता था बरेली में भी आए। तो हंसल मेहता हमारे मित्र हैं, तो उनको अप्रोच किया गया, तो बरेली आए। अलीगढ़ जैसी बड़ी फिल्म बनी मनोज वाजपेयी राजकुमार राव, तो लगभग 4.5 करोड़ रुपए उन्होंने बरेली में खर्च किया। 55 दिन शूटिंग हुई। तो आप सोचिए कि होटल इंडस्ट्री है, ट्रैवल इंडस्ट्री है, फूड है। फिर खास बात यह है कि बरेली का जो लोकल हमारे पास आर्टिस्ट था उसको भी हमने प्लेटफॉर्म दिया। बरेली की बर्फी आई, मिसेज अय्यर आई, मुक्केबाज आई इस बीच में, तो चल रहा था सिलसिला और चलता रहेगा। तो
1: चलता रहेगा बिल्कुल। और आप जैसे लोग हैं तो बरेली को ऐसे और भी लोगों प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे
0: जी
1: बिल्कुल। तो ये अभिनेता के रूप में भी आपने काम किया अलीगढ़ फिल्म में, बहुत सारे हमारे दोस्तों को पता नहीं होगा, एक सीन आएगा मनोज वाजपेयी हैं, एक पार्टी चल रही है उसमें राजेश शर्मा भी हैं, आप कभी देखिएगा फिल्म। और इसके अलावा जो देखा है तो आपको पहले आपने शुरुआत की इंडस्ट्री से, बिजनेस से, उसके बाद आपका इंटरेस्ट होता गया साहित्य में और आप
0: नहीं, वो तो शुरू से था, लिटरेचर तो मेरा शुरू से था,
1: बचपन से
0: इंटरेस्ट तो मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद लगाई है।
1: हाँ, 6th class से ही आपका रुझान था साहित्य के क्षेत्र में, पत्रकारिता के फील्ड में कैसे आए?
0: हाँ, पत्रकारिता ये है कि जब मैंने ग्रेजुएशन किया तो मेरे कुछ दोस्त थे जो पत्रकार थे, जो अमर उजाला में या और जगह काम करते थे, तो मजलिस शाम को मेरा जमती थी।
1: अच्छा, अच्छा।
0: पत्रकारिता की सब चीजें मेरे होती थी। फिर मैंने बरेली का 2002 में पहला इलेक्ट्रॉनिक चैनल खोला। यहाँ पर एक शख्स थे, उनके पास बरेली मीडिया कॉरपोरेशन के नाम से एक यूनिट था, जो मतलब तब केबल ऑपरेटिंग थी, तब ये DTH वगैरह नहीं आया था, तो उसमें हमने एक पूरा चैनल बनाया। हम अपनी न्यूज देते थे, 8:30 बजे बुलेटिन देते थे, 10:30 बजे उसे अपडेट करते थे। उसी में आपकी बात एक प्रोग्राम था जिसमें पर्सनालिटीज के प्रोग्राम्स थे, हेल्थ एंड केयर था तो जिसमें डॉक्टर्स के साथ बात होती थी, काबिले तारीफ था तो किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी काबिले तारीफ चीज है तो उसको हम दर्शकों को बताते थे। एक हमारा आदाबर्स प्रोग्राम था, उसमें तो कई मल्टीपल प्रोग्राम्स थे जिनमें 3 प्रोग्राम्स को मैं खुद एंकर करता था। तो उस तरह से फिर मैं न्यूज भी पढ़ता था, मैं एडिट भी करता था, मेरे रिपोर्टर्स और कैमरामैन फील्ड में भी जाया करते थे। तो वहां से इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता शुरू हुई, फिर बाद में नमस्कार बरेली के नाम से एक अखबार भी निकाला, तो चलता रहा, धीरे धीरे होता रहा सब कुछ।
1: मतलब कि अभी तो कई सारे चीज हम बता रहे थे और भी, मतलब वीडियो एडिटिंग भी आपको आती है
0: जी,
1: और कैमरा हैंडलिंग भी आती है,
0: करना पड़ता है।
1: तो एक तरह से देखा जाए आमतौर पर हम क्या करते हैं, जो अगर जॉब किसी ने पकड़ लिया तो 9 से 6, 9 बजे उठे, ऑफिस गए, अपने जो भी काम होता है वो किए, फिर 6 बजे आए, घर पे आके सो गए। लेकिन आपका जो व्यक्तित्व है और आप जो आपकी जो वर्क स्टाइल है वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने की है और नए शौक पालने की भी है मेरे ख्याल से।
0: नए शौक के लिए बीमारी हो जाती है, और बीमारी की तरह आ जाते हैं वो। अब जैसे मैं बरेली का इतिहास लिख रहा हूँ, ये काम मैं पिछले 5 साल से कर रहा हूँ, गुज़िश्ता बरेली के नाम से। आपके यहाँ एक एपिसोड भी हमारा हुआ है, गुज़िश्ता बरेली, तो यही हमने फोकस किया था। तो उसमें बरेली की ऐसी 100 पर्सनैलिटीज जिन्होंने बरेली को नेशनल इंटरनेशनल पहचान दी। फिर ये बरेली बसा कैसे, ये बाग ब्रिगटान क्या है, ये बैप्टिस्ट चर्च क्या है, क्या कहानी है उसकी, कि शशि कपूर ने उसके ऊपर जुनून फिल्म बनाई है ना, या यहाँ पर नाथ है हमारे, 6 नाथ कैसे है, स्वयंभू प्रकट कैसे हैं, यहाँ पर हमारे पास तुलसी मठ है, यहीं से राम जन्मभूमि का बिजली का बिल दिया जाता था, यहीं से मतलब वहां महंत नियुक्त किए जाते थे। तो इतनी बड़ी जगह है जिसमें 11 लाख तुलसी दलों पर केसर से राम नाम लिखकर और वहीं बहती हुई नदी की बालू में मिला के हनुमान जी का विग्रह बनाया गया है, वहीं पर तुलसीदास जी आए हैं, वहीं पर और लोग आए हैं। तो ऐसी अलौकिक चीजें हैं बरेली में कि देखने वाली। और फिर यहाँ अहिछत्र है, यहाँ पर ये पांचाल क्षेत्र कहलाता है, तो पूरा इतिहास। तो 100 कहानियां तो बरेली की पर्सनैलिटीज पे हैं कि आज से 115 साल पहले कौन व्यक्ति था जो बरेली की सोने और चांदी की जरदोजी को एक्सपोर्ट कर रहा था इंग्लैंड। 1937 में एक आदमी पानी के जहाज से इंग्लैंड जाता है और वहां से अंग्रेजों के बनाए हुए सूट की टेलरिंग और ड्रैपिंग का डिप्लोमा लेके आता है, और यहाँ पर जो कुतुबखाना हुआ करता था, जो बिल्डिंग होती थी, जो लाइब्रेरी थी, वो एक शॉप खोलता है, अपनी एक कंपनी खोलता है, जिसके बनाए हुए सूट जो हैं आज के अरमानी से ज्यादा महंगे थे और तमाम नवाब पहना करते थे। रियो रेस्टोरेंट था, तो वो क्या रेस्टोरेंट था जिसका एरोमा, जिसके मैंने उसके बारे में लिखा, तो 1000 मैसेज मुझे पूरी इंडिया से आए, बल्कि बाहर से भी आए। लोगों ने उसका संडेज याद किया, लोगों ने उसकी टूटी फ्रूटी याद की, लोगों ने उसके एरोमा याद किया, लोगों ने इवन उसकी कटलरी, उसका नैपकिन, उसका जो टेबल क्लॉथ है उस तक को याद किया। तो मैं समझ सकता हूं कि मतलब नॉस्टैल्जिया क्या होता है। अब मैं एक जो और लिख रहा हूं वो ये है कि बरेली की ही भूमि से, बरेली के ही माहौल से, बरेली के ही गली कूचों से, इसी एजुकेशन सिस्टम से, इसी मेंटालिटी में से किन 100 बच्चों ने पूरी दुनिया में परचम लहराए। नालंदा यूनिवर्सिटी का चांसलर कौन बना, मेटा में कौन गया, या सुपर कंप्यूटर्स में कौन गया, तो ऐसे

0: पूरे वर्ल्ड में जो बरेली के बच्चे हैं जो अच्छा अच्छा कर रहे हैं उनके बारे में भी काम चल रहा है।
1: क्या बात है, बरेली का पूरा एक तो इतिहास भी बता रहे हैं और अब आप बरेली में आज क्या चल रहा है, आज कौन कौन से बच्चे बाहर जा रहे हैं भी
0: जी। और इसी के साथ बरेली पहचानी जाती है राधेश्याम कथावाचक के नाम से, ठीक है ना, तो उन पर भी काम कर रहा हूँ। और बरेली दूसरे मायने में वसीम बरेलवी के नाम से भी पहचानी जाती हाँ, है, तो वसीम बरेलवी की भी बायोग्राफी मैं ही लिख रहा हूँ।
1: क्या बात, तो बहुत सारी चीजें हैं जो जल्द ही हम सबको देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी किताबों के रूप में। और बरेली में जो आप देखते हैं पिछले लंबे समय से बरेली पे काम भी कर रहे हैं, साहित्य से जुड़े हैं, पहले का वक्त और अब का वक्त जो बरेली का है क्या फर्क महसूस कर रहे हैं?
0: देखिए, जैसे हर शहर मॉडर्न हुआ है, बरेली मॉडर्न हुआ है, और इधर जो स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है और तत्कालीन जो मेयर रहे हैं, जो पीछे पिछले दौरान भी रहे हैं, उन्होंने बरेली में विकास के उस इतने काम कराए हैं, क्योंकि क्या है ना, ये जो नई जनरेशन आई है ये मॉडर्निटी की तरफ ज्यादा जाती है, तो उनको वो सुविधाएं चाहिए, उनको वो मॉल्स चाहिए, उनको वो पीवीआर चाहिए, उनको वो थिएटर चाहिए, उनको उस तरह का अर्बन सेंटर चाहिए। तो उन्होंने इस बात को ध्यान रखते हुए कि बरेली की सड़कें कैसी हों जिन पर अच्छी गाड़ियां दौड़ाई जा सकें, बरेली में रोशनी कैसी हो कि लाइट लगाई जा सके, तो सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से लाइट्स लगवाई हैं। उन्होंने हाट बनाए हैं, अर्बन हाट जैसा बनाया है जो बहुत मॉडर्न है। पहले हम दिल्ली का सुनते थे, दिल्ली हाट सुनते थे, लेकिन आप देखिए बरेली का इतना बड़ा हाट बना है, इतना बड़ा थिएटर बना है, कम्युनिटी हॉल्स हमारे इतने अच्छे बने हैं। तो ये सब विकास की प्रक्रिया है। और बरेली को जो भौगोलिक तरीके से बरेली है कि 250 किलोमीटर देश की राजधानी से, 250 किलोमीटर प्रदेश की राजधानी से, इधर 100 किलोमीटर नैनीताल, इधर आपका ताजमहल, इधर हमारा वृंदावन और मथुरा जैसी ब्रजभूमि, तो आप सोचिए ना कितनी खूबसूरत लोकेशन है इसकी। और ये शहर तो चमकना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना, फ्लाईओवर्स बने हैं यहाँ पर, कनेक्टिविटी बढ़ी है शहर की, पहले एक तरफ से दूसरी तरफ जाना मुश्किल होता था, अब जब से ये फ्लाईओवर्स बने हैं तब से आप जा सकते हैं। तो मैं तो बरेली के मेयर साहब को भी धन्यवाद दूंगा कि भाई उन्होंने अपना विजनरी जो दिखाया है इसमें और बहुत शानदार काम किया है और भी कर रहे हैं, अभी और भी उम्मीद है उनसे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे बहुत सारे लोग होते हैं कि जहाँ जन्म लेते हैं वहां से कहीं और जाके कुछ अच्छा करते हैं और फिर उस जगह को भूल जाते हैं, या फिर मन में कसक रहती है कि वो जगह अच्छी नहीं है। और कई लोग होते हैं जो अपनी जन्मभूमि पर गर्व करते हैं, तो आपको क्या लगता है बरेली में अगर जन्म हुआ है तो अच्छा है, या कहीं और जन्मे होते तो?
0: अरे नहीं साहब, आई लव माई सिटी, आई लव बरेली। और मैं तो बरेली को, अभी मुझे इंडिया टुडे बुलाया गया था और मुझे एक घंटे का मंच दिया गया, छोटा शहर बड़ी कहानियां। तो वो कह रहे थे कि कैसे आप एक शहर से इतनी सारी कहानियां निकाल के लाते हैं। जब चैनल्स लग रहे थे, मैं पुरानी बात बता रहा हूं, तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा चलो हमारा डेस्टिनेशन दिल्ली है, बंबई है। मेरी मदर अधिकारी थी, नौकरी में थी, मेरे फादर भी कहीं और थे, हम न्यूक्लियर फैमिली थे, मेरी बहन भी दिल्ली पढ़ रही थी। तो मैंने उस जमाने में अपनी कच्ची उम्र में सोचा कि मेरी प्रायोरिटी में क्या है, पैसा है, शोहरत है, बड़े शहर हैं, या फैमिली है? तो मुझे फैमिली लगा, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, तो मैं बरेली में रहा। लेकिन मुझे बरेली ने बहुत कुछ दिया, सबसे बड़ी तो पहचान दी। आपका अपना शहर जब आपको पहचानता है, ठीक है ना, तो उससे बड़ी कोई पहचान नहीं होती। दूसरी बात यह है कि अगर मुझे लिटरेचर का शौक था तो मैं देश के ऐसे बड़े बड़े साहित्यकार, मैं महादेवी वर्मा से मिला, मैं अमृता प्रीतम से मिला, मैं मन्नू भंडारी से मिला, मैं राजेंद्र यादव से मिला, विष्णु प्रभाकर से मिला, कोई आप नाम लीजिए, बल्कि शिवदान सिंह चौहान जो प्रेमचंद के बाद आए थे और नामवर सिंह के गुरु थे, उनका लास्ट इंटरव्यू मैंने किया, जो 100 साल का बेस्ट आलोचना है उसमें दर्ज हुआ है, ठीक है ना, लगभग 1000 लिटरेरी किताबों पे लिखा। अभी मैं किताब लिख रहा हूं जिनसे मैं मिला, तो उनमें मैं इन 40-50 हस्तियां जो देश की बड़ी हस्तियां हैं उनके बारे में अपने संस्मरण लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो लिटरेचर में मुझे मिला, मुझे टेलीविजन का शौक था, 10 साल मैंने जम के टेलीविजन किया, शहर भर मुझे पहचानता था, मैं शाम को जिस गली से निकलता था सबके घरों के टेलीविजनों से मेरी आवाज आ रही होती थी, ठीक है ना। मुझे फिल्मों का शौक, फिल्में भी बंबई से बरेली आ गई, तो मुझे तो शहर ने खाली नहीं रखा। फिर क्या होता है, जैसे कि आपके ऊपर पिता का ऋण होता है, माँ का ऋण होता है, गुरु का ऋण होता है, मैं कहता हूँ शहर का भी ऋण है। और ये जो शहर का इतिहास मैंने लिखा है, ये मैंने लिख लिया है कि मैं अपने शहर का कर्जा उतार पाऊं, तो ये मैंने समर्पित कर दिया है अपने शहर के लिए। जो शहर का ऋण था, जिस शहर में मैं पैदा हुआ हूँ, ये उसका ऋण उतारा है मैंने।
1: क्या बात है, बहुत खूब है, शहर का ऋण उतारने की ओर काम कर रहे हैं आप। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी फैमिली की, फैमिली में कौन कौन है सर?
0: ऑफ कोर्स एक बीवी है बेटी है मेरी है ना, वो इंजीनियरिंग कर रही है, बहार शर्मा नाम है उसका, बेटा है पलाश शर्मा है, वो पढ़ रहा है अभी, अभी वो 11th में है, तो अच्छा करेंगे बच्चे। मैं तो उनको बताता हूँ कि भाई ठीक है एजुकेशन एटिकेट्स मैनर्स जरूरी हैं, लेकिन जिंदगी बहुत

0: जरूरी है। जिंदगी को खुल के जियो, जिंदगी के साथ जियो, मस्त रहो, है ना, और किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता ना बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। आज एक चीज की है तो अगला कल दूसरी चीज की है। कभी आप सोचिए ना कि आज से 10 साल पहले आप किस प्रॉब्लम में थे, तो लगेगा आज वो प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन हाँ आज भी आप किसी प्रॉब्लम में होते हैं। तो प्रॉब्लम कभी कंसिस्ट नहीं करती, कभी साथ नहीं चलती, तो उसको बरकरार रखो, उसके साथ ऐसे ही खेलो जैसे कि मतलब ठीक है एज ए प्लेयर। तो जिंदगी तो एक ही बार मिली है, एक ही बार जीनी है, तो उसको जितनी खूबसूरती से और जी भर के जीना चाहिए। आपको खेलना चाहिए, आपको फिल्में देखना चाहिए, आपको टाइम पास करना चाहिए, आपको घूमना चाहिए, आपको बढ़िया खाना चाहिए, आपको बढ़िया व्यायाम करना चाहिए, जो मैं नहीं करता हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो लाइफ इज दैट टोटली मस्ती।
1: आखिर में अगर आप कुछ संदेश देना चाहें हमारे श्रोताओं को, आकाशवाणी के श्रोताओं।
0: जी, मैं आपसे भी कहना चाहूंगा और खासतौर से एक डीन की हैसियत से जो मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म मेरा डिपार्टमेंट है, उन बच्चों को भी कहना चाहूंगा और सारे बच्चों को कहना चाहूंगा कि आजकल जमाना है टेक्नोलॉजी का, आजकल जमाना है सोशल मीडिया का, आजकल जमाना है अपने आप को प्रस्तुत करने का, खुद एक्टिवेट होने का। देखिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म से, वो भी रीले बना रहे हैं, वो भी बहुत सारा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि कंटेंट अच्छा होना चाहिए, जो आप सोचें वो अच्छा होना चाहिए, जो आप बोलें वो अच्छा होना चाहिए, जो आप करें वो अच्छा होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए और किसी के लिए उपयोगी होना चाहिए। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, अपना योगदान देंगे, अच्छे में देंगे, तो मुझे लगता है कि एक बहुत खूबसूरत सा गुलदस्ता हम सोसाइटी का पैदा करेंगे।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतने अच्छी बातें करने के लिए, जिससे एक ऊर्जा मिलती है, खासतौर पे जो हमारे नौजवान साथी हैं वो आपको देख के, आपकी बातों को सुन के जरूर एनर्जी से भरपूर हो जाएंगे, यही उम्मीद करते हैं हम। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही सर, आपका आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक मुलाकात, इसमें आपने सुनी राजेश कुमार शर्मा से मिथिलेश श्रीवास्तव की बातचीत। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम।

गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और अपना खूब खूब ख्याल भी रख रहे होंगे। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा, लेकर आई हूँ आपको और मेरा फेवरेट प्रोग्राम युववाणी, जिसमें हम करते हैं आपसे ढेर सारी गुफ्तगू और सुनवाते हैं कुछ खूबसूरत नगमे भी। और साथियों, मैं प्रोग्राम शुरू करूँ, लेकिन आइए उससे पहले एंजॉय करते हैं इस सॉन्ग को।

0: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
1: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
2: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
1: कहाँ से पता चलेगा?
2: उद्गम से।
0: RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर कर लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
2: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: वेलकम बैक, दूसरी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम युववाणी में, और आप बने अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ। और साथियों वॉल्यूम जरा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है कोई आम टॉपिक नहीं है, बल्कि वो ताकत है जो पूरी दुनिया को रोशन करती है। और आज है तारीख 11 अक्टूबर, और आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और इसकी जो कहानी की शुरुआत हुई थी तो वो बात है साथियों 1995 की, जब बीजिंग में दुनिया भर के देश इकट्ठा हुए और पहली बार सबने एक में माना कि लड़कियों के अधिकार जो हैं वो मानव अधिकार हैं। और फिर संयुक्त राष्ट्र UN ने 2011 में ठप्पा लगाया और 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार पूरी दुनिया ने ये पूरे जोश के साथ मनाया। और इसका मकसद था सिर्फ बेटी बचाओ के नारे लगाना नहीं, बल्कि बेटियों को वो आसमान देना जहां वो बेखौफ उड़ सकें, चाहे वो पढ़ाई की बात हो, अच्छी सेहत की, या फिर बाल विवाह और भेदभाव की पुरानी बेड़ियों को तोड़ने की। ये दिन हर उस रुकावट पर ताला लगाने के लिए है जो एक लड़की के रास्ते में आती है। जमाना बदल चुका है दोस्तों, आज की बेटियां सिर्फ चूल्हा चौका नहीं संभाल रही, वो फाइटर जेट उड़ा रही हैं, ओलंपिक में मेडल ठोक रही हैं, कोडिंग कर रही हैं और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चला रही हैं। लड़कियां किसी से कम नहीं बल्कि सबसे आगे खड़ी हैं। अगर आपके घर में, पड़ोस में या जिंदगी में कोई बेटी, बहन या दोस्त है तो आज सिर्फ उसे मुस्कुराकर ये कहिए, तुम जैसी हो भाई कमाल हो, पंख खोलो और उड़ जाओ, ये पूरी दुनिया तुम्हारी है। फिलहाल बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए प्रोग्राम युववाणी और एंजॉय कीजिए इस सॉन्ग को।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल, जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए, डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: और आप बने अपने दोस्त एंड होस्ट आबिदा फातिमा के साथ, और आज की हमारी बातचीत जो है वो बहुत खास है, क्योंकि आज हमारा सेगमेंट है हेलो फ्रेंड। और साथियों, बात चल रही थी बेटियों की, और एक बेटी सिर्फ किसी घर की बेटी नहीं होती, वो किसी की बहन होती है, किसी की दोस्त होती है, किसी की माँ होती है, और सबसे बढ़कर वो अपने सपनों

0: अपनी पहचान के साथ एक पूरी इंसान होती है। आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड के मौके पर हम बात करेंगे बेटियों की पढ़ाई की, उनके सपनों की, उनकी सुरक्षा की, उनके आत्मविश्वास की और समाज में उनके बराबर के अधिकारों की। तो आज हेलो फ्रेंड्स में हमारे साथ जुड़िए और बताइए आपके लिए एक लड़की की जिंदगी में सबसे जरूरी चीज क्या है। तो आइए साथियों हम पहली कॉल लेते हैं। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड
0: जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी मैं डीपी गौतम बोल रहा हूँ, बरेली से।
0: जी आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मना रहे हैं।
1: हाँ।
0: जी तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि लड़कियों की एजुकेशन की अगर हम बात करें तो क्यों एजुकेशन जरूरी है, आपको क्या लगता है?
1: मेरे हिसाब से लड़कियों की एजुकेशन इसलिए जरूरी है जिस तरह उनका समाज में अभी तक जिस तरह बराबरी का मौका नहीं मिल पाया है, तो शिक्षा ही केवल एक ऐसा माध्यम हो सकता है कि जिसके दम पर वो समाज में बेहतर एक अपनी बराबरी हासिल कर सकती है और एक बेहतर समाज को बनाने में अपना योगदान दे सकती है।
0: जी और कुछ आप बताना चाहेंगे? आपने ये तो बता दिया कि वो योगदान दे सकती हैं, अगर कुछ और आप लड़कियों के बारे में बताना चाहें और कौन से ऐसे परिवार हैं, आपको मालूम है ना कि आज भी कुछ ऐसे परिवार हैं जिनको जागरूक करने की जरूरत है।
1: हाँ बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि जैसे अगर इतिहास में देखें तो जैसे भारत का पहला स्कूल ही फातिमा शेख ने ही और माता सरस्वती फुले ने ही पहला स्कूल खोला था।
0: जी
1: और ये सबसे बड़ा एग्जांपल है कि
0: वो भी एक महिला ही थी,
1: महिला शुरू से ही किसी फील्ड में पीछे नहीं रही है। और आज भी अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में हो या शिक्षा हो या रक्षा के क्षेत्र में हो या किसी फील्ड में महिला सबसे आगे से आगे बढ़कर अपना योगदान देती है। जैसे कि कोई बिजनेस चलाना हो या घर चलाना हो या हम जैसे जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ वहाँ की एसओडी भी एक महिला ही है। ये बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि महिलाओं को कम नहीं आंकना चाहिए।
0: जी चलिए आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। अगर आज आप हमें एक अपनी पसंद का सॉन्ग बताना चाहें, आपके पास मौका है कि आप अपनी पसंद का सॉन्ग सुन सकते हैं, तो बताइए आप कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे?
1: जी मैं सॉन्ग सुनना चाहूंगा पल पल दिल के पास तुम रहती हो।
0: ओके हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत। आपने कॉल की इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों बहुत सुंदर इनके विचार थे। सच में शिक्षा सिर्फ नौकरी पाने का रास्ता नहीं बल्कि अपने फैसले खुद लेने का कॉन्फिडेंस भी देती है। और अब इसी खूबसूरत सोच के साथ सुनते हैं इनकी पसंद का ये गाना।

0: दोस्तों, एक लड़की को जब पढ़ने और आगे बढ़ने का मौका मिलता है तो उसके सपनों के साथ साथ पूरे परिवार का भविष्य भी बदल सकता है। और अब हेलो फ्रेंड्स में अगली कॉल लेते हैं और इस बार बात करेंगे सपनों की। हेलो फ्रेंड।
1: हेलो फ्रेंड
0: जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं?
1: जी, मैं शिखा बोल रही हूँ, बरेली से।
0: ओके, जैसा कि शिखा जी आपको मालूम है कि आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। जी, और आप भी एक लड़की हैं, तो मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि बचपन में आपका सबसे बड़ा सपना क्या था और क्या वो सपना पूरा हुआ?
1: मेरा सपना था एक टीचर बनने का, एक यूनिवर्सिटी का, तो अभी वो पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल हम उस पर काम कर रहे हैं।
0: अच्छा, चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। और लड़कियों के सपने आपको कैसे लगते हैं? क्या आपको लगता है कि बेटियां अपने सपने पूरे कर पाती हैं?
1: अगर बात करें आज के दौर की तो बिल्कुल कर पाती हैं, लेकिन कुछ समय तक पहले नहीं कर पाती थी, कुछ सोसाइटी की वजह से या फैमिली प्रेशर। लेकिन आजकल लड़कियों को मौका है इतना कि वो कर सकती हैं, उनकी फैमिली सब सपोर्ट करते हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी है जहाँ नहीं कर पाती हैं अभी भी,
0: जी
1: तो अभी लगता है उनको मौका मिलना चाहिए।
0: जी तो अगर ऐसी कोई लड़की है अपने सपने को लेकर फैमिली या सोसाइटी के प्रेशर में है, तो आप उन्हें और कोई मैसेज देना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी उनकी फैमिली से?
1: मैं उनकी फैमिली से बस ये कहना चाहूंगी कि सपने सब देखते हैं और
0: जी
1: सबको अपने सपने पूरे करने का हक होता है,
0: जी
1: चाहे लड़की हो या लड़का। और अगर किसी भी लड़की का कोई भी सपना है पूरा करने के लिए उसकी सपोर्ट करें, उसको इजाजत दें, जो भी करना चाहे, चाहे खेल में, पढ़ाई में
0: जी
1: या फिर किसी काम में, जॉब में, तो उसको जरूर सपोर्ट करें।
0: जी बहुत खूब बात आपने कही है, क्योंकि सपने देखने का अधिकार हर लड़की को है, उन्हें पूरे करने का जो मौका है वो भी मिलना उन्हें जरूरी है। अब आपकी पसंद का हम गाना सुनते हैं, क्योंकि ये मौका मिला है आपको आज, क्योंकि आपने हमें कॉल करी है। तो बताइए आप अपनी पसंद का कोई एक सॉन्ग।
1: जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे।
0: ठीक है शिखा जी, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये सॉन्ग।
1: धन्यवाद।

0: एक लड़की की उड़ान को रोकना नहीं, उसे सही दिशा और हौसला देना जरूरी है। दोस्तों, बेटियों के सपनों के साथ उनकी सुरक्षा और सम्मान भी उतना ही जरूरी है। चलिए अब लेते हैं अगली कॉल।
1: हेलो
0: जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं मोहित शर्मा बात कर रहा हूँ, बरेली से।
0: जैसे कि मोहित शर्मा, आपको मालूम है आज हम अपने हेलो फ्रेंड में जो हमने टॉपिक रखा है वो है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जो हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। मोहित, ये बताइए कि आपके हिसाब से लड़कियों को सुरक्षित माहौल देने की जिम्मेदारी किसकी है? फैमिली की, स्कूल की, समाज की, या फिर हम सभी की?
1: जिम्मेदारी सिर्फ एक इंसान तक सीमित नहीं है
0: जी,
1: इसमें परिवार से लेकर प्रत्येक पुरुष से लेकर, प्रत्येक लड़की से लेकर, समाज से लेकर, सरकार, पुलिस और जो हमारे आसपास के महाविद्यालय या यूनिवर्सिटीज
0: जी,
1: या प्रत्येक जो हमारे नागरिक हैं, इन सब की जिम्मेदारी होती है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो हमारी बहन हो, या सभी को जो है सुरक्षित माहौल देने का कर्तव्य है। तो यह एक किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पूरे समाज की और प्रत्येक पुरुष की भी जिम्मेदारी है कि उसको एक अच्छा और एक सुरक्षित माहौल दिया जाए।
0: अच्छा, अगर कोई लड़की किसी परेशानी में है तो अगर आप बताना चाहेंगे परिवार और समाज को उसका साथ किस तरह देना चाहिए?
1: कोई गर्ल किसी परेशानी में होती है तो सबसे पहले तो उसमें अपने आप को आपसे बात करने में सुरक्षा महसूस करे, पहले उसको अपने व्यवहार से उसको
0: ऐसा महसूस कराए,
1: ऐसा महसूस कराए कि आपसे जो है अपनी जो उसकी परेशानी है उसको बता सके।
0: जी बिल्कुल,
1: पर आप उसकी परेशानी के हिसाब से उसको जो है दूर करने का प्रयास करें।
0: हाँ बिल्कुल मोहित, सुरक्षा सिर्फ लड़कियों को रिस्ट्रिक्शंस देने से नहीं आती है, बल्कि एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए लड़कों, परिवार और स्कूलों और पूरे समाज की सोच में बदलाव भी जरूरी है। जी हाँ
1: जी।
0: तो अब आपने हमसे बात तो कर ली, लेकिन आपके पास अब मौका है कि आप अपनी पसंद का एक गाना भी सुन सकते हैं, तो आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगे?
1: फिल्म का गाना है धाकड़
0: जी,
1: उसको सुनना चाहेंगे।
0: चलिए, हम आपको सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद का ये गीत। आपने कॉल की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी धन्यवाद।

0: दोस्तों आज इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड पर हम सिर्फ बेटियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस समाज की बात कर रहे हैं जहां हर लड़की बिना डर के पढ़ सके, अपने सपने देख सके और अपनी पहचान बना सके। और आप सुन रहे हैं 100.4 FM पर आकाशवाणी बरेली, और जिसमें हम सेगमेंट चला रहे थे हेलो फ्रेंड्स। इसी खूबसूरत सोच के साथ मैं आपसे लेती हूँ इजाजत। मुस्कुराते रहिए, बेटियों को आगे बढ़ाते रहिए, और तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब ग्रामीण भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत।

कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी भैया और बहनों, आप सभी को आपके भैया धारा की राम राम। स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत में। भैया बहनों, आज दिन है इतवार को और आज के दिन आप अपनी पसंद की लोकगीतों को सुनने के लिए जो कमेंट्स सोशल मीडिया पर करते हैं और पत्र हमें भेजते हैं, हम कार्यक्रम में अवश्य शामिल करेंगे और आपकी पसंद के लोकगीतों को भी सुनवाएंगे। क्योंकि आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहे हैं, हर घर और मंदिर को अच्छी तरह से सजाया गया है, मैया रानी के भजनों से माता रानी को रिझाने के लिए लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो फिर हम भी आज अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस देवी गीत से। इस देवी गीत को सुनने के लिए हमें कमेंट्स किए हैं, आप हैं ग्राम जल्लापुर रामदयाल कैंटबरली से, रमेश कुमार राजपूत, उर्मिला देवी, सुनीता, शिवानी, मीरा, मनोज कुमार, बब्बू और ज्योति।

अभी आपने ये प्यारा सा देवी गीत सुना, और अब कार्यक्रम में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा कर लेते हैं। आज हमारी चर्चा का विषय है उर्दू शिक्षा का आधुनिकीकरण। शिक्षा किसी भी समाज की हो, प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। उर्दू भाषा हमारी समृद्ध साहित्य और सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस भाषा में साहित्य, कविता, गजल, इतिहास और मानवीय संवेदनाओं की अनमोल धरोहर मौजूद है। समय के साथ साथ शिक्षा के तरीकों में बदलाव आया। आज डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन कक्षाएं, स्मार्ट क्लास, ई पुस्तकें और इंटरनेट के माध्यम से अध्ययन के नए अवसर उपलब्ध हो चुके हैं। ऐसे में उर्दू विषय को भी आधुनिक तकनीकी से जोड़ना बहुत उपयोगी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर हम कहेंगे कि उर्दू पढ़ने और लिखने के लिए डिजिटल सामग्री जो तैयार की गई है, हम अपने बच्चों को उससे सिखाएं, और सीखने के लिए ऑडियो, वीडियो और शैक्षिक मोबाइल ऐप के माध्यम से अच्छी शिक्षा दें। शिक्षकों को आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, और विद्यार्थियों को भाषा के साथ साथ कंप्यूटर तथा अन्य उपयोगी कौशल सीखने के अवसर भी दिए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा। आधुनिकीकरण का अर्थ अपनी भाषा, संस्कृति को छोड़ना नहीं, इसका उद्देश्य अपनी विरासत को सुरक्षित रखते हुए शिक्षा को अधिक प्रभावी, सरल और रोजगार परख बनाना होता है। इस दिशा में शिक्षकों, अभिभावकों, शिक्षण संस्थानों और समाज के जागरूक नागरिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि हम मिलकर प्रयास करें तो भाषा की समृद्ध परंपरा को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के साथ साथ

0: विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा और दुनिया की आवश्यकताओं के लिए भी तैयार कर सकते हैं। तो भैया बहनों, यही है आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य। अपनी भाषा पर गर्व करें, अपनी विरासत को संजोएं और शिक्षा को आधुनिक ज्ञान एवं तकनीकी से जोड़ें। शिक्षा के बाद सबसे महत्वपूर्ण है स्वास्थ्य, और स्वास्थ्य जिसका सही है वो अच्छी तरह से शिक्षा भी प्राप्त कर सकता है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों सही हैं तो हम अपना विकास करने के साथ साथ देश का भी विकास कर सकते हैं। आज का हमारा विषय है करें योग रहें निरोग। आइए सुन लेते हैं ये क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता।
1: आज हम हैं योगाचार्य जी के साथ और आज आपसे हमारी बातचीत का विषय है करें योग रहें निरोग। जी, मेरा नाम राजेंद्र योगाचार्य है। मैं सब इस कार्य के लिए बहुत समय से कर रहा हूँ, 20 वर्ष से। मैंने बचपन से योग को अपनाया है और जन जीवन तक उसको पहुंचाने का प्रयास किया, जन जन तक उसको पहुंचाने बहुत सारे कैंप लगाए हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो योग है इसके संबंध में बताइएगा कि इसकी क्या महत्वता है व्यक्ति के जीवन में। योग तो भाई सब आदिकालीन है, शास्त्रों में बहुत वर्णन है इसका। और योग जीवन के लिए इतना महत्वपूर्ण है जैसे कि शरीर के लिए भोजन, नींद, ये जल, जैसे शरीर को जल की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे श्वास की आवश्यकता होती है।
0: जी
1: तो श्वास का जो सही क्रम है वो योग सिखाता है और जीवन में बहुत लाभकारी है। योग हमारी दैनिक जीवन में उसका एक बहुत बड़ा भाग है। हम लोग उसको केवल कुछ समय के लिए आवश्यकता पड़ने पर लेते हैं, ये ऐसा नहीं है। मतलब एक भाग है, जैसे भोजन भाग है, नहाना भाग है, पानी पीना भाग है, ऐसे ही हमारे जीवन में नींद हमारा हिस्सा है, ऐसे ही योग हमारा हिस्सा है। भाग दौड़ भरी जिंदगी में क्योंकि व्यक्ति अपने लिए काम काज के सिलसिले में योग को करने का समय नहीं निकाल पाता है, जबकि बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है कि अगर आदमी अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग और व्यायाम करे तो बहुत ही अच्छी बात है। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? इसके बारे में तो मेरा ये वैसा, मुख्यतः लोग केवल शारीरिक क्रियाओं को योग मानते हैं जबकि योग जीवन में हर क्षण जिया जाता है। हम जब भोजन कर रहे हैं तो सख्त में ध्यान रखना है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, वो भी योग का पार्ट है। भोजन में हम ले रहे हैं तो उसके साथ, जैसे पानी को वर्जित कहा गया है कि पानी भोजन के साथ नहीं लेना चाहिए, थोड़ा बाद में लेना चाहिए, आधा पौन घंटे बाद। तो लोग जानकारी के अभाव में उसको ले लेते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं भोजन में, खाद्य खाद्य उनका कब लिया जाए भोजन कब, मैंने रोज देर रात तक 11-12 बजे तक खाते हैं, रात में भी खाते हैं, मतलब ये कुछ सिस्टम नहीं, ये सिस्टम को जीवन में लाना भी योग है।
0: जी, ऐसी कौन कौन सी अवस्थाएं हैं जिनमें योग करके अपने आप को निरोग रखा जा सकता है?
1: योग तो वैसे बचपन से ही शुरू हो जाता है क्योंकि बच्चे जो खेल कूद का क्रम करते हैं वो भी योग का ही पार्ट है, लेकिन उसको स्कूलों में पीटी के रूप में, अन्य चीजों के रूप में शुरुआत करते हैं। और कुछ गेम्स होते हैं जो बच्चों को खेला के खेल खेल में उनको वो चीज देते हैं, तो वो भी योग का पार्ट है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है, समझदार होता है, किशोरावस्था में आता है, तो उसको उसको जीवन में अपना लेना चाहिए।
0: जी,
1: और उसके बाद तो फिर वृद्धावस्था तो चलता है, जीवन के अंत समय तक योग चलता है।
0: अच्छा, ऐसी कौन कौन सी ऐसी योग की मुद्राएं हैं, ऐसे कौन कौन से योग किए जा सकते हैं जो व्यक्ति के लिए, उसकी दिनचर्या के लिए बहुत जरूरी है?
1: तो कुछ ऐसा है कि शरीर के मूवमेंट के लिए थोड़े से शरीर को संचालित करने वाले संधि, जितनी हमारी जोड़ है ना, इनसे संबंधित छोटी छोटी क्रियाएं हैं उनको कर लिया जाए। और उसके साथ में प्राणायाम है, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उसका, और कपालभाति बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है उसका। तो ये चीजें कुछ कर ली जाए तो मैं समझता हूँ कि 10-15-20 मिनट भी अगर आप पर डे देते हैं शरीर के लिए तो ये सफिशियंट है आपके लिए, अगर आपको कोई विशेष समस्या नहीं है तो।
0: जी, हम आपसे वो योग की क्रियाएं जानना चाहेंगे जो आसानी से की जा सकती हैं और शरीर को स्वस्थ रख सकती हैं। बताइएगा कि किस तरीके से, जैसे लोग करना शुरू कर देते हैं लेकिन वो सही तरीके से कर नहीं पाते हैं, मान लिया प्राणायाम वाली बात है या कपाल भाती वाली बात है, तो ये नहीं कर पाते हैं, तो किस तरीके से किया जाए कि वो अपने आप को इसका लाभ ले पाए?
1: हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका।
0: जी,
1: क्योंकि जब तक उस बारीकी से उसकी जानकारी नहीं होगी तो लाभ कम मिलता है।
0: जी,
1: अगर जानकारी होगी तो लाभ अच्छा मिलता है। बहुत सच्ची क्रिया, मैं आपको कुछ तो बैठ करके बता देता हूँ। जैसे हम लोग कोई भी योग की क्रिया करते हैं तो हमें कहा जाता है कि कमर को सीधा रखें। तो सीधा रखने के पीछे कारण है जो हमारे अंदर जो बैकबोन है, बैकबोन से होकर के हमारी सारी नसें गुजरती हैं महत्वपूर्ण, जिनमें सुषुम्ना इंद्रिय पिंगला जो नाड़ियां होती हैं, सर्कल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, वहीं से होकर जाती हैं। जब नस सीधी होती है कोई भी तो उसमें ब्लड का जो फ्लो है तीव्रता से होता है, जो हम चाह रहे हैं वो पूरा हो जाता है। तो हमने

0: श्वास को लिया है और उस श्वास के साथ में जो ब्लड का फ्लो है तो उसमें अगर कोई अवरोध नहीं है तो वो शीघ्रता से हमारे मस्तिष्क तक जाता है और फिर वहां से रिटर्न होकर शरीर के विभिन्न पार्टों में चला जाता है। तो ये करने का तरीका सबसे पहले महत्वपूर्ण है। संबंधित योग को हम कर रहे हैं उसका हमको नॉलेज है कि कैसे करें। तो जोड़ों के हमारे बहुत सारी छोटी छोटी क्रियाएं हैं, मूवमेंट वाले हैं, बहुत सिंपल है। जैसे जितने हमारे जोड़ हैं ये हमारे सभी जोड़ चल जाने चाहिए। तो जैसे हमने उंगलियों को ऐसे करके लिया है तो हमने बहुत सिंपल तरीके से लिया, अब इसको थोड़ा सा फोर्सली लेंगे, दबा कर लेंगे तो ऐसा लगेगा हम किसी चीज को पकड़ रहे हैं। तो एक नॉर्मल फोर्स से थोड़ा ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन क्या होता है, जैसे ही हमने उसके फोर्स को रोका तो ब्लड यहाँ बंद गया, अब जैसे खोलेंगे एकदम दौड़ेगा।
1: जी जी।
0: तो वो जो हल्के से चलने वाली क्रिया है उसको जैसे रोक करके करते हैं तो ब्लड का फ्लो हो जाता है। तो फ्लो में क्या होता है, जो उसमें टॉक्सिन्स होते हैं, जो कुछ भी उसमें जमाव होता है वो बह जाता है।
1: जी जी।
0: जैसे आपने कभी देखिए पानी से हम लोग फर्श वर्श धोते हैं, सामान नहीं धुल रहा है तो थोड़ा सा दबा दिया उसको।
1: जी जी जी।
0: और प्रेशर पड़ा तो वो बह गया।
1: जी जी।
0: तो ऐसे ही हम अंदर कैसे दबाएं, तो हमने किसी भी क्रिया को किया उसको थोड़ा फोल्ड कर प्रेशर के साथ किया और जैसे ही रोका छोड़ा
1: मतलब उसका रक्त का जो है वो बहाव तेजी से
0: झटके के साथ तेजी से देने की क्रिया है। इसी कपाल भाती में यही क्रिया होता है।
1: कौन सी नाक से जो है छिद्र से श्वास लेना चाहिए, किससे छोड़ना चाहिए?
0: कपाल भाती में तो दोनों नाक से श्वास को आवागमन होता है। श्वास को आपको लेना नहीं होता है, नॉर्मली श्वास थोड़ी सी अंदर पहुंची होती है उसको झटके के साथ बाहर फेंकना होता है। जैसे हम नॉर्मल सांस लेते हैं
1: किस प्रकार से करते
0: हैं मैं बताता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ। कमर को सीधी कर लेंगे, हाथों को इस प्रकार रख लेंगे और जो भी श्वास आपके अंदर है पहले तो नॉर्मल सांस अंदर लेकर के बैठते हैं, फिर श्वास को बाहर फेंकते हैं झटके के साथ, पेट पे कंपन होगा और श्वास बाहर जाएगी ऐसे।
1: ये एक साधारण सी जो है
0: साधारण सी क्रिया
1: कपाल भाती।
0: हाँ, कपाल भाती में क्या होता है, जैसे लोग बहुत समय करते रहते हैं और बहुत लगातार करते रहते हैं तो पहले तो उसको समझना है कि कपाल भाती जब कर रहे हैं तो पेट में झटका सा लग करके पीछे की ओर पेन पहुंचेगा।
1: अच्छा,
0: तो स्टार्टिंग में आप नए हैं तो 10-15 बार पहला सांस को छोड़ें, फिर रोक लें, थोड़ी देर रिलैक्स हो जाए, फिर उसके क्रम को 20-25 बार बढ़ाएं और ऐसे हर रोज हर स्टेप में आप इसको 10+ करते जाइए, 10-15+ करते, और ये 100 को पार कर जाए, 200 को पार कर, लोग हजारों को पार कर जाते हैं, घंटों घंटों बैठ के प्राणायाम करते हैं। ऐसे ऐसे मोटे लोग हैवी हो गए, वो कर करके पतले हो गए।
1: जी,
0: तो कहने का मतलब है कि वो ब्रेन को पूरा शरीर को एक्टिव करने में, ब्लड को सर्कुलेट करने में मदद करता है।
1: हाँ। इसी प्रकार से अनुलोम विलोम के बारे में भी थोड़ा सा किस तरीके से किया जाए कि
0: ऐसे ही आपका अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम में क्या है, हम लोग बहुत सिंपल सी मुद्रा ये ऐसे बना लेते हैं और इसको दोनों उंगलियों को इस तरह से मोड़ के बना लेते हैं
1: इस तरह से।
0: हाँ, चिन्ह मुद्रा प्रणव मुद्रा के अंदर, और इसको बाईं नासिका को सबसे पहले दाहिने को बंद करके बाईं से श्वास लेते हैं। बाईं से हमने श्वास ली, अंदर घेरे खींची, अब क्या होता है अंदर श्वास को होल्ड करना होता है, जो ऑक्सीजन आपके अंदर गई है वो अंदर में और ब्लड में घुल जाए, इतना टाइम दीजिए उसे। जो आपको लग रहा है कि श्वास नहीं रोक पाएंगे तो फिर श्वास की नाक को चेंज कर लीजिए, जिससे आपने श्वास ली थी उसको बंद कर दीजिए, दूसरी नासिका से धीरे धीरे श्वास को निकालिए, थोड़ा बिना श्वास के रहने का प्रयास करिए, फिर उसी नासिका से श्वास को भरिए, एक क्रम हुआ आपका।
1: जी,
0: जैसे श्वास भरेंगे तो पेट भी फूलेगा, चेस्ट फूलेगी, आपको श्वास को अंदर होल्ड कर दीजिए। जो श्वास का पार्ट गया जिसमें ऑक्सीजन लेवल है, ऑक्सीजन हमारे शरीर को चाहिए, वो ब्लड में मिल जाती है और जैसे ही मिलती है तो ब्लड धीरे धीरे करके प्योरीफाई होने लगता है।
1: जी,
0: और इसको हम जब रोजाना 10-20-15 मिनट करते हैं और रोज करते हैं तो जो आजकल डॉक्टर लोग चिकित्सा के दौरान ब्लड को चेक करते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां आती हैं, ये अशुद्धि ये अशुद्धि, उसके लिए टेबलेट्स दुनिया भर की लिमिटेशंस देते हैं। स्वाभाविक है कि आप इसको नियमित करिए तो ये ब्लड इतना शुद्ध हो जाएगा कि जरूरत ही नहीं पड़ेगी दवा की।
1: जी जी,
0: जो उसमें गंदगी थी वो तो उसने निकाल दी, ऑक्सीजन का लेवल उसको बढ़ा रहा है और ब्लड का शुद्ध होना ही सबसे रोग का कारण है शरीर के।
1: बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये है ना कि सबसे पहले किसी ना किसी योगाचार्य से इन नियमों क्रियाओं के बारे में सीख लेने के बाद ही जो है वो करना चाहिए, वरना तो इसका विपरीत असर भी हो सकता है।
0: ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है, लेकिन आधुनिक समय में मैं समझता हूँ कि योगाचार्यों की कमी नहीं है, बहुत लोग हैं क्योंकि अब तो ये पूरे विश्व में फैल चुका है।
1: जी, और फिर सोशल मीडिया के माध्यम से हाँ, भी लोगों को बड़ी जानकारी मिल रही है।
0: जी, जी।
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम और काम, पैसा और पैसा, इसके पीछे जब भाग दौड़ में लगा हुआ है व्यक्ति,
0: जी,
1: तो ना तो अपने सोने का, खाने का

0: इन सब का ध्यान रख पाता है। तो ऐसे में थोड़ा सा हमें बताइएगा कि भोजन का किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, किस समय भोजन किया जाए, किस प्रकार का भोजन किया जाए जिससे कि हमारा स्वास्थ्य भी सही रहे।
1: ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रों में योग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है ये।
0: जी,
1: क्या होता है कि शास्त्रों में कहा खाद्य और अखाद्य। खाद्य वो पदार्थ है जो शरीर के लिए पोषकता देते हैं, जो हमारे शरीर को पोषकता चाहिए, जिनमें हमारे पास जैसे विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 18 पोषक तत्वों का वर्णन है, वो हमारे शरीर को मिलने चाहिए। तो ऐसी चीजें ही हम खाएं जो हमारे शरीर को पोषकता दे रहे हैं, ऐसी चीज ना खाएं जिसको पोषकता नहीं है। अब बहुत सारे लोग इसके जीभ के स्वाद के चक्कर में जो कुछ भी ले ले रहे हैं। दूसरा बात यह कि हम ये कैसे जज करेंगे कि इसमें है कि नहीं है। इसके लिए कहा गया कि जितनी प्राकृतिक चीजें हैं जो अन्न के रूप में है, कैसे के रूप में, सीधे हमको फल के रूप में प्राप्त हो रही है,
0: उन्हीं को सेवन करें,
1: उनको ज्यादा सेवन करें। और जो हमको फास्ट फूड है ये सब जल भून करके, तल करके, ये बहुत ज्यादा गरिष्ठ हो जाते हैं, ये इसमें पोषकता नष्ट हो जाती है, तो वो इतना उपयोगी नहीं है। हाँ, लोगों के ये लगता है कि थोड़ा जीभ के लिए खाने के लिए स्वाद चाहिए, तो कभी कभार ले लीजिए, लेकिन ज्यादा मात्रा में समझता हूँ नहीं लेना चाहिए। क्योंकि वो कारण क्या है कि शरीर के अंदर जा करके उससे कुछ मिलेगा नहीं, एनर्जी और खर्च हो जाएगी, उसमें जो गंदगी जा रही है वो अंदर स्टोर हो जाती है, तो वो रोग का कारण।
0: जी, जैसा कि खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन और वैसा ही रहेगा तन।
1: जी जी जी,
0: तो इस ओर विशेष ध्यान रखना है कि हमें खान पान पर अपना नियंत्रण बना करके रखना है।
1: तो शास्त्र कहते हैं कि सूर्य उदय से सूर्य अस्त होने के बीच में भोजन का नियम है, रात्रि भोजन का नियम नहीं है। लेकिन कभी कभार क्या है कि आजकल देर रात काम करके लोग लौटते हैं, तो कोशिश करें कि वो अपना टिफिन ले जाएं, दिन में खा लें और रात्रि में हल्का भोजन लें, सुपाच्य कुछ थोड़ा।
0: जी,
1: भोजन करने के बाद आधा एक घंटा कम से कम वो टहल लें, घूम लें, और सोने के बीच में 1 से 1.5 घंटे का गैप हो जाए, तुरंत सो जाओगे तो कारण बनेगा कि वो रोगों को लाए।
0: जी, योगाचार्य जी, आपने योग के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, साथ ही साथ किस प्रकार का भोजन करें जिससे कि हमारा तन मन स्वस्थ रहे। आपका हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण बातें बताने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और अब आइए देर ना करते हुए आपके द्वारा भेजे गए उन प्यारे प्यारे पत्रों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं जिसमें आपने अपनी पसंद के लोकगीतों को सुनने की फरमाइश हम तक लिखकर भेजी है। ये पत्र है अलकनाथ मंदिर के सामने गंगवार बैगलाइन बरेली से बेचेलाल गंगवार, गुड्डी देवी, प्रशांत देव, ज्ञानेन्द्र देव और इला देवी गंगवार, संजय अग्रवाल, राज बर्फा देवी, सुनील यादव, रमेश चंद सैनी, जाकिर खान, शाकिर खान, पूरन चंद जोशी और शाकिर रजा का। आप सभी ने शशि लता के मधुर स्वर में एक प्यारा सा लोकगीत घर में लगाए गए ताला इसे सुनना चाहा है। और इसी लोकगीत को सुनने के लिए हमें कमेंट कर रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जघेल, मोरस जघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जघेल और नंदनी जघेल, धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जघेल, शकुन जघेल, आरुषि ओशका और अंजलि जघेल, गड़ैया बरेली मस्जिद के पास से कैसर शमसी, सलीम शमसी, अजीम शमसी, तविस शमसी, तैयबा शमसी, रजिया और बेबी ने भी इसी लोकगीत को सुनने की फरमाइश हम तक भेजी है। कटरा चांदखा मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरली से अनोखेलाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, बेदरा मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य ने भी प्यारा सा लोकगीत सुनने के लिए हमें कमेंट किया है। ग्राम करेली भिड़ी मोहल्ला से इशाक अहमद अंसारी, अफसार अहमद अंसारी, अंसार अहमद, दिलदार अहमद, मोहम्मद अर्श, मोहम्मद आरिस ने भी इसी लोकगीत को सुनना चाहा है। वक्सेना दातागंज बदायूं से बिमल ठाकुर, सरता ठाकुर, शुभ लव, गुनगुन, अमर सिंह, नीलू, अमन, रिया, सेजल, सूर्या, सोना, रीना, नीरज और प्रेमपाल जी ने भी इसी लोकगीत को सुनना चाहा है। शशि लता के मदर स्वर में लोकगीत सुनने के लिए लिख रहे हैं महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रियांश ठाकुर, ततरेंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और ज्ञानेंद्र कुमार वर्मा, चरडोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जैकसन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, लोहोडड़ा जिला बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, मास्टर अर्जुन, बिटिया अंजलि, नितिक जगमोहन, सुधीर नूतन, तेजपाल प्रजापति और इसी लोकगीत को सुनना चाह रहे हैं नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, महजवी निसार अंसारी, बेटी नुजत, फातिमा अवरार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, तस्लीम रजा और मुन्ना भाई ने सुनना चाहा है। मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर रोड पीलीभीत से बिमल वर्मा, नीतू

0: आज की युवा पीढ़ी के लिए भी बहुत सिद्ध सरोकार हो रहा है। तो समाज किस तरह से समाज को संस्कारित करने में अपनी भूमिका निभाता है,
1: पत्रकारिता
0: को धूमिल करने का भी कारण हो सकता है। इस संबंध में आज के जो युवा हैं।

0: बैठते थे।
1: जी
0: अब परिवार के हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है,
1: जी
0: तो ना तो वो अपने बच्चे से बात कर पा रहे हैं, ना पति पत्नी से बात कर पा रही हैं।
1: जी
0: तो इसलिए भी संस्कारों का अभाव है कि एक दूसरे के साथ शिक्षाओं का, कहानियों का आदान प्रदान होता था। पहले
1: जी जी जी
0: दादी के साथ बच्चे बैठ के कहानी सुनते थे, माँ के साथ
1: बिल्कुल
0: कहानी सुनते थे, लोरी
1: बिल्कुल
0: सुनाई जाती थी।
1: बिल्कुल
0: तो ये पुरानी जो बातें सुनाई जाती थी, पुरानी जो कहानियां सुनाई जाती थी, उनसे कहीं ना कहीं बच्चे को प्रेरणा मिलती थी।
1: जी
0: रामायण और महाभारत जैसे नाटक हमको देखने को मिलते थे, सुनने को मिलते थे, वो आज इस मोबाइल ने, इंस्टाग्राम, फेसबुक और इन्होंने सब दूरी बना दी है। इसलिए
1: जी
0: भी आज के युवाओं में, समाज में संस्कारों की बड़ा कमी है, अनुशासन की बड़ा कमी है।
1: जी अनुष्का जी, आप युवा हैं, आपकी सोच भी युवा है। राजकुमार जी ने बताया कि आज जो सोशल मीडिया का ज्यादातर प्रयोग है, ये भी कहीं ना कहीं हमें संस्कार बनाने में अवरोध पैदा कर रहा है। ये किस दृष्टिकोण से सही लगता है, या किस तरह ये प्रभावित कर रहा है आज के युवाओं को?
2: ये हमारे आज की जो युवा पीढ़ी है उसको दिन ब दिन ज्यादा से ज्यादा प्रभावित कर रहा है जो सोशल मीडिया है, क्योंकि इस पे अच्छी और बुरी दोनों तरह की चीजें आती हैं। लेकिन आजकल का युवा जो है वो अच्छी चीजों की ओर ना बढ़कर गलत चीजों का ज्यादा उपयोग कर रहा है।
1: जी, आपकी नजर में सोशल मीडिया का सही प्रयोग क्या है?
2: मेरी नजर में सोशल मीडिया का सही प्रयोग है जैसे इससे पढ़ाई करना, जो हमारे सांस्कृतिक कल्चर हैं वो उनसे सीखना,
1: जी
2: जैसे रामायण है, महाभारत है, वेद हैं
1: जी
2: और भी बहुत सारे पुराण वगैरह हैं, उनके जो अच्छी गुण हैं, अच्छे संस्कार हैं, वो हमें धारण करने चाहिए।
1: जी मतलब ये है कि हमें अपने जो मूल हैं, संस्कार हैं, जिन संस्कारों में हम रहे हैं,
2: जी
1: उनको धारण करना चाहिए, उनको छोड़ना नहीं चाहिए, और सोशल मीडिया का उतना प्रयोग करना चाहिए जो हमें जीवन में आगे ले जाने में सहायक हो और वो हमारे विकास में बाधा ना बन
2: बाधा
1: सके।
2: ना बने।
1: आपने देखा है कि कई बार आजकल साइबर फ्रॉड हो जाता है लोगों के साथ। आज के युवा हैं सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए तरीके ढूंढकर साइबर फ्रॉड करने में लग जाते हैं और कई तरीके के अपराध में घुस जा रहे हैं। तो इसका एक कारण ये भी है कि उनको वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है। हमारे यहाँ राजकुमार जी, पहले संयुक्त परिवार की अवधारणा थी, परिवार में बुजुर्ग रहते थे, आज के परिवार माता पिता और बच्चों तक सिमट गए हैं। तो
0: जी
1: ये भी एक कारण है कि बच्चों का संस्कारवान ना होने
0: ना
1: का।
0: हो कारण था कि संयुक्त परिवार में जब बच्चा रहता था तो वो देखता था कि माँ, दादी ने आवाज दी, माँ
1: जी
0: भागती हुई गई, तुरंत
1: जी
0: पहुंची, बताओ माता जी। अब क्या है, बच्चा देख ही नहीं रहा है कुछ कि मेरी माँ किसकी हेल्प कर रही है, क्योंकि माँ घर तक सीमित है, पिताजी अपना ऑफिस चले गए। तो जो सहयोग की भावना थी, परिवार में दया की भावना थी, नैतिकता की भावना थी, तो वो सब भावनाएं बच्चे को देखने को नहीं मिल पा रही हैं।
1: बिल्कुल
0: और देखने से बच्चा सुनने से बहुत कुछ सीखता है।
1: बिल्कुल राजकुमार जी, कहीं ना कहीं माता पिता का बच्चों के अंदर ये तेरा, ये मेरा, ये पराया, ये चाचा का, चाची का, ताऊ का, ये सब जो बातें आजकल परिवारों में हो गई हैं, इस वजह से भी बच्चे अपनों को महत्व नहीं देते
0: नहीं देते
1: और केवल एक सीमित दायरे में
0: दायरे
1: सिमट कर रह जाते हैं, क्योंकि उनको ताऊ से प्रेरणा मिल सकती
0: मिलते
1: थी,
0: थे।
1: संस्कार मिल सकते थे, बाबा से प्रेरणा मिल सकती थी, संस्कार मिल सकते थे। घर की बड़ी बुजुर्ग दादी बहुत तरीके के संस्कार लड़कियों में भरती थी, जिससे कि उनको पराए घर जाकर कोई किसी गलत बात का सामना ना करना पड़े, कई तरह से सचेत करती थी अपनी सुरक्षा के प्रति। लेकिन आज क्या है कि संयुक्त परिवारों का अभाव है, इस वजह से संस्कार भी सिमट कर रहे हैं। अब हम आपसे जानना चाहेंगे अनुष्का जी, कि कैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को संस्कारित कर सकते हैं, क्या शुरुआत होनी चाहिए छोटे बच्चे के साथ?
2: हमारे भारतीय समाज में परिवार को संस्कारों की पहली कड़ी माना जाता है, तो सबसे पहले हमारे परिवार का वातावरण संस्कार में युक्त होना चाहिए, जिसमें बड़े बुजुर्ग, चाची चाचा, दादी दादा, नानी नाना सभी होने चाहिए, जिससे बच्चा संस्कारों को सीख सके, उनकी अच्छाइयों को सीख सके। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं सीखने के लिए, जो हमें बड़े बुजुर्गों से ही प्राप्त होती हैं।
1: जी राजकुमार जी, संस्कार और समाज, शुरुआत में हमने बात कही थी, एक
0: जी
1: दूसरे के
0: पूरक
1: पूरक हैं, और संस्कारों के बिना समाज आगे नहीं बढ़ सकता।
0: नहीं।
1: आज हमारा देश नित प्रतिदिन प्रगति कर रहा है, इसकी बात है कि कहीं ना कहीं हम संस्कारों से बंध के चल
0: बंद
1: रहे हैं। हमारी संस्कृति को आज विदेशों में अपनाया जा रहा है और हम उसे पीछे छोड़ते जा रहे हैं।
2: जी
1: इसका कारण क्या है, इसके पीछे क्या सोच है विदेशियों की, इस संबंध में थोड़ी सी आप राय की जानना।
0: विदेश से

0: लोग यहाँ आते हैं वो देखते हैं
1: जी
0: कि यहाँ पर कितना अपनापन है, मधुरता है, लोगों को एक दूसरे से लगाव है। शहर विदेश में क्या होता है, अगर उनका नौकर है उसको बुखार भी आ गया तो भी उसको काम करना। हमारे यहाँ क्या होता है, हम खुद काम कर लेंगे मगर नौकर को आराम देंगे
1: जी,
0: परिवार के सदस्य को आराम देंगे, ऑफिस में है तो उसको आराम के लिए कहेंगे, दवा भी ला के देंगे, चोट लग जाएगी तो हाथ से पट्टी की जरूरत पड़ेगी तो भी पट्टी कर। तो इन सारी चीजों को देखकर वो प्रभावित हुए, उन्होंने इन चीजों को अपने यहाँ लागू करना चाहा, अपने आप में बदलाव करना चाहा, क्योंकि कहीं ना कहीं मानवता का जो धर्म है वो सबसे ऊपर है।
1: जी, मानवता का धर्म ऊपर है और हमें जिम्मेदारी हमारी समाज में रहकर ये होती है, अगर कोई व्यक्ति कोई बच्चा गलत कर रहा है तो उसको सही राह सिखाएं। खास करके विदेशी लोग हमारी वेशभूषा परिधानों को अपना रहे हैं और हम उन्हें पीछे छोड़ते चले जा रहे हैं। इसके पीछे ये हम मॉडर्न तो हों लेकिन अपनी संस्कृति से जुड़कर। आप लोग आज समाज में संस्कारों के मूल विषय पर परिचर्चा में सम्मिलित हुए, आपने अपने विचार हमारे कार्यक्रम में साझा किए, आप कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम जनमंच। आज का विषय था समाज में संस्कारों का मूल्य। प्रतिभागी थे राजकुमार और अनुष्का। संचालन किया था रविंद्र कुमार ने। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। रात्रि के 8 बजने को है। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र के कार्यक्रमों से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: संध्या में आज हमने न सिर्फ माँ की महिमा का गुणगान किया, बल्कि उस नारी शक्ति के विराट स्वरूप को भी महसूस किया जो सृष्टि का आधार है। किसी ने क्या खूब कहा है, माँ के कदमों में जो शीश झुकाता है वो इस दुनिया में मुकम्मल मकाम पाता है। तो आज के इस कार्यक्रम में शाम-ए-वद में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए शाइस्ता जाहिद को इजाजत। नमस्कार। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज के हिंदी कार्यक्रम में शारदीय नवरात्रि पर आधारित कविता पाठ प्रस्तुत है। कविता पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं धर्मराज उपाध्याय।
2: नवरात्र त्योहार को लेकर के नारियों पर, बेटियों पर, जो कि देवी माँ का ही रूप है, मेरी चार लाइनें, और यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि मानवता का कोई भी आधार नहीं रच सकते थे। मानवता का कोई भी आधार नहीं रच सकते थे, जीवन जीने का कोई भी सार नहीं रच सकते थे। मानवता का कोई भी आधार नहीं रच सकते थे, जीवन जीने का कोई भी सार नहीं रच सकते थे। मानव जीवन आज अगर है तो बस इनके दम से है। बिना बेटियों के प्रभु भी संसार नहीं रह सकते थे। इसी के साथ साथ राम रावण युद्ध में जब प्रभु श्री रामचंद्र जी का अंतिम युद्ध रावण के साथ होना था, तब उनको भी मां शक्ति की उपासना करनी पड़ी। नील कमलों के साथ दुर्गे मां की उपासना करनी पड़ी, मां जगदम्बिके की उपासना करनी पड़ी। तब मैंने चार लाइनें उस पर कहा है कि छल बल से परिपूर्ण था रावण, छल बल से परिपूर्ण था रावण, राम से जाता हराए नहारे। और संतों का हित और देवों की चिंता, कैसे करूं प्रभु राम बिचारे। और नील कमल से की माता की स्तुति, नील कमल से की माता की स्तुति, और किसी के गए न सहारे। माता ने आशीर्वाद दिया, प्रभु राम तभी रावण को थे मारे। प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम

श्री रामचंद्र जी ने जिनका आशीर्वाद प्राप्त करके रावण का वध किया, ऐसी माता देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं देश के युवाओं से एक बात कहना चाहता हूँ कि अफवाहों में मत पड़ जाना, अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना, अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना, अफवाहों में मत पड़ जाना, तुम अपनी तैयारी रखना, आए कितने विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना। कोशिश करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है, कोशिश करने से कच्चा तन पक्का पूरा बन जाता है, जल धाराएं अगर ठान ले पत्थर चूरा बन जाता है। आगे बढ़ना है तो बातें सारी याद हमारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना। किस्मत से मेहनत की यारों जब भी बाजी ठन जाती है, किस्मत से मेहनत की यारों जब भी बाजी ठन जाती है, मेहनत करने वालों की तब किस्मत दासी बन जाती है। काट सके जो समय जाल को वो तलवार दुधारी रखना, आए कितनी विषम परिस्थिति अपनी कोशिश जारी रखना। एक कविता अपनी खाकी के लिए भी मैं आप लोगों के बीच में प्रस्तुत करता हूं कि कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूं, कांटों में जकड़ा हुआ इज्जत का ताज हूं, खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं। सर्दी में बरसात में दिन हो चाहे रात में, सर्दी में बरसात में दिन हो चाहे रात में, रैलियों में मेलों में हो या किसी बारात में, सिसकियों का ढांढस हूं मैं, शोषितों का नाज हूं, खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं। हो दशहरा या दिवाली, हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, पत्थरों की मार हो या झेलना हो चाहे गोली, हो दशहरा या दिवाली, ईद हो या चाहे होली, पत्थरों की मार हो या झेलना हो चाहे गोली, पहुंचे जो अंजाम तक उस सफर का आगाज हूं, खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं। मां बहन और बेटियों की हिफाजत में खड़ा हूं, मां बहन और बेटियों की हिफाजत में खड़ा हूं, आपकी खातिर न जाने कितनी तोपों से लड़ा हूं, चीर हूं मैं द्रौपदी की आप सबकी लाज हूं, खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं। पीड़ितों और शोषितों के लिए मैं एक ढाल हूं, पीड़ितों और शोषितों के लिए मैं एक ढाल हूं, जो दमन इनका करें, जो दमन इनका करें उनके लिए मैं काल हूं, काल सर्पों के लिए

0: न कोई चौकी बंद हुई, न कोई पिकेट टूटा, बल्कि और दुगना ड्यूटी लगना शुरू हुआ। जो खतरा कोरोना वैक्सीन के आने के पहले आम जनता को था, वही खतरा पुलिस के लोगों को भी था, लेकिन फिर भी हमने जाबाजी के साथ काम किया। तब कहना चाहता हूं कि कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था, कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था, आपके जीवन की खातिर आप ही से लड़ रहा था। कोरोना संकट के समय भी मैं दिखाई पड़ रहा था, आपके जीवन की खातिर आप ही से लड़ रहा था। जान की बाजी लगाए हुए मैं जाबाज हूं, खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं, खाकी हूं गरीबों दबे कुचलों की आवाज हूं। कि स्वार्थवश सम्मान करना गलत है, ध्यान दीजिएगा, स्वार्थवश सम्मान करना गलत है और बेवजह अपमान करना गलत है, स्वार्थवश सम्मान करना गलत है, बेवजह अपमान करना गलत है। दानियों तुम बात मेरी मान लो, दानियों तुम बात मेरी मान लो, लूट करके दान करना गलत है, दानियों तुम बात मेरी मान लो, लूट करके दान करना गलत है। साफ तन हो और मन मैला रहे, साफ तन हो और मन मैला रहे, इस तरह स्नान करना गलत है। और मिट्टी है ये, मिट्टी है ये, मिट्टी में मिल जाएगी, मिट्टी है ये, मिट्टी में मिल जाएगी। देह का अभिमान करना गलत है, और मैं सुनाता आप कुछ सुनते नहीं, मैं सुनाता आप कुछ सुनते नहीं, मुझको यूं हलकान करना गलत है, मुझको यूं हलकान करना गलत है। और अपनी अंतिम रचना आपके बीच प्रस्तुत करता हूं। इस बार कवि सम्मेलन में मेरे तेवर कुछ नए थे, क्योंकि कविता पढ़ने हम अपनी असली पत्नी के साथ गए थे। एक कवि जी ने कहा कि आप यहां अपनी पत्नी के साथ क्यों आए हैं, बताएंगे? हमने कहा हमारी पत्नी है, अपनी पत्नी नहीं, तो क्या तुम्हारी पत्नी के साथ आएंगे? फिर मैंने पत्नी को साथ लाने की असली वजह बताई, सुन करके सबकी बुद्धि चकराई। मैंने कहा पिछली बार कवि सम्मेलन में यहां मेरे जूते खो गए थे, मैंने कहा पिछली बार कवि सम्मेलन में यहां मेरे जूते खो गए थे, तब मेरे नयन भराए थे, तब संयोजक जी ने मेरे लिए नए जूते मंगवाए थे, क्या पता उसी तरह का चमत्कार इस बार भी हो जाए, उस बार जूते खोए थे और इस बार पत्नी खो जाए, ऐसा हो जाए तो मेरी किस्मत ही न खिल जाए, नए जूतों की तरह नई पत्नी न मिल जाए। पत्नी ने नीचे से सुना और वहीं से चिल्लाई, पत्नी ने नीचे से सुना और वहीं से चिल्लाई कि प्रीतम प्यारे, प्रीतम प्यारे, ये जूते खोने का राग आप कब तक गाएंगे, ये जूते खोने का राग आप कब तक गाएंगे, और पिछली बार जूते पाए थे ना, इस बार भी जूते ही पाएंगे, इस बार जूते ही पाएंगे। अंतिम मुक्तक सुना करके अपना काव्य पाठ को विराम देता हूं। कि नफरत को छोड़ें और करें प्यार की, लोग मुझे क्यों प्यार करते हैं ये मैं आपसे बताता हूं, कि नफरत को छोड़ें और करें प्यार की बातें, क्यों कर रहे हैं आप ये बेकार की बातें, नफरत को छोड़ें और करें प्यार की बातें, क्यों कर रहे हैं आप ये बेकार की बातें, मैं दिल से बोलता हूं तभी दिल में बसा हूं, दिल जीत कहां पाती फनकार की बातें।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप शारदीय नवरात्रि पर आधारित कविता पाठ सुन रहे थे, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे धर्मराज उपाध्याय। अब आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम। आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है पूरन शुभम के स्वर में कुछ भक्ति रचनाएं। सबसे पहले प्रस्तुत है सूरदास की भक्ति रचना पूरन शुभम।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी के गाए हुए गीत से। फिल्म का नाम है सुहाग।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: गोलियों की रासलीला रामलीला, आइए सुनते हैं इस फिल्म से कार्यक्रम का अगला गीत। स्वर है श्रेया घोषाल।

0: किसान भाइयों, फसल अवशेषों को खेत में ही सड़ाकर कार्बनिक खाद बनाएं। इससे खेत की उर्वरा शक्ति और जल धारण शक्ति बढ़ती है, उपज भी अच्छी मिलती है, पराली को बेचकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
1: सुखविंदर सिंह, भूमि त्रिवेदी और करसन सगठिया के स्वरों में आइए सुनते हैं रईस फिल्म का ये गीत।

आज के चित्रपट से कार्यक्रम में जिन फिल्मों के गीत आपने सुने उनके नाम थे सुहाग, रामलीला और रईस। इसी के साथ आज का चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8:45 होने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को

0: शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की, इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। नेपाल की बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ से गोरखा जिला प्रभावित, अब तक 80 लोगों को बचाया गया और 5 लापता। काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूर्णमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती हुई चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में ये समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
1: विकसित भारत के लिए जो नए आइडियाज चाहिए, जो नए सॉल्यूशंस चाहिए, उनसे भारत ही नहीं विश्व का भविष्य भी तय होगा। टुडे द वर्ल्ड इज लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस एंड यू हैव द पोटेंशियल टू प्रोवाइड दिस दोज सॉल्यूशंस।
0: प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है, मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।
1: भारत 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की तैयारी कर रहा, हम 2036 ओलंपिक्स की मेजबानी का सपना भी लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले वर्षों में जब दुनिया के बड़े स्पोर्ट्स इवेंट भारत में होंगे, इसलिए भारत के युवाओं के पास अब प्लेटफॉर्म भी है, पोटेंशियल भी है और सपोर्ट भी है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियां खारिज कर दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी

0: और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
1: We have seen certain remarks.
2: हमने कल की घटनाओं के बारे में मानवाधिकार उच्च आयुक्त के कार्यालय की कुछ टिप्पणियों को देखा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है जहां शांतिपूर्ण सभा करने के अधिकार की गारंटी संविधान में दी गई है। हमारे मजबूत संस्थान, स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया इस अधिकार को सुरक्षित रखते हैं। हर लोकतंत्र की तरह भारतीय नागरिक सार्वजनिक व्यवस्था और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हैं।
0: भारतीय जनता पार्टी ने सांसद और प्रोफेसर बिमोल अकोयजम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने पर कांग्रेस की आलोचना की है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के बाद बिमोल अकोयजम की सेवाएं समाप्त कर दी थी। नई दिल्ली में पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए।
3: जेएनयू ने पॉश एक्ट के तहत एक इंटरनल कमिटी बिठाई। इस कमिटी ने तमाम सबूतों, तमाम विटनेसेस और तमाम सर्वाइवर्स की विटनेस टेस्टिमनी के बाद, सारे के सारे तथ्यों की जांच करने के बाद तुरंत बिमोल अकोयजम को नौकरी से बर्खास्त किया। फेमिनिज्म कांग्रेस पार्टी के लिए केवल एक हैशटैग से शुरू होता है और जवाबदेही की दहलीज पर आकर समाप्त हो जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन सेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जन सेवा से देश सेवा इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन की इसी दृष्टिकोण के साथ भारत सरकार को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज विशेष श्रृंखला में बात औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति के लिए की जा रही पहल की।
4: पिछले कुछ वर्षों में सरकार धीरे धीरे भारत से ब्रिटिश शासन की निशानियों को हटाने की दिशा में काम कर रही है। 15 अगस्त 2022 को 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 25 वर्षों के लिए 5 संकल्पों यानी पंच प्रण की घोषणा की थी। दूसरे प्रण के बारे में विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि नागरिकों के जीवन के किसी भी हिस्से में, यहां तक कि उनके मन के सबसे गहरे कोने या उनकी आदतों में भी गुलामी का कोई अंश नहीं होना चाहिए।
5: सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, यानी हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है। हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी।
4: देश को उपनिवेशिक विरासत से मुक्त करने और एक अलग भारतीय पहचान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली के ऐतिहासिक राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारतीय नौसेना ने पुराने ध्वज जिसमें सेंट जॉर्ज क्रॉस बना हुआ था की जगह वर्ष 2022 में अपना नया ध्वज अपनाया। सरकार ने वर्ष 2017-18 से रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। इसके साथ ही वर्ष 1924 से चली आ रही एक परंपरा समाप्त हो गई। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा,
6: वी लिव्ड एज अ नेशन, हम कम से कम 5000 वर्षों से एक राष्ट्र के रूप में जी रहे हैं। इतने लंबे इतिहास में हमने एक महान राष्ट्र, महान इतिहास, महान स्मारक, महान ऐतिहासिक स्थल बनाए हैं। वे सहस्त्राब्दियों से भारत की पहचान रही है। महान पहचान आज यही हो रहा है, यही वह है जिसे हम औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति कहते हैं,
7: डीकॉलोनाइजेशन।
4: सरकार ने ब्रिटिश शासन के दौरान प्रतिबंधित साहित्य को फिर से सामने लाने का भी प्रयास किया है। इसके तहत भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिबंधित कविताओं, लेखों और प्रकाशनों की एक सूची तैयार कर रहा है। ये सभी पहल एक ऐसे आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो अपनी सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय मूल्यों पर आधारित है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्र उत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया है।

प्रमुख मंदिरों में पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा लोगों को आत्मानुशासन और नैतिक मूल्य स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती है। ये महोत्सव नारी के सामर्थ्य, साहस और दृढ़ता में विश्वास को मजबूत करता है। भारत में त्योहारी खरीदारी सीजन की शुरुआत जोरदार रही। एक रिपोर्ट के अनुसार देश के प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने फेस्टिव सीजन में पहले 2 दिनों में करीब 24,000 करोड़ रुपए की बिक्री की है। इस दौरान लोगों ने स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, घरेलू उपकरणों और फैशन उत्पादों की जमकर खरीदारी की। त्योहारी सीजन के पहले 2 दिन की बिक्री सामान्य दिनों की तुलना में लगभग 6 गुना अधिक है। नेपाल के गोरखा जिले में बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक बाढ़ के बाद अब तक 9 विदेशी नागरिकों सहित 80 से अधिक लोगों को बचा लिया गया है। 5 लोग अब भी लापता हैं। आज सवेरे लगभग 4 बजे आई बाढ़ में घर और पुल बह गए और कई जल विद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गईं। पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बिगड़ती कानून व्यवस्था के कारण आपातकाल घोषित कर दिया है। राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने प्रांत में संवैधानिक व्यवस्था के विफल होने पर आपातकाल लागू किया। इस कदम से पाकिस्तान की संघीय सरकार को मुख्य कार्यकारी और विधायी शक्तियां अपने हाथ में लेने का अधिकार मिल गया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि रूस और यूक्रेन ऊर्जा केंद्रों पर हमले रोकने के लिए सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उन्होंने दोनों देशों से समझौते का पालन करने का आग्रह किया। इस बीच रूस और यूक्रेन दोनों ने ही युद्ध विराम पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की है। सऊदी अरब के किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। इस बीच विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास घायल 11 भारतीयों की मदद के लिए सभी आवश्यक कदम उठा रहा है। दूतावास उनकी सहायता के लिए स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब जीता। अनमोल खरब ने तुर्की इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। अनमोल ने फाइनल में आकर्षि कश्यप को हराया। इंदौर में भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में 224 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 10 विकेट पर 223 रन बनाए। अब ने सर्वाधिक 69 रन बनाए। 5 मैच की श्रृंखला में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर हैं। मौसम विभाग ने कल हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में बिजली चमकने के साथ बरसात होने और तेज हवा चलने का अनुमान व्यक्त किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 13 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। भारत की प्रगति को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैज्ञानिक उपलब्धियों से प्रेरित बताया। प्रधानमंत्री ने कहा, देश युवाओं को अपार अवसर प्रदान कर रहा है। देश के विकास के लिए युवाओं से अपनी क्षमताएं पहचानने का आग्रह किया। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकारियों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल लोगों की अवैध हिरासत रोकने और सुचारू यातायात जारी रखने के निर्देश दिए। भारत ने नई दिल्ली में हुई घटनाओं पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की टिप्पणियां खारिज की। इसे दोहरा मापदंड और अपने आंतरिक मामलों में अनुचित हस्तक्षेप बताया। और काहिरा में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपके लिए। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ। फिल्म का नाम है लावारिस। इसे लिखा है अनजान ने, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में कस्मे वादे फिल्म का गाना, गीत गुलशन बावरा का है, संगीत आरडी बर्मन का।

0: पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के प्यारे विकास को तो आपने खूब देखा है, लेकिन इस किरदार के पीछे के चंदन को कितना जानते हैं? संघर्ष से सफलता तक का सफर, एक्टिंग का जुनून, अनुभव, सपने, किस्से और वो बातें जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। एक बेबाक और दिल से निकली बातचीत अभिनेता चंदन रॉय के साथ।
1: यह ऑडिशन और फिर उसके बाद अगले ही दिन कॉल आ गया टीवीएफ से कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। और दीपक सर ने कहा उस दिन कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, कहाँ थे तुम यार, अब जाके हमारा पंचायत मुकम्मल हुआ है। तो इस तरह से पंचायत आपको मिला और हमें विकास मिला।
0: 13 अक्टूबर सेलुलॉइड के सितारे शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम का अगला गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में है। फिल्म का नाम है बरसात की एक रात। गीत आनंद बख्शी ने लिखा है, संगीत से सवारा है आर डी बर्मन ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनिए आरडी बर्मन, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में महान फिल्म का गाना, गीत अनजान का है, संगीत आरडी बर्मन का।

गाने के साथ ही प्रीति शर्मा को आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए अनुमति और आप सुनते रहिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।

0: बुलाया, उनको सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो, आई जंजीर की झनकार खुदा खैर करे। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का,
1: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
2: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब।

0: सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार।
1: कौन हो तुम?
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
0: अगर आप दोबारा पूछेंगे कौन हो तुम, तो वो कहेंगे
1: विजय दीनानाथ चौहान। बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम सुहासिनी चौहान, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा चलवे।
0: सारी दुनिया को रहता है उनका इंतजार।
3: उनका इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन।
0: वो सब तो ठीक है भाई साहब, पर क्या आपको इंग्लिश आती है?
4: नो कल्लो बात। अरे बाबूजी, ऐसी इंग्लिश आवे दैट आई कैन लीव अंग्रेज बिहाइंड। यू सी सर, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज अ वेरी फनी लैंग्वेज।
0: लोग उनको छोरा गंगा किनारे वाला कहते हैं।
5: छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे खुली जाए बंद अकल का ताला।
0: भाई हमने आज ये सोचा कि हम अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी नहीं बताएंगे, क्योंकि वो तो आपको पता है। हम ये भी नहीं बताएंगे कि उन्होंने फिल्म जंजीर से एंग्री यंग मैन की अपनी पारी को शुरू किया था। हम ये भी नहीं बताएंगे कि एक के बाद एक उन्होंने बहुत सारी कामयाब फिल्में दी हैं। बल्कि हम तो आज अमिताभ बच्चन के डायलॉग दर डायलॉग, डायलॉग दर डायलॉग आपको सुनवाएंगे। ये वो डायलॉग हैं जो आपके जहन में ताजा हैं, और इनके जरिए आप अमिताभ की अभिनय यात्रा से होकर गुजरेंगे।
6: हाँ जी बादशाह, की देख रहे हो तुसी? चलो शुरू हो जाओ।
0: सबसे पहले चलते हैं ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म आनंद की तरफ। ये फिल्म साल 1971 में आई थी, और अमिताभ बच्चन की आवाज से आपको अंदाजा लग जाएगा कि ये उनके शुरुआती दौर की फिल्म थी।
7: मौत तो एक कविता है, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको डूबती नब्जों में जब दर्द को नींद आने लगे, जर्द सा चेहरा लिए चांद उफक तक पहुंचे, दिन न भी पानी में हो रात किनारे के करीब, ना अंधेरा ना उजाला हो, ना अभी रात ना दिन, जिस्म जब खत्म हो और रूह को जब सांस आए, मुझसे एक कविता का वादा है, मिलेगी मुझको।
0: हम इस साल की दो महत्वपूर्ण फिल्मों की बातें करेंगे। पहले अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना के सामने वाला सीन, फिल्म नमक हराम।
8: विकी,
9: किस साले ने 100 रुपए हाथ उठाया? बोलो कौन है वो माइकल लाल जो अपनी माँ का दूध अजमाना चाहता है? आजा सामने कुत्तों कमीनों, अब हाथ उठा के दिखाओ। आओ, एक एक की खाल ना खिंचवा दी तो मेरा नाम भी विक्रम नहीं, ये सारा मोहल्ला जला के राख कर दूंगा, समझे?
0: इसके बाद आ जाइए साल 1973 की तरफ, प्रकाश मेहरा की फिल्म जंजीर, जहां से अमिताभ बच्चन का असली सफर शुरू होता है।
10: तुम्हारा नाम शेर खान है?
11: इस इलाके में नए आए हो साहब, वरना शेर खान को कौन नहीं जानता। खैर, अब मुलाकात हो गई।
10: जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं।
11: आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही।

0: तुम्हारी वर्दी तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी ये कुर्सी नहीं होगी उस दिन तुम
1: नहीं साहब।
2: यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं।
0: मतलब का बात बोलू साहब?
3: जैसे जैसे अमिताभ बच्चन आगे की फिल्में करते गए उनकी आवाज पहले की बजाय ज्यादा कड़क होती चली गई और संवादों की अदायगी का दम बढ़ता चला गया।
2: डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे।
4: हाँ, क्यों?
2: मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता।
3: 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी यश चोपड़ा की फिल्म दीवार। इसी साल अगस्त के महीने में आई रमेश सिप्पी की फिल्म शोले, जिसमें जय और वीरू की जोड़ी थी। और जरा देखिए जय वीरू से अपनी दोस्ती किस कदर निभा रहा है और मौसी से कह रहा है,
5: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
6: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
5: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा, मौसी कमाता है लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
6: हार जाता है?
5: हाँ मौसी, अब ये कमबख्त जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
6: तो क्या जुआरी है?
5: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना फिर अच्छे बुरे का कहाँ होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है?
6: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
5: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है, अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए, ये जुए और शराब की आदत तो दो दिन में छूट जाएगी।
6: अरे बेटा मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो, ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
5: मौसी आप वीरू को नहीं जानते, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
6: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
5: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं। हाँ,
6: तुम्हारे गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
5: बस मौसी, खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
3: भला सन 1975 से आगे हम कैसे जा सकते हैं जब तक कि हम इस खास सीन का जिक्र ना कर लें। आज इतने बरस बाद भी अमिताभ बच्चन के चाहने वालों को ये डायलॉग जबानी याद हैं।
7: आज खुश तो बहुत हो गए था, देखो जो आज तक तुम्हारे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं जोड़े, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए तुम, बहुत खुश हो गए कि आज मैं हार गया। लेकिन तुम जानते हो कि जिस वक्त मैं यहां खड़ा हूं, वो औरत जिसके माथे से तुम्हारी चौखट का पत्थर घिस गया, वो औरत जिस पर जुल्म बढ़े तो उसकी पूजा बढ़ी, वो औरत जो जिंदगी भर जलती रही लेकिन तुम्हारे मंदिर में दीप जलाती रही, वो औरत, वो औरत आज जिंदगी और मौत की सरहद पर खड़ी है और ये तुम्हारी हार है। हाँ, ये तुम्हारी हार है। क्या कसूर है उसका? कौन सा पाप, कौन सा जुर्म किया है उसने? क्या उसका जुर्म यह है कि वो मेरी माँ है? क्या उसका जुर्म यह है कि उसने मुझे जन्म दिया है? क्या उसका जुर्म यह है कि मैं उससे प्यार करता हूं? ये किस जुर्म की सजा दी जा रही है उसे? हम घर से बेघर हो गए, मेरा बाप जीते जी मर गया, मेरी मां सुहागिन होती हुई विधवा बनी रही, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन आज आज मांगता हूं। मेरे गुनाहों की सजा मेरी मां को मत दो, मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले करना जो चाहे कर लो, लेकिन लेकिन मेरी मां मुझे वापस दे दो।

0: इस जज्बाती सीन के बाद जरा वो सीन सुन लीजिए जो ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म चुपके चुपके से हमने लिया है। अमिताभ बच्चन का बिल्कुल अलग रंग जो उन्हें बड़ा एक्टर बनाता है।
1: आइए आइए प्रेमल बाबू,
2: मजाक मत कीजिए भैया, मैं ये तमाशा करते करते तंग आ गया हूँ। आज तो मैं फैसला करके ही रहूंगा।
1: क्यों,
2: क्या हुआ? अरे जो होना चाहिए था वो तो हो नहीं रहा है, और जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। आप लोग तो समझने की कोशिश ही नहीं करते ना। अरे भैया, कभी कभी दो बातें ना होते हुए भी हो जाती हैं, और जो नहीं होती हैं वो कभी कभी होके भी।
3: मेरे ख्याल से तुम रहने दो।
2: ओ सुनो तो सही, मैं वसुधा को पढ़ाने जाता हूँ, मैं बन के नहीं तुम बन के, और तुम बन के जो कहता हूँ वो समझती है। मैं कह रहा हूँ कहता मैं ही हूँ, कहता मैं ही हूँ, लेकिन वो मैं जो तुम और वो तुम जो मैं, यानी मैं जो तुम।
1: क्या बकरी इधर मैं लगा रखी है, सीधी तरह बात करना।
2: सीधी तरह कहां से करूं, आपको तो तेरी तुम लोगों ने कर रखा है ना। देखो भैया, मैं तो सुकुमार हूं ना, लेकिन वहां जब जाता हूं तो सुकुमार नहीं हूं, परिमल हूं ना। हाँ। और परिमल शादीशुदा है वसुधा के लिए, हूं ना।
1: होना नहीं है ना।
2: हाँ है ना। हाँ। इसलिए जब मैं अपनी बात यानी सुकुमार की दिल की बात कहना चाहता हूँ तो वो समझती है कि परिमल जो कंबख्त शादीशुदा है।
1: कंबख्त क्या?
2: परिमल जो शादीशुदा है वो कह रहा है। इसलिए बजाय मेरे दिल की बात समझने के वो मुझे परिमल समझ के कैरेक्टरलेस यानी चरित्रहीन समझती है, मुझसे नफरत करने लगी। और ये तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो मुझसे नहीं बोलूंगा।
1: तो ये कहना अपने दिल की बात बीच में घुसेड़ कर सब गड़बड़ कर रहा है।
2: नहीं बोलूंगा अपने दिल की बात।
1: नहीं, तुम्हें अपने दिल की बात करने का कोई हक नहीं। मत भूलो कि तुम इस ड्रामे में सिर्फ एक एक्टर हो, और वही करोगे जो डायरेक्टर कहेगा।
0: जी हाँ बिल्कुल, अमिताभ बच्चन ने वही किया जो डायरेक्टर ने कहा और लेखक ने लिखा। इसीलिए अमर अकबर एंथनी में अमिताभ बच्चन ये कारनामा करते नजर आए।
4: You see, the whole country of the system is juxtaposition by the hemoglobin in the atmosphere, because you are a sophisticated rhetorician intoxicated by the exuberance of the Ron Babasa. Hey! My name is Anthony Gonzalez.
5: What's that?
4: Right? My name is Anthony Gonzalez.
0: अमिताभ बच्चन जैसा नायक दुनिया में अकेला ही होता है, फिर चाहे उसका नाम एंथनी गोंसाल्विस हो, डॉन हो या विजय। साल 1978, त्रिशूल।
6: मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ, इसलिए कि जो काम दूसरों ने 25 बरस में किया है मुझे एक बरस में करना है। दुनिया में कम लोग हैं जो दूसरों की कामयाबी से खुश होते हैं। मैं सोचा था पता नहीं आ पाएंगे या नहीं।
7: अगर ये जश्न तुम्हारी कामयाबी की खुशी में है तो तुम मुझे आना ही चाहिए था, इसलिए कि तुम मानो या ना मानो लेकिन तुम्हारी इस कामयाबी में मेरे उन दो टेंडर्स का भी हिस्सा है जो तुम्हें भंडारी के जरिए मिले थे।
6: मैं तो मानता हूं कि आज मैं जो भी हूं आपकी वजह से। यकीन कीजिए मिस्टर आर के गुप्ता, जिंदगी में जो कुछ भी आपसे मिला वो मैं भूला नहीं हूं। वो तो एक कर्ज है जिसे एक न एक दिन मैं जरूर उतारूंगा। जरा ठीक से साफ कीजिएगा, वरना कोई देखने वाला समझेगा कि आपके हाथ किसी के खून से रंगे।
7: नहीं, मैंने हाथ धो दिया है, साफ हो गया।
6: मैं तो समझता था कि ये दाग आसानी से नहीं धुलते।
7: तुमसे हाथ मिलाकर जब मैंने अपने हाथ पर खून देखा तो एक सेकंड के लिए मैं समझा मेरा अपना ही खून है। बाद में पता चला तुम सर।
0: यहां तक आते आते अमिताभ बच्चन के अभिनय का सूरज अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था। साल 1978 में एक और फिल्म आई, मुकद्दर का सिकंदर।
8: मैं कोई नेता या लीडर या सोशल वर्कर नहीं हूं। मैंने अगर इन यतीम बच्चों के लिए कुछ दिया है तो अपनी बिरादरी को दिया है, अपने भाइयों को दिया है, क्योंकि क्योंकि मैं भी इन लोगों की तरह एक एक यतीम हूं। जब होश संभाला तो न मां की गोद थी न बाप का साया था, फुटपाथ की गोद थी, भूख और गरीबी का साया था। मैं था, मेरी तन्हाई थी, ठोकरें थी, जमाने की धुतकार थी, लोगों की गालियां थी। ऐसे में एक हमदर्द मिला, उसे मेरी हालत पर रहम आया, प्यार से उसने मेरे सर पे हाथ रखा, मैं रो पड़ा। उसने गीत गाकर मेरे जख्मी दिल पर मरहम लगाया। उस मरहम के सहारे हम आज जिंदा हैं, वरना हम तो कभी

मर गए होते। वो गीत मेरे जहन के वादियों में आज भी गूंज रहा है, उसे भूला नहीं। मैं गली या चौराहे पर वो गीत नहीं गाता, नहीं, बल्कि जब कभी भी उस खोए हुए हमदर्द की याद आती है, जब कभी भी जिंदगी से मायूस हो जाता हूं, वो गीत गुनगुना लिया करता हूं। आज वही गीत आपके सामने, अगर आप चाह सकते।

0: और अब हम आ गए हैं सन 1981 की तरफ, जब अमिताभ बच्चन की एक के बाद एक तीन महत्वपूर्ण फिल्में आईं। फिल्म कालिया।
1: इसे सर से पांव तक इतना लोहा पहना दो कि उसके बाद ना तो ये बगावत के लिए सर उठा सके, ना आजादी की तरफ कदम बढ़ा सके।
2: आपने अब तक जेल की जंजीरों और सलाखों का लोहा देखा है जेलर साहब, कालिया की हिम्मत का फौलाद नहीं देखा। पहना दीजिए मुझे सर से पांव तक जंजीरें, चढ़वा दीजिए जमीन से लेकर आसमान तक लोहे की दीवारें। कालिया हर दीवार फांद के दिखा देगा जेलर साहब, हर जंजीर तोड़कर दिखा देगा। संजय।
0: इसी साल आई फिल्म नसीब।
3: ये चुटकी उधर होटल में बजाना जहाँ वेटर है, यहाँ बुलाना हो तो नाम लेके प्यार से बुलाओ।
4: अच्छा जॉन साहब, आपको हम घर छोड़ दें?
3: तुम मेरे को घर छोड़ोगे? मैं तो समझा था अपना स्टोरी होटल में खलास हो गया, पर ये तो आगे बढ़ रहा है। बढ़ने दो, बहुत दम है स्टोरी में। बहुत जल्दी खाना खत्म कर दिया आपने।
4: मैंने तो खाना खाया ही नहीं उसके साथ।
3: बहुत अच्छा किया खाना नहीं खाया, ये विलन लोग के साथ तो खाना खाना ही नहीं चाहिए। जितना घटिया आदमी होता है ना, उतना ही घटिया इनका खाना होता है। आप देखो अपना गला देखो है, कितना अच्छा है। वो खाना खाया होता ना बैठ गया होता।
4: मैंने तुम्हें यहाँ बक बक करने के लिए नहीं बिठाया।
3: अच्छा क्या, ठीक है, बक बक नहीं करता है।
4: कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? अरे बोलो ना कहाँ जाना है।
3: अरे कमाल करता है, खुद बोलता है कि बक बक करता है, फिर खुद ही बात करने को बोलता है। बैलेट फेयर जाना है।
4: अच्छा, वहाँ रहते हो?
3: नहीं नहीं, वहाँ तो हर शनिचर हमारा इंतजार होता है।
4: इंतजार? हाँ। कौन करता है?
3: अपना महबूब।
4: महबूब?
3: हाँ, अपना डार्लिंग, अपना दिल, अपना जिगर। हाँ, एक घंटा मुलाकात होता है तबीयत हरी हो जाती है। अभी आप मिलेंगे ना, देखना कितने प्यार से मिलते। दो किस मैं मारूंगा, दो किस वो।
4: बस बस बस।
3: एकदम सही जगह पर लाके पटका।
0: और साल 1981 में ही आई अमिताभ बच्चन की एक और महत्वपूर्ण फिल्म यश चोपड़ा की सिलसिला।
5: जिंदगी का सफर तय करने के लिए बस एक सहारा चाहिए। शुक्रिया उस सफर के लिए, उस मान के लिए, उस जिंदगी के लिए। चंद अल्फाज अपने नए ड्रामे से आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हादसा बन के कोई ख्वाब बिखर जाए तो क्या हो, जज्बात को तब्दील नहीं कर सकता, दूर हो जाने से एहसास नहीं मर सकता। ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ये मोहब्बत है दिलों का रिश्ता, ऐसा रिश्ता जो जमीनों की तरह सरहदों में कभी तकसीम नहीं हो सकता। तू किसी और की रातों का हसीं चांद सही, मेरी दुनिया के हर रंग में शामिल तू है। तुझसे रोशन है मेरे ख्वाब, मेरी उम्मीदें, मैं किसी राह से गुजरूं, मेरी मंजिल तू है।
6: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।
0: साल 1984, अमिताभ बच्चन की एक बहुत यादगार भूमिका, फिल्म शराबी।
7: आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक, हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए।
8: क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको।

0: साफ वाक्य है योर ऑनर, जैसे किसी तर्क स्पष्टीकरण एक्सप्लेनेशन या व्याख्या की जरूरत नहीं होती। ना का मतलब ना ही होता है। माय क्लाइंट सेड नो योर ऑनर एंड दिस बॉयज मस्ट रियलाइज नो का मतलब नो होता। उसे बोलने वाली लड़की कोई परिचित हो, फ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई सेक्स वर्कर हो या आपकी अपनी बीवी क्यों ना हो, नो मीन्स नो।
1: सबसे आखिर के लिए हमने चुना है दो महानायकों का आमना सामना, सन 1982, फिल्म शक्ति।
2: पुलिस को अपना बयान देने से इनकार क्यों किया तुमने?
3: क्या मेरे बयान देने के बाद आप या आपकी पुलिस मुझे बेकसूर समझेगी?
2: तुम अच्छी तरह जानते हो विजय, तुम्हें बेकसूर समझना या मुजरिम ठहराना ये पुलिस का काम नहीं है। इसका फैसला अदालत में होगा।
3: तो फिर मैं बयान भी अदालत में ही दूंगा।
2: विजय, अगर तुम बेकसूर हो तो पुलिस की मदद करना तुम्हारा फर्ज है।
3: मैं तो हमेशा ही बेकसूर था डैडी, लेकिन मेरी मदद करना तो आपने कभी अपना फर्ज नहीं समझा।
2: ये मत भूलो कि मैं यहाँ एक बाप की हैसियत से नहीं, पुलिस ऑफिसर की हैसियत से बात कर रहा हूँ।
3: कौन सी नई बात है? आपने मुझसे हमेशा एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से ही बात की है।
2: देखो विजय, तुमको अगर मुझसे कोई गिला है या कोई शिकायत है, वो गलत है या सही है अपनी जगह है, लेकिन यहाँ इस जगह तुम्हें भूल जाना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो।
4: दोस्तों, हमारी कोशिश यही रही कि भी किस तरीके से आप तक नए से नए अंदाज में प्रोग्राम पेश किए जाए, और हमारी कोशिश कितनी कामयाब हुई है इसके बारे में आप ही अपनी राय हमें नवाजिए, ताकि हमें भी समझ आए कि जो हम कर रहे हैं वो आपको पसंद आ रहा है कि नहीं। फिलहाल आपको बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो यूनिस ने आप लोगों के लिए पेश किया, इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी है कि यूनिस जब मेरे पास आया ये सारे डायलॉग्स का कंसेप्ट लेके और इतने डायलॉग्स लेके, तो यकीन मानिए कि मेरे सर के ऊपर से चला गया कि अमिताभ बच्चन का कौन सा डायलॉग प्रोग्राम में लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए और किसको छोड़ दें, क्योंकि अमिताभ बच्चन की अदायगी, किरदार का अंदाज़े बयां, उनका आवाज़ के ऊपर अपना किस तरीके का भाव है और किस तरीके का वजन है उनका, उस सब को देखते हुए कोई भी डायलॉग छोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिलहाल हमने जो कोशिश की वो कामयाब हुई कि नहीं हुई, ये आप ही बेहतर जान सकते हैं। प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा।
1: तो अब इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर शकील बख्शी के साथ अपने दोस्त यूनुस खान को दीजिए इजाजत।
5: आज के फनकार।

तबला परिवार से जाने जाते हैं। आप कल्याण कर्नाटक के जाने माने तबला वादक स्वर्गीय श्री शंकरप्पा होगार जी के पौत्र हैं। आप अपने 8 वर्ष की आयु में अपने पिता श्री भगवंतप्पा होगार द्वारा तबला वादन तथा संगीत की शिक्षा प्राप्त की। साथ ही टॉप ग्रेड उपाधि प्राप्त आकाशवाणी धारवाड़ के स्टॉप तबला कलाकार आपके चाचा पंडित सातलिंगप्पा देसाई कल्लूर जी से भी तबला वादन में अधिक शिक्षा हासिल की है। कर्नाटक राज्य शिक्षा परीक्षा बोर्ड द्वारा शास्त्रीय संगीत में तबला विद्वत एवं गायन विद्वत की उपाधि, कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ से तबला वादन में MA की उपाधि, आकाशवाणी द्वारा आयोजित किए गए संगीत की ऑडिशन में तबला वादन में टॉप ग्रेड, बी हाई ग्रेड संगीत

0: संगीतकार बी हेग्रेड हिंदुस्तानी गायन कलाकार की उपाधियों के साथ फरुखाबाद, पूरब तथा अजरार घराना और दिल्ली घराने की भी उपाधि प्राप्त की है। पंडित जडेश हुगार धारवाड़ संगीत विश्वविद्यालय में लगभग 3 वर्ष संगीत सहायक शिक्षक के तौर पर और कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ में 1 वर्ष अतिथि व्याख्याता के पद पर कार्यरत रहे। आप केवल देश में ही नहीं बल्कि फ्रांस तथा स्विट्जरलैंड जैसे विदेशों में भी अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। साथ ही आप देश विदेशों के कई जाने माने कलाकारों के साथ कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। आपके संगीत कार्यक्रम आए दिन आकाशवाणी कलबुर्गी तथा दूरदर्शन केंद्र चंदन बेंगलुरु से प्रसारित होते रहते हैं। आज के इस अखिल भारतीय संगीत सभा में पंडित जडेश हुगार जी प्रस्तुत कर रहे हैं तबला वादन 3 ताल में। हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रदमठ।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुडे वी प्रेजेंट तबला रिसाइटल बाय पंडित जडेश हुगार। हैविंग इम्बाइब्ड म्यूजिकल इंस्टिंक्ट्स फ्रॉम हिज फादर श्री भगवंतपा हुगार, अ वेल नोन वोकलिस्ट एंड तबला आर्टिस्ट ऑफ कल्याण कर्नाटक रीजन, Jadesh inculcated a sense of Indian classical music right from his childhood. At the tender age of 8, he started learning tabla under his father's guidance. After that, it was the turn of his uncle, Pandit Sathalingappa Desai Kallur, a top grade tabla artist of Akashwani Dharwad, to impart advanced training in tabla to Jadesh. Belonging to Purab, Farukabad and Azrat Gharana, Jadesh has also achieved the style of Delhi Gharana. A postgraduate in music from Karnataka University Dharwad, Jadesh has achieved many top grades in classical music at a very young age, enthralling audience and connoisseurs all around India and abroad with repertoire of his recitals, incorporating various styles of performances. Jadesh has shared stage with many eminent and senior musicians. He has given programs in France and Switzerland also. Tonight, Pandit Jadesh Hogar will begin his performance of tabla solo in 3 Taal. Harmonium Lahira is provided by Sri Revaya Vastradmat.

0: तबला वादन में तीन ताल अब तक सुन रहे थे। अब सुनिए पंडित जडेश होगार जी से तबला वादन में रूपक ताल हारमोनियम लहरा संगत कर रहे हैं श्री रेवैया वस्त्रद मठ।
1: यू जस्ट हर्ड तबला सोलो बाई पंडित जडेश होगार इन तीन ताल। नाउ लिसन टू रूपक ताल।

0: इस रूपक ताल के साथ पंडित जडेश होगार तबला सोलो समापन कर रहे हैं। हारमोनियम लेहरा संगत कर रहे थे श्री रेवैया वस्त्रदमठ। यह कार्यक्रम आकाशवाणी कलबुर्गी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग किया गया था।
1: विथ रूपक ताल पंडित जडेश होगार कंक्लूड्स हिज तबला रिसाइटल इन टुडेज रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। हारमोनियम लहरा वॉज प्रोवाइडेड बाय श्री रेवैया वस्त्रदमठ। This program was recorded at the studios of Akashavani, Kalaburgi.

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात के 11 बजने को है। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज चेन्नई में 13,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने इसे ऐतिहासिक अवसर बताया। उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं से संपर्क सुविधा बेहतर होगी, उद्योग और व्यापार मजबूत होंगे तथा राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। श्री मोदी ने कहा कि ये परियोजनाएं दैनिक यात्रा आसान बनाएंगी और राज्य की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तमिलनाडु में परंपरा और आधुनिक विकास साथ साथ जारी हैं।
1: मंदिर से मेट्रो तक तमिलनाडु के ये अनुभव, यही आज के भारत की स्पिरिट है। भारत अपनी सांस्कृतिक शक्ति से प्रेरणा लेता है, विज्ञान की प्रगति से आगे बढ़ता है और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए नए अवसरों का निर्माण कर रहा है। हमारी विरासत और भविष्य की हमारी आकांक्षाएं साथ साथ आगे बढ़ रही है।
0: इससे पहले श्री मोदी ने चेन्नई मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के पूनमल्ली वडा पलानी खंड का शुभारंभ किया। चेन्नई में एक अन्य समारोह में प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया उभरती चुनौतियों का समाधान तलाश रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि देश के युवाओं में इन चुनौतियों का समाधान देने की प्रतिभा और क्षमता है। श्री मोदी ने कहा कि युवा विकसित भारत का संकल्प पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने युवाओं से अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और राष्ट्र के विकास में योगदान देने की अपील की।
1: आज भारत में जो इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी है।

0: मैं चाहता हूं कि हर युवा अपने भविष्य को उसी बड़े कैनवास पर देखे, बिकॉज दिस इज योर टाइम, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये सपना पूरा होकर रहेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि विनिर्माण क्षेत्र के विस्तार से युवाओं के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवा भारत को खेलों के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित लोगों को अवैध हिरासत में नहीं लेने और यातायात सुचारू तरीके से जारी रखने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने दिल्ली में बैरिकेडिंग व्यवस्था की समीक्षा करने, मेट्रो सेवाएं समय सारणी के अनुसार और इंटरनेट सेवा भी निर्बाध रूप से जारी रखने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि वकीलों के पेशेवर दायित्वों के निर्वहन में बाधा नहीं डाली जानी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त के दोहरे रवैये और सार्वजनिक मामलों पर चुनिंदा तरीके से प्रतिक्रिया देने के तरीके की आलोचना की है। भारत ने नई दिल्ली में कल की घटनाओं पर संगठन की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संगठन की टिप्पणियों को गैर जरूरी और देश के आंतरिक मामलों में अस्वीकार्य दखलंदाजी बताया। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत के पड़ोस में विरोध प्रदर्शनों पर हिंसक प्रतिक्रियाओं पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। उन्होंने कहा कि इस तरह के दोहरे रवैये से संगठन की विश्वसनीयता घटती है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 9 दिवसीय शारदीय नवरात्रोत्सव आज पूरे देश में धार्मिक उत्साह और भक्तिभाव के साथ शुरू हो गया। देवी दुर्गा की पूजा अर्चना के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रमुख मंदिरों में पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पावन पर्व पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सऊदी अरब में किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हूती विद्रोहियों के हमले में 12 लोगों की मौत हो गई और 309 अन्य घायल हुए। भारत ने इन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि लोगों और असैन्य ढांचे पर हमले अस्वीकार्य हैं और इन्हें तत्काल रोका जाना चाहिए। नेपाल में गोरखा जिले में बूढ़ी गंडक नदी में आज सुबह अचानक आई बाढ़ से अनेक घर और पुल बह गए। किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। मिस्र में निशानेबाजी विश्व कप में उदयवीर सिद्धू ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने फाइनल में 240.6 अंक के साथ अपना पहला सीनियर विश्व खिताब हासिल किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi has said India's progress draws strength from its rich cultural heritage, scientific achievements and modern infrastructure. The Prime Minister was speaking after inaugurating and laying foundation stones of development projects worth over 13,000 crore rupees across Tamil Nadu at an event held at IIT Madras today. The projects span road and rail transport, port infrastructure, petroleum and scientific research.
3: This is a historic day for Tamil Nadu. Today's program involves projects worth 13,000 crore rupees. We are inaugurating many completed projects and laying foundations for new ones. Some will make daily travel easier. Others will strengthen industry and trade. Together, they will create jobs for young people across Tamil Nadu. I congratulate the people of the state on this occasion.
2: Earlier in the day, Mr. Modi inaugurated the Ponnamalli Vadapalani stretch of Phase 2 of the Chennai Metro Rail project, built at a cost of around 4,900 crore rupees. The Prime Minister and Chief Minister C. Joseph Vijay jointly flagged off the new metro services and travelled on the train. Prime Minister Narendra Modi also attended Golden Jubilee celebrations of Jai Gopal Garudiya Hindu Vidyalaya in Chennai today. Addressing the students, the Prime Minister said the world is looking for solutions to emerging challenges and expressed confidence that India's youth have the talent and potential to provide them. The Supreme Court today directed authorities